0: सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। थैंक यू
1: बिल्कुल
0: सो मच।
1: ओके थैंक यू जसना।
0: थैंक यू।
1: एनीबॉडी एल्स?
2: थैंक यू मैम। और आपके एक नए वर्ड पे के माने जाने जो कंपैशन
1: हां जी करुणा, उसका हिंदी
2: जी,
1: शब्द है करुणा।
2: एक
1: थैंक
2: वर्ड के बहुत सारे मायने आज आपके जरिए जान दिए।
1: हाँ, ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। मैं साथ में ये भी कह रही हूँ, बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। बट वही मैंने बोला ना कि चैलेंज को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। चैलेंज को हम लड़ के रिजॉल्व कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज में रिजॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव सोच से कर रहे हैं, या हम पॉजिटिव होकर अपनी करुणा पर्सनालिटी से, कंपैशन से उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और कोई?
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
3: जय रानिया मैम।
1: थैंक
3: बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के संबंध में। एक्चुअली अभी हम सोचते हैं, और मैं अभी फिर वापस जब रीड से जुड़ा तो मुझे भी ऐसे फील हो रहा था, या मैंने अपने दिमाग से ऐसे सोचा कि भाई मुझे तो हायर किया गया है कि बच्चों को मुझे कंप्यूटर सिखाना है या महिलाओं को मुझे कंप्यूटर सिखाना है। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं नहीं कह रहा था अभी तक कि एज ए लीडरशिप, क्योंकि मैं पहले भी संस्था में काम कर चुका हूं तो कुछ तो है लीडरशिप के इनपुट से, लेकिन इस बार मैं उस सोच से नहीं गया। लेकिन आज के आपके सेशन से मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस सोच के साथ जाऊं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, और अपने सोल की सुन के कि भाई कहाँ गलती हो रही है, मैंने अपने टास्क को कैसे प्लान नहीं किया, मेरा दिन आज कैसे कैसे कैसे कैसे करना है, और मैं कुछ सिखा रहा हूं तो कितने लोग उससे लाभ होंगे जो कल को जब मेरा ग्रेटफुल करेंगे वो लोग कि हाँ विजय जी तुमने मुझे ये सिखाया। हालांकि मैंने इतने ट्रेनिंग्स किए इस मेरे संकल्प संस्था में, तो लोग जो मेरे साथ यूथ जुड़े हुए थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, आज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो बहुत थैंकफुल कहते हैं मैम। लेकिन कभी इस तरह से जो आपने आज लीडरशिप की जो टेक्निक्स बताई ना मैम, ये मैं आज मतलब मेरा बहुत सारा इम्प्रूव हो गया कि मुझे एक्चुअली लीडर बनना है, तो मुझे अभी मेरे अंदर क्या क्या कमी है वो सारे मुझे ठीक करने हैं मैम। सो आज का सेशन बहुत
1: सो
3: अच्छा रहा मैम।
1: नाइस विजय। अब मैं नेक्स्ट आपको जब मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी, दिसंबर में आई विल कम टू बारान, आई विल डेफिनेटली मीट यू। मैं आपको बुलाऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी, तो मैं उस लीडर को देखना चाहती हूँ जिसको
3: जरूर मैम,
1: मैंने
3: जरूर
1: 10 साल पहले देखा था। एक छोटा सा बच्चा जो जिसमें पैशन था कुछ करने का, और
3: जी
1: वो
3: मैम,
1: पैशन से इस लेवल तक पहुंच गया है, और आगे वो लीडर कैसे। देखिए मोती जी हजारों यूथ को एम्पावर करके गए हैं, है ना, पर
3: जी
1: हमें हमने तो उनका उनके जैसा लीडर बनना है। दैट्स
3: उनके
1: व्हाई
3: जैसा
1: मैंने तो
3: बनना।
1: आपको सुप्रीम चीज का एग्जाम्पल दिया कि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। कल को हम भगवान, इंसान और दुनिया अगर एक हो जाएगी तो बुराई तो अपने आप ही निकल जाएगी,
3: मेरे
1: है ना।
3: साथ रेबा है मैम।
1: नमस्ते। नमस्ते रेबा।
4: मैं आपसे मिली थी आज से कम 15 साल पहले, जब फर्स्ट में रेड इंडिया शुरू हुई थी। चारू दी के साथ आई थी कंप्यूटर
1: हाँ
4: लेने।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
4: तो
1: जी
4: मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडरशिप मानती हूँ, क्योंकि चारू दीदी की तरह आज बोल रहे थे आप। मैंने विजय से कहा है कि उनको देख के मैं एकदम से इमोशनल हो गई, मैं कि आज चारू दी की शक्ल आ गई मेरे सामने, है ना। तो
1: मुझे
4: क्योंकि मैं
1: बारा
4: लीडर,
1: में सब लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कहते हैं आपको देख के हमें चारू जी की बहुत याद आती है।
4: हाँ, तो क्या है कि आज मैंने लीडरशिप, तो मैं संस्था छोड़ने के बाद भी मैं लीडरशिप की तरह काम कर रही हूँ। विजय मुझे कंप्यूटर सिखाता है तो मैं कहती ऐसा नहीं ऐसा, तो गुरु मेरा, लेकिन मैं कहती ऐसे। लेकिन आज यदि आपने बताया ना कि वास्तविक एक लीडरशिप में किस तरीके के गुण होने चाहिए, वो वास्तविकता है कि हमारे दिन का प्लानिंग कैसे हो और किस हिसाब से हमें तीनों चीज को मिला के काम करें, ये बहुत बहुत ही जरूरी है, तभी हम कहीं ना कहीं अपनी छवि बना पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये।
1: हाँ, मैं आप सबको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी। देखो मैं जो बोलती हूँ ना, मैं एक्सटेम्पोर बोल जाती हूँ, कहीं से थोड़े बहुत नोट्स लिख लिया या कुछ। आप प्लीज अपनी डायरी बनाइए जरूर, चार पांच लाइंस जो आप इस सेशन से लेकर जा रहे हैं ना, उसको लिख डालिए और वो डायरी आपका एक मिरर बन जाएगी। आप कभी भी 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको उसको पढ़ेंगे ना, और किसी को पढ़ने के लिए देंगे, शायद बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा।
3: राइट मैम,
4: थैंक
1: हाँ, आप जरूर लिखिए। ठीक है, ठीक है
5: मैं
1: विजय। हाँ जी,
5: थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जैसे विजय सर ने बोला ना अभी कि जैसे हमें कोई दूसरों को सिखाकर खुशी मिलती है बहुत, तो मैं उसका एक गीता जागता उदाहरण हूँ कि जब मैं भी ईट से जुड़ा था, तो फर्स्ट टाइम संकल्प के थ्रू जुड़ा था, तो उस टाइम मुझे आईटी के क्षेत्र में कुछ नहीं आता था, तो मैंने भी विजय सर से बहुत कुछ सीखा था, और शुरुआत विजय सर ने की थी, और कंप्लीट जो मुझे किया है आईटी के क्षेत्र में या ट्रेनिंग्स में या जो भी आप लीडरशिप की है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, तो वो पूरा कुछ रीड ने पूरा कर दिया।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और तुम तो लीडर हो ही अपने में, बहुत कुछ सिखा रहे हो लोगों को। बस ये थोड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स हम अपने में अगर कॉन्शियसली इनग्रेन कर लें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे में सब ट्रेट्स हैं, नहीं। एवरी डे इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू पॉलिश माई सेल्फ, टू हैव अ गुड डे फॉर मी, टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। वो क्या है कि जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। जब हमारे जहन में बैठ जाता है ना, तो हमारे एक्शन हमेशा हमेशा हमारा दिल उसको कंट्रोल करता है। फिर तो आप सब लोग डायरी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, जिससे आपको फायदा होगा। आप रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थोड़ा हैवी टॉपिक था, पर मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से शेयर करने के बाद। और हैवी बोलने में था, मैंने बहुत सारे नए वर्ड्स यूज करे थे यहाँ पे, बट बहुत सिंपल है अपनी लाइफ में इसको उतारना। ठीक है, और कोशिश से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीक, हम फिर मिलेंगे। ठीक है,
3: थैंक यू मैम,
5: थैंक यू मैम।
4: थैंक यू मैम।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: I welcome everybody. This is a session on life skills. हमने पहले भी काफी सेशंस लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं. तो ये जो सेशन है ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है. तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है. वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती हैं. तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से. सो व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ. कोई भी, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा.
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर.
0: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले.
1: नो, एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट
0: आई
1: सेशन
0: ऑल्सो
1: है
0: नो
1: लाइफ
0: दैट.
1: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे. मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं.
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं. कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर.
1: वेलकम मैम.
0: किसी और ने अनम्यूट किया था अभी? तना
2: हेलो. हाँ जी मैम, मैं चांद खान बोल रहा हूँ.
0: जी चांद बताएं.
2: मैम, जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिस जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में.
0: जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा. हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं. लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके. तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है. तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है. एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं, अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है. तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं. और किन चीजों की जरूरत होती है, हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते. मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे. मेरी मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे. फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल, कि मतलब बेसिक चीजें, क्या हमें बेसिक क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके, बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें. तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल. उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे. ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे, और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें. हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे, तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उस पर नया पढ़ के आएंगे, और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं. तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे. तो अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बींग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ न जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है, जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है, तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हम एक बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके। बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है। इसकी आप अगर नेट पे जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं, तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से, बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर और अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है, पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं, अगेन चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में एक दो काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे? तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं, जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स की, जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें। हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें और कॉपरेशन में बात करें, तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है, तो इनको हमने कई अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन WHO ने 1999 में ऐसा एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड थी उनको इन 6 की एरियाज में बांट दिया था। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, कुछ शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल। दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली। कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं, या फिर हम लिखित में कर रहे हैं। जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात करेंगे। अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करती है, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। और तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे, तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ, ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़ें, उसे भागों में तोड़ें और उसका सॉल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स से अपने आप को सेफ करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग, अब क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं, अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे कि जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है किताबें पढ़ के चले गए, ठीक है अब कंप्यूटर्स हो गए, ये एक रेगुलर रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं। बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी, व्हाट न्यू थिंग वी आर ब्रिंगिंग इन। सो अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल दैट यू नो वी ऑल शुड हैव, सो दैट हमारा जो काम है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहें और हर वक्त कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको भी उन न्यू आइडियाज से या न्यू सर्विसेज से फायदा हो। बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। कहीं भी आप काम के लिए जाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन इनोवेटिंग योर सेल्फ, सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाए। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गंद जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बहता रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह, कीप मूविंग अहेड, व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पैथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर एक पूरा सेशन रखेंगे, बट ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये काफी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जब एब्सेंस ऑफ एम्पैथी होता है, एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ उसके बाद कहते हैं कि असर्टिवनेस, मतलब आप बात कह रहे हैं तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात को सामने वाले के यहाँ रखने के लिए। असर्टिवनेस का मतलब है उन अपनी बात को कहने का, रखने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं कई हद तक पर्सनल, जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो एजर्टिवनेस मतलब बात, अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए। इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के टाइम में है इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमारे हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेट्स हैं के ऊपर कोपिंग अप, मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसको उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे। तो दैट इज अ रेजिलियंस एज अ की लाइफ स्किल। तो ये 6 लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा, किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सकते हैं, किसी भी 6 इनमें से कोई भी 6 में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं। इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड, मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर। तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है या रेजिलियंस में। जो हमने 6 लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इन इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रापर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको तो देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम रिलियंट हैं तो अगेन इंट्रा इंटर पर्सनल करेगी, इमोशंस की हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो कि लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो मन नहीं करता है उनको सुनने का। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्किल विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज बट द वे यू कम्युनिकेट। सो इसी तरीके से हमें आई कांट डू इट में से टी निकाल के पहले तो फेंक देना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा। हु एम आई, इस लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए करने से पहले हमें अपने आप से जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी बहुत जरूरी है. ये हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूं, मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं हूं. कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूं या मैं ऐसी दिखती हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसी बोलती हूं, मैं ये पहनता हूं, ये पहनती हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं अलग हूं लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है. अगर आप खुद से प्यार कर भी, यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें. क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरनमेंट नहीं रहे. ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए. हमें ना कहना भी आना चाहिए, लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है. तो जरूरी नहीं कि हर जगह आप हाँ ही कहें. अगर आपके आपकी कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, टी आपने हटा तो दिया, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है. आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय करनी चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए. जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है. मेरे वर्क एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उनको फेस करना है और ये स्किल्स डेवलप करनी है कि हम ये चैलेंजेस को फेस कर सके. अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. इसके लिए आपको बस एक पेन या पेंसिल चाहिए होगा और पेपर. जो हमने बात करी है पिछली स्लाइड में कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और अपने आप से अपने आप में जो पॉजिटिव इमेज है वो लेके आना बहुत जरूरी है. तो ये दो मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट करे हैं, लेकिन फिल आपको करने हैं. आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन वन ले सकते हैं या ऑप्शन टू ले सकते हैं. बट मैं किसी को भी रैंडमली पिक कर लूंगी एंड आई विल आस्क कि उन्होंने ऑप्शन वन लिया है या ऑप्शन टू लिया है और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है. ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ. पहला ऑप्शन है आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि. यहां तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है. ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है. दूसरा ऑप्शन है आई फील हैप्पी वेन, आगे आपको पूरा करना है. मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है. तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनी बडी. सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट. But after 5 minutes, I will be randomly picking up the participants. Okay, so shall we start sharing our feelings? Koi volunteer karna chahega?
3: Good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon.
3: Ma'am, Avita Kalkar Center se. Hello, ma'am.
0: जी बताएं आपकी आवाज है.
3: जी मैम, मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और तब मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ.
0: जब आपकी मेहनत कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं.
3: जी मैम.
0: अच्छा ठीक है, थैंक यू. और आपको बताना चाहिए?
4: मैं स्पीक मैम, सीमा बात.
0: हाँ जी सीमा जी.
4: I have written, I like who I am because I give value to relationship, whether it is my professional relations or my personal, both. And I feel happy when I complete my target. Again, वो मेरे घर की कोई चीज़ों के हों या मेरे काम से related कुछ भी हो, जब मेरी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो I feel so relaxed and I feel so happy for that.
0: तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आप इनमें यूज करते हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है? तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ?
4: हेलो, कैन यू हियर मी?
0: नाउ वी कैन हियर यू.
4: हेलो, एम आई ऑडिबल?
0: हाँ जी, आप ऑडिबल हैं.
4: हेलो, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है मैम इधर थोड़ा.
0: ओके, नो प्रॉब्लम.
4: आई यूज, आई थिंक आई यूज माय प्रेजेंस ऑफ माइंड.
0: प्रेजेंस ऑफ माइंड, ओके ओके. वहां नेटवर्क इश्यू आ रहा है. वी मूव ऑन टू समबडी एल्स. कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा इन दोनों ऑप्शंस में से? इसने क्या लिखा है?
5: मैम शैलजा हियर. मैम
0: जी, शैलजा मैम.
5: Ma'am, I feel very happy when I'm really with a small kids below 5 years to listen to their beautiful talk, that baby talk.

0: गुड आफ्टरनून जी.
1: इट्स दिव्या.
0: हाँ जी दिव्या.
1: आई लाइक हु आई एम बिकॉज आई हैव सम डिफरेंट एबिलिटीज, लाइक आई कैन इजीली कनेक्ट विद पीपल.
0: वेरी गुड. वेरी इंटरपर्सनल स्किल है जो हमने सबसे पहली स्किल पढ़ी थी. आपको ये लगता है कि वो आपको मदद कर रही है इन सब, इसको आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने में?
1: यस मैम, बिकॉज वेन एवर आई टॉक विद आई ऑलवेज यूज पॉजिटिव बिहेवियर, इवन पोलाइटनेस.
0: ओके. ऑल
1: यस मैम.
0: राइट. थैंक यू दिव्या.
2: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड
2: मैम दिस,
0: आफ्टरनून जी.
2: यस
0: मार्गरेट.
2: मैम, आई फील हैप्पी व्हेन आई एम टीचिंग समथिंग टू अदर्स, लाइक सोशल पीपल, स्टूडेंट एंड सेंटर बेनिफिशरी. सो द थिंग इज, मेन थिंग इज हैप्पी इज टीचिंग मैम. इट इंक्लूड्स सोशल स्किल, इंटरपर्सनल एंड माई पर्सनल स्किल मैम.
0: तो आप खुश होते हैं, यू आर
2: या मैम.
0: हैप्पी. मार्गरेट ने कहा कि वो खुश तब होती हैं जब वो किसी को कुछ पढ़ाती हैं, जब वो एक इंटरपर्सनल स्किल को यूज करते हुए, सोशल स्किल्स को यूज करते हुए, जो उन्हें आता है वो दूसरों से शेयर करती हैं. करेक्ट मार्गरेट?
2: यस यस यस मैम, यस
0: ऑल
2: मैम,
0: राइट ऑल राइट. थैंक यू मार्गरेट.
2: वेलकम मैम.
3: हाँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढी लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो.
0: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं.
3: जी
0: ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर. इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करते हैं तब आपको अच्छा लगता है. ऑल राइट. थैंक यू
4: मैम, मैं बोलना चाहूंगा चांद खान.
0: जी, बताएं.
4: मैम, आई फील हैप्पी व्हेन माय टारगेट एंड माय प्रॉब्लम सॉल्व एंड माय ऑफिशियल टारगेट कंप्लीटली.
0: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो
4: जी
0: जाता
4: जी
0: है तब आप
4: यस
0: खुश हो जाते हैं. ठीक
4: जी मैम, जी मैम.
0: है जी, ठीक है, थैंक यू. कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
5: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड
5: हेलो
0: आफ्टरनून. हाँ जी
5: मैम,
0: मैम.
5: मैं देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ.
0: हाँ जी.
5: मैम मुझे, मैं रीड इंडिया में स्टिचिंग ट्रेनर हूँ
0: जी
5: और मुझे स्टिचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है.
0: जी
5: फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते.
0: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं,
5: हाँ यस मैम.
0: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं. ये बहुत इम्पोर्टेंट
5: बच्चे
0: लाइफ
5: जो आते
0: स्किल आप.
5: हैं मैम, स्टूडेंट जो आते हैं वो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, जब फ्रेंडली बात करते हैं, जब फ्रेंडली सिखलाते हैं तो अच्छा लगता है, तो मिलजुल कर रहते हैं, वो बहुत खुशी मिलता है मुझे.
0: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो आप
5: हाँ
0: उनको
5: यस
0: हेल्प करती हैं कॉन्फिडेंट बिल्ड करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में. ऑल राइट. थैंक यू सो मच. सो वी'ल स्टॉप हियर टेकिंग मोर. हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए. तो सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं. हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन. तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए. उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है. तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं. जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं. लेकिन तब क्या है? किसी वजह से मार्क्स

0: नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं, और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं। कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है, उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है। ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए, जो आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ऑल माई फीलिंग्स आर ओके, कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस चीज जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इंचार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इंचार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को। ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए, खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए, क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से, क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने के लिए। तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम 2 लोग चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल दैट रेफर्स टू आर अबिलिटी टू कम्युनिकेट विद, इंटरैक्ट विद अदर पीपल। कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व्स आवर एबिलिटी टू टेक एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बी एबल टू कन्वे देम टू द अदर्स इन अ मैनर दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो हमारी एबिलिटी डिफाइन करती है कि हम कुछ आइडिया को, कुछ इंस्ट्रक्शन को या किसी बात को पहले तो समझें, उसे दूसरे तक पहुंचाने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरे को वो समझ भी आनी चाहिए। आपने कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आया, या आपने सही तरीके से नहीं कहा उसके बारे में और दूसरे को समझ नहीं आया, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बिल्कुल फेल हो जाती है। आपका कहना ही, आपका शब्दों का यूज करना ही जरूरी नहीं है, किस तरह से आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहती हैं। इसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन भी हो सकते हैं। जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है क्योंकि यही एक स्किल है जो इंसानों के पास है, जो ये हम शब्द शब्द जो हम बातचीत करने की जो एबिलिटी है ये सिर्फ इंसानों के पास ही है। जो हम एक जगह से, अभी मैं एक जगह से करीबन 70 लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये एबिलिटी जो है ये हमें सबसे अलग करती है, चाहे वो कोई स्पीशीज है उससे अलग करती है, और विद इन ह्यूमन बींग्स भी हम सेट अपार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे, संदीप महेश्वरी के देखे होंगे, या फिर किसी गुरु के देखे होंगे, या फिर शिवानी बहन के देखे होंगे, या फिर किसी ओरेटर के देखे होंगे। कुछ लीडर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बोलते हुए, क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है, वो हर हर चीज को साथ लेते हुए, चाहे नॉलेज है उनको, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है उनको, और वो उस चीज को कैसे अपनी भाषा में, अपने बोलने के तरीके में उसे लेके आते हैं, वो एक कला है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, रीडिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना शब्दों को समझेंगे, जितना दूसरे लोगों को सुनेंगे, कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंस होता है सुनने की शक्ति का। जितना आप दूसरों को सुनेंगे उतना आप कोशिश करेंगे ऐसी चीजों को पिकअप करने के लिए जो आपके अंदर अडेप्ट हो सकती हैं। ये स्किल बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल जगह पे यूज होती है। स्पेशली जो रिटन कम्युनिकेशन है ये तो प्रोफेशनल में बहुत ही काम आती है। तो जब आप अपने बेनिफिशियरी से भी बात करेंगे जो स्टूडेंट्स रहेंगे आप उनसे ये कहिए कि ये सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे उतना वो प्रोफेशनली हमें हेल्प करती जाएगी। बहुत सारी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरीज में भी, ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किस तरह से हम हाव भाव का जो हाथ हम हिलाते हैं, आंखों का हमारा आई कांटेक्ट कैसा है अपने ऑडियंसेस से। ऑडियंस चाहे एक हो चाहे आप एक ही जन से बात कर रहे हो बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को। तो किस तरीके से हमें बात करने की शब्दों का, ऐसे कौन से टॉप शब्द होते हैं जो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है सेल्फ प्रैक्टिस से इस कम्युनिकेशन स्किल को हर रोज पॉलिश करने का। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है सेल्फ प्रैक्टिस लिसनिंग टू गुड स्पीकर्स हु इंस्पायर यू, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एनी अदर लैंग्वेज, हूसोएवर इंस्पायर्स यू। एंड किताबें पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो शीशे के सामने खड़े से 5 मिनट ऊंची आवाज नहीं डालेंगे यू विल नॉट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। द मोमेंट यू नो यू आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए, फोन तो अभी सभी के पास है, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सरल शब्द हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख पा रहे हैं, एक ही बात को 10 बार बोलने की जरूरत पड़ रही है सामने वाले को समझने के लिए। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट इजिली एक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल, बट इसको जो पॉलिश करना है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, सुनने से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमें ओरली, रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं या अपने आप में आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं उसमें हमारी मदद करती है। तो जो बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे ये एक पहली स्किल होगी। कल मैम ने लीडरशिप सेशन में एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी जो कि IAS के तैयारी के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए हो रही थी। तो जब आपकी पहली बेसिक स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही वीक रहेगी आप अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे। IAS या कोई भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रिटन एग्जाम तो होता ही होता है बट ओरल एग्जाम भी होता है। क्यों? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से बात रखते हैं। आप अगर कोई भाव को नहीं भी जानते, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो घबराइए नहीं, ना कहना भी सीखे कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के या मैं समझ के आपसे इस चीज में बात करूंगा। बट उससे पहले वो कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर, यू हैव टू गो बैक टू द पॉजिटिव सेल्फ इमेज कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सब चीजों के बारे में पता हो लेकिन जो मुझे पता है और जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसको मैं सरल भाषा में और साफ शब्दों में दूसरे तक ले जा सकूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमें किसी जो सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जो बड़े बड़े कंट्रीज में डिप्लोमैट्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात करता है। तो डिप्लोमेटिक रॉन्ग शब्द नहीं है, डिप्लोमेटिक मतलब कि दोनों साइड्स को या दो या तीन साइड्स की जो बातें हैं उनको समझना और बिना किसी के भाव को नुकसान पहुंचाए हुए एक सेंट्रल पोजीशन पे आना। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हेल्प करती है, नेगोशिएशंस में बहुत हेल्प करती है। किसी किसी सिचुएशन में जब आप पड़ जाते हैं कि आपको इधर की बात भी सुननी है उधर की बात भी सुननी है तो ये एक स्किल है जो बार बार काम आती है। कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता ये लाइब्रेरी में है कि नहीं, बट ये किताबें ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने इनके बारे में इनके पढ़े हैं, तो मुझे लगी ये सरल भी हैं और ये हेल्प कर सकती हैं कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि पहली लाइफ स्किल है एक्वायर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए। तो अगर आप चाहें आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेनिफिशरीज को भी कह सकते हैं कि वो ये बुक्स रेफर करें। टेड टॉक्स जो है, बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, आप बस उनको सुनिए, जब आपका फ्री टाइम होता है 5 मिनट, एक टेड टॉक को सुनिए, बहुत आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके जो सिचुएशंस हैं लाइफ में। ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, दे आर मेनी मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, एंड प्रोबेबली उनकी स्ट्रगल हमसे कई कई गुना ज्यादा है, बट वो कैसे उसको ओवरकम करके आए हैं। तो इन सब चीजों से बहुत बहुत हेल्प मिलती है, जो ये चीज जो सेल्फ लोग अपने बारे में बात करते हैं, जो कि टेड टॉक्स में है। तो अभी आज का सेशन हमारा कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स को समझने का था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने का था, और अपने आप से पहले तो अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करना है कि क्या मतलब अपने आप में सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से कम मतलब मेरी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को सबसे ऊपर रख के उसको और किस तरह से निखार सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती है। और हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो पहली लाइफ स्किल्स है उसके बारे में। सो इफ यू वांट वी कैन गो डीपर इनटू इट, बट आई वुड लाइक टू लीव इट हियर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो जाएं और कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के, नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, हम पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। तो अगर कोई लाइव एग्जाम्पल लाइफ से देना चाहता है या कुछ किसी ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता है, सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज ये सेशंस आपने आगे अपने बेनिफिशरीज को देने हैं। सो द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेशंस। सो वी विल क्लोज द सेशन हियर, बट अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी कैन शेयर, उनको कुछ अच्छा लगा इसमें या वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। पैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? डू यू थिंक?
1: I was listening everything. It's a wonderful session, and I would also like to mention here that life skills are day-to-day life. What we do, how perfect we are, how our behavior is, and how our attitude is. So these
0: Right.
1: all combination of all makes the personality, and that is the wonderful session. I would like to say that. My only request to all everyone is that they must practice it, because this is purposely added into our program activities, because we don't want to focus on only livelihood, beauty and culture, education, because unless and until your personality is evolved, you will not be able to achieve anything. So these were very well thought of and added, and we are not the experts, as Smita has said, but हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसको हम अपनी सोच को उस तरफ भी लेकर जा रहे हैं, राइट?
0: थैंक यू मैम।
1: तो ये वैल्यू भी ऐड करता है, हमारे काम में भी वैल्यू ऐड करता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वैल्यू ऐड करता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब इसकी बात कम्युनिटी के साथ करें। इसमें ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बढ़ता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है, तो आप प्लीज इसको अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी लेकर आइए। 10 मिनट इसके ऊपर बात करिए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जो रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, आप एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल सेशन स्मिता, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क।
1: या टेक केयर, बाय बाय।
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी।
1: बाय बाय।

0: गुड आफ्टरनून, ऑल वेल, सब ठीक ठाक है? टुडे
1: यस मैम,
2: यस मैम।
0: वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीडरशिप। एवरीबॉडी इज अ लीडर, हर कोई लीडर है अपने अपने लेवल पे। एवरीबॉडी इज अ लीडर एट देयर ओन लेवल, वेदर वी से हाउस, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन। मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हर कोई अपने घर में भी लीडर है, अपने समाज में भी लीडर है, और अपने रीड सेंटर पे भी लीडर्स हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें भी लीडर है। व्हाटएवर इट इज, लीडरशिप क्वालिटीज तो सब में होती हैं, एंड वी हैव टू शार्पन देम, वी हैव टू नर्चर देम, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस लीडरशिप क्वालिटीज। देन वी आर सेइंग दैट वी हैव टू प्रैक्टिस लीडरशिप क्वालिटीज। उसके कुछ कुछ दायरे होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, व्हाट वी से दैट वी आर द लीडर्स। वो नॉर्म्स कोई डिफाइन नहीं कर सकता है कि अगर मुझे लीडर बनना है तो अगर मैं ये 5 या 10 नॉर्म्स सीख लूं तो मैं लीडर हूं। नो, द फर्स्ट इज दैट यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू देयर शूज। अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं और लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ग्राउंड से ऊपर जाना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड राइज अप द लैडर। बहुत सारे आपने कार्टून्स भी देखे होंगे, जो मैनेजर होता है, जो जिसमें लीडरशिप नहीं होते, उसको काम ही करवाना है, तो वो एक टॉप पे खड़ा हो जाता है और नीचे ऑर्डर देते हैं कि आप काम कर लो। और जो लीडर है वो फर्स्ट स्टेप पे ही खड़ा होता है और हाथ पकड़ के सबको ऊपर लेके जाता है। समझ में आ गई? ये फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज हमारे वर्किंग पैटर्न में, लीडर्स को जो भी सरकमस्टांसेस हमारे सामने हो तो हमें लर्न करना है, हमें सीखना है कि हम नीचे से ऊपर कैसे जा सकते हैं। और उन सरकमस्टांसेस में सबके डिफरेंट डिफरेंट सरकमस्टांसेस होते हैं। जो भी ट्रू लीडर्स हैं, दे हैव टू लर्न टू राइज अबव ऑल द सरकमस्टांसेस। सरकमस्टांसेस विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा वहां पे रहेंगे। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी को खेत में जाना है, किसी को घर का काम करना है, किसी के बच्चों का इश्यू है, किसी की फैमिली में कोई इश्यू है। बट शुड वी सकम टू ऑल दीज इश्यूज, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इश्यूज अराउंड अस, राइट? एंड इफ वी कीप ऑन सेइंग दैट ओ गॉड वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी इश्यूज, हम हमेशा भगवान को ब्लेम करें कि हे भगवान मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ हो रहा है, मैं क्यों नहीं दूसरों की तरह आगे बढ़ रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आगे रोड ब्लॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। रोड ब्लॉक्स क्या होता है कि हम अपने आगे एक बैरियर, एक एक दरवाजा बंद कर रहे हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में हैं। अगर 1,000 समस्याएं भी हैं हमारे जीवन में और हम ये ठान लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरकमस्टांसेस हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट वी थिंक, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेशन इन आवर, हमने अपने मन में क्या ठाना है कि हमको क्या करना है। मैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि रीड सेंटर्स में इस बात से बहुत सारे लोग ऊपर उठ गए हैं कि एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, बिकॉज आई नो दैट एवरीबॉडी, रीड सेंटर्स में खासकर महिलाएं इस दायरे से बाहर आ जाए। और कोई लड़ झगड़ के नहीं, कोई फैमिली से अलग होके नहीं, या फैमिली से फैमिली को इग्नोर करके नहीं, बट यस दे हैव कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो इस मेरी बात से एग्री करते हैं, आप प्लीज अपना अनम्यूट करके एक बार यस बोलिए। आई रियली वांट टू काउंट द यस यू पीपल असल
1: गुड आफ्टरनून मैम,
0: ज्योत्सना। ज्योत्सना
1: थैंक
0: यस यस। नेक्स्ट
1: यू। यस मैम,
0: नेक्स्ट हु इज हियर, प्लीज टेक योर नेम एंड से यस। आप अपना नाम लीजिए और यस बोलिए।
1: माई सेल्फ सत्यम सिंह। यस मैम,
0: वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? जल्दी से, 5 मिनट में मैं बहुत सारे यस काउंट करना चाह रही हूँ।
1: यस मैम,
0: कौन
1: यस मैम,
0: बोल
1: मैं
0: रहा है? ओके और जल्दी जल्दी।
1: यस मैम,
0: यस मैम,
1: अभी
0: वेरी
1: ना
0: नाइस वेरी
1: हमारी
0: नाइस
1: भी ऐसे है मैम, बातों से
0: वेरी नाइस। और
1: जी
0: यस
1: जी
0: मैम, यस
1: मैम,
0: और वेरी नाइस। अब मैं किसी को ये बोलूंगी कि अपना कैमरा ऑन करके आप
1: करना
0: अपना कैमरा ऑन करके जो आज तक कभी नहीं बोले हैं वो बोलेंगे कि वो यस किसके बेसिस पे कह रहे हैं। एनीवन, मैं आई एम नॉट नेमिंग, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप अपना कैमरा ऑन करके बोले कि आप में ये हिम्मत कैसे आई कि आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसकी आपने एक प्रण ले लिया है, एक ठान लिया है आपने, वो मैं सुनना चाह रही हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले अपना कैमरा ऑन करेगा उसी को चांस दिया जाएगा। मुझे एक से ही सुनना है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मैं ये आपको बाद में बताऊंगी, पर जल्दी से कोई भी अपना कैमरा ऑन करे और बोले कि ये कैसे आए।
1: मैं, मेरी जो हिम्मत सबसे ज्यादा है मेरी माँ को देख कर आई, क्योंकि वो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल रहती है और वो मतलब मल्टीपल काम्स कर लेती है एक टाइम में। तो उनसे सबसे बड़ी सीख मिली कि अगर वो बिना बैठे हम लोग के लिए कुछ कर रही तो हम लोग को भी कुछ बनता है कि उनको हम उनके लिए कुछ करें।
0: वेरी गुड वेरी गुड। और अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, राइट? अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे
1: मैम,
0: बढ़ के करेंगे, है ना?
1: यस मैम,
0: वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? इनको अपनी मदर से प्रेरणा मिली। आप और कोई बोलेंगे प्लीज? कोई ना कोई लाइफ में होता है जो प्रेरणा देता है।
2: हेलो मैम
0: हाँ जी,
2: जी, मैम नमस्ते। हाँ
0: नमस्ते मीना।
2: मैम, मुझे तो जो सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली वो आपसे और मोदी जी साहब दोनों से प्रेरणा मिली।
0: हाँ
2: मैं अपनी
0: बहुत
2: लाइफ के रोल मॉडल हमेशा दो लोगों को मानती हूँ, एक मोदी जी सर थे और एक आप हो। आपसे मैम मैंने इतना सीखा है, मोदी जी से तो चलो मैंने काम करना सीखा था, पर काम के साथ साथ अपनी लाइफ लाइफ को भी कैसे बेहतर बनाए वो मैंने आपसे सीखा है। और कई बार मैं जब सोचती हूँ कि मेरे पास ज्यादा काम है या कुछ है तो मेरे को तुरंत आपका ध्यान आ जाता है कि मैम इतने सारे लोगों को साथ में लेके चल रही हैं और वो भी तो सब लोगों को लेके कर ही रही है ना, तो हम भी इंसान ही है तो क्यों ना हम भी एक कोशिश करें। और मुझे इतनी हिम्मत मिलती है मैम, मैं बता नहीं सकती। कभी मैं हॉपलेस होती हूँ और आपके बारे में जैसे सोचती हूँ कि नहीं मैम भी तो कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे एक पता नहीं एक ईश्वर का क्या हुआ है, मुझे ऑटोमेटिक एक ताकत मिल जाती है। ये एक बार नहीं
0: वेरी
2: 100 बार हुआ है।
0: गुड मीना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैं अभी इसका एग्जाम्पल मैं लिंक कर रही हूँ जो मैंने 5 मिनट पहले बात करी थी। मैंने मैंने ये बोला था कि सरकमस्टांसेस कुछ भी हो, प्रेरणा हमें लेनी है अपने आसपास के सरकमस्टांसेस को समझ के। तो मीना उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फतेहपुर से अभी somebody शेयर, मैं उनका नाम नहीं अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें जो इंटरनल आवाज आती है, जो हमारे दिल से आवाज आती है, वो एकदम सच्ची आवाज होती है और वही प्रेरणादायक भी होती है। हम बाहर से लोगों को अपना मेंटर मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, पर जब तक अंदर से आवाज नहीं आती है, हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट, यू वॉन्ट टू से समथिंग? आप कैमरा के आगे बैठी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं?
2: मैम बड़ा कॉन्सेंटर से मैम, हमको ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेरणा ना सना मैम से ही मिलती है, क्योंकि जब भी हमें कुछ लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं तो वो मेरा सपोर्ट पूरा करती है, इसलिए अगर हम किसी को मानते हैं तो वो मैम को मानते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और ये
2: थैंक यू
0: जो
2: मैम।
0: कम्युनिटी, ये जो लीडर्स, रीड इंडिया के लीडर्स है ना, दीज
2: जी
0: लीडर्स आर द मेंटर्स फॉर ऑल ऑफ यू। यही लीडर्स
2: जी
0: मेंटर्स हैं, क्योंकि आप, मिस सना, मीना, मेनी पीपल आर देयर इन द रीड कम्युनिटी। और रीड का ना एक स्लोगन है, वन वुमेन
2: जी
0: वन फैमिली वन विलेज। एंड ये लीडर्स को बहुत पहले इसके बारे में सिखा दिया गया था कि आपने हर गांव में, हर फैमिली में एक लीडर तैयार करना है। एंड वो उनका मिशन बन चुका है, वो उस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं और उसी पे अपने फोकस हैं। और वो आप लोगों को ये बात बोलते नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना स्लोगन, तो वन वुमेन वन फैमिली
2: जी
0: वन विलेज, बट दे आर एट इट, दे आर वर्किंग ऑन इट। वो उसको एक मिशन के तौर पे आगे लेके जा रहे हैं और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर आज मैं सना या मीना को बोलू ना कि आप मुझे अपने गांव में हर फैमिली से एक लीडर का नाम दे दो, तो वो बना देंगे लिस्ट मुझे, और वो लिस्ट अभी मुझे चाहिए आप
2: जी
0: लोगों से। सना एंड मीना एंड ऑल अदर्स हु आर द लीडर्स इन दिस सेशन, प्लीज स्टार्ट मेकिंग दैट लिस्ट, ठीक है? और
2: यस
0: ये
2: मैम,
0: लिस्ट, हाँ ये लिस्ट मुझे अगर एक हफ्ते दिवाली तक अगर आ जाती है या 15 नवंबर तक भी आ जाती है, वो लिस्ट मैं पब्लिश करना चाहती हूँ कि ये लीडर्स हैं हमारे, जहां जहां रीड के सेंटर्स हैं, ये हमारे लीडर्स हैं और ये हमारे एल्यूमिनाई हैं। एल्यूमिनाई का मतलब पता है कि ये हमारे सेंटर से जुड़े हैं, इस सेंटर की ताकत ये औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है? तो आप मुझे जरूर उनके नाम देंगे और लिस्ट में उनके आगे उनके साइन भी कराएंगे, ठीक है? इज इट ओके?
2: यस मैम, यस
0: हाँ,
2: मैम, जी मैम,
0: तो ये हम एक मैं मतलब कि जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं ना, अपने वोटिंग राइट्स इकट्ठे करते हैं कि हमारे वोटर्स कौन है, हम वोटर्स नहीं इकट्ठे कर रहे हैं, हम चेंज मेकर्स इकट्ठे कर रहे हैं। कि अगर 10 साल पहले मीना मोती जी से सीख रही थी या गीता के कांटेक्ट में आई थी, आज वो 1,000 लड़कियों को मेंटर कर रही है, उनके सामने एक लीडर बन के खड़ी है, तो हम क्यों ना हर परिवार में से एक महिला को चुने अपने गांव में जो लीडर का रोल प्ले कर सकती है। और ये जो मिशन है, हम इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि जब तक ये मिशन के लेवल पे ये काम नहीं होगा, तब तक हम सोशल चेंज की जो बात करते हैं वो नहीं आएगी, है ना? कहीं ना कहीं कोई ना कोई औरत के सामने मल्टीपल चैलेंजेस हैं और वो उन चैलेंजेस में खो जाती है, डूब जाती है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है। पर अगर उन चैलेंजेस का हल निकाल के हम वहां से बाहर आ जाए, तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसको एक मिशन मिल जाता है कि वो अपनी सारी तकलीफें भूल जाती है और वो उस मिशन पे चलने के लिए तैयार हो जाती है। ये इसका निचोड़ है, राइट? तो आप लोग एग्री कर रहे हैं जो मैंने कहा है, और इससे मेरा काम भी आसान हो रहा है, क्योंकि मुझे रीड इंडिया ने कहा है कि पूरे भारत में औरतों की एल्यूमिनाई के नाम हमें दो, जो वुमेन लीडर्स हैं, और आप लोग मेरी मदद करेंगे उन लिस्ट बनाने में। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे पास 50,000 नाम आएंगे, पर मुझे लगता है ये नाम 1 लाख से ऊपर जाए, जो मेरी समझ में आ रहा है। और फिर मैं एक और बड़ा सेमिनार करूंगी जिसमें हम इन सबको बुलाएंगे और बोलेंगे, देखिए हमारे देश के लीडर्स, राइट? तो आप ये जरूर करिएगा, इसमें बहुत आपको भी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, रीट इंडिया को भी होगी, और जो औरतें आपके साथ जुड़ेंगी उनको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट ये हो गया कि कुछ भी सरकमस्टांसेस हो हमें आगे बढ़ना है, और सेकंड चीज क्या है कि हमें अपनी सोच को बदलना। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। सोच कैसे बदली जाती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात को लेके अपने परिवार में बहुत परेशान हूं, ठीक है? अगर मैं उस परेशानी से घर में बैठ जाऊं, छुट्टी ले लूं, अपने चार पांच लोग जो मेरी बातें सुनते हैं उनके सामने मैं वो बातें करना शुरू कर दूं, और मैं अपने आप को बहुत वीक समझना शुरू कर दूं, और मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मेरी जिंदगी बस अब खत्म है, तो वो एक नेगेटिव थॉट मेरे को घेर रहा है। मेरे को उस नेगेटिव थॉट से बाहर आना है। बाहर कैसे आना है कि मैं 10 औरतों को देखूं, उनकी लाइफ को रियलाइज करूं और उनको मोटिवेट करूं अपने आप को चेंज करने में, मैं खुद अपने आप ही चेंज हो जाऊं, राइट? ये एक साइकी है जो बहुत पावरफुल है और ये हमारे माइंड पे काम करती है, ठीक है? दूसरी बात ये कि हम अपने पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। वी ऑलवेज डिबेट इन आवर माइंड्स, आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू डू इट, आई डोंट नो व्हाट विल बी द आउटकम, आई डोंट नो वेदर दिस विल हेल्प मी टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो क्या है, हम अपनी जो अंदरूनी ताकत है उसको पहचान ही नहीं पाते। उस ताकत को हर समय एक पॉजिटिव एंगल से पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे, हम कैसे इतना बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम दूसरों की जिंदगी को चेंज कर देंगे, है ना? और पोटेंशियल को पहचानना ये नहीं होता कि मैं बहुत जोर से, मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ, मैं सबके सामने ये कह रही हूँ कि आई एम द बेस्ट, मेरे मेरे से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, जो मैं कर रही हूँ बस वो ही ठीक है। वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप ये है कि हलीमी से, बहुत ही सहज भाव से, बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही आई शुड से दैट अफेक्शनेट होके हम कैसे किसी को बहुत ही मुश्किल मुश्किल बातें समझा सकते हैं, बशर्ते आगे सुनने वाला भी उसी लहजे में हो। हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उस ग्रुप के साथ बात करके जो हमें ऊपर से हाँ कर रहा है और अंदर से हमारी बात को समझ ही नहीं रहा है, राइट? अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे में जो क्षमता है दूसरों को पहचानने की, वो भी शार्प होती जाएगी, वो भी बढ़ती जाएगी। हमें आदत पड़ जाएगी कि हम जो हमारे सामने बैठे हैं हम उसको पहचाने कि वो हमारी बात को कितनी वेटेज दे रहे हैं, कितनी समझ रहे हैं, कितना अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यस, हम जो भी बात इनसे कर रहे हैं इनकी जिंदगी में बदलाव आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया है। और जब हम ये देखते हैं कि बदलाव आना शुरू हो गया है तो हमारी टीम में वो जुड़ जाते हैं, वो लीडरशिप की क्वालिटीज को समझना शुरू कर देते हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ जाते हैं कि यस, हम जिस रास्ते में जा रहे हैं वो रास्ता ठीक है। हम अपने आप को तो बदल ही रहे हैं, हम दूसरों को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। तो जब हम कहते हैं सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ कि पहला तो हमने कहा कि हमें नीचे से ऊपर उठना है और अपने साथ लोगों को जोड़ना है, दूसरा पॉइंट ये है कि अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम जिनके साथ जाके बात करने वाले हैं उनकी क्षमता तो हमें पता है, क्योंकि वो उन अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं। और अगर हम भी अपनी क्षमता को नहीं पहचानेंगे तो हम दूसरों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे, कैसे उनके साथ हम हाथ पकड़ के अपनी टीम को बड़ा करेंगे और सोशल चेंज की तरफ जाएंगे। हमारी जो इस बार की एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें भी हमने जो टॉपिक को हाईलाइट करा है उसमें ये हाईलाइट करा है कम्युनिटी फर्स्ट। एंड हमारे जो एडवाइजर्स हैं डीड इंडिया के वो भी हमें ये कहते हैं कि हमारे लिए कुछ मायना नहीं रखता है एक्सेप्ट आर कम्युनिटीज विद हुम वी आर वर्किंग। दे आर द रोल मॉडल्स फॉर अस। रोल मॉडल्स एक लेयर पे तो बन गए, यू ऑल आर रोल मॉडल्स, उसमें कोई दूसरी थॉट प्रोसेस ही नहीं है। बट आगे कैसे हमने ये रोल मॉडल्स क्रिएट करने हैं वो आपके हाथ में। आपने वहां पे जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ आपने इस बात को 100 टाइम्स रिपीट करना है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ। आप खुद अपने आप को पहचान पाएंगे, जो मैं कह रही हूँ ना कि अपने पोटेंशियल को समझने की जरूरत है। जब ये एक्सरसाइज आप बार बार करेंगे बार बार करेंगे तो क्या होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी को रिफाइन तो करेंगे करेंगे बट आपको अपने पोटेंशियल का भी अंदाजा हो जाएगा। जब आप रात को सोएंगे ना, जिन्होंने हर्ष अरोड़ा के सेशंस अटेंड करे हैं वो यही कहते हैं कि सुबह हम साइलेंस से शुरू करें, पूरा दिन हम जो कर रहे हैं रात को सोने से पहले जब हम बेड पे लेट रहे हैं तो हम उस पर रिफ्लेक्ट करें। अगर हमने किसी के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करी है तो वी शुड से थैंक्स टू गॉड, ओ गॉड यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, यू हैव गिवन मी दैट पोटेंशियल कि मैं किसी की लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ला सकूं। यहाँ किसी के साथ हमने 5% 10% कुछ गुस्से में बात कर ली है या कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए हम माफी भी मांग लें। तो क्या है, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ। तो हम जब सुबह उठेंगे हम बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठेंगे, हल्के माइंड से उठेंगे और फिर हम अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे कि नेक्स्ट डे भी मेरे लिए एक मिशन है। और मैं आपको बताऊं मेरा काम करने का तरीका यही है। चैलेंजेस हर एक की लाइफ में होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हर एक की लाइफ में होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक की लाइफ में होती हैं। पर जब मैं एनविसेज कर रही हूँ कि अगर आज मैं रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर हूँ, आप अपने सेंटर्स के डायरेक्टर हैं राइट, और जब डायरेक्टर बनना है और आप कह रहे हैं कि आप गीता मैम से सुन रहे हैं तो यहाँ पे मैं हंड्रेड्स ऑफ गीता क्रिएट कर रही हूँ राइट। और आप मेरे से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के ये जो सोशल चेंज की हम चेन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू सी फिजिकली द वुमेन। हम ये नेटवर्क इतना बड़ा क्रिएट कर लेंगे कि अगर मैं कहूँ कि अच्छा मीना आप मुझे बताओ तुम्हारे इलाके में कितने वुमेन लीडर्स है, 100 के नाम मेरे सामने आ जाने चाहिए, है ना। क्योंकि आपने उन मैंने तो 50 लोगों की जिंदगी चेंज करी है ना सेंटर लीडर्स की, आप लोग तो 500 लोगों की जिंदगी चेंज करें, 5,000 लोगों की जिंदगी चेंज करें। एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ रीड इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनली एज गीता मल्होत्रा फॉर मी, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम द चेंज मेकर्स। और फिर जब हम आपके नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शेयर करेंगे कि दीज आर द चेंज मेकर्स फॉर अस, तो आप देखिए कितनी आपकी पहचान बढ़े राइट। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं कि हमने अपना पोटेंशियल तो देख लिया, हमने समझ लिया और हमने कहा कि हम बहुत ही परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या होता है कि हमारे में बार बार उस चीज को रिपीट करने की क्षमता है। हम बहुत पेशेंस क्या होता है कि हमारे पास पेशेंस है दूसरे को सुनने की राइट, और हमारे पास एक पैशन है हमने दूसरे लोगों को चेंज करना है। हमारे अंदर एक भूख है, हंगर है, और हंगर क्या है, वन वुमेन वन फैमिली वन विलेज, हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म, राइट। ये हंगर जब पैदा हो जाती है ना, तो फिर आपका मिशन कहीं भी रुकता नहीं, आपका मिशन आपको सपोर्ट करता है। आज आप अपने विलेज में हैं, कल आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, कल आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, आप अपने स्टेट लेवल पे जाएंगे, तो आप देखिए आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज आपको कहाँ लेके जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं कि हम अपने पोटेंशियल को पहचाने, तो फर्स्ट पोटेंशियल क्या है? ट्रूथ, सच्चाई। और सच्चाई आपके दिल में है, आपके आसपास है, आपकी जबान पे है, आपकी सोच में है, आपके ख्याल में है। और अगर सच्चाई आपको इस तरह से घेर रही है, तो आपका रास्ता अपने आप साफ होता जाएगा। और ये स्मिता विटनेस करती है इसको, और मेरी पूरी टीम रीड इंडिया के विटनेस करती है कि रीड इंडिया की बुनियाद जो है पिछले 16 साल की, वो सच्चाई पे निर्भर। कुछ भी ऐसा यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता। और जो मेरी टीम है वो भी इसको प्रैक्टिस करती है कि वी नेवर टेल लाई। और जो भी हमारे सामने आके झूठा झूठी बात करता है, या रॉन्गली प्रेजेंट करता है, या दिल में कुछ और सामने कुछ और है, वो हमेशा कट जाता है रीड से। वो रीड के साथ कभी भी कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये जो मैं बात आपको बोल रही हूँ, मैंने पिछले 16 साल से इसको प्रैक्टिस किया है। और इतनी हिम्मत आ जाती है बोलने की, अगर आपके सीनियर्स भी और बहुत मतलब कि आउटसाइडर्स भी आपके सामने कुछ ऐसे बात बोलते हैं जो आपको सच्चा नहीं लगता है, प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि कम्युनिटी हमारे सामने फर्स्ट है। अगर वो कम्युनिटी के हित में नहीं है, तो आप स्टैंड ले लेते हैं कि यस आई रिस्पेक्ट यू, बट इट इज नॉट वर्केबल विद द पीपल विद होम आई एम वर्किंग, राइट। ये तब आता है कि जब आप सच्चे हो और सच्ची बात कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गुड टू अदर्स। मैं कुछ फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आती हैं, आजकल कार्तिक का महीना चल रहा है और मैं बच्चे की पाठ पूजा में भी बिलीव करती हूँ, तो मैं कल रात को एक मैसेज पढ़ रही थी कि कार्तिक के महीने में अगर हम एक अच्छा ही करते हैं ना, तो 100 अच्छाइयां आपको वापस आती है। नो डाउट विष्णु भगवान का ये महीना है और विष्णु भगवान बहुत दयालु है, हम एक अच्छाई करते हैं और वो हमें 100 अच्छाई देते हैं। पर ये एक बुनियाद है हमारी जिंदगी की हमेशा के लिए। इट्स नॉट दैट कि मैं कार्तिक के महीने का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट दिस इज द नेचर नेचर ऑफ द कॉस्मोस और द एनवायरमेंट अराउंड अस। इफ वी डू गुड टू अदर्स, गुडनेस ग्रोस एंड कम बैक टू अस इन अनकाउंटेबल वेज, बट वी शुड लर्न हाउ टू डू गुड टू अदर्स। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा कुछ करेंगे और वो अच्छाई हमारे पास किसी ना किसी तरीके से वापस आएगी, और ये एक जिंदगी की बहुत ही दृढ़ पहचान है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये पॉइंट मैं आपके सामने आज रखना चाहूंगी, क्योंकि लीडरशिप की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करें। अगर कोई बुरा भी है और वो हमारी बात नहीं समझ रहा, मैं इसलिए कह रही हूँ एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, पर अपना पूरा टाइम उस पे वेस्ट नहीं करें। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी लाइन में खड़े हैं जो समझ रहे हैं, उनका नंबर भी आना चाहिए। इनको साइड करके इग्नोर नहीं करें, जिनको आप बदल रहे हैं शायद वो लोग उनको बदल दें। हम उनके लिए कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम उनको कुछ कह भी नहीं रहे हैं, पर हम भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान इनको सक्षम बुद्धि दे, जब इनके पास बुद्धि आ जाए शायद ये मेरी बात समझ पाए। ऑलवेज हेल्प अदर्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, बट जब आपका इंटरनल इनर पोटेंशियल इतना स्ट्रांग हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में आ जाएगी, तो आप तुरंत ही समझ पाएंगे कि वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में उसको कैसे बाहर निकालना है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी एम्पैथेटिक. आप अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखिए, जो आप अपने लिए समझते हैं कि ठीक है, वो सलाह आप उसको भी दे सकते हैं कि इन सिचुएशन से बाहर कैसे आया जा सकता है. बट सिचुएशन से बाहर उनको आना है, आपको नहीं. यू आर द एनेबलर, यू आर नॉट द डूअर फॉर देम. जब आप एनेबलर बनेंगे और उनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे एनेबलमेंट के ऊपर, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग द पावर इन देम, यू आर इनकलकेटिंग द पावर इन देम टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. और सक्सेस कहाँ रहती है? सबसे पहले सक्सेस आपके अंदर रहती है, आपकी आपके एक्शंस में रहती है, बिकॉज सक्सेस इज द आउटकम ऑफ योर एक्शंस. एक्शंस कहाँ से आते हैं? आपके माइंड से आते हैं. माइंड में क्या आता है? थॉट प्रोसेस आते हैं. थॉट प्रोसेस कहाँ से आते हैं? आपके पॉजिटिव, जो पॉजिटिविटी है उससे आपके थॉट प्रोसेस का बहुत ही गहरा संबंध है. दूसरी बात ये यहाँ पे कि सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है. सेल्फ कंट्रोल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी ऐसी जगह पे बैठी हूँ, बीइंग अ कंट्री डायरेक्टर, जो बहुत सारे सेंटर्स हैंडल करती है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करती है, बहुत सारे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करती है, आपकी बात डोनर्स तक रखती है, डोनर्स की बात आप तक रखती है. पर अगर मेरे में सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल इन एनी सिचुएशन, सबसे पहला सेल्फ कंट्रोल क्या है? हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर, हम किसी की बातों के बहाव में तो नहीं आते, हमें कोई कोई चरा तो नहीं रहा. मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज बोल रही हूँ, कोई हमें चालाकी से हमारा माइंडसेट तो नहीं चेंज कर रहा है, कोई हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए तो नहीं कह रहा है, कोई हमें कोई हेरा फेरी करने के लिए तो नहीं कह रहा है. तो अगर ये सारे सेल्फ कंट्रोल के करेक्टरिस्टिक्स हैं और हम एक एक करके अपने आप में इसको दृढ़ करते रहते हैं, तो ये एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो हमेशा, फिर बाहर वाले लोग क्या कहते हैं, शी इज अ रॉक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज हर, यू कैन नॉट चेंज हर थॉट प्रोसेस, शी विल नॉट कम इन टू योर टॉक्स, है ना. तो लोग आपके बारे में ऐसी बातें कहनी शुरू कर देते हैं. जब लोग ऐसी बातें कहते हैं दूसरों के सामने आपके बारे में, तो उनकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती आपके बारे में, आपके सामने आके आपको कुछ गलत करने के लिए उत्साहित करें. ठीक है, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो हमसे कोई इसके बारे में बात नहीं करता है. पर ये मैं क्यों आपसे चर्चा कर रही हूँ, बिकॉज यू आर द बडिंग लीडर्स. मेरे मेरी लाइफ में भी मेंटर्स थे जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मुझे इस लेवल तक लेकर आए. और अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो लाइफ में बहुत सारी चीजों की समझ आ जाती है कि हमने लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाना. ठीक है, और आप दूसरों को समझाने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं. अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जब तक हम अपनी लाइफ के गोल सेट नहीं करते हैं, हम दूसरों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि तुम अपने लाइफ के गोल सेट करो. आई एम स्टैंडिंग देयर, आई विल सी टू इट दैट टू अचीव दोज गोल्स, नेवर एवर पॉसिबल. आपको अपने लाइफ के गोल भी सेट करने हैं. गोल में बहुत बड़े बड़े गोल्स नहीं कह रही हूँ अभी, मैं छोटे छोटे गोल सेट करने की कोशिश करती हूँ. एक अपनी लिथार्जी को छोड़ दीजिए, जो काम करना है वो खुद प्रोत्साहित होके करिए. दूसरा, हम फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटी बात करती हूँ कि हम सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, हम कहते हैं कि हमारी दिनचर्या सेट हो जाए, पर हम उठ नहीं पाते। हमने 10 चीजें सोची हैं कि आज इस ये 10 चीजें आज के दिन में कर लेंगे, पर हम 2 ही कर पाते हैं। अगर 2 कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते जा रहे हैं। अगर 10 में से हम 5 चीजें भी कर लेते हैं तो दैट मीन्स वी आर मूविंग इन अ राइट ट्रैक। बिकॉज काम तो एक प्रार्थना है, एक वर्शिप है, भगवान का नाम लेने की बात है। और अगर हम काम ही नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए, या अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए, तो हम उसका मतलब ये सब कुछ हमारे थॉट्स में है, हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनका एक दूसरे के साथ तालमेल है, और अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, करना शुरू कर दें, अब कैसे चलेगा? फॉर एग्जाम्पल आप देखो, संस्था को चलते हुए 16 साल हो गए, और अगर मैं अपना हर काम अगले दिन पे डाल दूं, उससे अगले दिन पे डाल दूं, उससे अगले दिन पे डाल दूं, कैसे संस्था ग्रो करेंगी? नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं ये एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपके सामने, और ये साधारण एग्जाम्पल करते करते करते करते कितना बड़ा एग्जाम्पल हो गया। और जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने अंदर की प्रैक्टिस आपको बता रही हूँ, मैं कोई किताब में से नहीं बता रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं खोली हुई है, कुछ भी मेरे सामने नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्टेप्स हाउ आई पॉलिश माई लीडरशिप क्वालिटीज, एंड आई वुड लाइक यू टू पॉलिश योर लीडरशिप क्वालिटीज। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बदलाव लाए हूँ, वैसे मैं आप सब लोगों को अपनी जिंदगी की किताब खोल के आपके सामने रख रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन सब बातों पे खरे उतरेंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे। और हमेशा जो चीज आपको लगता है कि ठीक है, उसको अपनी जिंदगी का एक लॉ बना लीजिए। लॉ मतलब कि अगर मैं बस ये मेरे लिए कानून बन गया है, उस कानून से मुझे हटना नहीं है। जब आप इस सिचुएशन पे आ जाएंगे तो आप रॉक बन ही जाएंगे, आपको कोई नहीं झुठला सकता, आपको कोई आपके दृढ़ विश्वास से डगमगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो लॉ कैसे बनता है? जब आप रेगुलेशंस में आ जाते हैं, जो मैंने आपके साथ बातें करी हैं, आप अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप रात को सोती हैं, तो आपको अंदर से ही ख्याल आता है कि मैं ठीक थी या गलत थी। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारा मन है ना, वो हमारा आईना है। वो आईना पे थोड़ी सी भी धूल आती है ना, तो हमको तकलीफ होती है। ये प्रैक्टिकल बात है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ फिलोसफी की बात कर रही हूँ, आप अपने को अनम्यूट करके बाद में, बस 2 मिनट है, मैं खत्म कर रही हूँ अपनी बात, आप मुझे बता सकती हैं कि उस आईने को कभी भी आप मैला नहीं होने दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना भी है, और एक लॉ की तरह बोल रही हूँ। जिस दिन आपने अपने आईने को मैला कर लिया, उस दिन आपकी लीडरशिप क्वालिटी सब पानी में बह जाएंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। इसको तो आप एक मंत्र की तरह बांध लीजिए अपने साथ, और हमें

0: आप अपनी जिंदगी में रोशनी लाएंगे और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाएंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी। अब कोई बोलना चाहता है तो प्लीज बोलिए, मैं अपना ऑफ कर रही हूँ स्पीकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।
1: मैम नमस्ते, विजय बोल रहा हूँ बारा से। मैम
0: हाँ
1: मैं
0: जी विजय जी बोलिए
1: मुझे
0: आप।
1: आपकी बिना दीदी ने वापस रीड इंडिया में जोड़ा है,
0: हाँ जी विजय, बहुत
1: और
0: अच्छी
1: अभी
0: बात है।
1: मैं पिछले 1-2 महीने से लगातार अभी रीड इंडिया के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। अभी परानिया में कंप्यूटर सेंटर खोला है हमने, तो वहाँ पे
0: वेरी
1: अभी
0: नाइस वेरी नाइस।
1: 25-30 लड़कियां और महिलाएं हैं। उसमें अधिकांश गांव की महिलाएं हैं जो काफी दिनों से मुझसे कह रही थी कि कंप्यूटर सीखना चाहती हो, कंप्यूटर सीखना चाहती हो। तो फिर ये मौका दिया उन्होंने, मीना दीदी ने कहा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सोनी नेटवर्क का है हमारे पास, कुछ लोगों का ट्रेनिंग कर सकते हो तुम, तो उनको जोड़ लो। तो मैंने अभी शुरू किया है मैम। और अभी अभी रिसेंटली मैं अभी घट्टी में हूँ, घट्टी ग्राम पंचायत में हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियों को बुलाया मैंने, उनका नया नामांकन किया है, एनरोलमेंट किया अभी। तो उससे पहले आपकी मीटिंग थी तो मैं टाइम से जुड़ नहीं पाया, लेकिन आज आपने लीडरशिप के ऊपर बहुत अच्छा सेशन दिया कि खुद की क्षमताओं को पहचानना है, उसके साथ आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ। हो तो ये बहुत अच्छा सेशन था आपका, अच्छा लगा मैम। और अभी लगातार जुड़ के काम करूंगा आप लोगों के साथ।
0: हाँ विजय, जुड़े ही रहिएगा क्योंकि हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, और
1: जी
0: आपने जो अपनी स्किल्स डेवलप कर रही है उसको अब आपको दुनिया को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, है
1: जी
0: ना
1: वही एक्सप्लोर करना
0: उसको।
1: है मैम। एक मंच चाहिए जो रीड जैसा बेहतर मंच मुझे शायद नहीं मिलेगा, तो एक बार फिर से शुरुआत करके वापस अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ।
0: ठीक है, महिपाल के टच में रहिएगा और
1: जी
0: महिपाल आपको बताएगा कि कैसे हम आपके स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है ठीक
1: जरूर जरूर।
0: है ठीक है। एनीबॉडी एल्स?
2: हेलो मैम,
0: हाँ जी हाँ जी ज्योत्सना, हेलो
2: कैसे
0: हेलो
2: हैं मैम?
0: कुंती,
2: मैम हमारी
0: हेलो
2: टीम आपको बहुत
0: हेलो।
2: अच्छे से सुन रही है और सब लोग बहुत खुश हैं। आज हमारा सेशन बहुत टाइम बाद थोड़ा सा हुआ है, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे और सीरियसली हम लोग इस पे बहुत वर्क कर रहे हैं, सच पे, और अपनी पोटेंशियल को जज करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने भी एक बहुत अच्छा सेशन स्टार्ट किया लेटेस्टली, छोटा सा ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स का, छोटे छोटे बच्चों का जो डांस कर रहे हैं। आशा मैम उनको हैंडल कर
0: वाह
2: रही है। हाँ जी मैम, दो छोटे छोटे बैच बने हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग 5-10 दिन बच्चे हैं टोटल, दो बैच में 5-5, 6-6 स्टूडेंट। और मैम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे हम इस सबको आगे और प्रोसेस पे भी लेके जाएंगे। छोटे छोटे स्टार्ट कर रहे हैं मैम, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। और लीडरशिप के लिए
0: बहुत अच्छी
2: ऑलरेडी
0: बात है, बहुत अच्छी बात है, छोटे छोटे
2: अभी हम
0: स्टेप्स से
2: सेशन
0: आगे
2: सुनते
0: बढ़ना।
2: हैं मैम। सीरियसली यू आर माई रोल मॉडल, ऑनेस्टली। सबसे पहले तो मैंने आपसे पोलाइटनेस सीखी है, पर मेरे में अभी भी बहुत लगता है कि मुझे बहुत सीखना है। जब भी मैं आपको सुनती हूँ तो मैं दो स्टेप सीखती हूँ, दो स्टेप सीखती हूँ, धीरे धीरे जरूर उसको कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ी और अच्छा पोलाइट और ट्रुथ वर्क कर सकती। थैंक यू मैम, सब लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक
0: थैंक यू सो मच।
3: हेलो मैम, प्रिया बंसल फ्रॉम बारान।
0: अच्छा रिया बंसल बारान, यस यस
3: मैम ये मेरे साथ और 20 लेक्चरर्स और स्टूडेंट बैठे हैं। तो मैम जैसे आपने बोला कि जैसे मैं बहुत सारी गीता रेडी कर रही हूँ, तो मैम मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है। तो एक गीता मूवी है साउथ की, तो उसमें भी
0: अच्छा
3: जैसे आपका जैसा रोल है वैसे ही उस मूवी में गीता मैम का रोल है। तो जैसे स्टूडेंट्स को उनसे जो वो सलाह मिलती है, तो वो भी जैसे बहुत सारी गीता रेडी कर रहे थे। तो आप जैसे हमें आपसे सीखने को, सबसे पहली बात तो जब आपकी शक्ल देखते हैं, आपका फेस देखते हैं, तो आपकी वो पोलाइटनेस देख के अपने आप फेस पे स्माइल आ जाती है। तो आज का जो सेशन था मैम बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू। प्रैक्टिस करना है उसको, है ना?
3: यस मैम।
2: बात कर रहे हैं हम, हमारे घर हम बात कर रहे हैं मैम,
0: कहाँ से?
2: करेगा
0: कार्यगाम से? यस यस हाँ
2: मैम।
0: जी हाँ जी। नमस्ते,
2: जी
0: कैसे? सुवर्णा बोल रही है ना? हाँ ठीक है, कैसे हैं
2: हाँ,
0: आप? हाँ
2: कंपनी के क्लास करते हैं हम बाहर जा नहीं सकते, यहाँ फ्री में बहुत अच्छा सिखाते हैं। मैं आपकी धन्यवाद कहना चाहती हूँ।
0: थैंक यू
2: थैंक
0: सुवर्णा, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? ये
2: यू सो मच
0: आपके
2: मैम।
0: लिए

0: सुवर्णा इज योर लीडर, है ना
1: हाँ
0: सुवर्णा?
1: मैम,
0: तुमको, हाँ तुमको सबकी जिंदगी बदलनी है। हाँ
1: हाँ हाँ मैम, बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, थैंक यू सो
0: चलो
1: मच मैम। और
0: ठीक
1: सभी
0: है,
1: स्टूडेंट का ये मानना है मैम, एक बार हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट देने के लिए आ जाए आप, मैंने
0: मैं
1: आपको एक
0: आऊंगी
1: मीटिंग।
0: पक्का पक्का, मैं
1: यस
0: आऊंगी
1: मैम, यस,
0: आपकी। मेरे को लेटर मिल गया था और वो
1: ओके,
0: ग्रीटिंग कार्ड भी मिल गया है जो मैंने
1: हाँ
0: अपने पास संभाल के रखा हुआ है,
1: हाँ
0: और ये मुझे
1: मैम,
0: याद दिलाता है कि मुझे जाना है आपके पास, तो मैं
1: हाँ मैम,
0: जरूर आऊ, जरूर आऊ।
1: ओके मैम,
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू
1: थैंक
0: थैंक
1: यू मैम,
0: यू
1: बाय
0: थैंक यू सो
1: मैम,
0: मच, थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। ये सेशंस रेगुलर होंगे, बीच में किसी तरीके से नहीं हो पाए उसके लिए सॉरी, और हम हर हफ्ते मिलेंगे। प्लीज वेट फॉर दिस सेशंस एंड बी रेडी टू शेयर, आप भी कुछ शेयर करिएगा जरूर, ठीक है? ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर,
1: थैंक यू मैम,
0: थैंक
1: थैंक यू मैम,
0: यू,
1: बाय,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू।
1: यू मैम।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम,
0: सब
1: गुड
0: अच्छे?
1: है मैम। गुड
0: गुड आफ्टरनून
1: मैम,
0: मैम।
1: बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम। गुड
0: है। कोई और कैसे हैं?
1: आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: सब ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम। हम
1: मैम अच्छे,
0: अच्छे
1: गुड
0: हैं। अच्छे हैं। और कैसे
1: मैम
0: हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
1: ठीक है मैम, कुछ
0: ठीक है। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। ठीक
1: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: है,
1: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
1: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम।
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। स्वर्णा जी, आपके साथ मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?
2: हाँ
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: सांगले अच्छे,
0: सांगले। सांगले का
2: मराठी
0: क्या
2: में
0: मतलब?
2: बात करते मैम वो
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है?
2: अच्छे हैं हम सब।
0: अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज,
2: तुम्हें
0: आपके पीछे मुझे
2: बोला
0: है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है, आज मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा रितु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको? यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम, तो
1: यस
0: आज
1: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिसपे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सकें, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है, या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
1: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि खुद देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ वॉट? एब्सोल्युटली।
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं, और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है। तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं? आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त? ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से, जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे, मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6 खुशी होती है, और बताइए। हेलो,
2: जैसा फील कर होते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: हम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया,
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: 5,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छह,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी
0: सात,
2: कभी
0: सात खुश,
2: देखिए भी होता है।
0: 8, 8 इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए? मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं?
2: यस मैम, यस
0: फुल स्क्रीन
2: मैम,
0: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती, क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है, और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं, इसे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता। अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में, तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो, तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा, अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में। अगर हमें लगेगा कि नहीं, जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना, सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें, उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखी है किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे? देखिए
2: मैंने देखी है मैम, ठीक है
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको,
2: मैम।
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूं और उसको मैं पॉजिटिव। मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको। वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयर ही गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता। बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां, अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पर वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, तब इसकी, ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है तब, क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में, हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे, किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं। एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 ईज की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80-90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी सी बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उसे डर के रुक जाएं? ये आपकी मर्जी है, अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे, रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी, बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है, क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला, अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उससे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स, जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इम्पोर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है, या कोई गोल, या आप जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
2: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
2: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था, तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना, जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
2: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं? मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है, ह्यूमन साइकोलॉजी पे। तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता. तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी करता है, चिड़चिड़ा मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर. ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं. चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के हैं, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने. तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं. आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते. अपने अपने पहचान के और अपने अपने मैनेज करने. मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए. हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
2: बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है. इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया. कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है.
2: यस मैम, काफी टाइम ना, मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने, और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घटती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना, तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आ रहा था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं. हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया. या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा. अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते. अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है. इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है. हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है. अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरी रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके. एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं. हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं. ऐसा होता है, एक सहेली सबकी होती है जिससे इतना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक. तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है. कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता. तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं, कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते. कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है. वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं. बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये चार बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट। लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्या तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे, अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है कि पूछे ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
2: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
2: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
2: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, ई क्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को, कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी को, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट। बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
2: हेलो मैम, मैम
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
2: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी, जैसे जितने मेरे पेंडिंग काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और आ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है, लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। पर ठीक है आज हमें और गाइडेंस मिली है कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन।
0: मैम
2: थैंक्स
0: मेरी
2: ऐसे
0: एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते हैं आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
2: जी
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाह रहे?
1: मैम, 1 साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं, उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे, हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीज़ों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं,
0: थैंक यू
1: इसलिए
0: तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते, नहीं आप साइकिल चलाओ गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता कपड़ा बांध देता, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है लेकिन फियर ऑफ, पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं जमीन पे रहते हैं। तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे अरे वो हो ही गया, क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना आप, मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा हंसी खुशी यही 4 5 8 10 इमोशन होते हैं, पर सोचो मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूँ, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं। हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
2: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
2: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है, और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।

जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है आपका, 3 ईयर का डिप्लोमा होता है और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है आपका एक तरह से 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलॉसफी थी ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है वो हम ये कह सकते हैं जैसे ए टू डी क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहाँ कहाँ वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट फैक्ट्रीज आप देखेंगे एनसीआर एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट, थोड़ा हम ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। 10th के बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल जो हमारे फैमिली जो है वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट पीएसयूज में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्विवेलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th

0: भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि टेंथ के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है। बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है, क्योंकि एज भी आपकी कम है ना, अभी टेंथ के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4 से 5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जिसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है मेरे हिसाब से, कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है, आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है, मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट, उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, भी जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है, तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं, पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ इसके अंदर तीन तीन साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से तीन साल का डिप्लोमा करते हैं, थ्री ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है। मतलब ये तीन आपकी लेयर्स हैं, फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारे इस फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल वीएलसीसी का नाम आप सबको पता ही होगा, वीएलसीसी एक तरह से आपका जो ब्रिटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में, डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं, वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं। वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। साइट्स जो बनती है वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं, लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जाम्पल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया, और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं। तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं, वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है, SEO का कोर्स किया हुआ है, तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है। हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है, अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं, सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं, कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है। मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो हमें खुद कुछ भी कोर्स, कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है। मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है। अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं, हाँ सर, जो बीटेक मई में, हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है। होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती है टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है, हाँ दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहां पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती है, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं, थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहां पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है। पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज है, आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पर उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता तो वो तैयारी नहीं करता, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एक ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी भी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ COVID-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इन टू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, USA था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहां पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं, जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में, और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th, 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीड का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीड का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीड कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC गेल इन सबके बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वह आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते, जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, बाकी आप कि कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था, टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर,
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं, तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के,
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: बेसिकली क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं, जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो आपकी परमानेंट जॉब्स है जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।
2: वैसे तो आप जान ही गए होंगे हम जेवर से आए हैं, मेरा नाम प्रिया है और मैं बस थोड़ी सी दो तीन लाइन बोलूंगी कि पहले मैं इसी सेंटर में स्टूडेंट थी और अब मैं पार्लर की ट्रेनर हूँ, और पार्लर की जॉब करने के साथ साथ मैं घर पे भी पार्लर का काम करती हूँ, इसीलिए मैं सभी टीम को मतलब धन्यवाद बोलना चाहूंगी, इनकी वजह से मेरी इनकम डबल हो चुकी है, और शादी के बाद कहते हैं सरनेम बदल जाता है, मुझे हस्बैंड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब मुझे देख के सब ये बोलते हैं, वो देखो प्रिया के हस्बैंड जा रहे हैं। तो थैंक यू।
3: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ജനകീയനെ ആദ്യത്തെ പഞ്ച സംസ്ഥാനത്തിലെ എൻവോൾമെന്റ് കോ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബൊല്ലാ പവൻ ഗുരു പാണേ പിത മാതാ തർത്ഥ മഹത് അപ്പനി മാതാ പര കുച്ച് ഗന്ദഗി ഫലെ സബ്സെ ബുറാ ഇൻസാൻ ഹംസേ കോയി നീ ശരം ദ കമ തായ കൂട ഫലാനാ ഇജ്ജത് മാൻ ദ കമ കൂട സംഭാലനാ ਔਰ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ
1: ਯੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਡ DIG ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸੜਕੋਂ ਕੀ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਤੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈ 6 June 1938 ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਜਨਮੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇ ਮਿਲੇ ਥੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ एक मेधावी छात्र रहे इंद्रजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहां भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: तो शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पीपी के ऐसे ही फेंक देते थे, यूजुअली उनको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाना याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा। किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंक दें। अब हमें जो लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझकर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क, ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाए इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है या व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।
1: सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।

0: महज 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से उसे अलंकृत किया गया था, क्योंकि उसने करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ ने काम करना बंद कर दिया था।
1: राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ को हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला, 3-4 बंदे और उनके मारे गए। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तो उनको लगा कि यार हाँ, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर उखड़ गए और वहां से उनको भगा दिया।
0: और इस तरह तीसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा। पर इस पूरी कवायद में इन्हें काफी गोलियां लगी थी, खून काफी बह चुका था। इनका जीवित बचना इनके जीवट और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को ऐसे वीर पर अभिमान है।
2: Honored with Paramveer Chakra. Kulzar Yadav captured the Tiger Hill, leading his Ghatak Datu.

अरंडी चौड़े पत्तों का छोटे कद वाला पौधा होता है जो प्राकृतिक रूप में जन्म लेता है। यह पौधा भारत में आम पाया जाता है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जो औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते भी औषधीय रूप में बहुत काम आते हैं। यहाँ अरंडी के पत्ते, बीज और तेल से जुड़े फायदे बताए जा रहे हैं, जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अरंडी की जड़ 20 ग्राम को 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब यह 100 मिलीलीटर शेष बचे तो इसे पिलाने से त्वचा संबंधी रोगों में लाभ होता है। अरंडी के तेल की मालिश करते रहने से शरीर के किसी भी अंग की त्वचा फटने का कष्ट दूर होता है। ऐसे बच्चे जिनके सिर पर बाल नहीं उगते हो या बहुत कम हो, या ऐसे पुरुष स्त्री जिनकी पलकों व भौहों पर बहुत कम बाल हो, तो उन्हें अरंडी के तेल की मालिश नियमित रूप से सोते समय करना चाहिए। इससे कुछ ही सप्ताह में सुंदर, घने, लंबे, काले बाल उगने लग जाएंगे। सिर पर अरंडी के तेल की मालिश करने से सिर दर्द की परेशानी दूर होती है। अरंडी की जड़ को पानी में पीसकर माथे पर लगाने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। अरंडी का तेल थोड़े से चूने में फेंटकर आग से जले घावों पर लगाने से वे शीघ्र भर जाते हैं। अरंडी के पत्तों के रस में बराबर की मात्रा में सरसों का तेल फेंटकर लगाने से भी यही लाभ मिलता है। यदि मल त्यागने में कठिनाई का अनुभव हो तो अरंडी के तेल को दूध के साथ देने से लाभ होता है। अरंडी का तेल गर्म पानी के साथ देना चाहिए या फिर अरंडी का रस शहद में मिलाकर बच्चों को पिलाना चाहिए। इससे बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अरंडी के पत्तों का रस रोजाना 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से बच्चों के पेट के कीड़े मर जाते हैं। अरंडी के तेल में कपूर का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 बार नियमित रूप से मसूड़ों की मालिश करते रहने से पायरिया रोग में आराम मिलता है। पत्ते पर थोड़ा चूना लगाकर तिल पर बार बार घिसने से तिल निकल जाता है। अरंडी के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्से पर बांधने से मस्से मिट जाते हैं। अरंडी का तेल लगाने से जख्म भी भर जाते हैं और इसको मस्सों पर लगाने से मस्सा ढीला होकर गिर जाता है। अरंडी के तेल को सुबह और शाम 1 से 2 बूंद हल्के हाथ से मस्से पर मलने से 1 से 2 महीनों में मस्से गिर जाते हैं। अरंडी के बीज की मींगी को दूध में

0: दूर हो जाता है। एक कप दूध में 2 चम्मच एरंड का तेल मिलाकर सोते समय पिलाएं। इससे पेट की कब्ज नष्ट हो जाती है। चोट लगकर खून आने लगे, घाव हो तो एरंड का तेल लगाकर पट्टी बांधने से लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर तिल का तेल लगाकर गर्म करके बांधने से चोट से सूजन एवं दर्द में लाभ होता है। एरंड के पत्ते पर सरसों और हल्दी गर्म करके मोच वाले स्थान पर लगाएं और पत्ते को उस पर रखकर पट्टी बांध दें। अरंड के बीज की गिरी 10 ग्राम काले तिल 10 ग्राम दूध में पीसकर हल्का गर्म करके मोच पर बांध दें। अरंडी के तेल की 2 चम्मच मात्रा को गर्म दूध में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। जय हिंद।
1: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
2: शुरुआत में सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
2: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
1: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
2: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
1: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
3: डीडी किसान, बदलते भारत की शान।

मधुमक्खी पालन, जी हाँ, एक ऐसा व्यवसाय है जिससे हमारे किसानों को कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि जो उनकी फसलें हैं उनमें परागण बेहतर होता है और अच्छी फसल प्राप्त होती है। दूसरा ये कि मधुमक्खी पालन से उन्हें शहद बेचकर लाभ होता है। इसके अलावा कई और भी उत्पाद होते हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग होती है, उनसे भी हमारे किसान आय अर्जित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं और व्यावसायिक दृष्टि से आज के समय में इसकी क्या उपयोगिता है।

0: शहद एक प्राचीन पदार्थ है, बल्कि पत्थरों के बसेरों और जंगलों में रहने वाले लोगों ने जिस मीठे पदार्थ को पहली बार चखा वो शहद ही था। बाद में जब दुनिया ने इसके फायदों के बारे में जाना तो मधुमक्खियों को बाकायदा पालना शुरू किया। आज खेतों के बीच कुछ पेटियां रखकर इन्हें पालने का चलन बढ़ता जा रहा है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं देती, बल्कि इनसे मोम, रॉयल जेली, पोपोलिस यानी रालाभ, परागकण और डंक विष भी प्राप्त होता है। ये सभी चीजें इंसान की सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। भारत में प्राकृतिक और वनस्पति खेती दोनों में मधुमक्खी पालन को विकसित करने की काफी क्षमता है। यहाँ करीब लगभग 500 तरह के फूलों वाले पौधे पराग और मकरंद के स्रोत हैं। शहद की किस्म इस बात पर निर्भर करती है कि मधुमक्खियों ने उसे किस फूल से चूसा है। जैसे सरसों का शहद, नीलगिरी शहद, लीची शहद, सूरजमुखी शहद, करंज का शहद, मल्टीफ्लोरा, हिमालयी शहद, बबूल शहद, जंगली वनस्पति शहद, मल्टी और मोनोफ्लोरा शहद। भारत में मधुमक्खियों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हमारे किसानों ने इनका लाभ भी उठाया है। 1953 के दौरान देश में केवल 230 मधुमक्खी पालक थे, जिनके पास बक्सों में लगभग 800 कॉलोनियां थीं। तब शहद का उत्पादन बहुत कम था। आज यहां लगभग 25 लाख कॉलोनियां और 2.5 लाख पालक हैं। जंगलों से शहद इकट्ठा करने वाले इनसे अलग हैं। हम इस समय दुनिया में लगभग 83 देशों को शहद का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि 2022-23 के दौरान देश से लगभग 80,000 टन का निर्यात किया गया। भारत में जितना भी शहद होता है उसका आधा निर्यात कर दिया जाता है। फसल उत्पादन में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं कि शहद की तलाश में ये एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हैं। इस तरह जाने अनजाने ये परागण का काम करती हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस तरह के परागण से उपज में 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि बहुत से किसान मधुमक्खी पालकों के बक्से अपने खेतों में रखवाते हैं और बदले में उन्हें कुछ रकम भी देते हैं।
1: इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
2: भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
3: खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा।
2: इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
1: कृषि स्टार्टअप कृषि दर्शन का वो सेगमेंट है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उन किसानों से जिन्होंने चुनौतियों के सामने ना झुकते हुए कृषि के क्षेत्र में कुछ नया किया, कामयाबी हासिल की। इन्होंने नई तकनीक को अपनाया और साथ ही सरकार की योजनाओं का भी भरपूर लाभ लिया। आइए जानते हैं कि आप भी कैसे इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं कृषि स्टार्टअप में आज के किसान की कहानी।
4: गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया।
5: मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय किया करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहां पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहां जो मछली पालन हमने देखा, तो वहां देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए, तो हमने आगरा में जमीन को लीज पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने का जो प्लान है, उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे संबंध में पता लगा। हमें काफी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहां हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज्यादा मिला। उनके वहां जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं, तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है।
4: आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गायें पाल रहे हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
1: तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन।
2: आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की।
3: इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
2: एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है।
6: लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए।
2: राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
7: ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ।
2: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं बासमती धान की उन खास किस्मों की जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देती हैं। मौजूदा समय में जल संकट और सिंचाई लागत बढ़ने के कारण किसानों के लिए ऐसी किस्मों को अपनाना न सिर्फ जरूरी हो गया है बल्कि लाभदायक भी। ऐसी ही कुछ प्रमुख किस्में हैं पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, स्वर्ण शुष्क पूसा बासमती 1121, 140 से 145 दिनों में पककर तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। इसका दाना लंबा पतला होता है और इसमें सुगंध भी बेहतरीन होती है। यह किस्म कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छा उत्पादन देती है। पूसा बासमती 1509 सबसे जल्दी पकने वाली किस्म है जो सिर्फ 120 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी खासियत है कि इसमें 3 से 4 बार कम सिंचाई की जरूरत होती है और यह 33% तक पानी बचाती है। वहीं स्वर्ण शुष्क 110 से 115 दिनों में पकती है और 40 से 45 क्विंटल तक उपज देती है। यह किस्म रोग प्रतिरोधक होती है और कम पानी में भी अच्छा विकास करती है। कुल मिलाकर इन सभी किस्मों की खासियत यही है कि ये कम सिंचाई में भी अच्छी उपज देती है और पानी की 3 से 4 बार तक बचत कराती है। इससे आपकी खेती की लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस बार बासमती की खेती में इन कम पानी वाली किस्मों को जरूर आजमाएं और जल संरक्षण के साथ अपनी आय भी बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एआई एंकर कृषि की, जो कि खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां हमारे किसानों के लिए लेकर आते हैं। तो आइए रुक करते हैं एआई एंकर कृषि का।
0: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृषि। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद जरूरी योजना की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। यह योजना किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत यदि आपकी फसल को बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट या बीमारी से नुकसान होता है तो सरकार आपको बीमा राशि देती है। यहां तक कि फसल कटाई के बाद भी अगर बारिश या तूफान से नुकसान होता है तो भी इसका कवरेज मिलता है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले अपने बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से जुड़ा दस्तावेज या खसरा नंबर। अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इन सभी को स्कैन करके अपलोड करना होगा, और अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं तो अपने नजदीकी कृषि विभाग, बैंक या सीएससी केंद्र पर जाकर ये दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, हर सीजन की एक तय सीमा होती है, उसी के अंदर ही आवेदन करें। तो किसान भाइयों, इस बार की फसल बीमा योजना का लाभ जरूर उठाएं, समय रहते आवेदन करें, दस्तावेज पूरे रखें और अपनी मेहनत की फसल को आर्थिक सुरक्षा दें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
1: फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, जो कि हमारे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। जी हाँ, इससे मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें उचित जानकारी मिल पाती है, जिससे वो सही अनुपात में ही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि मिट्टी की सेहत भी बेहतर होती है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं।
2: मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है, साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया। एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या ना हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90-95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85-90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8-10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं।
1: तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan.dd@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में और कुछ ऐसी नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ।

जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो, उस पिता के दिलों से तो पूछो।

0: सहजी, क्या पता बेटी शादी से सहजी, क्या पता है कफन ओढ़े लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाई, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे बन कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।
1: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
2: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम जितनी किताबें पढ़ते हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
1: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनके देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट एसवी निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टैपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
2: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
1: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
2: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
1: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
4: हेलो, मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ। मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इसमें रीड इंडिया में आती हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है, जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है। यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है, और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ। मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना, अपना करना, लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ, और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं। जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज़ हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं। बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए। और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं, जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है, जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपये प्रोत्साहन राशि देती है। और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपये देती है। ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और महिला अपना आराम से रहती है। जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है, और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं। जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे, हमें ऐसा डर लगता था क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था। लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है, मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ, अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ, तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ। इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं। इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं, तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ। और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े, अपने लिए तो कम से कम लड़े ही, कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसमें ये होना चाहिए।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ, आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून आ गया है, बारिश का मौसम आ गया है और ये बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। आज मैं उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है? टाइफाइड फीवर एक बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है और इसके बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी एक मेडिकल टर्म है और ये बैक्टीरिया हमारे जब बॉडी के अंदर घुसता है तब हमें टाइफाइड फीवर के होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में ये फैल जाता है। सच ये है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो पानी या सूखे मल में हफ्तों तक जिंदा रहता है। इस तरह से वे दूषित पानी या खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति का जूठा खाद्य पदार्थ खाता है या पीता है तो इससे दूसरे व्यक्ति को टाइफाइड रोग होने का संभावना बन सकती है। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित या बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने के मुख्य वजह है। किसी भी व्यक्ति को अगर घर में टाइफाइड है तो घर के अन्य सदस्यों को भी टाइफाइड होने का खतरा हो सकता है। मॉनसून में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार का वायरस बहुत परेशान करता है। टाइफाइड एक तेज बुखार से जुड़ा रोग है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड होने का कारण क्या है? टाइफाइड बुखार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। ये भोजन या पानी के सेवन से होता है या इस बैक्टीरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है या जिसको पहले से ही टाइफाइड होता है उसके जूठा खाने से या उसके आसपास बैठने से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ से भी ये संक्रमित हो सकता है। पाचन तंत्र से पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचता है। श्रोता, आप जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, इसमें 104 डिग्री तक बुखार जाता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम हो जाती है। टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को सिर में भी दर्द होता है। टाइफाइड के लक्षण के रूप में शरीर में दर्द होता है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है, टाइफाइड से कमजोरी का भी अनुभव होता है, इसमें दस्त का भी अनुभव होता है, दस्त भी होने लग सकते हैं। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को 104 बुखार तक पहुंच सकता है। बड़े बच्चों को कब्ज की भी शिकायत हो सकती है तथा बच्चों में दस्त की भी शिकायत हो सकती है। श्रोताओं, आप जानते हैं टाइफाइड से बचाव का उपाय क्या है? आमतौर पर भोजन और जीवन शैली के असर के कारण भी टाइफाइड होता है। इसके लिए आहार और जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या बदलाव कर सकते हैं। टाइफाइड में प्याज और लहसुन या वो खाद्य पदार्थ जिसकी बहुत तीव्र स्मेल हो उससे हमें बचना चाहिए। टाइफाइड में सभी मसाले जैसे कि मिर्च, सौंफ, सिरका आदि से परहेज करें। इस बुखार में गैस बनने वाले आहार जैसे अनानास, कटहल आदि से परहेज करें। टाइफाइड के लक्षण महसूस होने पर घी, तेल से परहेज करें। टाइफाइड में बाजार की बनी हुई चीजें ना खाएं। टाइफाइड में मांसाहारी भोजन
से भी परहेज करें। पेट भरकर कुछ भी ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचता है। चाय कॉफी का भी कम सेवन करें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। उचित स्वच्छता बनाए रखें। अपने हाथों को गर्म पानी से साबुन के साथ बार बार धोएं। साफ उबला पानी पिए और केवल बोतल बंद पानी पिए। कच्चा आहार ना लें। उचित तरीके से पका भोजन गरम गरम ही खा लें। भारी दुकानों से पाए गए पदार्थ ना लें। संक्रमित व्यक्ति को घरेलू कार्यों से दूर रखें। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की व्यक्तिगत उपयोग और वस्तुओं को अलग रखें। पानी को स्वच्छ कर ही पिएं। कूड़े कचरे को सही तरीके से फेंकें और अच्छा स्वास्थ्य भोजन करें। संक्रमित व्यक्ति को अपने बर्तन और भोजन किसी से भी नहीं शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें और अपने आसपास सफाई रखें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड का उपचार में घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ कुछ समय के बाद अपने पदार्थ में पानी, ताजे फल का रस या हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए। उबले पानी का ही सेवन करें। यह टाइफाइड में कमजोरी की स्थिति में भी आपकी मदद कर सकता है और बीमारी से राहत दिला सकता है। टाइफाइड में तुलसी का पानी भी बहुत अच्छा इलाज है। सेब का जूस भी टाइफाइड में उपचार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेब का जूस निकालें, इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं। इस तरह से बुखार में राहत मिलती है। आप टाइफाइड के उपचार के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग में टाइफाइड ठीक करने के गुण होते हैं। 8 कप पानी में अगर आप 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लेंगे, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसे छानकर पी लें। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करें, इससे टाइफाइड में हुई कमजोरी दूर हो सकती है। अगर बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर सकते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए शहद का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पानी को पी लें। ये टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बहुत फायदेमंद उपाय है। श्रोताओं, ये तो मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए थे, पर जब टाइफाइड होता है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना उतना ही जरूरी है। टाइफाइड के लक्षण दिखते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसे अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है। श्रोताओं, आप जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उसका अच्छे से पालन करें, समय से दवाई खाएं और साथ साथ हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और अगर आपके घर में कोई भी टाइफाइड का मरीज हो या आपको ही टाइफाइड हो जाए तो आपको ये सब जानकारी मिलने के बाद आप अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मेजर होशियार सिंह अपने जीवन काल में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले चंद शूरवीरों में हैं। हरियाणा के सोनीपत में जन्मे मेजर होशियार सिंह ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई थी। 1957 में होशियार सिंह का भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में चयन हुआ था और 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेने के बाद ये ऑफिसर बने। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में भारतीय सैनिकों की वीरता और पराक्रम से जुड़े तमाम किस्से हैं। इस युद्ध में यूं तो 4 जांबाजों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, पर मेजर होशियार सिंह ऐसे अकेले सैनिक थे जिन्हें ये अलंकरण जीवित रहते मिला। बसंतर की लड़ाई में घायल होने के बाद भी इन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और पाकिस्तानी सेना को पीछे भागने पर मजबूर कर दिया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 3 दिनों के अथक साहस और बहादुरी की बदौलत इनकी टुकड़ी ने 85 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए थे। परम योद्धा मेजर होशियार सिंह की वीरता पर पूरे देश को गर्व है।
1: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
2: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था। मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
1: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटरनरी कॉलेज पहुँचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
2: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाए। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
1: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
2: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए 1 चम्मच एलोवेरा, 2 मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
1: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
2: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निशुल्क है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुँचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
2: मैं दिल से खिलाड़ी हूँ, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूँ।
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
2: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई एस आर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा, हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहाँ से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मेडिकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के

0: जो खाद हों उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
1: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
0: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2 से 3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो उसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को, जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ, उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
1: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7 से 9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7 से 8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8 से 9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है dvkisan@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायिकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले खेतों से लाई गई हल्दी को धूप में सुखाया जाता है। लगभग एक हफ्ते तक सुखाने के बाद हल्दी प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाती है। हल्दी जब प्रसंस्करण यूनिट पर लाई जाती है तो सबसे पहले उसकी सफाई की जाती है। मशीन हल्दी में लगी मिट्टी और छिलकों को साफ करती है और उसे प्रसंस्करण के लायक बनाती है। मशीन को हाथ से चलाया जाता है। इसके हैंडल को 10-15 मिनट तक घुमाया जाता है। कुछ समय इसे सीधा तो कुछ समय इस मशीन को उल्टा घुमाया जाता है। इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है, जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
2: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं, उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
1: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
0: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

0: Nani cari bialo, kacing hangi pari diau, lir sing sau na thoi, ilau lau.
1: पर्वतों की गान कोकिला श्रीमती कोकिला लेख देवी पद्मश्री 2026 कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव जहां रहता है कार्बी समुदाय और कोकिला लेख देवी। घुमंतू कलाकारों के परिवार में जन्मी कोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
2: उन दिनों कार्बी गीत तो थे पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
1: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक कोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर, किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
2: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए, हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
1: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांधोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबिन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज कोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है, लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
2: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
1: श्रीमती कोकिला लेख देवी पद्मश्री 2026 कोटि कोटि नमन।
3: रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट, फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें, उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है, तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यह बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरैक कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इबल्सिफिकेशन सर्जरी।
2: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है. जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है. तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट. इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है. इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है. ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है. ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है. यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं, सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
4: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
1: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
3: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
0: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
3: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
0: बबलू,
3: बाय फ्रेंड्स,
0: तुमसे मैंने
3: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
0: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
3: बबलू,
1: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किया।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टॉप डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चंचल, आई स्टडी इन 8th क्लास। मैं काफ़ी साल से दिल्ली में रह रही हूँ। दिल्ली में आके मुझे ये पता चला कि यहाँ पे एक रीड इंडिया है वहाँ। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज होती है। फिर मुझे एक बार पता चला कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स होता है, तो मेरे को कंप्यूटर कोर्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये करूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बताया था कंप्यूटर के, जब तक कंप्यूटर नहीं सीखते यहाँ आजकल को कुछ नहीं कंप्यूटर के बिना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सीखूँ। मेरे पापा ने बोला कंप्यूटर सीख, मैंने सोचा मैं कंप्यूटर सीखूंगी। और जब से मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब से मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप में प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ, अगर कोई मेरे को बोलता है तो मैं कर पाती हूँ उसे। दूसरे को नहीं आता तो मैं समझा पाती हूँ। और यहाँ की जो टीचर है वो भी बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत अच्छे से बताती है, इतने अच्छे से समझाती है। तो अब मुझे जितना आया है मैं अपनी सिस्टर्स को भी सिखाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी सिखाती हूँ और अपनी फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ यहाँ पर आने के लिए, तुम भी कंप्यूटर कोर्स सीखो। और मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स आती हैं यहाँ पर कंप्यूटर सीखने के लिए और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। तो सो थैंक्स।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महान देशभक्त फिरोज शाह मेहता का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

ये उन दिनों की बात थी जब चुनौतियों भरी हर रात थी, लेकिन उस घने अंधकार में भी साहस के साथ ये कहने वाले अनगिनत लोग थे कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका, वो बस उड़ने ही वाली है। अभी भी टूटती हुई शाखों को थामने बैठा है हाथ कोई। ऐसे मजबूत हाथों की ताकत से ही रोशनी फूटती है, उजाला होता है। गुलामी के उस दौर में भी रोशनी की ऐसी अनमोल किरण बांटने वाले अनेक देशभक्त हुए जिनके अथक प्रयास से अंततः देश आजाद हुआ। उदारवादी विचारधारा के एक ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे फिरोज शाह मेहता, जिनकी पहचान एक राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध वकील, प्रखर वक्ता और पत्रकार के रूप में है। फिरोज शाह मेहता का जन्म 4 अगस्त 1845 को बंबई के एक प्रसिद्ध व्यवसायी पारसी परिवार में हुआ था, जिनके व्यापार की शाखाएं देश विदेश में फैली हुई थीं। एक संपन्न परिवार में पैदा होने की वजह से उनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई। उन्होंने बंबई में ही अपनी आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई लिखाई में वो बहुत तेज थे। एल्फिंगस्टन कॉलेज बंबई से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और सन 1864 में उन्होंने एमए की परीक्षा पास की। उन दिनों बंबई में मास्टर्स करने वाले वे पहले व्यक्ति बने। इसके बाद कानून की पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहां शिक्षा के दौरान टॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन और जे एस मिल जैसे पाश्चात्य विचारकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये वो समय था जब दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में पहले से ही सक्रिय थे। इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई के दौरान ही फिरोज शाह मेहता का संपर्क दादा भाई नौरोजी से हुआ। सन 1865 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और इसके बाद सन 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता और संसद को भारत की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों से अवगत कराना था। फिरोज शाह मेहता जब दादा भाई नौरोजी के संपर्क में आए तो उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके बनाए संगठन में शामिल हो गए। इस तरह उनके राजनैतिक जीवन का शुभारंभ हुआ। इस संगठन को सबसे अधिक समर्थन भारत में बंबई प्रेसिडेंसी में मिला था। यही कारण है कि 22 मई सन 1869 को दादा भाई नौरोजी ने बंबई में इसकी शाखा भी स्थापित की। फिरोज शाह मेहता जब वकालत की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी की बंबई शाखा से जुड़ गए, क्योंकि मातृभूमि की सेवा अब उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य बन गया था।

भारत लौटकर फिरोज शाह मेहता ने वकालत शुरू की। बंबई के कमिश्नर आर्थर क्रॉफर्ड का एक कानूनी मामले में बचाव करते हुए उन्हें बंबई की नगर पालिका में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यही कारण है कि सन 1872 में उन्होंने नगर पालिका को पुनर्निर्मित करने का फैसला लिया और इसकी रूपरेखा तैयार कर इसका प्रस्ताव रखा। इस वजह से उन्हें बंबई महानगर पालिका का जनक कहा गया। बंबई कॉरपोरेशन की उन्नति के लिए फिरोज शाह मेहता ने अनथक प्रयास किए। बंबई सरकार ने कॉरपोरेशन के संगठन के लिए एक बिल प्रस्तुत किया था जो अहितकर था, इसलिए बंबई की जनता ने उसका विरोध किया। इसे परिवर्तित करने के लिए बंबई के गवर्नर ने इस मसविदे को तेलंग और मेहता जी के पास भेज दिया। इस युगल मूर्ति ने सरकार तथा प्रजा दोनों के हित का ध्यान रखते हुए इस बिल को बड़ी सुंदरता से परिवर्तित किया। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था, जिसमें प्रावधान था कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान सभी का न्याय कर सकते हैं। इसके पहले भारतीय न्यायाधीशों को केवल भारतीयों के मामलों की सुनवाई करने का ही अधिकार था, लेकिन जो यूरोपीय भारत में रहते थे उनके मामलों की सुनवाई भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों ने इस बिल का भरपूर विरोध किया। उस समय फिरोज शाह मेहता ने भारतीयों के हित में इस कानून का जोरदार समर्थन किया। फिरोज शाह मेहता ने कानूनी पेशे में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी महान उपलब्धि रही सन 1861 के पुलिस अधिनियम के संबंध में संशोधित बिल को पास करवाना और सन 1889 में छावनी अधिनियम। अपने सामाजिक कार्यकलापों और गतिविधियों के कारण उन्हें अप्रतिम प्रसिद्धि मिली और लोग उन्हें बंबई का बेताज बादशाह कहकर पुकारने लगे। अपनी कानूनी विशेषज्ञता के चलते उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को पटकनी दी। कई अवसरों पर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और सुप्रसिद्ध नेताओं को कानूनी सलाह दी और कठिन मुकदमों से बरी करवाया। फिरोज शाह मेहता ने कभी सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार से लड़ाई नहीं की, बल्कि वे कानूनी दांवपेच के जरिए ब्रिटिश शासन को परेशान करते रहे। एक न्यायवेत्ता के रूप में उन्होंने अपूर्व ख्याति अर्जित की, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए न्याय की मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण नहीं किया।

थी तथा इसके माध्यम से लोगों के अंदर राजनैतिक चेतना पैदा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिरोज शाह मेहता सन 1886 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने तथा 1893 में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च विधान परिषद के लिए उन्हें चुना गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्ण नीतियों का विरोध वो जीवन भर करते रहे।

फिरोज शाह मेहता ने बंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में काउंसिल में होने वाली बहसों में प्रखर वक्तव्य दिए। वो ब्रिटिश सत्ता की आंखों में आंखें डालकर उसे लताड़ने की हिम्मत रखते थे, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें बंबई का शेर कहा। उनकी प्रेरणा और प्रयास से

गोपाल कृष्ण गोखले का प्रवेश भी इस परिषद में हुआ था और तभी वो ऐतिहासिक वॉकआउट का किस्सा हुआ जो उन दिनों अत्यधिक चर्चित हुआ। दरअसल किसानों से भूमि अधिकार छीनने के लिए प्रस्तावित एक बिल पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान उन्होंने बिल की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि ब्रिटिश हुकूमत एक ऐसा बाप बनती जा रही है जो माँ से कहती है कि बच्चों को गरीबी में भी जिंदा रखो, जबकि खुद वो अय्याशी करने में मगन है। उन्होंने गरजते हुए कहा, एक भारतीय किसान के जीवन में क्या है? मिट्टी के कुछ नए बर्तन, कुछ जंगली किस्म के फूल, देहाती टमटम, पेट भर खाना, रद्दी सा पान सुपारी और कभी कभी भड़कीले चांदी के गहने, यही वो चंद खुशियां हैं जिसे वो त्योहार के मौके पर महसूस करता है। उसकी जिंदगी सुबह से शाम तक एक थका देने वाले श्रम की अटूट कड़ी है। इसके बाद सरकार बहुमत के बल पर विधेयक पास करने पर अड़ गई। तब फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। ये अभूतपूर्व था। उस वक्त एक अखबार ने लिखा कि इन सदस्यों से फौरन इस्तीफा लिखवा लेना चाहिए। फिरोज शाह मेहता महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट और पशु बलि आदि का कड़ा विरोध किया और किसानों को उनके अधिकार दिलवाने के लिए बहुत प्रयास किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उनका संबंध उसकी स्थापना के समय ही हो गया था। उस समय के अनेक नेताओं की भांति फिरोज शाह मेहता भी नरम विचारों के राजनीतिज्ञ थे। सन 1890 में उन्होंने कलकत्ता में हुए छठे अधिवेशन की अध्यक्षता की और सन 1907 के सूरत अधिवेशन में भी वो ही अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीयों को सामाजिक और राजनीतिक विचारों का बोध करवाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी काफी जोर दिया था। सन 1910 में वो बंबई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। सन 1911 में उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में योगदान किया जो भारतीयों द्वारा वित्त पोषित तथा नियंत्रित था। फिरोज शाह मेहता ने सन 1913 में द बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अखबार का प्रकाशन भी आरंभ किया था। इस दैनिक पत्र के माध्यम से उन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए अहिंसात्मक तरीके से लड़ने के लिए प्रेरित किया था। आगे चलकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में इस पत्र की बड़ी भूमिका रही। पांच नवंबर सन 1915 को देश की सेवा करते हुए ही उनका देहावसान हो गया। वो अपने समय के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिनका जनता और अंग्रेज सरकार दोनों बराबर सम्मान करते थे। ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें सर की उपाधि से विभूषित किया था। फिरोज शाह मेहता हमेशा संवैधानिक तरीकों से आजादी पाने की दिशा में प्रयत्नशील रहे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई कानूनी नीतियां बनाई और अलग तरीके से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। जीवन भर भारत की आजादी का स्वप्न संजोने वाले ऐसे महान देशभक्त को हमारा कोटिशः नमन।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।
1: ये वतन का राग।
2: सन 1972 5 जून से 16 जून स्टॉकहोम स्वीडन विश्व पर्यावरण सम्मेलन 119 देश एक ही पृथ्वी का सिद्धांत और फिर जन्म हुआ विश्व पर्यावरण दिवस का 5 जून 1973 पहला विश्व पर्यावरण दिवस।

लेकिन अब बढ़ रहा है धरती का तापमान, कट रहे हैं घने जंगल, लुप्त तो हो रही है प्रजातियां, प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण, जल रही है धरती, तप रहा है आसमान और पिघल रहे हैं हिमखंड। जी हाँ, यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन न रहेंगी प्रजातियां, न बचेंगे जंगल, न होगी हरियाली और न होगा जल और न ही रहेगा जीवन, क्योंकि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण कैसे कर रहा है आपको प्रभावित, आइए हम बताते हैं। दरअसल पृथ्वी के सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं तथा विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे से प्रभावित होता है। इसीलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि पृथ्वी की इन सभी वस्तुओं के बीच आवश्यक संतुलन को बनाए रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने की स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन मानव और अन्य जीवों के पास न तो लेने के लिए शुद्ध प्राणवायु है, न ही स्वच्छ जल और न ही वो मृदा जिस पर उगे अनाज से मनुष्य अपना पोषण कर सके। और इसके साथ ही बढ़ रहा है मानव जीवन के प्रदूषित होने का खतरा। इन सब के उपायों के तौर पर हम सभी को अपने स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा ताकि प्रकृति शुद्ध और हम स्वस्थ रह सकें। आइए जानते हैं कैसे। अधिक से अधिक पौधारोपण करें, कचरा व गंदगी न होने दें, जल व्यर्थ न बहाएं, न ही प्रदूषित करें, अनावश्यक बिजली न जलाएं, पॉलिथीन का उपयोग न करें, वर्षा के जल का संरक्षण करें और ध्वनि प्रदूषण न करें।

नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर निधि गुलाटी रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखने के अंतर्गत आप तक लाया गया है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। आज का मेरा विषय है लू लगनाई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट स्ट्रोक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाहर बहुत गर्मी हो रही है, लू चल रही है। लू क्या होता है? लू गर्म हवाएं होती है, और हम अगर ज़्यादा देर गर्मी में या धूप में रहते हैं तो हमें लू लग जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी लू लगने के क्या लक्षण होते हैं और कैसे बचाव कर सकते हो और क्या उपाय होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि लू लगना क्या होता है या हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि तापमान में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और इसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, गर्मी का मौसम साल का सबसे कठिन मौसम होता है। हालांकि हर कोई अपने आप को इसके लिए तैयार करता है, लेकिन ये गर्मी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर भी आती है। सबसे प्रमुख हीट स्ट्रोक होता है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। जब कोई इंसान ज्यादा देर तक धूप में या गर्मी में रहता है, उसके शरीर का जो तापमान होता है 102 या 104 डिग्री जब पहुंच जाता है, तो इसे हीट स्ट्रोक का लक्षण माना जाता है। हीट स्ट्रोक आमतौर पे तब होता है जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है और पसीना आना भी बंद हो जाता है। सामान्य लक्षणों में घबराहट, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी का लक्षण दिखते हैं। बेहोशी को पहला लक्षण माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ और लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, सिर घूमना, गर्मी के बावजूद पसीने न आना, लाल गरम और सूखी त्वचा होना, मांसपेशियों में कमजोरी होना, उल्टी होना, धड़कनों का तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, घबराहट और बेचैनी होना। श्रोताओं, अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पे हमें क्या करना चाहिए। हीट स्ट्रोक से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं मिलता है, तब तक उसको ठंडी जगह में यानी कि पंखे के नीचे रखना चाहिए। पैरों को ऊपर करके रखें। यदि इंसान होश में है तो उसे पानी पिलाएं। धीरे धीरे शरीर को बर्फ के या ठंडे पानी की पट्टियां करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या होते हैं। अगर आप कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उससे पहले और उसके बाद पानी पिएं। हमें कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास या 2 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में अगर ज़्यादा पानी पियेंगे तो अच्छी बात होती है। ठंडे पानी से नहाएं, हल्का व पौष्टिक खाना खाएं, जैसे कि ककड़ी, तरबूज, नारियल, खरबूजा, बेल को अपने आहार में शामिल करें। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहने। ज्यादा देर तक बाहर रहने पर शरीर और कपड़ों पे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं आप। छाता या टोपी का उपयोग करें। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि हमें कोई काम नहीं करना चाहिए बाहर जाकर, जब तक वो जरूरी ना हो। बच्चों को और बूढ़ों को अगर कोई डिहाइड्रेशन क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हो तो इसका ध्यान रखना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमें ORS का घोल देना चाहिए। अगर वो ORS का घोल आपके पास नहीं है तो नमक और चीनी का घोल बनाकर बच्चों को और बूढ़ों को और आप भी ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। श्रोताओं, हमें गर्मियों में अपने आहार का ध्यान रखना चाहिए। हल्का खाना चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस गर्मियों में
अपना, अपने परिवार का, उन सब का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं वीर क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर जी को।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंगारों पर चलना होगा, युग में परिवर्तन लाने को, झंझावातों के आघातों में स्वच्छंद गीत गाने को। पराधीनता के उस दौर में अंगारों पर चलने वाले तमाम कठिनाइयों और खतरों के बावजूद बुलंद स्वर में स्वतंत्रता के गीत गाने वाले अनेक क्रांतिकारी हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की बदौलत भारत भूमि स्वाधीन हुई। ऐसे ही महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा राव सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर उनके छोटे भाई थे और दोनों ही भाइयों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई थी। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून 1879 को नासिक के निकट भागुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर थे और एक छोटी बहन थी मैनाबाई। बाबा राव का बचपन भागुर गांव में ही बीता। शुरुआती शिक्षा के दौर में बाबा राव का मन औपचारिक पढ़ाई से अलग हटकर धर्मयोग और जप तप में लगने लगा। वो लगातार इन विषयों को पढ़ने लगे और इन विषयों के जानकार जब पधारते तो उनसे मिलकर ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। उधर पिता दामोदर पंत सावरकर की देखरेख में बाबा राव ने तलवार और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी मिल गया। पिता के सानिध्य में ही उन्होंने तप और अध्ययन का गुण पाया था और उनका मन घर छोड़कर संन्यास लेने का बनने लगा था। इसी बीच प्लेग फैलने के कारण उनके पिता का निधन हो गया। इसके 7 वर्ष पूर्व माँ का भी महामारी में देहांत हो चुका था। घर की परिस्थितियों और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण बाबा राव ने मैट्रिक तक की पढ़ाई ही की, लेकिन योग और चिकित्सा विज्ञान में गहरी रुचि होने की वजह से बाबा साहब ने स्वाध्याय किया तथा आगे चलकर उन्होंने स्वयं कई तरह की दवाइयां भी बनाई। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिष शास्त्र तथा वेदांत का भी गहरा अध्ययन किया। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। वो न केवल अच्छा गाते थे बल्कि तबला और सितार बजाने में भी सिद्धस्थ थे। सन 1896 में गणेश दामोदर सावरकर का विवाह सम्पन्न हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी का नाम यशोदा रखा। उनकी 2 संतानें हुई, लेकिन वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकी। देश के हालात उन्हें परेशान करते थे और वो आजादी के लिए क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते थे। उसी समय सन 1899 में तात्या राव और उनके दोस्तों ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। जब गणेश दामोदर सावरकर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने उस संगठन के लिए काम करना आरंभ कर दिया। इस तरह अटल संकल्प के साथ उनका क्रांतिकारी जीवन आरंभ हो गया।

क्रांतिकारी दल किसी भी नए सदस्य की भर्ती से पहले उसकी मानसिक तत्परता और सर्वस्व बलिदान की इच्छा शक्ति को परखते थे, जिसमें गणेश दामोदर सावरकर खरे उतरे। 1 जनवरी सन 1900 को गणेश और विनायक दामोदर सावरकर ने एक संगठन खुले तौर पर शुरू किया, जिसका नाम था मित्र मेला। यही संगठन आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी बना, जिसका संबंध नासिक षड्यंत्र केस से था। इस संगठन के कार्यवाहक गणेश दामोदर सावरकर ही थे। गणेश दामोदर सावरकर ने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती जैसे अनेक अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों और काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया। साथ ही युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई विभूतियों को नासिक में आमंत्रित किया। इसके साथ ही गणेश दामोदर सावरकर ने संगठन के लिए पैसा जुटाने का काम अपने हाथ में ले लिया था, ताकि उससे बंदूकें, पर्चे आदि खरीदे जा सके और देश की आजादी की अलग जगी रहे। इसी बीच उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर, जो कि वीर सावरकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए लंदन चले गए। लंदन में वकालत के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उन्हें छात्रवृत्ति दी, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले छात्रों के परस्पर मिलन एवं विविध विचार विमर्श का एक प्रमुख केंद्र था। लंदन में श्यामजी से मिलकर वीर सावरकर ने इस क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार कर विदेशों से भी मदद ली। छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर कविताएं, भाषण और लेख आदि लिखकर समुद्र के रास्ते भारत भेजा करते थे और गणेश दामोदर सावरकर इन्हें संपादित करके प्रकाशित करवाते थे। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था, लेकिन गणेश सावरकर इस कार्य में निरंतर संलग्न रहे। गणेश दामोदर सावरकर स्वयं भी एक उम्दा लेखक थे। उनके लेखन में देश प्रेम और शोध साफ देखा जा सकता था। बहुत शोध के बाद उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त न हो जाए और आंदोलन ठप न हो जाए, इस विचार से उन्होंने दुर्गानंद के छदम नाम से ये किताब लिखी थी। हालांकि इस बात की भनक अंग्रेजी हुकूमत को बहुत जल्द लग गई, किताब बैन कर दी गई, रातों रात सारी प्रतियां दुकानों से उठा ली गईं और गणेश दामोदर सावरकर की खोजबीन का काम शुरू हो गया। उधर लंदन में रहते हुए वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर लिख चुके थे। इस तरह दोनों भाइयों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर थी, लेकिन आजादी के इन दीवानों की नजर तो भारत देश की दुर्दशा पर थी, इसीलिए वो क्रांति पथ पर निर्भय आगे बढ़ते रहे।

सन 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हारे नामक क्रांतिकारी ने मौत के घाट उतार दिया। नासिक षड्यंत्र कांड ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। देश भर में इस कांड की चर्चा हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मालूम हुआ कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे का अभिनव भारत सोसाइटी से संबंध है। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई। अनंत लक्ष्मण कान्हारे के साथ कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे सहित 34 से अधिक लोग पकड़े गए। उधर गणेश दामोदर सावरकर देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखने के आरोप में सन 1909 में ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। चूंकि वो अभिनव भारत सोसाइटी से संबंधित थे, इसीलिए नासिक षड्यंत्र केस से जोड़कर उन्हें देखा जा रहा था। जांच में ये तथ्य सामने आया कि अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने जिस पिस्तौल से जैक्सन की हत्या की थी वो ब्राइनिंग पिस्तौल थी, जो लंदन से भारत भेजी गई थी। एक नहीं बल्कि 20 पिस्तौलें आई थीं। इस तरह विनायक दामोदर सावरकर का नाम सीधे तौर पर उस कांड से जोड़कर देखा जाने लगा और वो लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। लंदन से वो भारत लाए गए और मुकदमा चला। अनंत लक्ष्मण कान्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे का हत्याकांड में सीधा हाथ होने के कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया, जबकि हथियार उपलब्ध कराने के जुर्म में वीर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान की सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। 8 अप्रैल सन 1911 को कालापानी की सजा सुनाई गई और वीर सावरकर को जेल की तीसरी मंजिल की छोटी सी कोठरी में रखा गया था। कोठरी के कोने में पानी का घड़ा और लोहे का गिलास था। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां थीं। जेल में क्रांतिकारियों से कड़ा परिश्रम करवाया जाता था। नारियल छीलकर उसका तेल निकालना होता था। कोल्हों में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोता जाता था। साथ ही जेल के बाहर लगे हुए जंगलों को साफ कर दलदली भूमि और पहाड़ी क्षेत्र को समतल भी करना होता था। रुकने पर बैंत और कोड़ों से पिटाई की जाती थी। ऐसे कठिन हालात में अंडमान की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर दिन काट रहे थे। गणेश दामोदर सावरकर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। आजीवन कारावास की सजा देकर इसी जेल में उन्हें भेज दिया गया था, किंतु दोनों भाई इस बात से अनभिज्ञ थे। गणेश दामोदर सावरकर सन 1921 में वहां से भारत लाए गए। वो एक वर्ष साबरमती जेल में बंद रहे और सन 1922 में रिहा हो गए। उनका स्वास्थ्य जेल यातना के कारण बहुत बिगड़ गया था, लेकिन उन्होंने क्रांति की लौ जलाए रखी। उनका लेखन और प्रकाशन का काम जारी रहा। अब वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आ गए, जिन्होंने देश को एक राष्ट्र एक सूत्र में पिरोने की महत्वपूर्ण पहल की। सन 1925 में गणेश दामोदर सावरकर के लेख राष्ट्र मीमांसा ने इसे और बल दे दिया। निरंतर राष्ट्र सेवा में रहते हुए गणेश दामोदर सावरकर ने 16 मार्च सन 1945 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्रभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

मैडम ने पहना है, ऐसा स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट वर्ड का मैंने कॉइन किया है, मेरे को वर्ड कॉइन करना अच्छा लगता है। सस्टेनेबल, मेजरेबल, अचीवेबल, रिट्रीवेबल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। सस्टेनेबल, ग्रीन लाइब्रेरी लेके बहुत बातें हो रही है। आप लोगों को मालूम है कि इफ्ला ने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंटेशन भी रिलीज किया है, वी हैव टू टॉक अबाउट ग्रीन लाइब्रेरी। सो मच ऑफ रिन्यूअल एनर्जी इज यूज इन द ग्रीन लाइब्रेरीज। हमने अपनी HDFC लाइब्रेरी के अंदर जो है सेंसर बेस्ड लाइट्स लगाई है। अगर इस रूम के अंदर कोई नहीं बैठा है, नोबडी सिटिंग हेयर इन दिस रूम, तो क्या ये लाइट्स जलनी चाहिए? वी शुड सेव दिस एनर्जी ना। तो वो कैसे करेंगे? पेपरलेस लाइब्रेरी हमने स्टार्ट किया है अपने HDFC लाइब्रेरी में। मैक्सिमम कम्युनिकेशन हमारी ऑनलाइन में हो रही है। फ्यूचरिस्टिक, देयर आर केस स्टडीज, आई कुड हैव प्रेजेंटेड दोस केस स्टडीज। वहां पर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का एप्लीकेशन किया जा रहा है, और वो भी हायर एजुकेशन सेक्टर में। एंड द थर्ड बट नॉट द लीस्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑलरेडी सर ने हमें, बहुत लोगों ने बताया, SDGs को अगर आप नहीं बताएंगे तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते आज के डेट में। SDGs इज मस्ट। और SDG का जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, जो सारे गोल्स हैं, मैं कई गोल्स पे काम किया हुआ है मैंने। एक छोटा सी चीज आपको मैं बताता हूं। आई वॉज वर्किंग इन VHEI, वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और हम वहां पर एक छोटा सा न्यूज लेटर निकालते थे, हमारी चिट्ठी आपके नाम, हमारी लाइब्रेरी से, और वो 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होता था। तो आई वॉज वर्किंग विद दी सहारिया ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश की सहारिया ट्राइब्स के साथ जब मैं काम किया वहां पर, तो वहां पर एक चाय वाला जो है वो शाम के टाइम एक छोटा सा अपना एक वो कैंडल टाइप लेके बैठता था और गांव वालों को साथ में बिठा देता था। और साथ में वो जो हमारी चिट्ठी आपके नाम की, हम जो डॉक्यूमेंट उनको देते थे, जो पतला सा न्यूज़लेटर देता था, उसको पढ़ के सुनाता था। और उसमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें होती थी? एनवायरमेंट की नॉलेज देते थे हम लोग, पर्यावरण की नॉलेज देते थे, पानी का नॉलेज देते थे, ऐसे बहुत सारी चीजों की नॉलेज हम उनको डिसमिनेट करते थे। हेल्थ का, स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा देते थे, क्योंकि ये जो गर्मी का टाइम आ रहा है, बरसात का टाइम है, ये सबसे ज्यादा बीमारियों का जन्म लेता है। इन चीजों की हम देते थे। सो वी स्टार्टेड हिटिंग ऑन दीज एरियाज, एंड इनफैक्ट आई हैव डन क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिवली ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मेजरेबल इज द लाइब्रेरी एनालिटिक्स। आज के डेट में इतनी रिसोर्सेस हम खरीदे जा रहे हैं, लेकिन क्या उसकी इस्तेमाल प्रॉपर हो रही है? कितने किताबें लोगों ने रैक से निकाल के खोल के देखा है? लोग तो डिजिटल वर्ल्ड में घूम रहे हैं, आजकल के बच्चे भी, जेन सी जनरेशन है, वो डिजिटल वर्ल्ड में है। कितने किताबें रैक से निकाल के देखते हैं? टीचिंग एनालिटिक्स, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, रीड इंडिया जय के, जय इज अ फाउंडर ट्रस्टी, गीता मैम है, मैम प्लीज आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट एज एन एक्सटर्नल एडवाइजर, कि अगर आप कोई ऑनलाइन में लाइब्रेरी साइंस के बच्चों का कोर्स करवाना चाहते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। आई हैव गॉट 40 रिसर्च वीडियोज इन स्वयं पोर्टल। मैंने खुद ट्रेन किया है, मैं हार्डकोर ट्रेनर, आई थिंक वन ऑफ माई स्टूडेंट मे बी स्टडिंग देयर। ऐसे कई लोगों को किया है, और आज जब हम लोगों को कोई लाइब्रेरी इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है, आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ अ पर्सन टू कम एंड वर्क विथ मी, बिकॉज देयर इज अ गैप एंड वी ऑल ऑफ अस हैव टू मिनिमाइज दैट गैप। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज सेंटिमेंट एनालिटिक्स। जो भी चीज हम खरीदते हैं, जो भी चीज हम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सेंटिमेंट एनालिटिक्स, उसका आपका जो फीडबैक है वो जानना बहुत जरूरी है, वो आपने कैसे किया है। एंड इज अ वेरी बेसिक मेथड, आई कैन ट्रेन पीपल ऑन दीज एरियाज। अचीवेबल, दैट इज बेसिकली जितना हम अभी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आइसबर्ग मेटाफर, नॉलेज मेटाफर है,

एक्चुअल सेंस में अगर देखा जाए, सिंस आई हैव थ्रू आउट माय लाइफ आई वर्क्ड ऑन केम सिस्टम्स, आई हैव इंप्लीमेंटेड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ केम सिस्टम्स. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ केम. इनफैक्ट इन एक्सएससी और पीडब्ल्यूसी आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. Even in Ernst & Young, McKinsey, a lot of sessions I have taken on KM systems implementation. I'll give you an example. I was working in the in Bhopal, in one of the leading multinational NGO there. Unke wahan par mere ko, there was something called as State Climate Change Knowledge Management System banana tha, under National Action Plan on Climate Change, NAPCC ke under me. हमें स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था. सो आई वेंट देयर अलोंग विद माय क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट. हमने वहां पर बनाने के लिए गया. जब मैं वहां बनाने के लिए गया तो देयर वाज अ स्टेक होल्डर वर्कशॉप वाज टेकिंग प्लेस एंड सी हाउ डू वी नो कैन कैच द टैसिड नॉलेज देयर. वहां गांव के लोग आए हुए थे. उन्होंने हम लोगों को वाटर लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था कि कहां पर पानी का कैसा लेवल है, उसका ग्राउंड लेवल पे कैसा है, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत खपत है, इतनी पानी मिलती नहीं है, बहुत जमीन के नीचे चला जाता है, बहुत ड्रिलिंग करनी पड़ती है तब जाके पानी निकलता है. देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम विद वाटर. जब हमने वहां के गांव के लोगों से, कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला हम आपको मट्टी उठा के बता सकते हैं कि यहां पर आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड दी एज एंड यू वॉन्ट इमेजिन, I mean, I'm having my goosebumps. That guy, when he picked up the soil and said, "Yahan par kitna pani, kitne gradient mein aapko mil jayega," he said that. I mean, this is unimaginable. And how do we capture that knowledge? That is actually the below the surface. We don't know these techniques. In fact, some of these areas I have also worked extensively in the northeastern belt. With all the nine sisters, जहां पर इस तरह की नॉलेज को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का बहुत प्रयास किया जा रहा है, बहुत प्रयास किया जा रहा है. सो बेस्ट पॉसिबल वे टू रिट्रीव, सो रिट्रीवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कितना बढ़िया आप रिट्रीव कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेस की तो कमी नहीं है. लेकिन आज के डेट में एक्चुअल रिसोर्स जब आपको निकाल के ले आना है, समुन्द्र में से दो बूंद पानी आपको निकाल के ले आना है, क्या आपके पास उस तरह का डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है विच कैन टेक आउट दैट एक्चुअल इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्चुअल, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग. मशीन लैंग्वेज को यूज करके कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग में उस इंफॉर्मेशन को निकाल के ले आना. इनफैक्ट यू we are working towards that particular platform and very soon we are going to have that in our own library also. The next component is transformational. Now when I talk about transformational, this is a very big word. What is that transformational? हमें अपने आप में एक बार देखना चाहिए. हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटलाइजेशन और वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कौन सी एरिया पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम? डिजिटाइजेशन, आपके पास इतने सारे पेपर्स हैं, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया डिजिटल में, हो गया आपका. डिजिटलाइजेशन इज अ प्रोसेस बेस्ड and digital transformation takes place in the entire organization where everything goes into the digital framework, which is a very long way journey and it is not a very easy thing also. I was reading this book 4.0 Insight and one of the important area was knowledge 4.0. aaj ke date mein ek naya terminology, ye once again sa jargon, lekin hum sab karte hain yahan par baith ke. main piche se bahut sari saman kharida hai aaj maine. I bought many things for my wife, my daughter, my family members. जो चीज मेरे को बाहर पीछे देखने को मिला, and I was completely flabbergasted after seeing that. Co-creative, collaborative, comprehensive, problem-solving, and simulation analytics based. जब तक आप करोगे नहीं, एक धागा को
कैसे अगर आप वो मूवीज को देखेंगे जो WWE का मूवीज, जैसे एक धागा को कितना बारीक से वो उसको डाल रहे थे और उसके अंदर उसको स्टिचिंग कर रहे थे, ये प्रोसेस को कोई अगर नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा. इनफैक्ट अंडर द एनईपी 2020 इन माय पास्ट लास्ट ऑर्गेनाइजेशन एट NIMS यूनिवर्सिटी, द फैशन डिपार्टमेंट वॉज अंडर मी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल फैशन where different kinds of reused materials in the fashion industry, how they can be further taken to a next level. I worked on that level also. So, if I look at these five laws of library science, which was coined by S.R. Ranganathan, and I relate them with artificial intelligence, I find that there is a very correlation with that. Starting from books are for use, every reader, his or her book, every book its reader, save the time of the reader, and library is a growing organism. But what is most important today, we need to empower our information professionals. Hamare jitne bhi information professionals, library information professionals hai, unko sahayata chahiye, kaise wo practically apne systems mein jaye aur wahan seekhe. और वहां पर इंप्लीमेंट करें चीजों को, ये हमें चाहिए. लाइब्रेरी हैज कम अप ऑन अ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लाइक डेटा माइग्रेशन कंप्लीटली अ डेटा बेस्ड, इट इज अ कंप्लीटली एन ऑटोमेटेड बेस्ड. ये बहुत टेक्निकलिटी है, इसके अंदर हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है, हम कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट नहीं है. शेल्फ मैनेजमेंट, फॉर्म्स प्रोसेसिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर गई है. जैसे स्मार्ट लाइब्रेरीज की मैंने बात की, इसी तरह पेट्रॉन्स विल एंगेज ऑन द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस. मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे आप लोग फेसबुक या किसी भी चीज पे या अमेजॉन में कभी भी कोई किताब खरीदते हैं, मैं एक किताब को खरीदा तो मेरे नीचे जो है वो चार पांच और किताबों का रिकमेंडेशन दे देते हैं कि आप इन किताबों को भी ले सकते हैं. हाउ डू आई मीन साइकोलॉजी, how they read our psychology and gives us from our own request that what are the things I should take later. Aur wo recommendations automatically mera usage ko badhana ke koshish karega. I'm working on this with my team on this. User services like chatbots, we are going to implement very soon on this. AI applications, and there are many more things. I mean library analytics mein agar main, jaise for example if I want to look at मेरा मिसिंग बुक कहां गया, अभी तो रैक में था, कोई लेके चला गया, कहां गया है, हाउ डू आई ट्रैक दैट. देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच हैज कम अप, वी आर वर्किंग ऑन टुवर्ड्स दैट आल्सो. लाइक आई एम अ यूजर ऑफ अ बुक, मेरे को ये किताब चाहिए, आई रिजर्व दैट बुक फ्रॉम माय ओन काउंटर, मेरे पास मेरे मोबाइल पे मैंने उसको वो किया. एंड देयर इज अ लाइब्रेरी GPS सिस्टम वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट. Will accordingly, it will through that technology, it will take me to that rack and will tell me your book is here, so you can get it issued. It's a library GPS system. These kinds of technologies are available, but it is the right time to implement or not. But most of these technologies are international, but what we need is basically an indigenous technologies and all. We need to have an indigenous technologies. Same with information retrievals. I mean, I can keep on going on. These are all AI-based things. It takes a lot of time for me to describe. Data analytics has come up in a big way for decision-making process. Collaboration and knowledge sharing. Aaj ke date mein main kahe silos mentality nahi chalta hai knowledge 4.0 mein. Ye mera hai. Main apne computer mein rakhunga, main share nahi karunga. Ye nahi chalega. I know how the corporate sector like Accenture and Ernst & Young and how they work. I have seen their work. Even their computers are also through their server. Their laptop is connected to the server. Jo bhi wo karenge, wo system pe kaam karenge. Aur wo sara kuch wahan pe capture hota ja raha hai. Online mein. So nothing is yours. It is all collaborative. Anybody can have a look at it. I have seen their systems. AI for cataloging and classifications. Automatically classified systems have already been, there are several leading universities, international universities, they have already implemented such kind of a thing. We are also trying to look at it on these areas. AI for predictive analysis,
मेरा एक्स प्रोफेसर वो हमेशा इस तरह की किताबें इस तरह के रिसोर्सेस मांगते हैं, वो आगे जाके भी इस तरह का मांगेंगे. हु डज दैट प्रेडिक्शन? सो देयर आर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हैज कम अप ऑन एआई बेस्ड. वो आगे क्या मांगेंगे उसकी एनालिसिस पे हम जा रहे हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड देयर आर टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजिकल वन कॉम्पोनेंट इज दैट देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट. क्या है कि हर कोई टेक्नोलॉजी नहीं जानता. That is the biggest thing. So what for that? What is the solution? We have a solution like Read India. They can launch a what is called as a technology as online skill based programs. You can earn a revenue from that too. But one of the important thing is technology obsolescence. 2 saal kaam kiya, 330 saal pata chala uska naya version aa gaya. So that's a very big problem. So technological constraints, and there is a privacy issues are also there, ethical issues are there. Jitna digital hota ja raha hai utna jyada aapki ethical issues mein questions raise ho raha hai, and digital rights management wagera pe bhi bahut jyada questions raise ho raha hai. Social media is a very big thing, all of you know, you are all there. So there was a, I just want to end here, there is a IFLOS statement on libraries and artificial intelligence. In fact, on just a few weeks back when Geeta was also there, so we organized a open access where IFLA president was there, Vicky MacDonald. So what she thing is that the adoption of the artificial intelligence, that is AI and machine learning, in private and public spheres is rapidly growing. The policy statement aims to outline the key consideration for the use of these technologies in the library sector and suggest the roles which libraries should strive to take on in a society with a growing AI integration. AI integration is a very, very important thing. So thank you very much. Thanks for your patient listening.

0: I would like to call Dr. D.V. Singh, former chief librarian, Delhi University, for sharing his views.
1: पहले तो धन्यवाद. मेरा टॉपिक है जो मुझे बताया गया वो है ट्रांसफॉर्मेटिंग रोल ऑफ द लाइब्रेरीज. एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, वो कैसे होता है पता नहीं चलता, लेकिन जैसे हम कई बार कहते कि पानी में आग है, कई लोग एग्री नहीं करते, लेकिन है. पानी को हमने रोका, हमने टरबाइन में डाला, इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, हीटर में लगाया, आग पैदा हो गई. कहां थी? पानी में. लेकिन हमने उस चैनल को क्रिएट किया, तो लाइब्रेरी भी ये काम कर रही है. जिन्होंने एटम बम बनाया था, दो लोग थे, एक आर्मी के जनरल थे. वैसे तो लोग कहते हैं कि अभी तक नहीं पता एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार, बट उन दो लोगों को माना जाता है, ओपेनहाइमर और वो दोनों ने कहीं लिखा है, मैंने किसी जर्नल में पढ़ा कि ये गलती हो गई, बट गलती लाइब्रेरी में बैठ के हो गई. क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वहीं देखते थे, वहीं से लाते थे, स्टडी करते थे, सोचते थे. और जब वो ड्रॉ किया, वो भी कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी में कि वर्ल्ड वॉर एटम बम से नहीं जीता गया, लाइब्रेरी से जीता गया. कि लाइब्रेरी में तय किया गया कि जापान के किस शहर में कितने बजे, क्योंकि डाटा वही था, उसका बम गिरा जाए. कहने का मतलब है यूज एंड मिस. अब बहुत सी बातें, लाइब्रेरी तो बहुत कुछ करती है. पता नहीं आप लोग कितने जानते हैं, स्वेतलाना का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े डिक्टेटर, वर्स्ट डिक्टेटर ऑफ दी नोन हिस्ट्री, उसका नाम स्टालिन था. उसकी एक लड़की थी, वो इंडिया आ गई, यहां ब्रजेश सिंह से शादी की, वहां नहीं मानी. बड़े उस डिटेल में मैं नहीं जाता. उसे पूछा, आप उसने स्ट्रेसफुल लाइफ में, जहां आपके पिताजी किसी पे विश्वास नहीं करते थे, आप एक शब्द विपरीत नहीं बोल सकते, आप सर्वाइव कैसे किए? बोले एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी. वो कैसे? कि बस मैं जाती थी लाइब्रेरी में, किताब पढ़ती थी, कुछ लिखती थी, और बस वहीं से मुझे स्ट्रेस मेरा निकल जाता.

करता था आग में सर्वाइव की, जिसका ले तो तय होगा कि लाइफ भी स्ट्रेस को खत्म करती है तो फिर इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी खत्म करती है। और आजकल तो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस है। शाम को देखो यहां चौराहे पे क्या हाल होता है, मेरी समझ में आता है आदमी दौड़ रहे हैं कि कीड़े मकोड़े दौड़ रहे हैं, ये कहां जाएंगे क्या होगा। मेरे गांव का आदमी आया बोला दिल्ली तो खाली हो जाएगी मां, क्योंकि इतने लोग दौड़ रहे हैं निकलने के लिए, तो कहां जाएगी ये दिल्ली। लेकिन कहीं कोई नहीं जाता, वहीं दिल्ली में है और यूं ही दौड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, बस एक ही बात कहूंगा, रंगानाथन जी ने 67 में वो लेक्चर कोई दिया था, वो मेरे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा था कि ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, लेकिन किस काम का, जो रिपीटेटिव नेचर की जॉब हो, बाकी ह्यूमन टच अगर चला गया तो लाइब्रेरी की इंतजार मत कीजिए, वो भी चली जाएगी, प्रोफेशन भी चला जाएगा। और हमने सरेंडर कर भी दिया इसी चक्कर में। रिपीटेटिव जॉब क्या है, क्लासिफिकेशन, वो आप नहीं कर सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कभी टच कर पाएगी, वो अलग बात है। कैटलॉगिंग कर सकते हैं, आपको इश्यू रिटर्न करना है कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज देनी है वो आपको केवल ह्यूमन टच के द्वारा देनी है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव इन नेचर है, वो क्वांटिटेटिव इन नेचर नहीं। एंड विच इज इन क्वालिटेटिव नेचर, इट रिक्वायर्स द ह्यूमन टच ऑल द टाइम। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मां भी पैदा कर देगी, लेकिन मां ने, मेरी मां ने जो मुझे छाती से लगा करके थपकी दी है और उससे जो मेरे अंदर इमोशंस डेवलप हुई है, वो मशीन उनको खत्म कर देगी और आदमी मशीन बन के रह जाएगा, उस तरफ मत जाए। डिटेल में पढ़ना है तो 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी नो हारी की किताब है, प्लीज डू रीड दैट बुक। हिस्टोरियन है, इसराइल के हैं, और टाइम गड़बड़ ना हो जाए तो टाइम बता दीजिए, कि ऑर्गेनाइजर की सबसे बड़ी समस्या समय होती है, और बोलने वाले की सबसे बड़ी समस्या भी समय की, उसे पता ही नहीं होता मैंने कितना खा लिया, उन्हें समझ नहीं आता कि कब चुप होगा, तो वो स्थिति ना पैदा हो। खैर, तो वो जो बात है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके फाइन, लेकिन एक सीमा से परे नहीं। ह्यूमन इज ह्यूमन, यू कैन नॉट ट्रीट ए ह्यूमन थ्रू द मशीन, मशीन कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन। डिटेल मैं नहीं जाऊंगा, बहुत जा सकते हैं, किताब बता दी और रेफरेंस लीजिए, उसको पढ़िए। अब लाइब्रेरी कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, वो घटना में बार बार सुनाता हूं, फिर भी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे जीवन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी जी की सेंटिनरी मनी थी 1969 में, तो हम अपने गांव में पढ़ते थे, शायद थर्ड फोर्थ में थे, और मेरे गांव में एक थोड़ी दूर पे मुल्ला जी कुछ कुरान शरीफ पढ़ाते थे, और वो आपने कभी देखना मदरसे में जाके कुरान शरीफ पढ़ने वाले को यूं यूं यूं यूं गर्दन करके वो लगे रहते हैं, रुकते नहीं, बस यूं यूं यूं, जो भी कुछ उनका है उस पर, मुझे कुछ आता भी नहीं तो मैं कमेंट भी नहीं करूंगा। तो सोचा यार ये सिर हिला हिला के इतनी बड़ी कुरान शरीफ याद कर लेते हैं, ये थोड़ी सी तो चीजें हैं जो मुझे एग्जाम में देनी है, मैं कैसे सीख लूंगा, क्योंकि इससे जल्दी सीखा जाता है। बच्चा था, एनालिटिकल एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वेद में तीन बात कही है, उसको बताते हुए आगे बढ़ूंगा। स्वर्ण मनन निधि ध्यास, सुनना, कभी आप किताब पढ़ते हैं तो आंख से सुनते हैं, तब कान से नहीं सुनते, आंख से सुनते हैं उस लेखक को, या आप मुझे सुन रहे हैं कान से सुन रहे हैं आप, तो मुझे सुनना है, उसके बाद विचार होना चाहिए, उसका मनन होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए, अन्य निधिध्यासन, तब उस पर आचरण होना चाहिए। क्योंकि बच्चा था, आंख से देख लिया, विचार नहीं कर सकता था कि विचारिक शक्ति उतनी विकसित हुई नहीं थी, और मैंने आचरण कर लिया। अब रिजल्ट क्या निकला, घर में सबने डांटा, पिटाई सिताई भी उन दिनों थोड़ा पीटना एक अधिकार और साधन समझा जाता था सुधार का, आजकल तो सजा का साधन है वो। वो कहते हैं इंग्लैंड में तुम अपने बच्चों को पीट दे तो जेल चला जाता है, वो अलग विषय है, सुना है सब, देखा भी है कई बार, नहीं माना। स्कूल में उस दिन सारे टीचर नहीं आए थे, तो हमें किताब दे दी, और किताब मैंने जब पढ़ी, बच्चों की किताब थी वो, आई थी उस समय सेंटिनरी ईयर में, पिक्टोरियल थी, तो उसमें लिखा था गर्दन हिला के पढ़ने से बुद्धि भी खराब होती है और आई साइट भी खराब होती है, और मैंने वो बंद कर दिया। तो किसका प्रभाव था, लाइब्रेरी की किताब। और मैं देख रहा हूं ऐसे बहुत से लोग जो बहुत गर्दन हिला के कुछ याद करते हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो पा रही दुनिया में, बहुत कोशिश हो रही है सारी दुनिया में, किसी का नाम तो मैं क्या लूं। तो लाइब्रेरी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और एक चीज मैं क्या बताऊं आपको, हिंदुस्तान है यहां उन चीजों पे बहुत खर्च कर देती है सरकार जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन पे विचार नहीं करते हैं, तो जानते नहीं या वो करना नहीं चाहते। वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इनिशिएट किया कि इंडिया का यूथ लीडरशिप सर्वे होना चाहिए, अप्रूव हुआ। होते आते 2009 में जाकर के ये काम एनसीईआर को, नेशनल काउंसिल इकोनॉमिक रिसर्च जो है आईटीयू पे, उसको दिया गया, और एनबीटी के कोलोबोरेशन में वो सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट 11 में आई। बहुत फैंटास्टिक रिपोर्ट है। अमेरिका में तो अल्टरनेटिव ईयर पर यूथ लीडरशिप सर्वे होता है, यहां तो एक ही बार हुआ। उसमें यही जो बात पहले कही गई, किसने कही थी कि जहां रीडिंग बढ़ी वहां पे क्राइम घटा, उसने यही बात कही कि जो जो एरिया डिस्टर्ब थे वहां रीडिंग जीरो थी, जिन एरिया में रीडिंग अच्छी थी वो एरिया कम डिस्टर्ब थे, और जहां पहले से रीडिंग हैबिट्स अच्छी थी वहां डिस्टर्बेंसेस कम हुए और सोशल लॉस कम हुआ। ये हमारी इंडिया की रिपोर्ट है, एनबीटी से मिल जाएगी, नेट पे भी पड़ी हुई है, इस पे काम होना चाहिए। सैंपल ही सही, इंडिया बहुत बड़ा है, हम किसी डिस्टर्ब एरिया में थोड़ा सा एक सैंपल कर सकते हैं। कई बार हमारे पास रिसर्च की थीसिस भी आ जाती है तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता, तो हम कहते यार ये क्यों नहीं करते, लीडरशिप सर्वे क्यों नहीं दे देते, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द मूच वाला, इन्फॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या क्या क्या, एक ही चीज रिपीट होती रहती है। मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल में क्यों रखते हो, लेट हैव द न्यू वाइन इन न्यू बोटल, अर्थात कुछ नए एरिया लेने चाहिए। जो हम बात करते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट तो नहीं हूं बट इसके फेवर में नहीं हूं। अनइंप्लॉयमेंट के बारे में एक चीज समझ लीजिए, उसकी एक सोशल कॉस्ट होती है। व्हाट इज दैट, ये जो आज चैन छीन रही है ना, आप थ्री व्हीलर में महिला का पर्स छीन लिया क्योंकि उसके पास जेब होती नहीं, उसके कपड़े कुछ इस तरह के हैं तो सब उसी में होता है, छीन के भाग गए। और जब वो पकड़े जाते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि अनइंप्लॉयड है। अब उस क्राइम को रोकने के लिए आपने पुलिस बढ़ानी पड़ती है, उस पुलिस के लिए आपको थाने बढ़ाने पड़ते हैं, कोस तो पे करनी पड़ती है। जैसे एक जोक भी और सच्चाई भी है, मेरे एक मित्र थे हरिद्वार में मैं पढ़ता था, बहुत विद्वान आदमी थे, सारे शास्त्र उनको, सच में मैं उनकी धूल हो जाऊं तो भी जीवन सार्थक समझू। एक लंगोटी खाली पहनते थे, पेड़ के नीचे सोते थे सर्दी में, अदरवाइज खुले में, एक टाइम किसी के घर जाके मिल गया, जो मिल गया वो उसने खा लिया, वो कोई संपत्ति नहीं थी। वो अमृतसर गए और उन्होंने कहा मैं माथा टेकूंगा गुरुद्वारे में और गुरु महाराज के यहां। जब गुरुद्वारे में गेट पे गए तो उन्होंने कहा भाई सिर पे कपड़ा रखो, उसने कहा कसम खाई है एक ही कपड़ा रहेगा, चाहे इसको यहां बंधवा लो चाहे इसको यहां बंधवा लो, गुरुद्वारे से रोक नहीं सकते, जाऊंगा मेरे भी गुरु हैं, चलो अलग विषय। तो कहने का मतलब है, तो जस्ट हंसने के लिए थी कि एक ही रास्ता है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट पे कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके सोशल कॉस्ट लेस कर लो, ये आपका डिसीजन है। इसलिए लाइव में कंप्यूटराइजेशन की उतनी सीमा रखो जितना जरूरी है, किसी की आंख बंद कर करके पूंछ पकड़ करके नदी पार नहीं होती, नदी तैरने से पार होती है। आगे एक चीज मुझे आज बहुत अच्छी लगी, एक दो चीज मैं लेके जाऊंगा, एक दो उतनी जरूरत नहीं है जितना उनके लेने की जरूरत है, क्योंकि मैं वो चीज यहां खरीदूंगा तो कहीं दूर में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो हैव नोट्स की कैटेगरी में आता है उसे कुछ रोजगार मिलेगा, उसको साहस मिलेगा, उसको उत्साह मिलेगा। मैं मंदिर मंदिर में दान नहीं देता, मैं रस्ते में भिखारी को तो बिल्कुल भी नहीं देता हूं, और अगर किसी को रेफरेंस मिल जाए मैं रेफरेंस देता हूं। आर्टिकल सब पढ़ना, 1980 में लिस्टेड वीकली एक मैगजीन आती थी, उसमें एक आर्टिकल आया था जेआरडी टाटा और पीएन अक्षर का, पीएन अक्षर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इफ यू गिव टू वन बैगर यू क्रिएट 10 मोर, आफ्टर रीडिंग दैट आई हैव स्टॉप्ड इट। हर चौराहे पर 10 खड़े किसको किसको दीजिए तो वो गलत है। तो मैं कहता हूं डोंट गिव ए ब्रेड टू ए पर्सन, गिव देम द आर्ट टू अर्न योर ब्रेड एवरी डे। रीड इंडिया उस काम को कर रहा है, एक दिन रोटी खिला दी कब तक, लेकिन स्किल दे दी।
वो स्किल से रोज आपकी रोटी खाएगा। एक भंडारा करते हैं मुंह चाहते आपने 100 लोगों को खाना खिला, बड़ा काम किया, और जब खिला के चले गए वहां पुतल पड़ी है, यहाँ ग्लास पड़ा है, यहाँ कुत्ते चाट रहे हैं, यहाँ मक्खी घूम रही है, हमने पुण्य का काम कर लिया। पुण्य का काम होता है जो दूसरे को कभी भी कष्ट ना दे। वो पुण्य का काम नहीं हो सकता किसी को कष्ट दे के आप कोई कार्य करें। तो एनवायरमेंट इतना सा भी ध्यान दे ले तो काम चले। मैं कई बार देखता हूँ अच्छी खासी गाड़ी है, मर्सिडीज है, हमारी गाड़ी की टोटल कॉस्ट के बराबर इंश्योरेंस देते होंगे, शीशा खोते भाई खाते ही क्यों, तुमने तो थूक दिया। तो खैर बहुत सी चीजें हैं, तो एंडलेस बातें हैं। तो रीड इंडिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है जो सब काम हो रहा है, और लाइब्रेरी को डाइवर्सिफाई करना होगा। उसका उदाहरण आज वो एसेंचर के लोग शायद चले गए, डाइवर्सिफिकेशन का क्या लाभ होगा लाइब्रेरी को, एक छोटा सा उदाहरण। आर्थर एंडरसन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ी कंपनी थी, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी थी। लेमन ब्रदर्स को गलत सलत रिपोर्ट दी, लेमन ब्रदर बैठ गए अमेरिका में 2008 में, इकोनमी बैठ गई, रोना धोना मच गया, आर्थर एंडरसन भी मर गई। लेकिन एसेंचर भी उन्हीं की कंपनी थी, अलग थी, और उसने ठीक से काम किया, एसेंचर सर्वाइव की। क्यों? क्योंकि आर्थर एंडरसन ने डाइवर्सिफाई किया। एक पार्ट मर गया, दूसरा फिर भी जिंदा है। अगर लाइब्रेरी डाइवर्सिफाई करेगी, लाइब्रेरी का डाइवर्सिफिकेशन ये है जो रीड इंडिया कर रहा है। खाली किताब पढ़ा के कुछ बहुत सारी बातें हुई हैं। एक बहुत बड़ा आदमी है, मैम टाई, ओके, नाउ आई क्लोज इट, जस्ट लास्ट है, शुड आई कंटिन्यू और क्लोज इट, ओके। एलन ग्रांट नाम का एक बहुत बड़ा आदमी है, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। उसने कहा ये बिगड़ क्यों गया, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बैलेंस। उसने अल्टीमेटली ही केम बैक टू इंडिया। एक छोटा सा उदाहरण सुनाऊंगा उसी बात को, उसने दूसरे तरीके से कहा। आपने कभी देखा बिच्छू किसी को काट ले तो वो क्या होता है, उसका उछलता है, उछलता है, लहर सी चलती, मुझे एक बार काटा हुआ है, बहुत परेशानी होती है, कई बार जीवन भी चला जाता। बंदर देखे आपने कभी, बंदर को देखा होगा, यहां बैठा, अब यहां बैठा, यहां बैठा, एक सेकंड रुकता नहीं कहीं भी, देखा है ना। अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा? तो हमारा जो मन है बंदर है, इस पे एक्स्ट्रा एम्बिशन का बिच्छू काट गया, इसलिए उछलते फिरते हैं, इसलिए टेंशन है। इसलिए टेंशन है, इस बिच्छू को अनावश्यक काट ले। मैं मानता हूं एम्बिशन के बिना जीवन कैसे होगा, और कल्पना के बिना एम्बिशन पूरी कैसे होंगी। लेकिन यशपाल एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, उनकी किताब दिव्या है, वो महिला एसेंट्रिक उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। सोशल इश्यू पे उसने कहा कल्पना की उड़ान के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन कल्पना के दौर में जमीन से पैर नहीं उठने चाहिए। हम तो पैर ही उठाए फिर रहे जमीन से, जब नशा टूटेगा तो क्या होगा मुझे नहीं पता। और फिर लोग कहते हैं कि वो तो 10 मंजिल से गिरा था इसलिए मर गया, मैं तो 7 मंजिल से कूदूंगा बच जाऊंगा, कि 3 मंजिल कम हूं, चाहे 10 से कूद लो चाहे 7 से कूद लो, मरना तो पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ओवर एम्बिशन का, और यही वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लाइब्रेरी में रहे, बहुत किताब पढ़ी है, बहुत किताबों से डील किया है, अब बोलने को तो कितना भी बोल सकते हैं, बट समाप्त भी करना होता है। अब हो क्या गया है जो रीड इंडिया कर भी रही और करना भी चाहिए। हम अभी तक हिंदुस्तान की लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। गांधी ने बहुत विरोध किया था कि हर चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में मत ले जाना, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सोशल कॉस्ट होगी, सोशल हार्मोनी खराब होगी। अब जूते हमारे गांव में लेते थे हम लोग, गांव के आदमी आज भी गांव जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने गांव को, वहीं की वजह से यहां खड़े हैं। अगर वहां नहीं होते तो यहां भी नहीं होते, यहां होते तो नकली होते, क्योंकि यहां पड़ोसी का पड़ोसी से लेना देना नहीं। मेरे गांव में तो मैं किसी कोने में खड़ा होकर पेशाब करूं तो उस कोने में चर्चा होगी, उनका लड़का पढ़ा लिखा होकर भी खड़ा होकर पेशाब करता है, मैं उस समाज से आया हूं और उसी में जाना पसंद करूंगा, जहां हर किसी को एक दूसरे का कंसर्न है। यहां तो कहते सन्मुखी, पंजाबी में एक सब बड़ा यूज होता है, दिल्ली में सामू की हमें क्या है, कोई मर गया तो मर गया, गांव में ऐसा नहीं है। आज भी कोई मरगा पूरा गांव जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती भोजन नहीं करता,
जब उसकी तेरवी होती है चाहे दुश्मन हो आके खड़ा होता है, अभी भी बचा हुआ है, वो हाथ में नहीं बची हुई है, क्योंकि अभी सारा गांव ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आया है। हम जूती गांव में लेते थे, गांव में जूती बनती थी, हमारे गांव के पशु मरते थे, उसी चमड़े से होती थी, उसका रोजगार था, हमारे पास एक साधन था, वो बाटा पे चला गया, एडिडास पे चला गया एटसेट्रा, और वो बाटा एडिडास का 10,000 का जूता पहन के अगर मैं अपने खेत में निकल जाऊं तो वो शाम को खराब हो जाएगा। लेकिन आज भी वो जूती पहन के मेरे गांव के किसान लोग खेत में घूमते हैं, जब वो सख्त हो जाती है थोड़ा सरसों का तेल डाल के रख देते हैं फिर पहनते। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बचाना पड़ेगा और लाइब्रेरी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना पड़ेगा। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, कहीं कहीं ये पब्लिक लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट के एक बाबूजी के कब्जे में, ये जो भी आई है सो तो मैंने बाबूजी कहता हूँ, ये बड़े बाबू छोटे बाबू के कब्जे में है, उसने एक रूल बना दिया, उसके बाहर चलोगे आप सस्पेंड हो जाओगे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि लाइब्रेरी रही ना लाइब्रेरी पढ़ने वाले रही। अब ये प्रयास हो रहा है रीड का, ये इसको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर को ले जाया जा रहा है, हर गांव में ले जाएंगे, वहां केवल किताब नहीं होगी, वहां की लोकल स्किल पे ध्यान देंगे, किसी को कुछ ट्रेनिंग देंगे, किसी को कुछ देंगे, यानी एक होलिस्टिक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे, जिसके बारे में योगीराज अरविंदो ने कहा था इंटेग्रल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द ओनली डेवलपमेंट विच यू कैन सस्टेन दिस सोसाइटी। व्हाट इज दैट, ये मेरा हाथ बहुत मोटा हो जाए, एक बीमारी होती है एलिफेंटाइस, पैर बहुत मोटा हो जाता है, बाकी तो बुरा लगता है आदमी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली पैर मोटे हो प्रोपोर्शनेटली वो आदमी कितना सुंदर, कि क्या यार फिटनेस है, कि वो उसका इंटेग्रल डेवलपमेंट है। और इंटेग्रल डेवलपमेंट में केवल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं, आपका मेंटल सोशल भी है इमोशनल भी है, वो इंटेग्रल डेवलपमेंट इसी तरह से होगा जब लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगी, कि तभी वो ट्रांसफॉर्मेट करेगी। आज भी जगताप जी ने बड़ा सही कहा, हैव नोट्स और जिन पे बहुत है, जिन पे नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है, थोड़ी सी आती है, काम चलाओ, तो जिन पे नहीं है और जिन पे बहुत है, दोनों की एक ही समस्या है, एक भूखे मारे शुगर का मरीज है, एक बहुत ज्यादा के मारे भूखे शुगर का मरीज है। क्यों, तो हमें इसको हैव एंड हैव नोट्स, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनका शोषण हो रहा है, जिनके पास नॉलेज है उनका भी शोषण हो रहा है। जैसे एक उपनिषद है हमारे यहाँ, ईशो उपनिषद, तदे जति तन्ने जति तद, नहीं भूल गया, गलत हो गया, अभी अभी एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान आएगा। वो लोग जो केवल विद्या की उपासना करते हैं दंडम तन प्रविशंति, वो अंधकार में जा रहे हैं। बोले क्यों, कि उसका अभ्यास नहीं करते, राय बहादुर है अभी बुला लीजिए। जो अंधम तन प्रशंति ये विद्यान उपासते, अब ठीक से याद है, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो विद्या की उपासना करते हैं अगली लाइन का। क्यों, क्योंकि उस पर व्यवहार नहीं करते। तो वो विद्या, वो जो नॉलेज है जिस पे हम व्यवहार नहीं करते, वो अंधकार में ले जाती है। लास्ट में कह के खत्म करूंगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लाइब्रेरी ले जाए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, हैव नोट्स का कल्याण नहीं हो सकता। यहाँ अनिता बहन जी हमारी जो आदिवासी ड्रेस में है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए, नहीं कि वहां बहुत काम करते हैं, इसके लिए करता हूँ, अपनी संस्कृति में अथाह विश्वास रखती है और हमने वो छोड़ रखा है। हम पैंट पहन के खड़े हैं और वो अपनी आदिवासी ड्रेस पहन के खड़ी, उनसे कुछ सीखो और रण, मैं उनका सम्मान करता हूँ इस बात के लिए। आदमी को अपने में विश्वास रखना चाहिए। मेरे सिर पर चोटी है, एक दिन एक सरदार जी मेरे मित्र है, ये क्या है, मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने दी थी, मैं क्या करूँ। बोले वो कैसे, मगर वो इन मुगलों से ना लड़ते तो मेरा नाम अब्राहिम मोहम्मद होता, तो चोटी कहाँ होती है, तो गुरु सिंह गुरु जी की देन है, मैं इसे फेंक आ सकता हूँ, सच में उनकी देन है। तो कहने का मतलब है, अपनी संस्कृति में विश्वास रखिए, अपने काम में विश्वास रखिए, अपने समाज में विश्वास रखिए, तो फिर राष्ट्र के सबसे बड़े एसेट आप हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत करी जा सकती है, लेकिन एक बस लास्ट छोटी सी बात है। 88 में मेरे एक दोस्त थे केरल के, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उन्होंने मुझे एर्नाकुलम में बुलाया कोचिंग। हमने कहा यार यहां आदि शंकराचार्य जी, एक वहां से 60 किलोमीटर पर अलो एक जगह है, उससे थोड़ी दूर जाएंगे कोई 8-7 किलोमीटर कालडी गांव है जहां आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। मैं यार थोड़ा ट्रैकिंग करते हैं, गांव भी देख लेंगे,
और वहां जाएंगे उधर से गाड़ी, बोले ठीक है चलो। वो ध्यान से सुनिएगा, कहानी नहीं है, सच्चाई है। तो जगह जगह लोग बीड़ी बना रहे थे और ग्रुप में बैठे हुए थे, अब पता नहीं वो अभी भी है कि नहीं वो चीज। एक आदमी किताब पढ़ रहा था, दसवीं जगह ऐसा हुआ, मैंने पूछा ये क्या, बोले यहां ऐसे ही होता है, एक आदमी किताब पढ़ता है बाकी बीड़ी बनाते हैं। इसका क्या होता कि जितना वेज उन सबको मिलता है इतना ही वेज इसको ही अपने में से देते हैं। तो क्या हो रहा था, लर्निंग अर्निंग, किसके थ्रू, बुक्स के थ्रू। एक आदमी, चलिए तुम किताब पढ़ो, ये कहानी पढ़ो, वो कहानी पढ़ो, सब सुन रहे हैं, जगह जगह मैंने उस चीज को देखा। मैं ये कहां से पैदा हुई, बोले तो मुझे भी नहीं पता, पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि ट्रैकिंग कभी नहीं की। हम क्या हुआ, जहाज में बैठे दिल्ली से बंबई चले गए, हिंदुस्तान देख ले, लेकिन पता कुछ नहीं। तो रेलवे पता चलता ना हिंदुस्तान का, तो हम हवाई जहाजों में उड़ करके, अर्थात ये देखा वो देखा, यहां से वहां गए, बढ़िया जी अंग्रेजी अंग्रेजी बोली, पीपीटी बनाई, और हमने कहा हमारा काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, जुड़ना पड़ता है। और थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात सुनी, टाइम दिया इसके लिए, इंडिया का धन्यवाद। बहुत सारी मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दो बात लास्ट में, बहुत छोटी सी है, ज्यादा टाइम नहीं उसमें। गीता का एक 18वें श्लोक, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, उसमें कहा गया, हिंदी में मैं बता देता हूं, कि जो मेरे पास अर्जुन गहरे से गहरी जानकारी थी, गंभीरतम ज्ञान में रखता तो आपको दे दिया। और दूसरी लाइन में गुह्यतम ही थी गुहामया, जो मेरे पे गहरे से गहरा गूढ़ से गूढ़ ध्यान ज्ञान ज्ञान था वो तुम्हें दे दिया, जो मेरे पे था उसने कहा, और की बात नहीं करता मैं। और दूसरी लाइन में कहा अभिमन, हिंदी में इस पे आप क्रिटिकली विमर्श एतद विशेषण यथेसिद्धि तथा करु, इस पे विशेष प्रकार से विचार करना, सुन लिया विचार करना तो आचरण, यथेसिद्धि तथा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना, तो जो मेरे पास अच्छे से अच्छी जानकारी अकॉर्डिंग टू मी वो आपको दे दे, इस पे आलोचना पूर्वक विचार करना, और जो अच्छा लगे उस पर आचरण करना, नहीं लगे छोड़ देना। अगली लाइन बसीर बद्र की, इन सब लोगों ने ज्ञान के दीपक जलाए, अभी भी और जलेंगे, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, चिराग समझते हैं ना दीपक, इन चिरागों को आंखों में महफूज रखना, दूर तक अंधेरी रात ही रात होगी। जिंदगी में अंधेरे बहुत आते हैं, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर मैं भी हूं, ना जाने फिर किस मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू।

0: गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग? मेरा नाम स्मिता है. लास्ट टाइम हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारे लाइफ स्किल के सेशंस होंगे वो लीडरशिप सेशंस के पैरेलल चलेंगे. जो जो टॉपिक्स मैम कवर करेंगे, हम उसको एक एक टॉपिक को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एज अ लीडर तो ठीक है कि हमें वो चीजें समझनी, एज एन इंडिविजुअल भी हम उससे कैसे शुरुआत कर सकते हैं. मैम की प्री कमिटमेंट की वजह से इस बारी जो हमारा सेशन है वो अभी अगले वीक पोस्टपोन हो गया है. सो आई थॉट कि एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टीम वर्क का, हमने पहले भी ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ नए यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, नए बेनिफिशरीज जुड़े हैं. सो मे बी वी कैन स्टार्ट विथ टीम वर्क, कि टीम वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, कि हमें एक साथ जुड़ के काम करना क्यों जरूरी है. सो आई होप जिनको ये रेपिटेटिव लग रहा होगा, इसका मतलब है आपने टीम वर्क में काम करना शुरू कर दिया है. और कुछ अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो टुवर्ड्स द एंड, छोटा सेशन है ये, वी विल हैव अराउंड 30 मिनट्स ऑफ माई स्पीकिंग एंड देन वी कैन शेयर योर व्यूज. तो टीम वर्क से क्या समझ में आता है, किसी को कुछ पता है ये टर्म टीम वर्क क्या होती है? टीम वर्क इंग्लिश की टर्म है. इसका मतलब है कि एक साथ जुड़ के, एक होता है कि अकेला चलता है, एक इंसान अकेला काम करता है, और दूसरा होता है कि हम आते दुनिया में अकेले हैं लेकिन रहना तो हमें सबके साथ है. और घर में हो गया, प्रोफेशनली हो गया, पर्सनली हो गया, हम कोई भी काम अलग से नहीं करते, अकेले नहीं करते, कुछ लोगों के साथ जुड़ के, कुछ लोगों की मदद से करते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ के करते हैं, उसको हम टीम वर्क कह सकते हैं. रीडनिया में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीम वर्क है, क्योंकि हम समुदाय के साथ काम करते हैं, समुदाय के लिए काम करते हैं और समुदाय में रह के काम करते हैं. हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो कम्युनिटी के अंदर हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, और कम्युनिटी ही उनसे हमारे हम उनसे सेंटर्स के थ्रू इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो, अगर हमारे सेंटर्स पे कोई आता नहीं है तो हमारे सेंटर की कोई वैल्यू नहीं है. वो मशीनें, वो किताबें, वो जितनी हमने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, चाहे वो मशीनें हैं, चाहे ब्यूटी का सामान है, इसीलिए हमारे सेंटर्स आज, जो जो 15 15 साल पुराने सेंटर्स भी हैं, आज भी वो लोग क्यों काम कर पा रहे हैं, क्योंकि नया नया समुदाय जुड़ रहा है और जो पुराना समुदाय है, जो पुराने बेनिफिशरीज हैं, जो पुराने बच्चे हैं जो सीख के गए हैं, वो आज भी आते हैं. शायद कुछ बच्चे किताबें पढ़ना शुरू किया था उन्होंने और आज वो कोई ना कोई लघु उद्योग की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे साथ पिछले 5 10 सालों से जुड़े हैं. तो उनको हम क्यों जोड़ के रख पा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो समुदाय का है. और हम अपनी सर्विसेज अगर सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं देंगे तो कोई हमारे सेंटर पे नहीं आएगा. कभी कभी हम ऐसा भी सुन देंगे, अब एनजीओ तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर पे आके सीखना चाहते हैं. कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या क्वालिटीज हैं हमारे सेंटर में, स्पेशली लड़कियां क्यों आके सीखना चाहती हैं? आप सभी लोग करीबन 10 साल, 8 साल, 5 साल, 2 साल से सेंटर चला रहे हैं. कोई मुझे बता सकता है कि जब हम टीम वर्क की बात करते हैं या टीम की बात करते हैं, टीम वर्क तो छोड़ दीजिए, टीम वर्क से हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वो चार लोग जिनके साथ हम रीड में जुड़े हैं, यानी कि आप हो गए, लाइब्रेरियन हो गया, ट्रेनर हो गया, लेकिन हम अपने बेनिफिशरीज को नहीं भूल सकते. वो लोग जो हमारे साथ आके हमारे लिए जुड़ के काम कर रहे हैं उनको हम नहीं भूल सकते. मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल दूंगी, जो हम रामपुर में विजिट किया था उसका मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल दूंगी. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्यों लगता है कि समुदाय हमारे साथ जुड़ के क्यों रहता है, बार बार क्यों आता है, साल दर साल, 10 साल, 15 साल तक क्यों आता है हमारे पास, हमारे सेंटर्स में? फ्री दे रहे हैं क्या, इसलिए आता है या कोई और रीजन है?
1: मैम, हमारा कमिटमेंट, जो हमारी कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, जिस
0: क्या
1: तरह से हम
0: कमिटमेंट?
1: कम्युनिटी को लेकर चलते हैं अपने साथ, मैम, जो कनेक्शन हमने उनके साथ बिल्डअप किया है, जो कॉन्फिडेंस कम्युनिटी को हमारे ऊपर है, हमारे साथ सीखने में है, वो चीज उन्हें अलग जगह नहीं मिल रही, इसलिए वो हमारे साथ कनेक्टेड है। 5 साल से हम
0: ओके
1: उन्हें रिटेन कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द गुड कॉज। और उन्हें भी पता है कि वी आर डूइंग इट, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वी आर डूइंग इट विदाउट एनी प्रॉफिट। तो दिस इज आर डेडिकेशन टुवर्ड्स अवर वर्क विच इज कनेक्टिंग द कम्युनिटीज।
0: तो आवर डेडिकेशन, को हम एक पॉइंट रखते हैं कि हम जो एज ए टीम काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम डेडिकेटेड है, यानी कि वो चार पांच लोग जो सना के सेंटर में हैं, और सना के पास दो सैटेलाइट सेंटर्स भी थे, जो इनकी टीम है वो एक क्वालिटी सर्विस दे पा रही है अपनी कम्युनिटी को, इसीलिए उनकी जो कम्युनिटी है वो लगातार साल दर साल इनसे जुड़ी हुई है। सिंस वी प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ट्रस्ट फैक्टर, दीक्षा ने मैसेज में लिखा है। थैंक यू दीक्षा। और कोई बताना चाहेगा? इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारी एज ए टीम, एज ए रीड इंडिया, आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हैं, क्या 80 लोग एक टीम है या हम अलग अलग सेंटर से जुड़े हैं? अगर हम एक हैं तो हमारी एक कॉमन क्वालिटी क्या है एज ए टीम? अगर हम अलग अलग हैं तो हमारे अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। एनीबडी एल्स कोई कोशिश करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा?
1: गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून स्वाति जी।
1: मैम। एक तो सेफ इन्वायरमेंट है फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स आल्सो, एंड सेकंड ये है कि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उनके साथ वो भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे एरिया के होते हैं। उसके साथ साथ ही जो 3 महीने वो हमारे पास रहते हैं, तो उन 3 महीनों में हम भी उनको ज्यादा अच्छे से मतलब पहचान सकते हैं, और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं, तो एक अटैचमेंट बन जाती है। छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास 3 to 6 ईयर एज ग्रुप से लेकर मतलब अडल्ट तक के सारे लेवल का कुछ ना कुछ सबको सीखने का चांस है, सीखने के लिए साधन है हमारे पास, तो इसलिए वो हमारे पास मतलब सालों तक अटैच रहते हैं।
0: राइट राइट। थैंक यू स्वाति। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक बोला है स्वाति ने कि जो क्वालिटी सर्विस है, जो डेडिकेशन है, और जो हम उनको जानने की कोशिश करते हैं, एक एक रिलेशनशिप बना के रखते हैं उनसे, उनकी तकलीफें जो हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं उसको समझने की कोशिश करते
1: लाइट
0: हैं।
1: ऑफ हो जाएगी, मतलब देखिए लाइट्स आ गई है ना, ये यूपीएससी का पिछली बार जो।
0: तो वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड। ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जैसे कि सना हो गई, स्वाति हो गई, एवरी ईच वन ऑफ अस, जितने भी लोग हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सालों से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं। फर्दर जा रहे हैं एज इन हम लोगों के घर में जा जाके उनको निकाल के लेके आते हैं कि नहीं, आप आइए हमारे सेंटर पे सीखिए। सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ वेरी गुड टीम, जहाँ पे हम बियॉन्ड आवर कमिटमेंट जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी बिलीव इन आवर मिशन। हम बिलीव करते हैं कि कोई हमारे सेंटर पे आएगा तो वो हमारे सेंटर से कुछ सीख के ही जाएगा, कुछ लेके ही जाएगा, और ऐसी चीज लेके जाएगा जो हमेशा साल दर साल उसके साथ रहेगी। क्योंकि अगर हमने किसी को कोई स्किल दे दिया तो वो स्किल हम वापस तो नहीं ले सकते ना। आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो 100 रुपए तो खत्म हो जाएंगे, वो शायद खाना खरीद लेगा उसका, या कपड़ा खरीद लेगा, या अपनी कोई भी जरूरत की चीज खरीद लेगा। लेकिन जिसको हमने कला दे दी एक बार, चाहे वो स्टिचिंग की स्किल है, ब्यूटी की स्किल है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की स्किल है, या फिर सॉफ्ट स्किल है, यानी कि बातचीत करने का तरीका, या अपना आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सॉफ्ट स्किल हो गई, टेक्नोलॉजी स्किल हो गई, तो वो स्किल तो कोई वापस नहीं ले सकता। बट वी आर गोइंग अ स्टेप अहेड, हम लोग एज ए टीम काम करके एक और दरिया जो है वो पार करते हैं, जो कि है सोशली। सोशली जो दबाया जाता है कि नहीं, आपको नहीं जाना है सेंटर पे, नहीं जाना है, बाहर नहीं निकलना है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि उस बांध को भी हम तोड़ें। दिस इज वन ऑफ द कोर क्वालिटी ऑफ आवर टीम, जो रीट की जो टीम है ये कोर क्वालिटी बन गई है। एनीबडी एल्स, कोई और कुछ, किसी ने कमेंट में लिखा है कुछ, लेट मी जस्ट रीड दैट। पॉजिटिव एनवायरमेंट, ज्योत्सना जी लिख रहे हैं पॉजिटिव एनवायरमेंट, वेरी गुड। कैन यू डिफाइन पॉजिटिव एनवायरमेंट?
1: गुड आफ्टरनून मैम, गुड
0: गुड आफ्टरनून,
1: आफ्टरनून मैम।
0: गुड
1: ऐसे
0: आफ्टरनून।
1: करने से सुन, हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यहाँ पे आते क्यों है कि एक उनको ट्रस्ट होता है रीड इंडिया के नाम से ही, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, और लड़कियों को भेजते हैं हमारे यहाँ पे कि उनको पता है कि यहाँ पे बच्चियां जा रही है या लेडीज, हमारे घर से कोई भी लेडीज जा रही है तो यहाँ पे सेफ है इस चीज के लिए। और जो भी सिखाया जाएगा, जो भी चीज होगी यहाँ पे अच्छे से ही सिखाया जाएगा, उनकी ग्रोथ ही होगी, कभी वो डाउन नहीं होगी किसी चीज के लिए। तो कुछ
0: बिल्कुल
1: बेनिफिशियरीज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं, उनसे आपसे बात भी करना चाहते हैं।
2: आप उन्हीं से बात करिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या उनको आने से फायदा है, वो क्यों सीखते हैं यहाँ पे आने के बाद, बताओ
0: राइट
2: बेटा, आप बता
0: राइट
2: सकते हो कोई भी?
0: गुड आफ्टरनून.
2: पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते हैं, हमें यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है और इसके साथ हम आगे भी बढ़े और इससे हेल्प मिले उसके लिए हम आते हैं।
0: ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू
2: जानिए आप
0: सो मच.
2: बोलना, बोल कुछ बोलो। गुड आफ्टरनून
0: गुड आफ्टरनून.
2: मैम। हाँ मुझे ना सिलाई करना बहुत पसंद है इसलिए मैं आती हूँ।
0: तो रीड के सेंटर पे क्यों आते? सिलाई सेंटर तो बहुत सारे खुले हुए हैं,
2: हाँ
0: बहुत सारे.
2: सीख भी रहे हैं उसके साथ नए नए डिजाइन में, मतलब सीख रहे हैं जो बन रहा है वो सीख रहे हैं, मैम अच्छे से बताती हूँ इसके साथ।
0: अच्छा
2: बताओ प्रोडक्शन में आप काम करके पैसे कभी कमा रहे हो इस टाइम? हाँ काम
0: अच्छा
2: करके पैसे भी मिलते हैं।
0: अच्छा पैसे भी मिलते हैं, इसलिए आप आपको यहाँ आना अच्छा लगता है कि सीख भी रहे हैं और प्रोडक्शन का
2: हाँ
0: काम
2: हाँ
0: भी आ रहा है. वेरी
2: जी
0: गुड वेरी गुड. थैंक यू ज्योत्सना जी. यू वर ट्राइंग टू से समथिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट के बारे में, शायद आप कुछ कहना चाह रहे थे. हेलो
2: हाँ जी मैम। हेलो मैम,
0: हेलो
2: हेलो मैम, बोलिए बोलो बोलो बोलिए। डर भी नहीं रहा सर, जो
0: सुमन
2: स्टूडेंट्स जब यहाँ आते हैं वो
0: जी,
2: थोड़ा
0: सुमन जी आप म्यूट. हाँ
2: हम जब आते हैं यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉपर क्लियर नहीं होता उनके माइंड में, बहुत कुछ चीजें होती हैं और थोड़ा सा ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं जो वो बहुत पॉजिटिव साइड पे सोचते नहीं है। तो यहाँ पे आके जब उन लोगों को हर चीज पॉजिटिवली सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो उनके माइंड काफी क्लियर हो जाते हैं और पॉजिटिव सोचा। और सबसे अच्छी चीज है कि हम जो एनवायरमेंट है सिर्फ स्टडी वाला रखे हैं, और चीजों पे बातें करना, डिस्कस करना या कुछ ऐसी चीजें करना, उसमें हम लोग बच्चों को इंटरेस्ट लेने ही नहीं देते, जिससे क्या होता है वो लोग पॉजिटिव सीखते भी हैं और साथ साथ बात भी पॉजिटिव करते हैं। और एक
0: राइट
2: ही जगह उन्हें तीन तीन चार चीजें सीखने के लिए यहाँ पे मौका भी मिलता है। जैसे मैम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेकअप सीख रहे हैं या वो कंप्यूटर सीख रहे हैं, लेकिन उनका बाद में इंटरेस्ट डेवलप होता है कि हम थोड़ा सा और भी कुछ सीख लें और आगे सीखें, तो ऐसे भी वो सीख सकते हैं।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस. थैंक यू जोस्ना जी.
2: जी
0: सो मैंने कहा था मैं एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से हमारी टीम एक कदम आगे ही चल के काम करती है. अभी हम रिसेंटली रामपुर में गए थे और करीबन मेरे को लगता है 50, बहुत गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी उस दिन. और 50 से भी ज्यादा लड़कियां उस सेंटर में बैठी हुई थी. नया सेंटर जो रिलोकेट किया है हमने, हमारा रामपुर में जो सेंटर है, बहुत गर्मी थी एकदम. लेकिन एक एक बच्चा जो था, एक एक स्टूडेंट्स जो था, वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ ना कुछ एक उमंग थी उनके अंदर कि हाँ हम रीड सेंटर पे आए हैं तो रीड सेंटर से कुछ सीख के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे. इतना एनर्जी था. पहले शुरुआत में वो बहुत घबरा रहे थे बोलने में, बहुत ज्यादा. पहली बारी मिले थे, मैम थी हमारे साथ, तो बहुत ज्यादा उनको हिचकिचाहट हो रही थी बोलने के लिए. लेकिन 5-10 मिनट के बाद वो लोग कंफर्टेबल हुए और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई भी लड़कियां, इतना उनके पास था शेयर करने के लिए. तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये एनर्जी आई जब हमारी टीम ने उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं, आप आइए सेंटर पे, आइए सीखिए. यहाँ पे सीखने के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल, यानी कि आपस में जब आता है लोग, इंसान मिलते हैं तो उनको लगता है कि हम और भी कुछ सीख सकते हैं. देखो सिलाई तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी सेंटर पे जाएंगे आप सीख जाएंगे, ब्यूटी भी आप कहीं ना कहीं सीख जाएंगे, आप हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग भी सीख जाएंगे. लेकिन एक माहौल जो हम क्रिएट करके रखते हैं अपने सेंटर में, जिसमें जो आप ही ने मुझे बताया कि हम पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, हम एक अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जो सना ने बोला कि जो भी हम सिखाते हैं हम बहुत अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग देते हैं, हम सेफ एनवायरमेंट रखते हैं कि ताकि अगर लड़कियां आ रही हैं या उनके पेरेंट्स को कोई ऐसा हिचकिचाहट ना हो. ज्योत्सना जी ने बोला कि हम फोकस करते हैं जिस काम के लिए आए हैं, पहले हम वो काम करें, उस पे फोकस रहें, इधर उधर गॉसिप नहीं करें, नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं फैलाएं. तो ये सारी चीजें जो कंपोनेंट्स है ना, ये मिलके ही किसी टीम को सक्सेस करा पाती है. तो यही कुछ चीजें आज मैं एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, आई जस्ट ट्राई एंड शेयर विद यू. ऑल राइट. सो टीम वर्क यानी कि एक ग्रुप में एक साथ होके हमें जो एक कॉमन गोल, अब हमारे केस में कॉमन गोल क्या है कि हमारे सेंटर को इसी तरीके से ग्रोथ मिलती रहे. हमारा सेंटर कभी भी ऐसा ना हो कि हमारा सेंटर तो खुला है लेकिन कोई वहां सीखने ही नहीं आना चाहता. तो एक कॉमन गोल जो है, हम आज जितने 89 पीपल जुड़े हुए हैं, हम सबका एक कॉमन गोल है कि आपका छोटे दर पे गोल ये है कि आपका सेंटर जो है वो साल दर साल चलता रहे, उसमें बढ़ोतरी होती रहे और थोड़ा थोड़ा करके हम उसको सेल्फ सस्टेन कर सकें। ऐसे ही अगर हम सारे सेंटर्स को ले लेंगे और इन सबका जो एक कॉमन गोल होगा वो यही होगा कि हमारे सेंटर्स चलते रहें, इनमें कोई रुकावट नहीं आए, और जो हम मिशन है जो हमारा, जो कि कम्युनिटी को सर्विस देने का हमारा गोल है, वो हम एक साथ अचीव करें। अगर आप में से कोई भी एक सेंटर वो गोल अचीव करने में नाकाम हो जाता है, किसी एक सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो उंगली किसके ऊपर उठेगी? सीधा रीड इंडिया के ऊपर। तो जो टीम है हमारी, जो हम टीम वर्क की आज बात कर रहे हैं, तो अगर एक भी पुर्जा उस टीम का कमजोर हो जाता है या उसकी वैल्यूज मैच नहीं होती या वो किसी और रास्ते पे निकल जाता है, तो जो हमारी टीम है, जो एक माला है, अगर उसमें से एक मोती निकल जाता है तो माला टूट जाएगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लगातार हम सेंटर से जुड़े रहें, हम सेंटर्स को अपनी कोर वैल्यूज से जोड़ के रखें, क्योंकि हम टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझते हैं। और इसीलिए रीट जो है, मैम भी है, हम सबको नर्चर करती हैं कि हम सबका जो कॉमन गोल है वो हमेशा एक ही रहे और लाइव रहे, यानी कि हम उसे चेंज कर सकते हैं ग्रोथ की तरह, लेकिन ऐसा ना हो कि अलग ही दिशा में चला जाए। मान लीजिए कोई सेंटर बोलता है ठीक है, अब तो मुझे ये करना ही नहीं है, अब मैं इसमें जिम खोलना चाह रहा हूँ, अब मैं अपना सेंटर में जिम खोलूंगा, जी अब तो ये सेंटर हमारे को दे दिया गया, अब मैं इसमें जिम खोलूंगा, जिम की बहुत डिमांड है। क्या ये हमारा गोल है? नहीं, हमारा गोल है स्किलिंग का, हमारा गोल है एजुकेशन का, हमारा गोल है सॉफ्ट स्किलिंग का, हमारा गोल है कि हम महिलाओं को या लड़कियों को या जो कम्युनिटी है ऐसे एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके, जिससे कि उनकी ऑल्टरनेट इनकम हो सके, जिससे हम सेंटर भी सेल्फ सस्टेन कर सके। यही 5-6 गोल है, इसके अलावा तो और कोई गोल नहीं है हमारा। तो ये कॉमन गोल को डिफाइन करना और सभी पूरी टीम जो है, जो जितने भी लोग एक टीम में जुड़े हैं, उसकी तरफ काम करने से ही वो हमारा गोल अचीव हो सकता है। कभी भी टीम में हम ये नहीं कह सकते अच्छा मैं तो

कि दूसरे को नीचे खींच के हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। ये टीम अच्छी टीम के कंपोनेंट नहीं है। अच्छी टीम की कंपोनेंट है कि मैं भी जीतो तुम भी जीतो, यानी कि हम दोनों मिलके प्रोग्रेस करें। मेरी प्रोग्रेस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, तुम्हारी कम हो सकती है, कि तुम्हारी कभी ज्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, राइट? सो टीम में सबका मिल बांट के काम करना, सबके रोल्स डिफाइन होना। अगर रोल्स सही से डिफाइन नहीं होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, और कंफ्यूजन में कोई भी ढंग से काम नहीं कर सकता। घड़ी जो होती है, घड़ी में पीछे हमको सिर्फ 3 सुइयां दिखती हैं, राइट? लेकिन कभी अगर हम उसको पलट के खोल के देखें तो पीछे बहुत सारे छोटे छोटे छोटे छोटे पुर्जे हैं जो काम करते हैं। अगर उनमें से एक भी पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो घड़ी सही टाइम नहीं दिखाएगी, या टाइम दिखाएगी ही नहीं, राइट? वो 3ों सुइयां शायद मूव नहीं करेंगी या गलत मूव करेंगी। तो हम जो पीछे हैं, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे के आगे हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रस्टीज हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट है, लेकिन इसको बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग हैं। तो जब हम आपसे रिपोर्ट्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, फोटोज लेते हैं, आप ये सोचिए, आप वो घड़ी का वो छोटा पुर्जा है जिसको टाइम तो देखेगा कोई, कोई होगा कॉर्पोरेट, उसने देखना है कि हाँ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो टाइम दिखाना हो गया। लेकिन पीछे का काम तो हम सब मिलके कर रहे हैं ना, तो अपने काम को हम कभी भी छोटा नहीं सोचेंगे। कुछ भी अगर रीड में कुछ काम चल रहा है तो आप ये सोचिए कि ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी तो मुझे दिया गया है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, कि कभी भी मत सोचिए कि आई एम अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टीम। अगर मैं ये नहीं भी करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 100% नहीं दूंगा इसका या नहीं दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर अ गुड टीम, सारे कॉम्पोनेंट्स का एक साथ जुड़ के अच्छे से काम करना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करी कि रोल्स डिफाइन होने बहुत जरूरी होते हैं एक टीम में। अगर रोल्स डिफाइन नहीं होंगे कि भाई किसने सुबह सफाई करनी है, किसने स्विंग की क्लासेस लेनी है, किसने रिपोर्ट भेजनी है, किसने फाइनेंस का हिसाब रखना है, किसने देखना है कि भाई चाय पत्ती दूध चीनी सेंटर में है कि नहीं, किसने देखना है कि किताबें सही से लगी हुई हैं, मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, अगर ये रोल्स ठीक से डिफाइन नहीं होंगे तो हमारा जो लाइब्रेरी है, हमारा जो सेंटर है, वो नहीं चलेगा, वो सही से नहीं चलेगा। देर इज सम जोक गोइंग ऑन, जो हमारा ये सेंटर है जूम यूजर वाला, आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हियर दैट जोक। आप याद रखिएगा, वी विल कम बैक टू यू एंड वील हियर योर जोक। इस जो जो टीम वर्क होता है उसमें ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी सना ने और जो 2-3 लोगों ने बोला, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम फुल डेडिकेशन के साथ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं, उसी तरीके से एक अच्छी टीम का काम करने के लिए टीम में आपस में ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है। हम समय समय पे आपको पूरे आई वुड रिक्वेस्ट जूम यूजर, इधर आप चले जाएं बिकॉज देर इज सम गॉसिप गोइंग ऑन, या फिर आप अपनी स्क्रीन बंद कर दीजिए बिकॉज मेरे लिए बहुत अटेंशन डाइवर्शन हो जाता है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। आई कैन हियर यू लाफिंग एंड आई कैन हियर यू नो, इट इज वेरी इरिटेटिंग। आई एम श्योर आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए, सिर्फ नाम वास्ते आप ऑनलाइन रह सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज विद यू, राइट? प्लीज स्विच ऑन योर स्विच ऑफ योर स्क्रीन। आप अपने जोक्स कंटिन्यू करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? ऑनेस्टी के साथ काम करना बहुत जरूरी है एक टीम में, बिकॉज अगर हम ऑनेस्ट नहीं होंगे तो दैट मीन्स हम टीम में इक्वली ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम चीजों को छुपा रहे हैं, और ये हमारी टीम की हेल्थ के लिए और हमारी टीम की ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आज आप यहाँ पे हैं, हो सकता है आप आगे जाके किसी और कंपनी में जाएंगे या किसी बड़ी संस्था के साथ काम कर सकते हैं। तो एज ए लीडर, क्योंकि हम लीडरशिप के भी सेशन लेते हैं, एज ए लीडर और एज ए मेंबर ऑफ द टीम, बहुत जरूरी है कि हम कोई चीज अगर हमें पता चली है और हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है तो हमें सब मेंबर्स के साथ वो शेयर करना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ अ गुड टीम। ऑलराइट, आई विन यू विन आई विन हमने बात कर ली है, इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स अगर किसी के पास हैं तो वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट दैट। टीम में ना तीन, जो हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, आपकी लाइब्रेरीज में बहुत किताबें होंगी टीम वर्क के ऊपर, हाउ टू विन पीपल, अच्छे जो टुगेदरनेस के ऊपर जो किताबें हैं, उसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं कि ट्रस्ट, टॉलरेंस।

0: एंड टुगेदरनेस, यानी कि ट्रस्ट मतलब हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए अपनी टीम के ऊपर। बट ट्रस्ट आएगा कैसे? वो ट्रांसपेरेंसी से आएगा, जिसकी बात हमने पहले वाली स्लाइड में करी। टॉलरेंस, अब टॉलरेंस सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान को अलग चीज मोटिवेट करती है, हर इंसान के लिए अलग चीज जो है वो अच्छी है या बुरी है। तो हम एक टीम में एक जैसे तो नहीं होते, हर टीम में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 90 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग होगा। तो टॉलरेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो जनाब यहाँ बैठे हुए थे, 3-4 लोग, उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंस था, बट हमें हमें उनके लिए भी टॉलरेंट होना है। मे बी आज वो सुन रहे हैं ये चीज, हो सकता है कल उनके काम पे आए, आज नहीं इम्पोर्टेंट लग रहे, बट वो आगे जाएंगे, किसी कंपनी में काम के लिए जाएंगे, तब शायद ये बात मेरी उनको याद रहे या याद आ जाए, जब उनको कहा जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट है। सो हमें हर किसी को टॉलरेट करना सीखना पड़ता है, और जिनके पॉजिटिव्स हैं, जो नेगेटिव्स हैं, उस पे काम करना चाहिए एज ए गुड टीम। अगर एक टीम में किसी की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो और लेकिन अगर उनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो एज ए टीम लीडर हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, तुम्हारी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी नहीं है, तो हम यू नो वी वोंट गिव यू अ रोल। हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमें स्ट्रेंथ्स देखनी है कि हमारे टीम में जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स क्या है। किसी की फाइनेंस में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फाइनेंस में अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि कुछ बोर्ड पे लिख दो या ड्रॉ कर दो, तो मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है और ड्राइंग तो उससे भी बुरी है। लेकिन कोई बोले कि इसका फटाफट एक्सेल में कुछ बना दो, इसका जोड़ तोड़ कर दो, इसको बताओ कि इसका क्या, इसकी एक रिपोर्ट बनानी है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, वो मेरे लिए बहुत आसान है। तो मुझे ये पता है, तो मैं अपनी जो मेरे लीडर है, मैंने उनको पहले ही बताया कि अगर इस तरीके का काम करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, और अगर इस तरीके का काम मुझे दिया जाएगा तो शायद मेरी कैपेबिलिटी उसमें नहीं है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स बट ऑल्सो टेम्परामेंट। टेम्परामेंट मतलब कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र होते हैं, कुछ लोगों को जल्दी मतलब एकदम से वो घबरा जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, और काम करने में उनका दिमाग नहीं लगता, डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वी हैव टू एज ए टीम लीडर, हमें उनको फीडबैक देना है। आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा अटेंशन डाइवर्ट कर लेता है हम लोगों की। बार बार हम फोन देखते हैं, बार बार हम फोन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, अच्छा क्या न्यूज है। हम लोग भी न्यूज, आज सुबह, कल से तो मैं भी न्यूज बार बार देख रही हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, अच्छा फ्लडिंग कहाँ पे हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो टीम में हमें टॉलरेट करनी है, लेकिन हमारा गोल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिपोर्ट आज जानी है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आज जानी है, तो एज ए लीडर हमें ये देखना है कि टीम में टॉलरेंस की जगह तो है, लेकिन कॉम्प्लिसेंसी यानी कि काम ना हो, इस चीज की जगह नहीं है, क्योंकि फिर हमारी टीम फेल हो जाएगी। ट्रस्ट, टॉलरेंस, टुगेदरनेस तो होगी, लेकिन टीम फेल हो जाएगी, है ना। सबसे ऊपर गोल है, गोल के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है वो हम, पहला कंपोनेंट था कि टीम में सबका एक साथ मिलके चलना बहुत जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल टीम। टीम में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की कमियों को टॉलरेट करना कुछ हद तक हमें सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ आके भी बोल जाए तो हम बोले नहीं नहीं ये तो हमारा टीम मेंबर है, और ये नहीं, हम तो इसको कुछ कहेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। टॉलरेंस एज फार एज इट इज एडिंग टू आवर गोल, राइट, एंड टुगेदरनेस। हम अकेले तो कुछ, अकेले तो टीम है ही नहीं, अकेले तो फिर हम इंडिविजुअल है, राइट। एक ये खरगोश और कछुए की कहानी हम सबने सुनी है बचपन में, हमने ये कहानी छोटे बचपन से सुनते आए हैं कि एक खरगोश था और एक कछुआ था, और ये दोनों ही रेस लगाते हैं, और खरगोश सो जाता है क्योंकि उसे लगता है अरे मैं तो इतना तेज भाग रहा हूँ और इतनी तेजी से मैं फटाफट कर लूंगा, और मैं सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो भी जाऊंगा। उसने पेड़, एक पेड़ ढूंढा और उस पेड़ के नीचे सो गया। इतने में जो कछुआ था वो अपने गोल पे कायम रहा, धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो गोल की तरफ बढ़ता रहा, और उसने देखा कि कछुआ तो उसने देखा कि खरगोश तो सो रहा है, तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं इसको जगाता नहीं हूँ, ये तो सो ही रहा है, इन एनी केस मुझे जीतना है, ये रेस जीतने के लिए है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कछुआ जो था धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, और अंत में वो रेस जीत गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा, अरे मैं तो सो गया था और मैं ये रेस हार गया। ये स्टोरी सुनी है किसी ने पहले, या इससे अलग कोई स्टोरी सुनी है किसी ने कछुए और खरगोश की? आप
1: हाँ जी
0: मेरी स्टोरी सुनी
1: सुनी
0: है?
1: है हम सबने।
0: सबने सुनी है। इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेके आते हैं। इस स्टोरी को अगर एज ए टीम सुनाना है हमको, तो हम कैसे सुनाएंगे? अगर खरगोश और कछुए की टीम है, अभी क्या था कि कछुआ अलग भाग रहा था, खरगोश अलग भाग रहा था, वो एज ए टीम नहीं भाग रहे थे। कछुए की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी और खरगोश की अपनी कुछ स्ट्रेंथ थी। अभी वो तो जंगल में रहते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं, हमें तो एक साथ जुट के काम करना है, और हमारी क्वालिटीज कछुए और खरगोश जैसी ही है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग अलग है। हाँ, हम सबकी जो शक्तियां हैं या सबकी जो वीकनेसेस हैं, वो सबकी अलग अलग हैं। अगर ये स्टोरी थोड़ी सी टीम वर्क में सुनाई जाए, तो उसमें हम ये डाल सकते हैं कि कछुआ और खरगोश एक रेस में थे। उस रेस में कई रुकावटें थी। पहले तो बहुत रास्ता जो था वो पथरीला था, बहुत उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता था, और आगे जाके नदी आती है और फिर पहाड़ आता है। ये रेस उनको पार करनी थी। तो जब कछुए और खरगोश ने देखा कि ये रेस तो इम्पॉसिबल है पार करना, अलग अलग अगर हम करेंगे तो एक पड़ाव तक जाके हम रुक जाएंगे, हम ये रेस नहीं पार कर सकते। तो फिर कछुए और खरगोश ने बोला कि ठीक है, क्यों ना हम टीम वर्क में काम करें। जब हम टीम वर्क में काम करेंगे, तो जो पथरीला रास्ता है वो खरगोश फटाफट पार कर लेगा और मैं खरगोश के ऊपर चढ़ जाऊंगा, और जो पानी का रास्ता है वो कछुआ फटाफट पार कर लेगा और खरगोश उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पहाड़ का रास्ता है वो फिर खरगोश कवर करके ऊपर पहुंच जाएगा और कछुआ उसके साथ चला जाएगा। तो अगर रेस पार करनी थी तीनों दोनों को, तो ये तीनों पड़ाव पार करने थे। अब अकेले तो वो शायद नहीं कर पाते, खरगोश पानी में डूब जाता और ये दोनों ही हार जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है और हम एज ए टीम काम करेंगे। सो एज ए टीम हमें ये देखना है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम एरियाज हैं, क्या हमारे टीम वर्क करने से वो इश्यूज पार हो सकते हैं? क्योंकि हमारा गोल क्या था कि वो रेस को पार करना, गोल ये नहीं था कि जीतेगा कौन, राइट? अगर गोल रीडिफाइन कर दिया जाए, अगर गोल कॉमन हो, जो कि रीट का गोल है, कॉमन गोल है, हम कोई कंपनी नहीं है कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक संस्था है जो समाज समुदाय के साथ काम कर रहे हैं, समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या हमारे गोल में इंडिविजुअल का जीतना जरूरी है, या एक टीम का एक कॉमन गोल की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है? कठिनाइयां उसमें भी आएंगी, हो सकता है कछुआ जो है खरगोश का भार ना सहन कर पाए, बट धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो एज अ टीम शायद वो रेस पार कर लेंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म्ड है कि अकेले वो नहीं पार कर सकते। हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक टीम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर रोल्स हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो। आप देखेंगे बार बार मैम हमें कम्युनिकेट खुद से करती हैं, जहां भी चैलेंज आता है वो खुद से फोन उठाती हैं, हर एक से बात करती हैं, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको वहीं के वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो एज ए लीडर हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जो कम्युनिकेशन है वो लगातार सही तरीके से चलती रहे इन इन अ ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम्पल्स हम आसपास अपने, जैसे कि यहाँ इस फोटो में दिखाया गया है, चींटियां जो हैं बड़े से बड़ा पहाड़ उठा लेती हैं, अपने भार से कई गुना ज्यादा भार वो उठा लेती हैं एज ए टीम जब काम करती हैं। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप देखें हनी बीज, हनी बीज जैसे काम करती है ना, उनका रोल्स बहुत डिफाइंड होता है। रानी मक्खी कौन सी है और वर्कर बी कौन सी है, शहद कौन इकट्ठा करके लाएंगी, और रानी मक्खी की जो क्या कहते हैं सोल्जर बीज होती है वो कौन सी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियरली कि किसका क्या रोल है एक टीम में, क्योंकि जो कॉमन गोल है हमें वो अचीव करना है, राइट? और ज्यादातर टीम्स, बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, ज्यादातर टीम्स जो है ना वो फेल इसलिए करती हैं क्योंकि शायद उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं होती। शायद लीडर अच्छा है, लेकिन लीडर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। शायद कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है, लेकिन उनके गोल्स ही डिफाइन नहीं है। भाई बहुत अच्छे से किया, लेकिन पता ही नहीं जाना कहाँ है, पता ही नहीं है करना क्या है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी कम्युनिकेशन अच्छे रखें. अपने लीडर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है. गोल्स क्लियर होने चाहिए कि टीम किस लिए काम कर रही है. ये जो सेंटर हमने खोला है, इतनी जगह पे जो हमारा सेंटर है, किस लिए, क्यों काम कर रहा है. और
1: हेलो, मैं ऑन
0: हाँ जी बिल्कुल.
1: स्मिता जी, मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन स्टोरी. अभी मैंने फुल टाइम करके
0: मैं एक मिनट अपना कैमरा
1: अंडरली
0: ऑफ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना आवाज थोड़ी कम आ रही है. 1 सेकेंड, सॉरी. हाँ जी आप बोलिए, आप कंटिन्यू करिए.
1: हर्ड कि समबडी वाज सेइंग कि हम शुड वर्क लाइक सनफ्लावर्स. तो व्हाई सनफ्लावर? सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ देखता है टू गेट एनर्जी, और वो पूरा दिन सन की तरफ देखता है, सन की तरफ ही जैसे साइड पे सन हमारा जाता है, सनफ्लावर उधर ही मुड़ जाता है एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना बाकी का जो उसका प्रोसेस है वो पूरा कर सके. एंड एट द टाइम्स जब सन नहीं होता है, वेदर की वजह से या कोई और रीजन से, तो सन के ना होने पे सनफ्लावर का, मैंने सुना कि वो सनफ्लावर्स एक दूसरे की तरफ फेस कर लेते हैं टू एक्सचेंज एनर्जी. तो जब हम अपनी टीम के साथ काम करते हैं, हमारा है, हमारे मेंटर्स हैं, वो लोग हमारी हेल्प करते हैं जहां तक वो कर सकते हैं वो करते हैं. जब वो लोग अपने किसी और काम में हैं, तो वी शुड ऑल्सो वर्क लाइक सनफ्लावर्स, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी टीम को हर तरह से, हर हर सिचुएशन हम लोग को आगे लेके जाने के लिए वी शुड वर्क. आई जस्ट वांट टू ऐड.
0: इट इज अ ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन सीमा जी. अगर आप अलाउ करेंगी तो मैं ये स्लाइड अपने जो हमारा पीपीटी है इसमें ऐड करना चाहूंगी. आई हैव नेवर हर्ड सच अ ब्यूटिफुल थिंग. मतलब डेफिनेटली ये वर्थ ऐड करने का है कि जब जब सूरज चमकता है, यानी कि जब पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तब तो हम एज अ टीम काम कर रहे हैं. बट जब कठिनाइयां आ जाती हैं तो हमें एक दूसरे की तरफ देखना है, एक दूसरे का साथ जो है वो एज सनफ्लावर, एज ए गुड टीम मेंबर हमें वी शुड नॉट यू नो लेट गो कि अगर आज कठिनाइयां हैं तो आज हम टीम नहीं है, अब हम अलग अलग काम करेंगे. जब तक कि सब कुछ अच्छा था तब तक हम एक अच्छी टीम की तरह काम कर रहे थे. आज क्योंकि प्रॉब्लम आ गई, सन नहीं है, अब हमें रोशनी नहीं मिल सकती, तो रोशनी हमें एक दूसरे से लेनी है. वेरी गुड, थैंक यू सीमा मैम. सो दैट वॉज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन आई हैड क्रिएटेड जस्ट ऑन टीम वर्क. वो हम आपसे शेयर कर देंगे. बट ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है. चाहे आज यहाँ पे हैं आप, चाहे कल बड़े हो किसी कंपनी में जाएंगे, चाहे हम ये प्रोफेशनली बात करें तो ज्यादा मतलब ये स्लाइड्स रहेंगी. पर्सनली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पर्सनली भी हम घर में अकेले नहीं होते. हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे. और जब अगर शादी हो जाती है, स्पेशली फॉर लेडीज, महिलाओं के लिए, हम दूसरे घर जाते हैं तो सास ससुर हो सकते हैं, वहां पे पूरी एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है. तो उनको भी हम कैसे एक परिवार को एक टीम की तरह देखें, ये भी शायद सोचने की हमें जरूरत है. क्योंकि आजकल इतने मनमुटाव हैं, इतनी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही वाला एटीट्यूड है ना कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो. लेकिन हम सबको तो ये नहीं समझा सकते, सिर्फ खुद को ये समझा सकते हैं. इन छोटी छोटी चीजों को हम आप तक इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हो सकता है ये छोटी सी चीज किसी की लाइफ में कोई बदलाव लेके आ सके. मुझे मेरे काम का ये पार्ट नहीं है लेकिन मुझे करने में मजा आता है आपसे सीख. जैसे आज मैंने नई चीज सीखी है सीमा मैम से, ऐसे ही मैं चाहूंगी जो लोग लगातार जुड़ रहे हैं वो कोई ना कोई नई चीज, कोई एक नई सीख हम सबके साथ शेयर करें. बिकॉज सिर्फ मेरा बोलना अच्छा नहीं है, सब सबके पास वो नॉलेज है, सभी पढ़ रहे हैं, सभी के पास वो एग्जाम्पल्स हैं. और कुछ भी एग्जाम्पल सही या गलत नहीं होता क्योंकि हम सब लाइफ से सीख रहे हैं. अगर हम सभी शेयर करने शुरू करेंगे तो आप सोचिए कितना कुछ हम सीखने को मिलेगा. इस सेशन में आना कोई जबरदस्ती नहीं है. जिनको लग रहा है कि कोई इम्पोर्टेंट काम है या कुछ और प्रायोरिटी है, आप प्लीज मत आइए इस सेशन में. ये सेशन इन एनी केस आपसे शेयर कर दिया जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास वक्त है और आपका दिमाग इस रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, आप तभी भी सुन सकते हैं. सो देर इज नो मैंडेटरी, यहाँ कोई अटेंडेंस नहीं है. रिकॉर्ड किया जाता है जस्ट क्योंकि ये सेशन हम आपसे शेयर करेंगे ताकि वो आप जब चाहें सुन सकते हैं. ये जूम जूम यूजर का जोक तो हम सबको सुनना है, राइट? वो क्या जोक चल रहा था? फतेहपुर सेंटर, हाँ फतेहपुर, राइट।
2: सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी, यूट्यूब ये चला था कि आपने वहां पे एक पॉइंट रखा था कि सब जो लीडर होता है वो ये चेक करता है कि जो किचन में चीनी है या नहीं, या फिर चाय की पत्ती है या नहीं, या मैम बट आई लीडर, मैं ऐसा कुछ मैंने गलती की तो सो मुझे हंसी आई अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, आज मैम जो बात कह रही है वो डीआईटी में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अब
0: राइट,
2: इसलिए
0: हमने
2: मुझे
0: खेल,
2: मैम, या मैम डज
0: बहुत
2: नॉट
0: अच्छा
2: जोक
0: पॉइंट,
2: मैम, या मैम
0: बहुत
2: ये
0: अच्छा
2: जोक नहीं था
0: पॉइंट।
2: मैम, यस मैम, क्योंकि
0: नहीं
2: मैंने
0: मैंने
2: ये
0: ये
2: गलती फील
0: नहीं
2: की कि मुझे
0: ना,
2: इन्हें किया है, सो मुझे थोड़ी सी हंसी आई अपने ऊपर आई इस बात को लेकर के, और मेरे
0: नो
2: जो
0: प्रॉब्लम,
2: मेंबर्स हैं उनको भी लगा कि तो सो सॉरी मैम, मैंने ऐसा
0: नो
2: कोई
0: नो सॉरी की
2: प्रॉब्लम
0: बात ही नहीं है,
2: इसके,
0: मुझे लगा कोई अच्छी बात चल रही है तो
2: नो
0: हमें भी
2: नो
0: बोला
2: नो
0: जाए। तो
2: नहीं
0: मैंने ये
2: मैम,
0: नहीं बोला था कि लीडर जो है वो ये देखेगा चाय पत्ती है कि नहीं, मैंने
2: या
0: बोला
2: मैम
0: था,
2: या मैम,
0: मैंने ये कहा
2: अच्छा
0: था कि रोल्स बहुत जरूरी है डिफाइन होना, हमारे सेंटर में या हमारी टीम में किसका क्या रोल है। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमारे ऑफिस में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कुछ चीजों का हिसाब रखना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो और 10 लोग हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई 2 लोग उसमें से उस दिन नहीं आए, तो एज ए टीम मैं ये नहीं कह सकती ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। एज ए गुड टीम मुझे थोड़ा सा आइडिया है अगर, तो मैं कह सकती हूँ ठीक है आज वो नहीं आए तो मैं उसका उसकी जगह ये काम करने को तैयार हूँ। तो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टीम वर्क, राइट। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? वेरी
1: गुड आफ्टरनून मैम, सुनीता
0: गुड
2: फ्रॉम।
0: आफ्टरनून,
1: मैम जैसा कि आपने आज सारे पॉइंट इतने अच्छे से बताया, तो उसी का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जो स्प्रिंगवुड स्कूल शीतला कॉलोनी का है, इतना प्रोग्रेस कर रहा है टीम वर्क की वजह से ही कर रहा है। कहाँ लास्ट सेशन जुलाई में मेरे पास 11 एनरोलमेंट थे और अभी मेरे पास 75 स्टूडेंट्स एनरोल हो चुके हैं
0: वेरी गुड वेरी गुड,
1: और पेरेंट्स आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ रहा है, और ये रिजल्ट है हमारे टीम वर्क का और आपके सेशंस का, और जो भी मेरी हेल्पर्स हैं, मेड हैं, और जो भी मेरी टीचर्स हैं वो मुझे पूरा सपोर्ट करती है। अगर टीम वर्क ना होता तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाते।
0: नहीं
1: थैंक यू
0: कर
1: सो मच।
0: पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टीम्स अच्छी नहीं थी और वो नहीं कर पाई, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि भाई हमारी सैलरी आई कि नहीं आई, फोकस यही था कि इस मंथ हमारी सैलरी आई नहीं तो अब हम काम नहीं करेंगे। ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे पिछले कुछ दिनों में हमारे सामने आए। सैलरी इज नॉट एन इश्यू, बट अगर हमारे स्कूल चल ही नहीं रहा है, अगर हमारे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर है ना, उस कमी को तो हम समझेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। वरना अगर बच्चे ही नहीं है, बच्चे हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर स्कूल सिर्फ किताबें चेयर टेबल रखने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना, अगर 10 ही बच्चे हैं। सो वेरी गुड एग्जाम्पल सुनीता जी, आपकी टीम इतने अच्छे से 75 बच्चों को मोबिलाइज कर पाई, अपनी अपने आप को आप सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं था।
1: यस मैम, यस मैम। हेलो मैम,
0: हेलो हेलो, हाउ आर यू?
1: आई एम फाइन मैम।
0: गुड दैट आपने ज्वाइन किया है,
1: क्या मैम?
0: अच्छा लगा आपका देख के कि आपने ज्वाइन किया है।
1: मैम हमारे सेंटर में बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि उनके घर वाले मतलब उनको यहाँ भेजते नहीं थे, तो जब नई नई लेडीज आती थी तो बोलती थी हमारे घर वाले नहीं भेज रहे, तो हमने घर वालों के साथ बात की, तो अब खुद घर वाले आके यहाँ छोड़ देते हैं लेडीज को, देखते हैं कि खुद लेडीज इतना अच्छा टीम बना के सीख रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है मैडम, और लेडीज को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम एक जगह पे आके इतना अच्छा सीख रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए मैम, आप उनके साथ भी बात कर लीजिए, देखो बहुत
0: हेलो
1: सारे
0: मैम,
1: स्टूडेंट्स हैं।
0: हेलो हेलो एवरीबॉडी, आपको कैसे?
3: वही हम बता रहे कि हमें इधर रीड इंडिया में आके बहुत अच्छा लगता है। रीड इंडिया, रीड मीन्स पढ़ना सीखना। यहाँ पे आके हम जो पढ़ते सीखते, मतलब पार्लर हुआ, जो जो इधर है वो सब हम पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे घर वाले हमें ना इनक्रीज करते कि लेडीज है, सिर्फ लेडीज है इधर, कि आप जाओ पढ़ो, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो, आगे पढ़ो जैसा। और फिर इधर सोना मैडम भी हमें इंक्रीज करते कि ना आप आइए, और लेडीज होंगे, स्टूडेंट होंगे, कॉलेज स्टूडेंट या स्कूल स्टूडेंट है, वो भी इधर आते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में, हमें अच्छा लगता है। थैंक
0: अच्छा
3: यू
0: ठीक है,
1: सर।
0: आप सबको सबको मैं देखती हूँ काफी सारे यंग बच्चे हैं। सो अगला सेशन अगर हम इंटरव्यू स्किल्स पे रखें या फिर रेज्यूमे राइटिंग पे रखें, सो विल अगर जो जो लीडरशिप से लिंक्ड होगा वो तो हम करेंगे ही, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यूथ हियर। तो यूथ के लिए अगर एक सेशन आप चाहेंगे तो हम रख सकते हैं। ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे ऐसा लगता है, बट आप बता सकते हैं इफ इफ यू नीड। हम रेज्यूमे राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स पे एक सेशन कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी, ऑल राइट। सो सभी अगर किसी को और कुछ इनपुट देना है, कुछ शेयर करना है तो प्लीज करिए, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन।
1: जी मैम, सुमन
0: हाँ जी सुमन जी,
1: मैम, सबसे पहले आपका थैंक यू, रीड का थैंक यू कि हम लोग इतना कुछ सीखते हैं रीड से, और टीम वर्क में आप लोगों से सीखा है टीम वर्क में कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। और शीतला बलून जैसे भी स्कूल हमारा टीम वर्क में बहुत अच्छा चल रहा है, उसी तरह से सेंटर में भी हम लोग टीम वर्क में ही काम कर रहे हैं। जो टीम है यहाँ की बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे स्वाति जी है, मास्टर जी हैं, और सभी लोग जो जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं और नए भी आ रहे हैं, टीम वर्क हुआ तभी हम लोग जो लेडीज को रोजगार देने का एक मिशन है इसको हम लोग चला पाए, और इसको हम लोग आगे लेके जाना चाह रहे हैं इसीलिए। और आज वाले सेशन से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो थैंक यू मैम इस चीज के लिए, थैंक यू।
0: थैंक यू। मुझे भी सीखने को मिला क्योंकि मुझे सीमा मैम ने एक बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है, और डेफिनेटली जो स्लाइड्स आपके पास पहुंचेंगी ये स्टोरी उसका पार्ट होगी। सो थैंक यू मेरी नॉलेज भी बढ़ाने के लिए, एंड आई होप ऐसे एग्जाम्पल्स और भी आए आगे। सो आप लोग सब सेफ रहेगा, स्पेशली जहाँ बहुत बारिश हो रही है। सीमा मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: स्मिता जी, मैं आप सबको शायद पता भी है, मैंने कॉर्पोरेट के साथ भी बहुत साल तक काम किया है, तो एक बहुत ही मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत रिनाउंड कंपनी, उसके सीईओ, उनके साथ मेरी मीटिंग थी रिगार्डिंग माय कैफेटेरिया सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग, वो मैं मेरे को इतना अजीब लगा। मैंने बहुत बहुत बार बहुत लोगों से सुना था कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक एक दूसरे को क्रश करके ही आप ऊपर जा सकते है ना, टीम वर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता होगा। वो
0: बिल्कुल
1: इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ से मेरी बात हो रही थी यार, कि स्ट्रेट अवे सेड ऑन माय फेस, ही सेड कि 10 में से आपको आगे बढ़ना है तो 9 को यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, यू हैव टू क्रश देयर हेड्स, उसके बाद ही आप कमर बन के आ सकती है मैम। बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपने आपको सर्वाइव करना है, तो आप अपने आप को यूनिक रखिए, 9 को हटाइए, तब आप पहले नंबर पे आए। वो मेरे लिए बहुत खराब था सुनना, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था लेकिन अपने सामने मैंने ये देखा कि वो खुद मुझे कह रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे अलग रखिए, सबको पीछे छोड़ के ही आपकी तरक्की। लेकिन आज मैं रीड इंडिया के साथ काम कर रही हूँ, एंड वी आर टेकिंग सेशंस ऑन लीडरशिप, ऑन टीम वर्क, एंड सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट, सो लकी कि हम लोग टीम वर्क के बारे में सेशंस ले रहे हैं, टीम वर्क में और कैसे बेटर कर सकते हैं, अपने अपने सेंटर्स पे हम टीम बना के काम कर रहे हैं, और एक बिग फैमिली, बिग इंडिया की फैमिली जो कि महाराष्ट्र और कहाँ कहाँ तक पूरे इंडिया में पहुंची हुई है, उस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। वी आर नॉट टचिंग एनीबडीज हेड, वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर। थैंक यू सो मच इंडिया, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सीमा मैम। इट इज अ रियल थिंग। ऐसा ऐसा कॉर्पोरेट में ऐसा ऐसा हर रोज हर घड़ी होता है कि हम किसी को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे ही हम देखेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो किसी को तो दबाना ही पड़ेगा, किसी को साथ लेके। सिर्फ हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ही चाहते हैं कि शायद मतलब माँ बाप ही हैं जो एक एक तरीके से चाहते हैं कि मतलब बच्चे हमसे भी आगे बढ़ जाएं। शायद और कोई इस दुनिया में नहीं चाहेगा कि कोई और मुझसे आगे बढ़ जाए, बट एज अ टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं आगे बढ़ जाए, बट एज अ टीम जब हमें काम करना है, मैम ने मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। वो हमेशा बोलेंगी अच्छा तुम ये भी कर लो, अच्छा वो ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर लो। अब वो करना है नहीं करना है वो मेरे ऊपर है, राइट? सो हमने मैम से सीखा है कि एज अ लीडर किस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं विद आवर टीम। अकेले तो वो शायद मेरे को लगता है यूएन की भी हेड, मतलब यूएन में, यूनाइटेड नेशन में किसी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सब पार्ट में वो किसी लीडरशिप रोल पे होती है, बट उन्होंने ये अपने ऊपर रखा है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, रीड में काम करना है, अगर वो अकेले निकल जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी किसी मतलब सबसे आगे ही निकल जाएंगी, बट

0: हम 5 लाख लोगों से जुड़ के हम कहते हैं कि हम आज यहाँ पे 80 लोग जुड़े हुए हैं, 80 लोगों के साथ शायद 10-10 लोग बैठे होंगे, तो हम 800 लोग हो गए, 800 लोगों की भी फैमिली हो गई, तो आप उसको अगर 10 से गुणा करते हैं तो 8,000 लोग हो गए। ऐसे करते करते हम कहते हैं कि रीड सेंटर पे पिछले 17 साल से करीबन 5 लाख लोग आए हैं। अब वो 5 लाख लोग कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सीख के गए होंगे, चाहे वो यही सीख के गए होंगे कि किताब खोल के पढ़ना कैसे है, दो शब्द पढ़ के गए होंगे, कुछ सीख के गए होंगे। तो रीड का गोल यही है, और रीड का ये गोल हम इकट्ठे ही उसको अचीव कर सकते हैं, एक साथ ही अचीव कर सकते हैं, अकेले नहीं अचीव कर सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम, स्पेशली इन आवर केस। और कहीं बाहर भी जाते हैं आप लोग, जो बच्चे सीख रहे हैं, जो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे आगे लाइफ में, आप ये देखेंगे कि हर कोई इसमें बिलीव नहीं करता। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आई विन यू लूज एटीट्यूड पे ही काम करते हैं। हमें कैसा होना है ये हमारी चॉइस है। जैसे सीमा मैम ने बोला, शायद वो उस कंपनी में काम नहीं करना चाहती थी, बट वो कंपनी में कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, और वो अगर लीडर कह रहा है कि यू हैव टू विन, तो ही और शी हैज टू विन अगर उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें अपने अंदर कौन सी वैल्यूज लानी है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। तो जो लोग रीड में जुड़े हैं उनको तो हम यही कहेंगे कि प्लीज आप टीम वर्क में काम करिए, आई विन यू विन, मतलब हो सकता है विन थोड़ी छोटी हो लेकिन सबकी विन हो, इसी में ही हमारा यही हमारा कॉमन गोल। सो थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए 1 घंटे के लिए, एंड लिसनिंग टू मी एंड शेयरिंग सो मेनी नाइस थिंग्स। सो कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी,
1: मैम,
0: हाँ जी,
1: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने टीम वर्क के बारे में मुझे बताया, हम लोगों को अच्छा लगा, और कि ये नॉलेज बढ़ती है कि हम कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे लोगों के साथ मेंटेन होकर के अपने वर्क को आगे बढ़ाएंगे। बट मैम, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, किसी को बताना होता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे स्टे करते हैं, रहते हैं, यहाँ पे हमने अपना सेंटर ओपन कर रखा है, कुछ करना चाहते हैं। वहाँ की जो आसपास के लोग हैं ना, वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं। अब वो कंजर्वेटिव टाइप के हैं तो वो निकल ही नहीं रहे उससे, तो उन्हें कैसे, किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करें? मैम ये तो समझ, हम लोग क्या है कि अभी कम एज के हैं, कुछ इतनी नॉलेज नहीं होती है, अभी जस्ट है, ग्रो वे यूथ है,
0: तो
1: तो इतना सम...
0: इसका, हाँ, इसका जवाब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे पास तो महारथी है इसका जवाब देने के लिए, मेरे पास सीमा जी
1: मैम आई
0: है,
1: वांट टू मीट,
0: फरा
1: आई
0: है।
1: मीन क्या
0: नहीं
1: बात,
0: नहीं 1 मिनट आप रुकिए। सो आई
1: जैसे
0: वुड रिक्वेस्ट फरा, सीमा जी, मीना, सना, ये
1: हाँ
0: तो आप कंजर्वेटिव कम्युनिटी की बात कर रहे हैं।
1: जी मैम,
0: सो
1: कंजर्वेटिव
0: बिल्कुल बिल्कुल आपको जवाब यहीं पे मिलेगा। सो प्लीज प्लीज बी माय सपोर्ट, मैं इसमें वीक हूँ, मेरी टीम मुझे सपोर्ट करेगी।
2: यस मैम, एक्चुअली मैम आदित्य इज फ्रॉम माय सेंटर ओनली फतेहपुर।
0: यस,
2: तो मैम अभी न्यूली लॉन्च सेंटर है, तो इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये मैंने आदित्य को भी बोला था कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बिकॉज इतनी जल्दी कम्युनिटी बाहर नहीं आती है। वी रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दिस।
0: राइट। सो फरा, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी फतेहपुर सेंटर को? आप बताएं कि कंजर्वेटिव कम्युनिटी में कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं।
3: पहले तो मैं थोड़ा सा हिंदी में जानना चाहूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं
0: तो
3: आता।
0: वो ये कह रहे हैं फरा कि उनकी कम्युनिटी में लड़कियों, उनकी जो समुदाय है वो इतना खुले दिमाग का नहीं है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो प्लीज मुझे माफ करेगा, बट आई थिंक दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, कि वो लड़कियों को नहीं निकलने दे रहे हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि सेंटर पे लड़कियां आए या महिलाएं आए या कोई भी आए सेंटर पे सीखने के लिए।
3: जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी इनका नया सेंटर खुला है, और अगर इनका नया सेंटर खुला है तो इतनी जल्दी वो लोग बाहर नहीं आएंगे, धीरे धीरे करके आएंगे। इनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर इन्होंने एक दो लड़कियां या 5 लड़कियों को भी बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छी वहां पर सेंटर की बातें पहुंची, तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां खुद आना शुरू हो जाएगी, इनको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये है कि हम समझा कैसे रहे उन्हें, हम किस तरीके से बता रहे हैं, क्या चीज उन तक पहुंच रही है, कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी, ऐसा लग रहा है मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो हम
0: एक्चुअली
3: वहां पर क्या चीज पहुंचा रहे हैं, पहले हम उनको बताएंगे कि हमारा सेंटर किस लिए खुला है। लाइब्रेरी है, सिलाई है, पार्लर है, कंप्यूटर है, बट खुला है लेकिन लड़कियों के लिए क्यों खुला है, लड़कियां आगे इससे सीख के क्या करेंगी, उनके लिए ये किस तरीके का प्रॉफिट हो सकता है, किस किस तरीके से वो सक्षम बन सकती है, तो वो थोड़ा सा आप उनको समझाइएगा। और अगर वो आपकी बात नहीं समझे तो दो तीन टीचर्स को लड़कियों को लेके जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करवाइए, जब तक आप अच्छे से नहीं समझाएंगे तब तक वहां के लोग नहीं निकल पाएंगे।
0: थैंक यू
1: मैम
0: फरहान।
2: जी, नमस्ते स्मिता जी।
0: नमस्ते नमस्ते। थोड़े आप हेल्प करेंगे हमारे दोस्त को, यहाँ पे इनका
2: जी
0: नया
2: जी जी
0: सेंटर खुला है।
2: मैम। हाँ देखो, सबसे पहले हम जिस गांव में भी आज सेंटर निकालते हैं, नई कम्युनिटी होती है, तो सबसे पहले लोगों के साथ हम एक रिश्ता बनाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जैसे हम लोग किसी गांव में जाते हैं और हमारी मीटिंग लेके जाते हैं कि हम रीड इंडिया में ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि उसके घर पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी का कोई बीमार है या उसके बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले हम उसकी बात सुने। हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम है उसको हम हल कर दें। कभी कभी स्कूल में अपनी पहचान होती है कि चलो तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हम करवा देते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले गए, तो एक बार हमने जिस बंदे का काम कर दिया तो वो हमेशा हमारा फ्रेंड बन जाता है। फिर उसको आप कहीं कहीं पे भी बोलो कि तुम इस सेंटर में आ जाओ तो वो तुरंत आने को तैयार है। और उसी गांव में जो हमारे सेंटर से जो लड़कियां सीख के गई हैं, जब 10 लड़कियां दूसरी होती हैं और 5 लड़कियां हमारे जो सेंटर से निकल के जाती हैं उनमें एक अलग ही चेंज होता है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पे जाके कम्युनिटी में उनकी मीटिंग करवाएं कि देखो ये आपके यहाँ से लड़कियां नहीं थी और इनमें इनसे पूछो कि इन्होंने वहां पे क्या क्या देखा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो शुरुआत में ये चीजें अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे कम्युनिटी का एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों के साथ, तो वो बहुत हेल्प करता है। जैसे अभी भी हम लोग नए नए और गांव को जोड़ रहे हैं, तो उसमें भी हम यही प्रोसेस कर रहे हैं। 5-7 लड़कियों को जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, मैं उनको लेके जाते हैं, उनसे बात कराते हैं, तो ऑटोमेटिक 10-10 20-20 रजिस्ट्रेशन डेली होते हैं।
0: थैंक यू मीना
2: अच्छा
0: जी।
2: लगाइए
3: सर कि वहां लड़कियां निकलना क्यों नहीं चाह रही है, क्या वो स्कूल नहीं जाती या फिर वो पेरेंट्स मना कर रहे हैं या वो कुछ कुछ से खुद से कुछ सीखना नहीं चाहती, कैसा माहौल है वहां
1: एक्चुअली
3: का, क्योंकि हमने तो नहीं देखा ना।
1: एक्चुअली मैम टाउन एरियाज में क्या है कि जब थोड़ा जो पिछले होते हैं ना, थोड़ा सा जब थोड़ा सा ग्रो करते हैं, तो आजकल आपको पता है ना सोशल मीडिया जो बहुत बच्चों को टाइम जो है वो खराब करवा रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, तो उनका मन ही नहीं करता है कि कुछ स्किल डेवलपमेंट करें, कुछ सीखें, या आते भी हैं तो कुछ नए तरीके से, या फिर लोग जॉब के लिए करते हैं कि हाँ ये ऑप्शन है तो मुझे सिर्फ जॉब सीधे मिल जानी चाहिए, वो स्किल डेवलपमेंट के लिए बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आते हैं क्लास में बैठे, कोई कॉलेज भी जा रहा है पढ़ रहा है फिर वहां से निकल रहा है, उनको मार्क्स की चिंता भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को उनकी जो बिहेवियर है या जो उनकी आजकल जो टाइम का चल रहा है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई गेम खेल रहा है तो कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, तो ये सारी चीजें लोगों के अंदर बनती जा रही है। एक्चुअली वो कंजर्वेटिव है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, अंदर से वो एकदम शांत है क्योंकि वो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पे ये सेंटर ओपन हुआ है, यहाँ पे आप स्किल डेवलपमेंट कर लो। तो इसके लिए मैम कोशिश की जा रही है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस करने का क्या और भी रीजन हो सकता है, जब मैंने अच्छे अच्छे सारे उनको चीजें बताई कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, एजुकेशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, एजुकेशन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप बैठ के, ढेर सारी बुक्स हैं आपके पास, कोई भी बुक आप बैठ के पढ़ सकते हैं, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, तो लोग आते हैं, लोग विजिट करते हैं फिर चले जाते हैं, उसके बाद बात ही नहीं करते, भूल जाते हैं, तो ये चीज करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन
2: आप
1: रखा।
2: एक चीज कर सकते हैं, आप देखिए कि किस तरह की स्किल्स की जरूरत है उस वाले
1: जी
2: एरिया में, आपके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी स्किल्स के लिए आप ज्यादा उनसे बात करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। जैसे हम लोग बिल्कुल एकदम टिपिकल गांव में बैठे हुए हैं जहाँ पे इलिटरेट लोग जाते हैं, तो उनको तो हम ऐसी चीजें सिखाते हैं जैसे स्टिचिंग हो गया या और कोई स्किल्स जो जो अनपढ़ औरतें भी कर सकती हैं उस पर फोकस करते हैं। आपके वहाँ देखिए कि किस टाइप की स्किल्स पे वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे, उसी के फोटोग्राफ्स आप दिखाइए उनको, तो अपने सेंटर के फोटोग्राफ दिखाइए और
1: जी
2: लेडीज
1: मैम,
2: को, लेडीज स्टाफ को लेके जाइए उनके साथ,
1: और
2: दैट विल बी
1: आपकी
2: मोर इम्पोर्टेंट।
3: किटी ज्यादा डेवलप है तो फिर आप एडवांस कोर्स वहाँ स्टार्ट करिए, जैसे कि अगर बच्चे बेसिक कंप्यूटर नहीं सीखना चाह रहे कि बेसिक तो हमें आता ही है, तो थोड़ा टेली सी टेट मतलब ये चीजें स्टार्ट करिए, ट्रिपल सी का कोर्स वगैरह, कि जिससे बच्चों को सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आए, वो लगे कि हाँ हमारे लिए सेंटर खुला, ये नहीं कि हमने बेसिक चीजें रख दी है, बेसिक कंप्यूटर सिखा रहे हैं, बेसिक सिलाई सिखा रहे हैं, बेसिक पार्लर सिखा रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं सिखा सकते, तो बच्चों को लगता है कि ज्यादा जहाँ एरिया डेवलप होता है कि ये चीजें तो हमें बेसिकली घर में आती है, हमारे किस काम आने वाली चीजें, तो थोड़ा
1: एक्चुअली
3: सा
1: मैम
3: एडवांस भी रखिए।
1: मैंने ये भी बताया कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को,
2: फ्रेंडली
1: मैंने ये
2: माहौल
1: भी कहा
2: चाहिए।
1: कि टेंथ और ट्वेल्थ तक के बच्चों को मैं एजुकेशन भी दे सकता हूँ। आपके कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है या आपके कुछ ऐसे ही आप के अंदर कुछ फीलिंग्स टाइप की प्रॉब्लम्स है तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ट्यूशन के लिए भी कह रहा हूँ, स्पेशली बताने के लिए कि हमें
3: हाँ,
1: अलग से।
0: आप म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए हैं।
1: ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी हेल्प किया। हम लोग ट्राई करेंगे और बेटर करेंगे। ओके मैम,
0: ओ
1: या मैम,
0: थैंक यू, ये
1: और
0: टीम वर्क का
1: थैंक
0: बहुत अच्छा एग्जाम्पल था मेरे सामने सामने। सभी लोग चाह रहे थे कि इनका सेंटर जो है वो किसी तरीके से चल चल पड़े, और शायद हम लोग कभी मिले भी नहीं है और शायद हमने अभी आपका सेंटर देखा भी नहीं है, बट एवरीबडी वांटेड कि ये टीम, ये रीड का सेंटर है और ये चल नहीं रहा है। सो मतलब कितने पैशन के साथ सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, तो आई थिंक इससे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल नहीं हो सकता था टीम वर्क का। आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं जान पा रही, फतेहपुर से जो है
1: आदित्य श्रीवास्तव,
0: आदित्य।
1: आदित्य।
0: आदित्य आपके ना ये जो सना का सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने, आपका जो सना का ये जो सेंटर है यहाँ पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से सीख के अभी वो कुछ कर रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं अपने सेंटर पे ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और वो बच्चे भी शुरुआत में शायद उतना ध्यान नहीं देते थे और शायद वो इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आज 5 साल के बाद वो जहाँ पे है, मैंने हमने खुद सुना है उनके मुंह से कि कितना फायदा हुआ है सेंटर को। सना प्लीज हेल्प हिम टू मोबिलाइज, एंड आप कोशिश करिए कि जो आपका
2: यस
0: जो जो स्टोरीज थी, जो जो बच्चे वो पीछे बोल रहे थे हम जब आए थे ज्ञानेश सर के साथ, दोज
2: मैम,
0: पीपल गो टू हिज सेंटर एंड वो मोबिलाइज करने में थोड़ा मदद करें, ये बताते हुए कि उनको कैसे फायदा हुआ है। शायद किसी को देख के हम सीख जाए कि हाँ यू नो दिस सेंटर कैन बी एड वैल्यू टू अस।
2: लोग
0: गुड आफ्टरनून।
2: वर्क कर रहे हैं उस पर।
0: ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, थैंक यू। हाँ जी ऋतु जी,
3: मैम, मैं भी एक एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ।
0: हाँ जी
3: अभी मैम हमें जब टारगेट मिला था तो हमने नूना माजरा, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है मैम, तो वो लोकेशन हमने ली थी। वहाँ के सरपंच इतने हठी थे कि मतलब वो मान ही नहीं रहे थे कि भाई आप लोग एनजीओ चला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो हमने उनको मतलब अपना पूरा डिटेल दिखाया, ऑनलाइन भी दिखाया उनको सारा, तो वो उनको डाउट्स थे जो उनके वो क्लियर हो गए। पैम्पलेट्स भी हमने दिखाई, फिर हमने सर को कहा कि आप हमारे सेंटर पे विजिट करिए, और
0: जी
3: आई नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सर आए यहाँ पे, सर ने देखा कि हमें जो XDCP सर हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो रेडी हो गए। और फिर उन्होंने खुद ही, आशा वर्कर हैं और आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनके साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, क्योंकि पहले वो हमें गांव में जाने ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा विजिट था वो सरपंच के साथ था कि हम सरपंच से बात करें कि वहां का कैसा माहौल है, हमें कहाँ बिल्डिंग लेनी चाहिए। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया था, कि तो हम भी इतने हताश हो गए थे कि भाई पता नहीं यहाँ पे सेंटर चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन सर के विजिट से, क्योंकि हमने इतना उनको पूरा प्रूफ दिखाया कि हमारे कितने सारे सेंटर्स हैं, सारा उनको डिटेल दिखाया, तो वो एग्री हो गए। फिर अब वो इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि पानी की हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने हमें फ्री जो जो गांव में पंचायत घर होते हैं वो हमें दिलाया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी सपोर्ट करवाया उन्होंने, और बहुत सारा सपोर्ट करवाया है, क्योंकि जो ये हमारा कम्युनिकेट है वो देख के कि मतलब कम्युनिटी में हम कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से मिले, बात की उन्होंने, तो मैम ऐसे भी उनके डाउट्स क्लियर होते हैं लोगों के। तो जब हम विजिट करवाते हैं, कम्युनिटी से मिलवाते हैं, तो जो डाउट होते हैं जिस बंदे के वो क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे
0: बिल्कुल
3: आके। तो हमें
0: बिल्कुल
3: अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्क अगले बंदे को दिखाने पड़ते हैं कि हमारे आगे कैसे सपोर्ट मिल रहे हैं हमें और हम लोग क्या कर रहे हैं। थैंक
0: बिल्कुल
3: यू।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि एनजीओ बहुत सारे चल रहे हैं और शायद सभी एनजीओ का अपना अपना कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगा। हमारा स्ट्रेंथ जो शुरुआत में बताया था कि हम जो कमिट करते हैं वो कम्युनिटी को डिलीवर करते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सो थैंक यू वंस अगेन, टाइम बहुत हो गया है, लोग छोड़ के मतलब बैठे हैं अपना काम। सो आई विश एवरीबडी सेफ, बहुत
3: हेलो,
0: बातचीत कहीं हो रही है। सो कौन बोलना चाह रहा है? फरजाना, फरजाना।
3: नमस्ते
0: हाँ जी
3: मैम,
0: नमस्ते।
3: मैं सर के लिए एक थोड़ी सी बात मैं भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करती हूँ।
4: वो सर से सर आप ना टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमको पता है अभी आपका सेंटर नया नया है, और क्योंकि ऐसे एरिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो एक दूसरे को कामयाब होते देखते हैं ना, तो उनके उनको देखा देख तो वो खुद को उनके मन में एक एहसास उठता है कि हाँ मैं भी ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि बहुत से लोग देखा देख भी आते हैं। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, रीड इंडिया हमेशा बड़ा है और बढ़ता रहेगा, देखना एक दिन बहुत
0: वेरी
4: अच्छा से
0: गुड,
4: बढ़ेगा।
0: थैंक यू
4: जी मैम,
0: फरजाना, थैंक यू, राइट,
4: थैंक यू मैम।
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, एंजॉय, बाय बाय।

मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने गुरु के ऊपर 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी डांट से कभी प्यार से जीवन जीना हमें सिखाते।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर ये सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल। ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, क्योंकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से इसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेंट्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा।

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु जयसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु जयसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में भी देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हों, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है, फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता। उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि एक 1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंदबुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंदबुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी, हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है, और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है, तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी, तो कुछ उनके ऐसे

0: किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो। हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है, परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लगाएंगे। और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज़म है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना। जो चीज़ें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीज़ें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इनको हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सकें और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सकें उतना अच्छा होगा।
1: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना। और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से। तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
1: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
0: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है। इसका नंबर है 011-264-66250। और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-66250। ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991। और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
1: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके और दूसरे लोगों की तरह इसकी इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे

0: के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
1: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं, पर वे अपनी काबिलियत को साबित करते हैं तो इनके माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती।
1: दोस्तों, ऑटिस्टिक लोगों की काबिलियत को पहचानते हुए उनके खास गुणों को समाज के साथ जोड़ना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशा और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कीचगढ़। दौसा जिला में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, NH-11 से 10 किलोमीटर दूर। इसकी आबादी लगभग 15,000 है।
1: गीचगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। गीचगढ़ की अपनी एक छटा है, इसमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
0: गीचगढ़ जो कि खूबसूरत और खुशहाल गांव है, लेकिन रोजगार की समस्या के सामने गांव के लोगों ने यहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है।
1: गीचगढ़ अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के अनुसार राजा गिद्ध यहां के महाराज थे, उन्हीं राजा के नाम पर इस गांव का नाम गीचगढ़ हुआ है। यहां का किला बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: आइए जानते हैं कुछ गीचगढ़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं गीचगढ़ के किले की ओर। यहां 280 सीढ़ियां चढ़ने पर हम पहुंचते हैं राम झरोके पर। आगे चलकर हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला सुदृढ़ता और सुंदरता के लिए विख्यात है।
1: किले के अंदर चलते हैं। ये हैं किले की बावड़ियां। ये प्राचीन समय में पेयजल का स्रोत रही है और ये किले के अंदर आप देख रहे हैं शिव मंदिर, ये है रामदेवरा, यहाँ जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ ऊपर इस जगह पर चलने पर पूरे गांव को एक साथ आप देख सकते हैं।
0: ये है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ से निकलकर हम किले के पिछले हिस्से पर पहुँचते हैं। यह तोप प्राचीनता और वीरता की गवाही दे रही है। ये है गीचगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पर हम चल रहे हैं बाकली के बालाजी की तरफ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरे पर हजारों की संख्या पर भीड़ जुड़ती है।
1: यह है यहाँ का शीतला माता मंदिर। यहाँ पर शीतलाष्टमी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और होली के अवसर पर होलिका दहन के उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है।
0: आगे आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बावड़ी के बालाजी के मंदिर। इस मंदिर का नाम बावड़ी वाला बालाजी होने का कारण है मंदिर के पीछे बसी हुई बावड़ी। सन 1985 तक इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। अब लगभग 1995 से यह बावड़ी सूख रही है।
1: इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं बूटेश्वर महादेव मंदिर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन छतरियों की शोभा देखते ही बन रही है, इनको यहाँ के महाराजाओं ने बनाया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
0: कोटेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर।
1: यह है रामदेवरा और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो घंटाघर यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाया गया था। पहले इस पर बहुत बड़ी घड़ी भी जो है लगी हुई थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यह भी गांव के बीच में बसा हुआ, गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।
0: गीचगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ गीचगढ़ चार दीवारियों से घिरा हुआ था। गीचगढ़ के अंदर चार प्रमुख दरवाजे हैं, जिससे कि गीचगढ़ को एक बंद गांव के रूप में देखा जाता है। गीचगढ़ के आसपास गांव और ढाणियां मिलाकर कम से कम यहाँ की आबादी 25,000 है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गांवों के लोगों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ है बिजराज सिंह जी। नमस्कार बिजराज सिंह जी।
2: नमस्कार सर।
0: सर, आप इस गांव गीचगढ़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: जो गीचगढ़ जो नाम है वो एक गिद्ध राजा के नाम से पड़ा था, जो कि यहाँ पहले राज करते थे। क्या है कि वो पानी बड़ा पहले भरा हुआ था गीचगढ़ के अंदर, तो उनका रानी का जो हार गिरा हुआ था वो अपने त्रिवेणी जी के मंदिर में गिरा था, तो उसको हार को निकालने के चक्कर में पानी निकाला गया, मतलब जगह जगह से पहाड़ काट गए, तो ये धीरे धीरे बसावट होती गई गीचगढ़ की। तो राजा ने बसावट कर दी सबकी, धीरे धीरे सब आदमी उन्होंने घर बना लिए, ऐसे करके ये गांव बसा हुआ है गीचगढ़।
0: बिजराज जी, यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है?
2: आजीविका का स्रोत है अपने यहाँ पे खेती वगैरह और दुकानें वगैरह। तो अब धीरे धीरे लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या धंधा वगैरह नहीं है, तो वो दुकान पे तो सहमत नहीं है, तो जयपुर वगैरह से मतलब बाहर जाके मतलब काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे आदमी यार रह नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं सब। इसलिए गांव पहले बहुत खूबसूरत था, पर अब क्या है कि मतलब धीरे धीरे पलायन की वजह से मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव के ऊपर, और जो अभी ऐतिहासिक जगह है अपनी देखने की गीचगढ़ में, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
0: जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारा गीचगढ़ प्राचीन समय से ही राजस्थान में एक खुशहाली का प्रतीक रहा है, पर मौजूदा परिवेश में पलायन बेरोजगारी और प्राकृतिक समस्याओं के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय है हम लोगों को मिलजुल कर हमारे गीजगढ़ की बेहतरीन के लिए काम करने का, जिसमें स्थानीय लोग विशेषकर युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वरना गीजगढ़ सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेज से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारे स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड्स एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सेबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सेबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकल कर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेस के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहाँ मुझे खुजली हो रही थी वहाँ कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। भाव कैसा भी हो, साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो, इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है, जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हमें से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर, जैसे सार्वजनिक स्नान घर में, नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पिस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिये, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स है तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक सी आदमी को जो वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहां जहां वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौरतलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलेनिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: energizer. He's emotionally charged. He makes you work and work for the community. That is the power that we have learned from him. He has donated his entire Haveli for the Eid activities, you know.
1: तो झज्जर उन्होंने कैसे हमें अपनी पूरी हवेली दे दी कि गीता जी एक सेंटर मेरी कम्युनिटी के लिए भी बना दीजिए. तो दैट इज जेस्टर ही एक्सटेंडेड टू अस एंड टिल नाउ ही इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दैट झज्जर विलेज, मेहंदीपुर विलेज, दबोदा विलेज अ ब्यूटिफुल विलेज वेयर वन कैन गो एंड इवन यू नो स्पेंड डेज टूगेदर. The community is so, you know, welcoming, and the plants, the gardens he has created there, it's worth visiting that place also. So, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि Read India के जितने भी center हैं, वो community tourism को भी support करते हैं, because homestays are welcomed there by the communities, and we always make it a point that people come there and होमस्टे तो है ही है, पर जो खाना वो लोग हमें परोसते हैं, जो खाना हमें वो खिलाते हैं घर में बिठा के, घर में फ्रेश खाना कुक करके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वेलकमिंग आई शुड से दैट. और आसिफ अली जी के घर में तो मैंने कम से कम 100 बारी खाना खाया होगा. उनके घर में उनकी वाइफ को मैं नहीं मिल पाती थी, पर उनके ड्राॅइंग रूम में बैठ के खाना जरूर खाती थी, इतना तो मैं कह सकती. और मैं वेजिटेरियन थी, और उनके घर में तो नॉनवेज इट्स अ कल्चर देयर, आई शुड से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर. बट व्हेन आई यूज्ड टू गो विद माय टीम, स्मिता राय, नाहिद जुबेर एंड अदर्स, ही मेड इट अ पॉइंट कि दो डिशेस तो वेजिटेरियन होनी ही है, क्योंकि स्मिता और मैं दोनों ही वेजिटेरियन थे. तो ये हमारी बिगनिंग थी मेवात में चाइसा के सेंटर के साथ. और अभी डॉक्टर मिश्रा, यू कैन से समथिंग अबाउट द बेसलाइन.
0: जब आपने मुझे बोला कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो मेरी एक आईएएस फ्रेंड हुआ करती थी डॉक्टर निरुपमा, अनुपमा. तो जो डॉक्टर अनुपमा थी, शी वाज एन आईएएस ऑफिसर और शी वाज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेवात डेवलपमेंट एजेंसी, व्हाट यू कॉल इट, एमडीए. और उस समय बाद में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने अंसारी साहब, उनकी पत्नी भी मेवात में कुछ काम करना चाह रही थी. सी ऑल्सो टोल्ड मी डॉक्टर मिश्रा लेट अस गो टू मेवात एंड डू समथिंग देयर. मैं दोनों के साथ मेवात गया और मैं आपको और अपने दर्शकों को बहुत ही विनम्रता और निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ मेवात में काम करने का. लेकिन जब डॉक्टर गीता जी हमको बोली कि डॉक्टर मिश्रा हमें मेवात में काम करना है, तो पता नहीं मुझे कहाँ से एनर्जी मिली और मैंने कहा कि मैम लेट अस वर्क देयर. और हम वहां गए. जब हम वहां गए तो मैं एक महिला से मिला और वो महिला अनाज को फैला रही थी. उस महिला के साथ उसके 17 बच्चे थे, जो फोटोग्राफ मेरे पास है. तो और And she was expecting one more baby. उसके बाद मैंने देखा वहां का situations, वहां की गंदगी देखी, वहां का बहुत सारे चीजों को हमने देखा. Then I realized कि ये एरिया है जहां पर काम करने की जरूरत है. हमने उनके नमाज में भाग लिया, उनसे दोस्ती की और हम वहां पे काम करने लगे. शुरू में थोड़ा सा हुआ, लेकिन बाद में वो हमें इतने प्यार करने लगे, खास करके अशरफ जी, आसिफ जी और सारे लोग, पूरे गांव के लोग, महिलाओं को, वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, स्कूल के शिक्षकों को, उनको लगा कि ये लोग अपने लोग हैं. और हमने उनकी सारी जानकारी ली. वहां पे हर एक घर में 2-4 भैंस है और एक जो दूध वाला होता है जिसको दूधिया कहते हैं, उनसे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था. उनके दूध को बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में खरीदते थे. हमने सारा रिपोर्ट इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है. उसके बाद जो गीता जी ने कहा कि एक प्रपोजल आया और वो प्रपोजल 2011 में ही आ गया था मैं और 12 में वो बन गया था. तो वो प्रपोजल आया और गीता जी वर्क डे एंड नाइट. वो एक विजन ही कह सकता है कि अगर कोई दूसरा कंट्री डायरेक्टर होता तो रोड के साइड का ही जगह ले लेता, लेकिन गीता जी

0: बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हमें रोड के साइड का जमीन नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? मदर वॉज हिडन इन साइड हर एंड द मदर से लुक, बच्चे एक्सीडेंट में कुछ हो सकता है, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे. तो पीछे का वहां भी रास्ता है, पक्की रास्ता हो गया है लिया और वहां पे काम शुरू करने लगे. बाद में धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिला और लोगों ने ये महसूस किया कि रीड जो है ये रीड कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, कोई धर्मांतरण की संस्था नहीं है, कोई पॉकेट की संस्था नहीं है, यह कमिटमेंट की संस्था है. इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं हैं जो बहुत मातृस्नेह के भाव से काम करना चाहती हैं. और वैसा ही जिस तरह से ये कहने की तो जरूरत है कि गीता जी ने बहुत ही मातृभाव से अपनत्व को लगाते हुए वहां पर काम करना शुरू किया, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे. और उससे हमें ये लगता है कि इफ यू वर्क ऑनेस्टली नो मैटर, आप दुनिया के किसी भाग में काम करें, लोग आपको उसी समर्पण से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको गिव बैक आपको मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा. वो जो कंसेप्ट था वो गजब कंसेप्ट था और वो आपने देखा.
1: ओवर टू स्मिता. थैंक यू मैम. थैंक यू डॉक्टर मिश्रा. एज राइटली सेड, इट्स अ वेरी वेरी रिच कल्चर इन दिस कम्युनिटी, वेरी वेरी वार्म वेलकमिंग कम्युनिटी. As shared in the PPT, there are many, many programs that we have done in partnership with this community. We've done the setting up of community library and resource center. There are many, many women who've been trained on livelihood skills. Then we've had trainings on as advanced computer skilling. This was done through Adobe. IT skilling program for youth. Then since past 4 or 5 years, we have been doing Skills to Succeed program in this area and skilling women on enhancing their livelihood skills. We are having programs for mother and girl child literacy in this community. So each household have one mother and her girl child get coming to the center and walking towards a more literate future. So this is beautiful Mewat for us. As far as culture is concerned, they have very beautiful crafts such as they make changeris, the baskets made out of moonj grass. This grass is eco-friendly and it helps in keeping. They normally use it to store food. Like, we have covered more than 12 villages as Kamlesh is rightly.
2: Thank you, Smita. Jaisa ki Smita ne kaha, literacy se leke, bachon ki padhai se leke, mahilaon ki padhai tak humne kaam kiya. Mahilaon ko humne saksham banaya, unki jo cultural skills thi, usko enhance kiya. Aur cultural skills ko enhance karne ke liye, ab Reed to bahut choti si sanstha hai. तो हमने सृष्टि स्कूल ऑफ डिजाइन से ग्रेजुएट्स मंगवाए जो डिजाइनिंग ग्रेजुएट्स थे और उन्होंने मेवात में लाइब्रेरी में रह के रात को वहीं बिस्तर बिछा के सोना और महिलाओं के साथ चर्चा करनी और महिलाओं के जो हुनर था, जो छिपा हुआ हुनर था उसको उभारा. और उन्होंने इतने सुंदर प्रोडक्ट्स बनाए जो दरी था और तापर से उन्होंने बास्केट्स और बहुत सारे हमारे गिफ्ट आइटम्स बनाए जो हमने कॉर्पोरेट्स को गिफ्ट दिए बिकॉज हमें फंड रेज भी करना था और मेवात के लिए फंडिंग लेना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए. पर मैं उन डोनर्स का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को, हमारे कमिटमेंट को रिकग्नाइज किया और सीरीज ऑफ डोनर्स आए जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं मेवात में काम करने के लिए. तो ये एक मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी बिकॉज वर्क स्पीक्स वॉल्यूम. जब हमने काम किया डोनर्स ने अप्रिशिएट किया और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक साल का एमओयू साइन होता है और कुछ ऐसे डोनर्स हैं जो हमारे साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उस एरिया में. बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं मेवात में. मैं सबका बहुत ही मतलब कि आई नो देम वेरी वेल. दे आर डूइंग एंड आई एम अप्रिशिएबल ऑफ देयर वर्क ऑल्सो. बट एट द सेम टाइम गोइंग टू द ग्रास रूट्स, catching their culture, understanding their attitudes and bringing value to their lives was what Reed has done. These are the three major achievements we have done in this area. Dr. Mishra, would you like to add something here, what I have said?
0: Without any political motive, you know, yes. Reed has gone there as an organization to work. Without any political motivation, without any political inclination, without any interest. The only interest was to see that people are raising their social economic status, their livelihood. They are well respected people, well educated people, well cultured people. Their culture glory is restored. So these the women are well respected. There is a continuous harmony, you know, visible harmony between men and women, between husband and wife. So these are the things that are clearly visible, tangibly see. People can go and view. You know, that is the USP of working Reed in the Mewat, you know, area. That is really very, very great.
2: Memory goes back when we saw पावर तो है ही नहीं तो कंप्यूटर कैसे सीखेंगे बच्चे.
0: yes.
2: Oh, power, how they will read the books. Then we requested Bill and Melinda Gates Foundation. They gave us a special grant to put solar panels in the areas where we are facing problems with regard to the power. So you could see in the film also we put solar panels on top of the building so that 24/7 there is a power in the library and there is no power cuts and the children can come enjoy it there, talk to each other, learn from each other, study the books, and 50% of the books are in their own language. Because we did not want to put the books they cannot touch, they cannot read.
3: बिगावली की रहने वाली हूँ और तारा अक्षर में मैं जुड़ी हुई हूँ. मेरे को पढ़ने लिखने में बड़ा मन लग रहा है, अच्छा लगता है. ऐसा है कि हमारे पास में तारा अक्षर का अध्यक्ष लेके आए थे सुनील कुमार, तो इन्होंने कहा कि आप पढ़ाई कर लो. हमने कहा ऐसे बुढ़ापे में क्या कौन पढ़ावे गो, कौन पढ़ पावे गो. उसने कहा नहीं जी, कोशिश करके देखो एक बार. तो हमने कोशिश करी तो हमको अच्छा लग रहा है पढ़ने में लिखने में, हमारा मन भी लग रहा है. फिर वो हम तो हर जगह पे कर लेंगे, कोई हिसाब है, किताब है, घर का धंधा है, घर के बच्चे हैं, घर की पढ़ाई है, काम है, कोई भी सब में काम आती है पढ़ाई, मतलब ठीक है कि ना, हर चीज में आती है. अब छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, उनको भी बैठा के पढ़ा सकते हैं. बच्चे ये है हर को इसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, वो करो.
4: भैया हमने इसलिए पढ़ा मान पढ़ते तो हमने आवाज दी कि भैया हम पढ़ लिख जाएंगे तो हम बैंक में भी काम करते हैं, चाहे घर पे करते हैं, आदमी का नाम भी लिखने सीख जाते हैं, अपनों भी सीख जाते हैं. तो बैंक में जाते अपने पैसा निकाले तो अपने हिसाब करे आते हैं बैंक में जाके. इसीलिए हम भैया के विश्वास पड़े थे, यही बारे हम अनपढ़ते थे, भैया पढ़ा देंगे तब इसे सीख जाएंगे.
3: मेरा नाम गजना है और हमारे ये भैया आए पढ़ाने के सुखवीर सिंह, और इनने पढ़ाई पूछी कि तुम पढ़ सको. एक बार आए, दो बार आए, तीसरा के हम बोले अब तो हम पढ़ेंगे. जब ये भैया पढ़ान लगे यहाँ स्कूल खोल दी हो तो आगे पढ़ाने.
5: आपको क्या फायदा हुआ इससे?
3: अब हम सीखन लग गए, जो भी हम पे आवे या हम देख देख के चैट में कुछ पहले हम पे आवे ही ना हो कुछ तो हम नाम भी लिख लें. अब हम अपने काम कर ही ले जाए. भैया बताऊ
6: सर्वे और पढ़ से पढ़ना चाहते अपने बच्चे ने पढ़ा ले, घर का काम कर ले, कोई काम काज आ जाए उसे कर ले, और सेंटर आ जाए कोई काम आ जाए. इसलिए सीख लूंगी कुछ
3: तो कुछ काम कर बैठेंगी ना, परेशान आदमी आंगनबाड़ी लग जाए या कुछ सिलाई में लग जाए, कुछ भी काम जो तुम खिलाओगे वो हम करने जाए।
5: यशोदा पढ़ाने आवे हम लोग, न पढ़े पर दो बार आए तीन बार आए, हम बोले हम पढ़ेंगे, हमको पहले कुछ नहीं आवे, हम नाम भी लिख ले और जो काम दे पूरा काम कर ले।
7: हम पहले एनआर भी ना आवे और तो एनआर आने भी सीख ले। अरे बेचारा आया पढ़ने सुखबीर कहला को न भाई लाली पढ़ लियो माताजी पढ़ लियो, हम बोले हम ना पढ़े, हम बुराते में कहा पढ़ेंगे। तो बेचारा कई बार आया फिर हम पढ़ने लग गए, कई सीखो हमने पढ़ना, हम पे अनार भी नहावे अब तो या भी सीख गई, नाम भी सीख गई अपना।
8: मेरा नाम अंका है, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ताराक्षर में पढ़ती हूँ। पहले इन लोगों ने आकर हमारे गाँव में सर्विस करी थी, हमने जाने क्यों कर रहे हैं, और जब हमारे सब आई थी तो पढ़ाई करने के लिए, पहले हम पढ़ाई नहीं जानते थे और अब इससे पढ़ के नहीं है पढ़ना सीखे हैं, और इससे पढ़ने से हमें बहुत कुछ आने लगा है। और हमारे गांव के अंदर तीन ताराक्षर एक ज्ञान चौपाली खुली हुई है और हम बचत पढ़ते हैं सभी, और उसके बारे में भी जानते हैं, पहले जानते नहीं है कुछ।
9: मेरा नाम भगवती है, मैं स्वामी की रहने वाली, मुँह पे कुछ भी नहीं आता है, मैं अक्षर समाज जान गई नाम नाम हाँ अक्षर जान गई हूँ, मैं अक्षर समझ गई नाम लिख लेती हूँ।
10: मेरा नाम रजनी है, मैं स्वामी के रहने वाली हूँ, मैं पहले से कुछ नहीं जानती थी और यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ जान सकती हूँ।
11: मेरा नाम आशा है, मैं स्वामी के में रहने वाली हूँ, मुझे तारा अक्षर से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हम पर पहले अपने साइन भी करने नहीं आते थे, हम पर साइन कर सकते हैं, अक्षरन की पहचान कर सकते हैं।
12: मेरा नाम सरस्वती है, गाँव रिहौली में तारा अक्षर का स्कूल खुला है, ये लोग आए तो कहने लगे हम पढ़ाएंगे, हमें इन लोगों की बात समझ में आई और पढ़ाई लिखना शुरू कर दिया। इनसे पढ़ के हमें बहुत नॉलेज मिली और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ, हम कुछ भी नहीं जानते थे। और ये गाँव के अंदर जो समूह खुली रहती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते, बैंक में जाते थे पैसे भरना लिखाना कुछ नहीं जानते थे, अब हम खुद पैसे भी निकाल लेते हैं, फार्म वार्म भर देते हैं। पढ़ाई से ये फायदा है कि अपने बच्चे जहाँ भी कहीं पढ़ने जाते पहले कुछ नहीं जानते, उसकी किताब कापी वगैरह देख सकते हैं क्या लिखा है, कहीं हम भी काम करते हैं तो हमारे लिए पैसे वैसे मिलते हैं तो हमें पता नहीं लगता था कितने दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे, तो अब हम उसे पढ़ के बता सकते हैं।
13: अपना नाम कांति,
14: कौन से गाँव से? यहाँ
13: छाए से।
14: तो आपको पहले और अब में क्या फर्क नजर आ रहा
13: है? इतना फर्क है, पहले हम 100-200 रुपया का हिसाब लगा सके, अब हम 500 रुपए तक हिसाब लगा लें। पढ़ाई इतने जब थोड़ी बहुत पढ़े अब थोड़ी बहुत अक्षर मिला के मात्रा मिला के सब कुछ अब हम कर लें, मात्रा लगा दें डंडा लगा दें।
15: मेरा नाम मीना है, छाए से रहने वाली, पहले कुछ आवे ना हो अब हम पे लिखनो पढ़ना थोड़ा बहुत आने लगो, हिसाब जोड़ 100-200 रुपया आए 500 है उन्हें भी जोड़ सके।
16: मेरा नाम बबीता जी है, छाए से रहने वाली, पहले कुछ नहीं आता था अब बहुत कुछ सीख गई, बहुत अच्छा लगा पढ़े के, इन्होंने नीतू जी ने बहुत अच्छा सिखाया हमें लोकेशन की बात पे, अच्छा पढ़ाने सुनाया वो।
17: हम ताराक्षर में ट्रेनिंग ली थी हमने, जो कि मतलब अनपढ़ लोगों को पढ़ाना जन अक्षर होते हैं, अब वो पढ़ लिख थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने जान गई है और अपना नाम लिखना सीख गई है, अपने गाँव का नाम कहीं भी आ जा सकती है, हिसाब किताब लगा लेती है। इस प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी और हमको भी।
18: तो सबसे पहले हमने औरतों को मोटिवेट किया पढ़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, उनको मैंने फिर क्लास में बुलाया, बिगाड़ी में मेरी ड्यूटी है वहाँ पे, मैं 3 बैच चलाता, वहाँ पर 10-10 महिला आती है, प्रत्येक बैच में 10 महिला होती है, बहुत ही अच्छी तरह के वो पढ़ रही है और उनसे मैं बातें करता हूँ, अगर किसी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उनके घर जा करके, अगर कोई मना करता है तो उनके घर जा करके परिवार वालों से मिलता हूँ और उनसे समझाता हूँ पढ़ाई के फायदे क्या होते हैं, तो वो भी क्लास में आ जाती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत खुश हैं इसमें आकर।
19: ताराक्षर जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि हम इसमें जो निरक्षर महिलाएं हैं उसको साक्षर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी अम्बेवात इलाके के 3 गाँव में चला हुआ है, छायसा बिघावली और स्वामी का, इसमें लगभग 90-100 महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं इस कार्यक्रम का, और ये 3 गाँवों में कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक गाँव में 3 बैचेस चलते हैं, इसे कुल मिला के 9 बैचेस चलते हैं, और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। पहले जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी किसी के सामने, आज अब वो महिलाएं बोलने लगी हैं, और अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गई हैं और वो किसी के सामने भी खुलकर उनको जवाब देने लगी, अच्छे से बोलने लगी हैं। और वो पहले उनपे कुछ भी नहीं, लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, अब वो क्या नाम है पढ़ने लगी हैं, लिखने लगी हैं, अपना खुद का नाम लिख सकती है, पति का नाम, अपने बच्चे का नाम और अखबार भी पढ़ने लगी हैं। इस कार्यक्रम से महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और हम सभी खुश हैं कि ये कार्यक्रम हमारे इस पिछड़े इलाके मेवात में चलाया जा रहा है।
20: मैं पूरे अपने गांव की औरतों से, बड़े बूढ़ों से ये एक मैसेज देना चाहता हूं, जो भी ये स्कीम है, जो भी संस्थाएं यहां आ रही हैं, वो हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे गांव के हित में, हमारे गांव को अच्छा समझ के इस गांव में वो काम कर रही हैं। इसमें हर एक जन जन को इसमें जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए। मैं गीता मल्होत्रा जी का और मैडम मई जी का तह दिल से अपने गांव की तरफ से, अपने तीनों चारों गांव की तरफ से बहुत बहुत दिल से, तह दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इनका एहसान मंद हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमारे गांव और हमारे अड़ोस पड़ोस को चुना।

0: Wonderful, wonderful. So much to be shown. We have so much of content to be shown to the audience, but the time is so short that we have to move further also. इसके अलावा आप कमेंट्स में भी पढ़ रहे हैं कि मेरी टीम लिखती जा रही है कि हमने क्या क्या और काम किए. तारा अक्षर के अलावा हमने स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एक कार्यक्रम किया यहाँ पे मैजिक बस के साथ मिलके, क्योंकि हमें उनके एटीट्यूड को बदलना था कि हमें लाइफ स्किल्स सिखाने थे. अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें तो वो डायरेक्टली ट्रेनिंग लेने नहीं आते थे. हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से यूथ को लाइफ स्किल्स सिखाए कि कैसे एक लड़की लड़के की इज्जत करती है और लड़का लड़के की इज्जत करता है, कैसे फैमिली में हम एक एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं. तो ये हमने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी कम्युनिटी को सिखाया था. और इन सब कार्यक्रम को बंद करने का दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत बहुत जरूरत है. मैं कहती हूँ जितनी भी पॉपुलेशन है मैं बात की, उन सबको इन सब प्रोग्राम्स की बहुत बहुत जरूरत है. इसके आगे की जर्नी में हमने औरतों को स्पिनिंग सिखाई, धागा लेके कैसे धागा बुनते हैं ये उनको सिखाया, चरखा कैसे चलाते हैं, उस धागे से कपड़ा कैसे बनता है, उस कपड़े की सिलाई कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी हमने कंप्लीट करी. यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे करते हैं, यही सोच के सब कुछ किया कि कभी औरत को काम करने की जरूरत पड़े तो वो अपने हुनर को निखार सके और अपने हुनर को पहचान सके और अपने बुरे टाइम पे इस हुनर को यूज करके अपनी आमदनी को इंक्रीज कर सके. यही हमारा सोच थी और कंट्रीब्यूशन था. अभी हम छायसा से आगे तारू में जाएंगे. तारू में हमने एक और सेंटर लॉन्च किया था तो हमें Amazon ने सपोर्ट किया. I would like to show that film, Dr. Mishra, Read in Taro.
1: इस फिल्म के में जो भी हमने दिखाया उसके बारे में एक चीज मैं गीता मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परिवर्तन आपने देखा वो तो हुआ. सबसे बड़ी बात है कि जो समाज को ये भी, जिस महिलाओं को ये भी नहीं मालूम था कि हम अपने पैसे को कैसे रखें, क्या करें, कहाँ रखें, उनको न्यूमरेसी लिटरेसी का ज्ञान हो गया. इतना ही नहीं, आपने देखा होगा उनके कपड़े साफ हो गए, उनमें हाइजीन का सेंस आया, उनमें हेल्थ और क्लीनिनेस के प्रति एक बहुत बड़ी जवाबदेही का है ना निर्माण हुआ. तो ये जो छोटे छोटे विजिबल चेंज है, वो कहते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये चेंज अगर आप डे वन से उस दिन तक को देखें तो महिलाओं में जो स्वच्छता, निर्मलता, लिटरेसी न्यूमरेसी, काउंटिंग करना, ये सब चीज में और एकाएक सारे महिलाओं के चेहरे पे एक गजब ही नैसर्गिक हंसी, उल्लास का भाव था जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है.
2: Partnered with Read India in 2015 to set up Amazon Care Community Outreach Centers in Taulu in the villages Chamwars, Dingaveri and Gujarat. Through these centers, we are covering 5 villages, including Nihalgarh and Sheikhpur. The center focuses on education, women empowerment and livelihood, skill development and entrepreneurship, and health awareness and advocacy. We do focus on education by designing programs on improving reading and writing habits of children, starting in government school, training Anganwadi teachers on teaching small children through playful activities and the same activities are repeated at the Reed Center. We have a library with more than 1,000 books where children, youth and other community members come and have access to books for reading and reference. We conduct classes to enable youth for competitive examination and do career counseling. Solar panels for regular and uninterrupted supply of power. We have special workshops with women on women empowerment and provide them a safe space to learn, teaching in PBT to start with and enable them to learn how they can start their small enterprise and also collectively join the group for working together to reach center. We have also designed the programs to make them learn financial and adult literacy. Women have started moving out from their villages to other READ centers and also to other organizations to learn from other women how they are involved in these programs and enhance their networks. Job-oriented workshops are organized for youth, girls and boys to focus on their future careers and learn specific skills for suitable jobs. Farmers' meetings are conducted on a regular basis with planned visits to other parts of Haryana, including meeting with government officials so that they themselves realize where they are and where they have to reach in relation to profit-making, agribusiness they can do. Health intervention is the important component. We do regular workshops on best practices and also partner with other organizations to organize health camps. Audio workshops are being organized at the center to enable youth one voice modulation, and exposure visits are done at community radio stations. Various visuals are displayed at the centers, Anganwaris and the villages to constantly remind the villagers about best practices. Women and men are understanding the gaps in their lives and uniting together for the progress of their villages, and also focusing on their children's growth by creating a positive environment at the READ centers and at their homes. READ India and Amazon Care work closely with local government, completing the collective efforts. Within 1 year, this partnership was extended to another village, Tamaspur in Sonipat. The center is repeating the same activities through effective community mobilization, effective involvement of the school teachers and other stakeholders.
3: एक दिन ज्योति ने बताया कि यहाँ सिलाई सेंटर गांव में आया हुआ है जो रीड इंडिया एंड अमेजोन मिलकर चला रहे हैं, तो मैंने आके देखा कि यहाँ सिलाई हो रही है और सिलाई का काम ज्योति सिखाएगी। तब मैंने ज्योति से बात की कि मुझे भी सिलाई सीखनी है, तब ज्योति ने सिलाई सिखाई मुझे, तो मैंने 3 महीने तक सीखी और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यशाला भी होती है, जो फार्मर भी की भी मीटिंग्स हुई, हेल्थ वर्कशॉप भी हुए और पढ़ाई के बारे में बताया, आगे कैसे बढ़ते हैं, सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया। तब मैंने 10वीं के ओपन पेपर फॉर्म भरे और अपनी पढ़ाई चालू की फिर से, और फिर आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ।
4: मैंने सिलाई सीखना मुझे बहुत फायदा हुआ और मैंने देखा कि मैं अपने भी कपड़े सिल सकती हूँ और दूसरों के भी, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है।
5: मैं रीड अमेजोन सेंटर में लाइब्रेरी कम कंप्यूटर ट्रेनिंग की जॉब कर रहा हूँ। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं यहाँ बच्चों को सिखा पा रहा हूँ और उनके साथ कुछ सीख भी पा रहा हूँ। यहाँ पे रीड की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम कार्यशाला की जाती है, जैसे मिथिलानी सर ने कैरियर गाइडेंस के बारे में बताया, उस प्रोग्राम से बच्चों ने कुछ सीखा और साथ में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
6: रीड इंडिया अमेजोन तरफ से जो सेंटर चल रहा है, इसमें मैं जो छोटे बच्चों का ईसीडी का सेक्शन है वो देती हूँ। यहाँ सेंटर पे नई नई एक्टिविटी होती है, जैसे हेल्थ की भी हुई है, लोगों के बारे में भी होती है, तो उसमें भी क्योंकि मैंने खुद भी बीए करके बीएड की हुई है, तो उससे मेरे को भी बेनिफिट मिल रहा है कि यहाँ को कह दे कि कोई मीटिंग हो रही है तो उसमें मैं भाग ले रही हूँ, तो उससे मेरे को भी कुछ बेनिफिट मिलेगा।
7: मैंने परंतु करने के बाद जेबीटी किया है और सरकारी नौकरी के लिए स्टेट हरियाणा का एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जरूरी है। वो क्लियर करने के लिए किताबों की आवश्यकता थी। मैंने रीड इंडिया एंड अमेजोन के सामुदायिक लाइब्रेरी है, वहां से मैंने मुबारक सर से संपर्क कर 2 बुक्स प्राप्त की और वहां 2 बुक्स लेकर मैंने उनकी पढ़ाई की और टेस्ट आने पर मैंने टेस्ट दिया, जिससे मेरा पहली बार में टेस्ट क्लियर हो गया।
8: यहाँ पे पहले मैंने सिलाई सीखी थी, उसके बाद मैं कंप्यूटर के और फिर बच्चों को कंप्यूटर सिखाते, जिससे उसे सिखाने में मुझे भी बहुत फायदा हुआ है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा है उसे सिखाते सिखाते। बहुत अच्छा है वैसे यहाँ पे सब चीज, क्योंकि यहाँ पे सिलाई सेंटर कंप्यूटर का भी है, लाइब्रेरी भी है, ईसीडी का भी है, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें सुधार की गई है। मैं अकेडमी भी जाती हूँ और रीड एंड राइटिंग का कोर्स चल रहा है, बच्चों को कराती हूँ और इससे इधर मीटिंग होती है, इससे किसानों की मीटिंग होती है, इधर डॉक्टर आते हैं और इधर हमने सिलाई भी सीखी है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं रीड इंडिया अमेजोन को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ।
9: रीड इंडिया अमेजोन सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, अब तक मैं 10 लड़कियों को सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो कि वो अपना काम आराम से कर लेती हैं और घर में दिन महीने में 2-4 हजार रुपए भी कमा लेती है, अब उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो हर कार्य को अच्छे से कर लेती है।
10: मेरा नाम राम बाबू, आठ जिला में पढ़ता हूँ। अब मैं जब छुट्टी हो जाए सेंटर में आता हूँ, बुक पढ़ता हूँ, फिर खिलौना से खेलता हूँ, फिर कंप्यूटर पे बैठ जाता हूँ।
11: पहले ये सिलाई सेंटर यही नहीं था, तो अब इसके आने से हमारी जितनी लड़कियाँ हैं, औरत है, जो यहाँ पे सब सिलाई सीखने के लिए आ जाती है, इससे काफी सुविधा है क्योंकि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, यही कपड़े सी जाते हैं तो अपना काम हल हो जाता है, पैसे की भी बचत है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: Good evening, everyone. Welcome to today's episode of Nurturing Grassroots Leaders, Branding the Local Culture with Development. Today's guest will be Mrs. Sana from Barabanki, UP, who's here to share her story with us. As for a little background about her, she did her schooling in Barabanki but got married at a very early age, so had to wait for a while before continuing her studies. She did MA in English Literature and started teaching in Central Academy School. While working there, she and her husband got involved in an organization named ASI, which now goes under the name of Tanager. And while working in ASI, she was given a project regarding different farming communities. And through that, she got to know about Read India organization. She later joined Read India in March 2018 and is currently working as a center coordinator. Her current goal is to make sure that Read India is providing facilities and benefits to as many people as possible. This was just a little background about her, and she is going to explain that in much greater detail. So with that being said, I would like to request Smita ma'am to continue the program.
1: Thank you, Shashank. Thank you for the brief introduction about Sana. I welcome everybody, all our viewers, to another exciting episode of Nurturing Grassroots Leaders. Jaisa ki Shashank ne bataya, humare saath aaj Sana hai. So welcome, Sana. Welcome to our show. So Sana, और देर ना करते हुए हम आपके बारे में और जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. आप थोड़ा बताएंगे अपने बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ में शशांक ने बताया, बट आप भी बताएं कि कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर आपकी जैसे जर्नी आगे बढ़ी उसके बारे में आप बताना चाहेंगे.
2: गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. थैंक यू मुझे ये चांस देने के लिए कि मेरी जर्नी हम शेयर कर सकें रीड इंडिया के थ्रू. जितने भी लोग अब सुन रहे हैं, रीड इंडिया में के वजह से आज हम यहाँ तक लाइफ में पहुँच पाए हैं. आज मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं. थैंक्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू रीड इंडिया फॉर दिस. सो स्टार्टिंग माई जर्नी, मेरी जो बर्थ हुई थी वो मेरे नानी के घर में हुई थी, बरेली में. वो एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में ही है, बट वो दैट इज नियर रामपुर. तो मेरी बर्थ बरेली में ही हुई थी, मेरी नानी के घर पे. उसके बाद जब वापस आए दादी के घर पे हम लोग, तो मेरी स्कूलिंग शुरू हुई बाराबंकी से. बाराबंकी से हम एट्थ में ही थे, तो सामने तकल स्टेटस की वजह से थोड़ा सा, एज मेरे फादर फॉरन में रहते थे, ही वॉज डूइंग हिज जॉब देयर, ही वॉज नॉट लिविंग विद अस. हम लोग अपने दादी के घर में रहते थे, बट पापा बाहर काम करते थे. तो ऐसे हमारी लाइफ शुरू हुई. बट जब हम एट क्लास में थे, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स घर में होने लगी थी, मम्मी पापा का ये, तो थोड़ा बहुत इसकी वजह से. फिर जब मेरा नाइन्थ था, जब टेंथ में मेरे क्लासेस शुरू होने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे बाराबंकी छोड़कर अपने फादर के साथ शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग एक रेगुलर CBSE स्कूल से होल्ड होकर के एक प्राइवेट टेंथ कि मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी CBSE रजिस्ट्रेशन होता है कुछ प्रोसेस, तो वो चल रहा था. तो टेंथ में हमको FA करना पड़ा. फिर टेंथ में होते होते ही मेरी शादी फिक्स कर दी गई. और फिर ना चाहते हुए भी उस एज पर, एट द एज ऑफ 16 and a half, आई हैड टू गेट मैरिड ड्यू टू दैट. मेरी शादी हुई थी, बट एक विल पावर था कि नहीं, ऐसे तो नहीं बैठ सकते, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी. तो मेरी शादी हुई टेंथ में. मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया टेंथ का एग्ज़ाम देने. वो मुझे लेकर जाते थे शादी के 3 महीने बाद ही. मार्च जनवरी में शादी हुई, मार्च में एग्ज़ाम्स आ गए. उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया कि मैं पढ़ें, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें. फिर वो मुझे एग्ज़ाम्स के लिए लेकर जाते थे. फिर मैंने उन्हें बोला कि नहीं, मुझे ट्वेल्थ भी करना है. तो उन्होंने इमिडिएटली हाँ कर दिया विदाउट एनी थिंग. इवन दो आई वॉज मीन लाइक मेरा बेबी था ऑलरेडी, अब्दुल्ला वॉज बॉर्न आफ्टर टेन, बट ही सेड अगर तुम्हें करना है तो यू कैन गो फर्दर. तो फिर उन्होंने मुझे 12th करना है. फिर ग्रेजुएशन मैंने इस तरह पूरा किया. 12th के बाद एक्चुअली मेरी बेटी ट्विंस डॉटर भी. फिर मुझे 2 साल के लिए पढ़ाई अपनी रोकनी पड़ी, होल्ड कराना पड़ा, बिकॉज इट वॉज वेरी टफ फॉर मी टू स्टडी विद 3 of the kids और 2 twins के साथ. इट वॉज वेरी टफ. सो ऐसे 10th हुआ, 12th हुआ. उसके बाद हमारा फिर ग्रेजुएशन, फिर मैंने MA किया. इस सारे प्रोसेस के दौरान आई वॉज हैविंग माई फैमिली सपोर्ट अ लॉट. इंटर के बाद MA का फाइनल ईयर का रिजल्ट आया, तो मुझे लगा कि अब क्या करना है. तो फिर मैंने यही सोचा कि अब स्टडी को ब्रेक लगा देते हैं, बिकॉज आई नीड कि मुझे बाहर जाना चाहिए। घर में बैठकर हमने पढ़ाई तो कर ली, घर में बैठकर सब कुछ कर लिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं पूरा टाइम फ्री हूँ। देन आई स्टार्टेड, मेरा शॉर्ट टेस्टिंग हुई, उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं पर भी आप इतने बड़े स्कूल में आपने अप्लाई कर दिया सेंटर में, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने बोला मैम एक्सपीरियंस तो पढ़ाने से ही आएगा, कोई भी फ्रेशर कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता, एंड एवरीबडी नीड अ चांस कि वो कुछ अपने आप को प्रूव करे। तो आप एक डेमो दे दो, उसके बाद हम देखते हैं। फिर मैंने उन्हें डेमो दिया तो थैंकफुली मेरा हो गया सिलेक्शन वहाँ पर। इस तरह हमने जॉब स्टार्ट कर दी। जॉब स्टार्ट करने के 3-4 साल के बाद ही मेरा रीड इंडिया के साथ कनेक्शन हुआ, थ्रू ऑब्वियसली थ्रू मैनेजर और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर इस तरह से हम रीड में जॉब स्टार्ट की। रीड में जॉब स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट रीज़न जो मेरा था कि शायद ये बहुत मुझे हमेशा से एक इनर फीलिंग आती थी कि मुझे सोशल वर्क करना चाहिए। सोशल वर्क करने की जो विल थी उससे ही हमको टीचिंग की तरफ अट्रैक्ट किया था। बिकॉज आप थोड़ा सा सोशलाइज हो जाते हो जब आप इतने सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासेस लेते हो, उनमें से कुछ हर बच्चे की एक अलग स्टोरी होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। मेरा रेसेस का टाइम भी मेरा क्लास में ही जाता था, हम कभी स्टाफ रूम में बैठ कर लंच नहीं करते थे, हम बच्चों के साथ क्लास में, इवन दो वो 10-12 के सीनियर स्टूडेंट्स थे, बट मेरा लंच टाइम क्लास में ही होता था। तो बाकी टीचर ऑप्शन भी करते थे कि आपको स्टाफ रूम में आना चाहिए, मैंने बोला नहीं, मेरा एक वो है कि मेरा उनके साथ कुछ है अट्रैक्शन क्योंकि वो मेरी क्लास है। तो इस तरह से चलता रहा। फिर जब रीड इंडिया के साथ हम कनेक्ट हुए तो रीड इंडिया में के लिए मैंने अपनी जॉब को इमीडिएटली, स्मिता मैम से मेरी पहली मुलाकात दिसंबर में हुई। स्मिता मैम जब पहली बार आई थी यहाँ पर जगह देखने के लिए, गीता मैम, स्मिता मैम एंड नाइट सर, तब भी हम जॉब पर थे, मेरी स्मिता मैम से फर्स्ट टाइम मुलाकात भी नहीं हुई थी। तब जब सेकेंड टाइम में गीता मैम और नाइट सर आए तब हम घर पे थे, इट वॉज दिसंबर। तो जब मैं गीता मैम से मिली और मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की, मैं शी वॉज लाइक मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, ये भी यहाँ के वीमेन से रिलीज किया है, हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो एट द टाइम मतलब मुझे आई वॉज लाइक ब्लैंक, मैम कह रही है क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है, जो ऐसा काम करते हैं। बिकॉज एक इमेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इमेज थी, आप न्यूज देखते हो, आप आसपास का अपने माहौल देखते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, एनजीओ वाले ऐसा तो काम कर ही नहीं सकते, बस नाम का एनजीओ, मतलब दैट वॉज एन इमेज। अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से पूछो तो यही इमेज है एनजीओ की। आई वॉज लाइक दैट, मतलब आज शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम वर्किंग इन एनजीओ टू, बट वो इमेज थी, रियलिटी यही थी मेरे लिए। तो मैम बोल रही थी और मैं सुनी थी ऐसे बैठकर, मैम हम मैम सामने बैठे हुए थे, बट मैम बोल रही थी और मैं सोची थी अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। देन मैम हमारा गुसाईगंज का भी सेंटर तब दिसंबर में ही खुला था हमारे सेंटर के सीमा पर, तो मैम ने बोला कि आप आइए आप देखिए हमारा क्या है। फिर मैंने एक बार को इमीडिएटली बोला कि मना मत करिएगा, हम लोग जाएंगे क्योंकि मुझे देखना है क्या है, रियलिटी ऐसी है मैम का सेंटर कहता है, वाले को भी ये था कि हाँ अगर हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जगह दे रहे हैं तो चलो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज दैट। जब हम लोगों ने स्टेप इन किया, जब हमने स्टेप इन किया गोसाईगंज के सेंटर के अंदर, इट वॉज लाइक मतलब मैं देख रही थी स्कूल है कि ये स्किल सेट्स हैं, मतलब लाइब्रेरी भी है, उसमें कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, मतलब लाइब्रेरी वॉज लाइक अ ड्रीम क्योंकि लाइब्रेरी तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। जैसे लाइब्रेरी होती है हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे गाँव में लाइब्रेरी है, हमारे शहर में लाइब्रेरी है। और आई वॉज लाइक यार लाइब्रेरी है यहाँ पे, इन्होंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, इन्होंने मशीन भी लगाई, इन्होंने गाँव में ला के प्रोजेक्टर भी लगा रखा है। मीन्स ये सारी चीज़ें एक बंदे के माइंड को बहुत इम्पैक्ट करती है जिन्हें इसकी वैल्यू पता होती है। तो आई वॉज लाइक कि मतलब मैंने बहुत अच्छे से,
1: आप थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, शायद आइडिया नहीं होगा कि ये जो गांव की आप बात कर रहे हैं गोसाईगंज बाराबंकी, इनकी लोकेशन के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर द कंट्री और समटाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर व्यूइंग द प्रोग्राम। तो आप थोड़ा बताएंगे जो आप विलेज की, ताकि वो भी विजुअलाइजेशन कर सकें कि जिन गाँव की आप बात बता रहे हैं वो शहर से कितनी दूर है, वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि कई बार सुनने वाला ये अंदाजा नहीं लगा पाता कि शायद एक कंप्यूटर को देखना, हाथ लगाना भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप उसके बारे में भी दीजिए सना।
2: यस यस तो गुसाईगंज बाराबंकी जो सेंटर है यूपी में है, गुसाईगंज सेंटर भी यूपी में ही है। इंडिया में यूपी एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश, यूपी सिटी है लखनऊ, विच इज़ वेरी वेल नोन बाई एवरीबडी। लखनऊ के बाहर जब हम आते हैं तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आता है, बाराबंकी सेंटर जो बड़ा गाँव में जिस जिस पे अभी हम वर्क कर रहे हैं करेंटली। और गुसाईगंज सेंटर में है वो

0: पर यहाँ आया है तो क्यों आया, उसे क्या बताया गया, वो क्यों आया, सेंटर कैसे सर्वाइव करेगा, लोगों को इम्पोर्टेंस पता है? तो उन्होंने कहा कि जी जी मैम, यहाँ पे सब गए थे बताने के बारे में, हम लोगों को बताया गया कि सेंटर खुलने वाला है, तो हमने पूछा आप लोग आएंगे सेंटर, क्योंकि गाँव में शायद आपने कभी देखा नहीं। बोले मैम यही तो बात है कि हमने तो कभी कंप्यूटर देखे ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं कंप्यूटर होता कैसा है, खाली नाम ही सुने। तो गोसाईगंज जो सेंटर है ना बस्तिया, दैट इज वेरी फार फ्रॉम लखनऊ, और वो बहुत ज्यादा ही मतलब बैकवर्ड है, यू नो, मतलब प्रॉपर विलेज, विच इज कॉल्ड अ प्रॉपर विलेज, दैट इज दैट प्रॉपर विलेज, मतलब जहाँ पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल भी शायद वहाँ उनके घर से थोड़ी दूर पर ही होगा, उन्हें स्कूल भी जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो ये सेंटर तो उनके लिए वॉज लाइक अ चांस कि उन्हें लाइफ में कुछ अचीव होने वाला है, वो ऐसे सेंटर पे खुला हुआ था वो जगह। तो वहां से वो मुझे मतलब दिमाग में आ गया कि नहीं, ये बेस्ट है जो बड़ागांव में होने वाला है, इट विल चेंज बड़ागांव, इट विल गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन बड़ागांव। सो वी वर लाइक ओके, मतलब ये एनी वन वाज सो सो सैटिस्फाइड कि नहीं अब आप करते हैं, बस अब यही करना है। तो द वेरी नेक्स्ट डे सेकंड से जाने के बाद मैंने जाके सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लिखा, मैंने कहा मुझे अब काम नहीं करना स्कूल में, मुझे अब यहाँ काम करना है। दैट वाज सो मतलब एक बार वो फ्रेंड पहले सोच तो लो, मैंने कहा नहीं मुझे यही करना है, मुझे वो जॉब देंगे नहीं देंगे वो तो बात की बात है, मतलब मुझे करना ही है।
1: हम व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये हमारे ये बाराबंकी सेंटर की है जिसकी बात सना कर रही हैं, जो हाँ जहाँ पे सना बेस्ड है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं सेटअप है पूरे सेंटर का, और जो विजिटर्स आए हैं ये कैलिसंस के ग्रुप के मेंबर्स हैं, और भी फॉरेनर्स भी विजिट करते हैं, लोकल टीम से भी बहुत लोग आते हैं। जो ये सेंटर है ये कैलिसंस नाम की एक कंपनी है जो मिंट फार्मर्स के साथ काम करती है, ये उनके सपोर्ट से ये सेंटर चल रहा है। करीबन 3 साल से ये सेंटर इस एरिया में चल रहा है, जिसको कि सना अपनी टीम के साथ और अपने टीम ऑफ वॉलंटियर्स, टीम ऑफ स्टाफ के साथ मैनेज करती हैं, जिसकी स्टोरी सना बताई। तो सना, हमने शुरू से ही देखा आपके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रोल उन्होंने प्ले किया, स्पेशली अर्ली मैरिज हुआ, अर्ली आपके बच्चे हो गए, देन इवन देन यू हैव नॉट गिवन अप। सो ये फीलिंग कैसी थी जब आपको, बिकॉज हमने देखा है स्पेशली इंडिया में सर्टन ग्रुप्स में सर्टन एरियाज में तो बिल्कुल इनकरेज ही नहीं करते, स्पेशली शादी के बाद तो ये एकदम ऐसे ड्रीम कम ट्रू हो गया, जिस तरह का माहौल, जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है। सो यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट?
0: Yes, ma'am. Being in a community, in a Muslim community, is very tough to come out of the house. मतलब हमारे यहाँ का तो कल्चर नहीं है वो कि हम घर से बाहर भी जाएं. But education changes everything. I believe in that. और ये क्योंकि जो लोग इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा जानते हैं, इकबाल को ये लगता था कि चलो कुछ तो अगर वो करना चाहिए तो करने देते हैं, और हमको ये था कि हमें करना है तो करना है, अगर कोई कुछ बोलता भी है, कुछ रोक भी रहा है, तो वो अपने रोक रहा है, एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। और वो ही हुआ मैम, 2 बार 3 बार सबने ऑब्जेक्शन किया, फिर सब सारे चुप हो गए मैम। और अब तो ये है मैम, लोग मेरा नाम लेके अपने घर में लोगों को मोटिवेट करते हैं कि सना मैम को देखो, सना मैम को देखो, कुछ सीख जाके उनसे कैसे वो के साथ रहती है, कैसे वो सेंटर का काम करती है, वो घर का भी काम करती है, छोटे बच्चे को भी देखती है, बाहर के बच्चों के साथ भी वो ऐसे बिहेव करती है। तो मैम सुनने में खुद को भी अच्छा लगता है, वेरी ऑनेस्ट, खुद को भी सुनने में बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे लिए लोग ऐसी बात करने लगे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है तो सिर्फ रेड इंडिया की वजह पे, रेड इंडिया नहीं होता तो डेफिनेटली मेरे बारे में कोई आज ऐसी बात ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि लोग मुझे जानते ही नहीं कि हम कौन है।
1: ये पॉइंट हम इसीलिए लाना चाहते थे बिकॉज आज का जो हमारा टॉपिक है नर्चरिंग ग्रास रूट लीडर्स, तो आप जैसे लीडर्स जो हैं एक इमेज, पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं कम्युनिटी में, जो कि चेंज एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो कैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से, तो ये मैसेज हम आपके माध्यम से ये भी देना चाहते हैं कि अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो महिलाएं लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, एंड आप उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हैं। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं आपके जैसे बहुत लोग होंगे, सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग टू द ऑडियंसेस। स्पेशल मेंशन टू यू एंड योर फैमिली फॉर दिस इनिशिएटिव जो आपने लाइफ चेंजिंग अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए लिया है, कि एक एक सेकेंड नहीं लगाया और आपने कहा कि मैं अपना जॉब रिजाइन कर रही हूँ और मैं रीड के साथ जुड़ के ये कार्यक्रम करना चाहती हूँ। सो

0: We congratulate you for this effort, and we want to know more about your center now. बाराबंकी में आपका जो ये सेंटर है, इसमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चल रही हैं, कैसे आप कम्युनिटी में जाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं आपको कम्युनिटी में जाने में?
1: मैम, कैलेसेंस जो हमारा प्रोजेक्ट है तो दिस इज बेसिकली फॉर मेन पावर के, हम मेन पावर को भी डायरेक्ट करते हैं जितना हम बाकी कम्युनिटीज को करते हैं. तो मेन फार्मिंग की अगर हम बात करें तो मेन फार्मिंग कम्युनिटीज में हमें चैलेंज काम करने में जो हमारे साथ पहला चैलेंज है वो ये था कि वहाँ पर लोग बच्चों से मेंट की फार्मिंग कराते हैं क्योंकि वो उनका काम है. तो उन्हें सेंटर तक लाना वो अ बिग चैलेंज, क्योंकि उनको समझा के कन्विंस करना कि आप काम छोड़ कर आओ. तो कभी कभी जो हमारे सेंटर पे जो एक्टिविटीज चल रही थी स्टार्टिंग, जब हमने 2018 में स्टार्ट किया था, तो हमारे पास बेसिक सेविंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स एंड लाइब्रेरी, हमारी चार कॉम्पोनेंट्स तब थे. अभी तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमें ज़्यादा मेहनत तब नहीं करनी पड़ी 2018, बिकॉज नया नया सेंटर खुला था यहाँ पर और ऐसा कोई भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही थी जो जिससे इनको ये बेनिफिट मिलता. तो स्टार्टिंग में तो हमारे पास बहुत अच्छी फुटफॉल थी 2018, इट वॉज़ वेरी नाइस. हम लोगों को बहुत कम मोबिलाइजेशन के लिए जाना पड़ता था बिकॉज इतने सारे एडमिशन 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं करनी पड़े. बट आफ्टर 7 मंथ्स आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये तो सिर्फ गांव के ही लोग गा रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. और मैं कि एक कैलिसेंस उसका हमारा डोनर है तो वी शुड फोकस मोर ऑन मिंट फार्मिंग कम्युनिटी, दैट दे शुड कम टू द सेंटर एंड लर्न समथिंग. तो हमने फिर हमने बासा एक पॉइंट है यहाँ पर 5 किलोमीटर यहाँ से दूर है, जहाँ पर बहुत मतलब टोटल कम्युनिटी वहाँ पर फार्मिंग ही करती है और मिंट फार्मर्स ही हैं. तो हमारे एक SHGs के ग्रुप्स थे पहले, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तो उन ग्रुप्स में जाकर वहाँ पर सारी फीमेल्स आती हैं, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं. उन ग्रुप्स के अंदर मैंने जाकर के मीटिंग्स लेना स्टार्ट किया. हमने उन लोगों से जाकर बात करना शुरू किया कि आप लोग क्यों अपने लड़कियों को बाहर नहीं निकालती हैं. तो वो कहती हैं, मैडम हमारे पास हमारे बच्चों के पास टाइम नहीं है, वो स्कूल जाते हैं फिर वो खेत जाते हैं. तो मैंने कहा कभी ऐसा होता होगा कि वो स्कूल ले जाते होंगे, कभी ऐसा होता होगा कि आपका मिल्क का सीजन 3 महीने ही रहता है, उसके बाद आप तो आप ही रहते हो, मतलब मार्च टू जून एक टाइम है, आप उस टाइम मत भेजो सेंटर पर. बट आप जब भेज सकते हैं, जब आपके बच्चे फ्री रहते हैं, आप उन्हें तब स्किल्स लर्न करने के लिए सेंटर में भेजिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्किल्स आप सीख जाएंगे जो आपकी लाइफ टाइम के लिए है. एक बार सेंटर विजिट कर लीजिए, आप देख पाएंगे कि सेंटर में क्या क्या है. लोगों को गांव से के घर से निकाल कर सेंटर लाना ही पहले हमारे लिए चैलेंज बना 7 महीने बाद जब वो लोग नहीं आ रहे थे. तो उन उसके लिए हम लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लग रहे, क्योंकि आप पूरे गाँव में जाओगे आपको पूरा दिन लग जाएगा. बट एक ग्रुप जहाँ पर कम से कम 40-45 औरतें मौजूद हैं, मतलब उनकी पेरेंट्स हैं और वो हर वुमेन एक अलग फैमिली से आ रही है. तो कहते हैं ना, अगर आपने मदर को एजुकेट कर दिया तो पूरी फैमिली एजुकेट हो गई. तो हमने मदर्स को पकड़ा, मदर्स को बताया कि आपने ये करना है अपने बच्चों के साथ. कि मैम बच्चों को अकेला तो नहीं भेजेंगे, हमने कहा तो आप आइए, आपको आपके लिए भी सेंटर है, सेंटर तो सबके लिए है. आप आइए, आपको हम अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप आइए, आपके हस्बैंड आएंगे, हम उनको भी अडल्ट लिटरेसी की क्लासेस देंगे, आप हमसे भी सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम कंप्यूटर सिखाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे. इतना इतना बताने के बाद मैम जो स्टार्ट हुए हैं उस गांव के लोग आना, हम लोग को लग रहा था कि हम शायद कम मोबिलाइज करना चाहिए था, तो हम उसको संभाल पाते. इतना स्टाफ होने के बाद भी हमारे लिए वो चैलेंज हो गया कि अभी ने कैसे संभालेंगे. फिर ये हो चीज़ होती रही. फिर हमारे यहाँ मैम एक मैम सीनियर मैम हमारी आती थी, उन्होंने बोला कि कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करते हैं. फिर हम सब लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटीज स्टार्ट करी. हम लोग कम्युनिटीज में गेम्स लेकर जाते थे, कम्युनिटी के बच्चों के साथ वहीं पर गेम खेलते थे. उसके बाद जब हमारा गेम पूरा हो जाता था तो फिर हम अपने मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते थे, क्योंकि अगर हम मोबिलाइज करने जा रहे तो हम एक ही बंदे से बात कर पाते. उसमें क्या होता था, गेम खेलना स्टार्ट किया, आस पास वाले देख के इकट्ठे हो गए, सारे सोचते थे कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग. कभी कभी म्यूजिक बजा देते थे लाउड, लोग घर से निकल के आ जाते थे. फिर मोबाइल लाइब्रेरी की एक्टिविटी हमने स्टार्ट करी. हम लोग वैन में सारी बुक्स, स्पीकर्स, लैपटॉप्स लेकर जाते थे कम्युनिटी में, वहां पर सारे बच्चों को इकट्ठा करना. मैम वहां पर बच्चे तो किनारे रह जाते थे और उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आ जाते थे. अच्छा आपके पास ये भी बुक है? हमारे पास ब्रेल्स तक की डिमांड आई थी. क्या ब्रेल्स लेकर आई है मैम, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ब्रेल्स की जरूरत थी, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं हुआ दोबारा जाना क्योंकि कुछ टाइम की वजह से, फिर ये कोविड आ गया तो वो चीज़ थोड़ी सी बीच में रह गई। बट अब वो हम लोग प्लान करेंगे कि हम ब्रेल्स मंगा करके हमको जाके प्रोवाइड करें, एटलीस्ट उनकी भी तो विश है कि वो पढ़ें। अब वो नहीं पढ़
0: जी
1: सकते
0: जी
1: नॉर्मल बुक्स, तो ऑफकोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड करा
0: अभी हम
1: सकें।
0: ऑडियो बुक्स भी लेके आ रहे हैं, हमने टाई अप किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली फ्रॉम फॉर द कम्युनिटी हु आर नॉट एबल टू रीड, ये ऑडियो बुक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं आपके सेंटर में, सो दैट जो जो नहीं पढ़ सकते किताबें वो ऑडियो बुक्स भी सुन सकें। वेरी वेरी वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे चल रहे हैं सर ना, आपने मैंने ये देखा कि आपने हेल्थ के ऊपर और लाइफ स्किल्स के ऊपर भी काफी काम किया है स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, थोड़ा आप बताना चाहेंगे कि विद स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ हेल्थ एंड लाइफ स्किल्स आपने क्या काम किया है?
1: यस मैम, तो हमने हेल्थ के सेशंस हमारे यहाँ अप्रैल से जनवरी 2019 से स्टार्ट हुए थे, तो उसमें डॉक्टर निधि लाठी जो हमारी कंसल्टेंट है, उन्होंने आकर हमारे सेंटर्स पर सेशंस लिए थे। सेंटर के जो बच्चे सेंटर पर मौजूद होते थे वो उन्हें कनेक्ट कर लेते थे अपनी फैमिलीज को ऑनलाइन, तभी भी वो रिकॉर्ड कर लेते थे सेशंस अपने फोन्स में हम लोगों, और वो जाकर अपनी मम्मी को बताते थे कि देखिए मैम ने बताया सब्जी ऐसे धो के बनाते हैं, हमने बताया कि ऐसे वॉश करना है, खाना ढक के रखते हैं। तो ये सारी चीजें जो मैम ने बहुत मेहनत करी इन बच्चों के साथ, मैम क्योंकि मैम डॉक्टर है तो जब वो बताती थी तो हम लोग जितना बताते थे उससे ज्यादा उनके बताने से उन्हें समझ आता था कि ये उनको बताते थे बच्चों को ये डॉक्टर है, स्पेशली आपसे मिलने आई है, आपके लिए सेशन लेने आई है। तो सारे बच्चे मतलब एक मैम के एक सेशन में 20-25 ऐसे बेनिफिट हो जाते थे, मतलब फिर उसके बाद मैम ने सेशन लिए, मैम ने हर टॉपिक पर सेशन लिया, उनकी मेंस्ट्रुएशन पर, उनकी फिजिकल फिटनेस पर, उनके हाइजीन पर, उनके न्यूट्रिशन पर। मैम ने 2-3 साल में मैम कॉन्टिन्यूसली सेशन ले रही थी और मैम के सेशन से काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ मैम बच्चों पर, स्पेशली जो गर्ल्स आती थी ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते थे निधि मैम के सामने कि मैम मुझे भूख भी नहीं लगती, तो मैम उनको बेस्ट सोल्यूशन बताती थी कि आप ऐसे खाओ, आपके टाइम मत बनाओ, आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, फिर आपको धीरे धीरे भूख लगनी स्टार्ट होगी। तो मैम से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते थे, मैम उनके आंसर्स करती थी, क्वेरीज उनकी मैम सारी चीज़ें वो करती थी जो वो बेस्ट अपना दे सकती थी। तो निधि मैम के सेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे सेंटर पर।
0: थैंक यू सना, जब हम आपके सेंटर पे आए तो हमने ये भी देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का काम वहाँ पे चल रहा था, चिकनकारी जो क्राफ्ट लखनऊ का तो फेमस है ही और ये आपके एरिया तक भी काफी स्प्रेड आउट है, सो उसके बारे में आप बताना चाहेंगे कि आपने लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया, बिकॉज मिंट एक बहुत ही कैश क्रॉप की तरह लिमिटेड जो है लाइवलीहुड प्रोग्राम है, सो कैसे आपने और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड कैसे अगर महिलाओं को हेल्प हुआ, एक एडिशनल स्किल थी उनके पास, सो क्या इस चीज से उनको थोड़ा बहुत मदद हुई स्पेशली ड्यूरिंग दिस टफ टाइम?
1: यस मैम, चिकनकारी हम लोगों ने स्टार्ट करा था जब हमारा सेटअप हुआ था, तो चिकनकारी में पहले लोगों को लग रहा था कि यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पे कैसे दिखेगा क्योंकि लखनऊ के बहुत करीब है, तो फिर हम लोगों ने तो यही बोला कि आप सीख लो, आपको नहीं पता कि टाइम कैसा आएगा, आपका हमेशा आप खेती नहीं कर सकते, जैसे अभी मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी कि जब भी जो बारिश हो रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करूँ, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप सीखो, आप पहले देखो चिकन क्या है, आप समझो चिकन का काम कैसे होता है, वो कहाँ सेल होगी नहीं होगी वो हमारी एडिट है, वो रेट इंडिया देखेगा, वो हम देखेंगे कि हमें कैसे सेल आउट करता है, आप पहले काम सीखो। तो जो जितनी भी लड़कियां थी, जो बहुत सारे बच्चे मैम ऐसे भी थे जो कहते थे कि मैम हम खेती नहीं करना चाहते, बट हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम खेती ना करें तो हम क्या करें, तो मैंने बोला कि ये ही आंसर है आपके जवाब का कि आप स्किल सीखो, आप चिकनकारी का वर्क सीखो, आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट में जो डिजाइनर कुर्ते बन रहे हैं आप उन कुर्तों को सीखो, आप स्टिचिंग सीखो, आप एडवांस स्टिचिंग सीखिए, और आप लिमिट मत रखिए कि अगर आपने सेविंग सीखा है तो आप कंप्यूटर नहीं सीख सकते, आप डेफिनेटली कंप्यूटर के कोर्सेज भी करिए, आप अलग अलग जगह पर वैकेंसी निकलती है, शायद आप हमारे से सीख कर आप कहीं काम करने लग जाओ, या चिकनकारी का वर्क ऐसा है हम आपको काम देते रहेंगे, आपको हम उसका पैसा भी देंगे, हम आपको पे करेंगे, आप जो भी पीसेस बनाओगे जितने बनाओगे हम उसके अकॉर्डिंग आपको पे करेंगे। तो वो लोग पीसेस बनाते थे, हमारे पास थोड़ा सा माल इकट्ठा हुआ, फिर सेलिंग का पॉइंट आया तो जितने हमारे यहाँ, अभी आपने पिक्चर्स डिस्प्ले करे, हमारे इतने सारे विजिटर्स आते थे, तो हम लोग हर विजिटर के सामने मिंट, चाहे हमारे कैलसंस के डोनर्स आए या हमारे कोई भी विजिट सेंटर पर होती थी, हम सारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करते थे और वो उन्हें, और ऐसा मैम होता भी था कि वो जनरली विद अ गुड हार्ट को बाय भी करते थे उस चीज़ को. मैंने कितनी बार ये चीज़ रिपोर्ट भी करी है कि वो आते थे और वो हमारे प्रोडक्ट्स बाय करते थे. तो उससे उन लड़कियों के फेस पर जब वो प्रेजेंट होती थी, ये मैंने इन्होंने खरीद लिया, हमने कहा हाँ तुमने मेहनत करी है इसलिए इन्होंने खरीदा है, इनको ये बाहर भी मिल जाता, ये लखनऊ जाएंगे ये लखनऊ में ले सकते थे, ये दिल्ली जाएंगे दिल्ली में ले सकते थे, बट इन्होंने इसलिए खरीदा क्योंकि तुम लोगों ने मेहनत करी. मैम दैट वो वर्ड्स उन्हें इतना कॉन्फिडेंस देते थे, उनको मोटिवेशन मिल जाता था कि नहीं मैम आप सही कहती हैं, हम सीख ले, हम सीखेंगे इसको.
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस. ऐसी कोई स्टोरी जो आप इतने सारे बेनिफिशरीज के साथ काम करते हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ आप काम करें, इतने सारे आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसी कोई एक दो लाइफ चेंजिंग स्टोरी या इंस्पायरिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं?
1: श्योर मैम. चिकन की स्टोरी पहले आपको बताते हैं. मैम हमारी जो ट्रेनर थी, ट्रेनर से स्टार्ट करते हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी सेंटर पे ज्वाइन करने से एक साल पहले. मैम मैंने 3 लोगों का इंटरव्यू लिया, बाद में उनको ही मैंने फाइनलाइज करा जस्ट बिकॉज उनकी क्राफ्ट बहुत अच्छी थी. और जब उनको मैंने सेलेक्ट कर लिया मैम, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड नहीं है. बिकॉज ही सेड कि अगर मैम हम आपको ये पहले बता देते तो शायद आपको लगता कि नहीं इन्हें रख लेते, बट उनके अंदर वो चीज़ थी कि नहीं मुझे मेरे स्किल जॉब मिलनी चाहिए, मेरे रीजन की जॉब नहीं मिलनी चाहिए. एंड दैट थॉट चेंज माई माइंड कि नहीं शी इज़ राइट, उनमें स्किल है. मैम जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कुर्ता बनाया और जो मैंने मैम को दिया था गीता मैम को, एंड मैम शी वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मैम ये पहले ही मैम इतनी बड़ी, हम 2 कुर्ते देते सॉरी, एक कुर्ता मैम आपको और एक गीता मैम को, तो हम शी वॉज लाइक कि ये दोनों मैम इतनी हाई मैम, इतनी हाई प्रोफाइल मैम है, ये हमारे समय कुर्ते पहनेंगे. मैंने कहा डेफिनेटली पहनेंगी मैम, पहन कर आएंगे और आप देखोगे. तो हम शी वॉज लाइक, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं थी खुशी की कि वो कैसे कुर्ता खुश थी. फिर मैम उन्होंने यहाँ पर 1 साल 1.5 साल तक की जॉब की कोविड में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट उन्होंने यहाँ पर 1 साल जॉब किया. एंड मैम शी वॉज एबल टू फीड हर किड्स, उनकी 2 बेटियाँ हैं एक बेटा है. मैम शी वॉज सो हैप्पी कि मैम आपने मुझे जॉब दिया, मैम मैं अपने बच्चों को सपोर्ट कर पा रही हूँ. दिस मैम हमारे यहाँ की सेकेंड स्टोरी है. एक सेकेंड स्टोरी है मैम जिसको हम लोगों ने, महिपाल जी ने जिसकी स्टोरी कवर की थी, गायत्री पाल मैम, उसके वो यहाँ पर सीलिंग पहले करने के लिए आई थी बेसिक सीलिंग का कोर्स. मैम उसने बेसिक सीलिंग में एडमिशन लिया, उसने बेसिक सीलिंग किया, फिर उसने कंप्यूटर्स देखे, बोला कि मैम मैं सीखूँ कैसे, मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती. मैम मैंने खुद उसे 3 महीने बैठकर इंग्लिश पढ़ाई है और इतनी मेहनत से पढ़ाई है कि मैम उसने फिर कंप्यूटर कोर्स किया है. देन उसने एडवांस टीचिंग में एडमिशन लिया, फिर मैम उसने एडवांस टीचिंग सीखा. उसके बाद बोलते कि मैम मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे मशीन खरीदनी है. मैंने कहा ठीक है तुम मुझसे ले लो, तुम मशीन खरीद लो. तो बोलती मैम आप वापस ले लेंगी? मैंने कहा नहीं हम वापस ले लेंगे, ठीक है तुम जाओ पहले मशीन खरीद लो. फिर दूसरे मैं बोलती मैम थैंक यू बट मैंने मशीन ले ली है. एंड मैम एट दिस टाइम उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स आते हैं, पूरे गांव के मैम वो कपड़े बनाती है. एंड शी इज सो हैप्पी बिकॉज उसके फादर भी नहीं है, अभी जल्दी एफआईआर हो गए. तो शी इज सपोर्टिंग हर मदर, हर लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर फॉर इन देयर एजुकेशन. तो मैम खुद को भी ये फील होता है कि रीड इंडिया के थ्रू हम लोग ये कर पा रहे हैं कि रीड इंडिया ने इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रखे हैं कम्युनिटी के लिए कि जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत है मैम. ये इसे हम नहीं एनालाइज कर सकते पैसों के साथ, ये जो खुशी होती है हम यहाँ कभी एनालाइज नहीं कर पाएंगे पैसे के साथ कि हम पैसे तो कोई भी दे सकता है मैम किसी को. मैम ये स्किल उनके साथ लाइफ टाइम है,
0: ये स्किल उनके पास हमेशा रहेगी लाइफ में. कभी भी कोई भी मुसीबत आए, जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कुछ बारिशों के बारे में, आई थिंक अभी जो रेन्स आ रही हैं उसके बारे में, चाहे कोविड हो चाहे ऐसा कोई.
1: मैम ये दोनों चीजों ने यहाँ की मतलब पूरी कम्युनिटी को हिला दिया था. पहले तो कोविड पूरा 20 जैसे गया मैम, सबके बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गए, सबके जो भी स्मॉल स्टार्टअप है वो खत्म हो गए. जो हालत मैम, जो रेट फार्मर्स को यहाँ पर मिला है, मतलब उनको तो ये था कि फसल में ना ऐसे आग लगा देते हैं, इसको बेचेंगे नहीं. हम इतना वो मायूस हो गए थे बिकॉज क्योंकि रेट ही नहीं आ रहा था. अब इतनी बुरी हालत चल रही है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था मैम. गवर्नमेंट के भी हाथ में नहीं थी वो चीज़, बिकॉज वो बिल्कुल हो गया था. और मैम कोविड खत्म हुआ, फिर दूसरा वेव आया. सेकेंड वेव में मैम जो बचा था जिसके पास वो भी खत्म हो गया. उसके बाद से मैम ये रेगुलर रेन अभी हो रही है, आपको न्यूज में देखते होंगे यूपी में इतने जबरदस्त तरीके से अलर्ट्स जारी हो गए थे, इतनी ज्यादा बारिश हुई मैम, जिसने जो क्रॉप लगाया था वो सब वेस्ट हो गया, पूरा पूरा पानी भर गया, और एक बार ही हो गया, दो बार हो गया मैम, कॉन्टिन्यू से 15-15 दिन बारिश हुई है, 1 दिन बारिश हुई है, ये सारे स्टाफ और बच्चे सेंटर में कैसे आते थे मैम हम लोग जानते, और उससे भी बढ़कर उनके सारे क्रॉप्स बर्बाद हो गए।
0: वेरी हार्टनिंग टू हियर दैट। इस दौरान में अगर किसी की भी कोई कला उनके काम आई है तो शायद जो हमारा मुद्दा है कि एक स्किल आपके पास होना चाहिए, चाहे आज आपको ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ने पे वो काम आ सके, उनकी फैमिली के लिए, उनकी लाइफ को जारी रखने के लिए। तो वी होप कि हमारे सेंटर से जिन बच्चों ने या जिन महिलाओं ने कुछ सीखा है उसको वो यूज़ कर रहे हों। सो जी
1: यस मैम, मेरे पास मैम बच्चों के कॉल आने स्टार्ट हुए, बच्चे मिलने भी आए थे सेंटर पर कि मैम आप हमें कुछ काम दे दीजिए, तो मैंने बोला कि ठीक है हम आपको चिकन का देते हैं, आप चिकन का स्टॉक बनाकर आप हमें चिकन करके दो उन कुत्तों पे, हम उनका स्टॉक करेंगे, फिर हम उन्हें सेल आउट करके आपको हम आपके अमाउंट देते हैं, एटलीस्ट कुछ हेल्प आपकी हो जाएगी। मैंने उन्हें बोला देखो इसीलिए मैंने बोला था कि चिकन सीख लो, शायद तुम्हें कल काम आए, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये पैंडेमिक आएगा, फिर ये रेन आएगी, फिर पैंडेमिक सेकेंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, तो मैम ये सब चीज़ें वो खुद रियलाइज करने लगे कि स्किल सीखना कितना ज़रूरी है। फिर मैम वो बाकी अपने फैमिली वाले बच्चों को भी लेके आते कि मैम इनका भी एडमिशन कर लीजिए, आप इन्हें भी सिखाइए।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग वही कपड़ों को हम भी इनक्रेज करते हैं कि इवन विद इन द रीड एंटायर टीम हम लोग चाहते हैं कि हमारे सेंटर्स में जो बन रहा है हम भी उसके क्या कहते हैं वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। तो हम बहुत खुश होते हैं अगर सेंटर से हमें कुछ ऐसा लेने को मिलता है। जिस चिकनकारी कुर्ते की सना बात कर रही थी हमने उसे बहुत पहना है, आप प्लीज अपनी ट्रेनर को बता दीजिएगा। इनफैक्ट मैम जो है हमारी वो तो कोशिश करती है कि जिस सेंटर पे जाए वो जरूर वहां से एक कुर्ता स्टिच करवाएं, क्योंकि जो आपने बात कही थी ना कि जब उस औरत को लगता है कि उसके हाथ का बना हुआ कपड़ा कहीं बाहर जा रहा है और इतना अप्रिशिएट हो रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसके, उसको हम किसी भी लीडरशिप सेशन और किसी भी मोटिवेशनल सेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में, अपने मार्केट में, जो हमारा नेटवर्क है, रीड का जो नेटवर्क है, उसमें प्रमोट करें, चाहे हमारी फैमिलीज हैं, चाहे हम लोग खुद हैं। सो प्लीज पास दिस मैसेज टू योर टीम आल्सो दैट आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी जो हैं मतलब मार्केट में अप्रिशिएट होते हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम टू कॉल आवर कोर मेंटर डॉक्टर गीता मल्होत्रा, बिकॉज उन्हीं की ये विजन है जिसको हम सब मिल के आगे लेके जा रहे हैं। सो I welcome ma'am to the show. Good evening ma'am. We have Sana from Barabanki today.
2: Yeah, I have been listening the discussions. Sana, your answers were very, very encouraging. Good afternoon. And I highly appreciate your dedication and the commitment you have given to the Reed Community Library and Resource Center in Barabanki in Barabanki. सना बिकॉज मुझे पूरी मेमोरीज मेरी रिवाइव हो गई हैं जब से मैं बाराबंकी जाना शुरू करा था और जगह ढूंढनी शुरू करी थी सेंटर बनाने के लिए व्हेन इंटरैक्टेड विद कैलिसंस टीम इन यूएस एंड देन वी थॉट दैट वी हैव टू स्टार्ट द वर्क देयर। जो सबसे पहली कंडीशन हमारी थी कि हम मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज को अल्टरनेटिव लाइवलीहुड देंगे, बिकॉज तब हमें पता नहीं था कि पैंडमिक आएगा या कुछ और चैलेंजेस आएंगे लाइफ में। सो वी स्टार्टेड दैट वी विल गिव सेकेंड लाइवलीहुड टू द मिंट फार्मिंग कम्युनिटी बिकॉज मिंट इज अ सीजनल क्रॉप राइट। एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट हाउ मेनी मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज यू रीच थ्रू योर इंटरवेंशंस एंड हाउ मेनी हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम दैट।
1: Ma'am, we have, as per you know, ma'am, we have reached to till 25 to 30 villages, and they have maximum population of mint farmers there. So, ma'am, if we calculate like this, that 80% of the population in each village is committed to the center. They are connected. They are coming to the center. They have learned the skills and they have moved out. Now, there are many children in I remember one boy was there. His name was Ram, I think. So he was from farming communities and he was working in the farms earlier. But when he came to the center and he said, "Ma'am, I have passed out my 12th. Now what should I do?" So I asked him to learn computers because you're a boy, you can learn computer and do something. And you can search for a job also, but not only computer, but you should continue with your studies. So he asked me, "Ma'am, should I do graduation?" So I said, "Yes, please go and get admission in graduation and come to the center. We will teach you computer, take English classes from here. Take the books, use the library because." And when he came to the library, he was like, "Ma'am, इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पर, ma'am, आप ये भी किताब है, ma'am, ये भी book है, ma'am, अगर मैं कुछ मंगाऊँ तो मिल जाएगा?" I was like, "Yes, please, आप order दीजिए, हम ma'am को list forward करते हैं, ma'am, मुझे सारी books provide करवा दीजिए, ma'am, हमारे demands पर सारी books इंडिया में देता है, head office तुरंत approve करता है books की जब भी demand जाती है, आप please मुझे बताइए आपको कौन सी books चाहिए." When he demanded, और बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई थी, बुक्स के लिए हमने डाला था, फिर अप्रूवल होके मैम बुक्स भी आ गई थी हमारे पास. And when he was like, he was sitting in the library for 3 to 4 hours regularly. And after that, you won't believe, he was in second year only, and he got the job in Lucknow in Fun Mall, and he's earning 15 to 18,000 per month right now. And he was like, he came with to me with a box, with a sweet box, and he was like, "Ma'am, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है." मैंने कहा, "ये मैंने नहीं कहा, ये इंडिया ने कहा, प्लीज से थैंक्स यू." Ma'am, these are the stories which inspire me a lot.
2: No, Sana, this is your contribution. Teed India is just a facilitator because you are sitting there and you are in touch with the villages. I also wanted to know कि बड़ा गांव में तो बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे. तो आसपास के कितने और गांव हैं जिससे कम्युनिटी इतनी दूर दूर से चलकर आती है आपके सेंटर पे, और कोई ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जहां तक मुझे नॉलेज है. तो आई वुड आल्सो लाइक टू लिसन दैट टू रिवाइव माय मेमोरीज अबाउट दैट.
1: यस मैम, टुडे ओनली आई विजिटेड वन प्लेस, हसनापुर मैम, एंड दैट मैम आई वाज टायर्ड बाय गोइंग बाय कार, बट मैम द चिल्ड्रन, द गर्ल्स फ्रॉम that village is coming to the center on bicycles. Ma'am, I was so shocked ke, ma'am, aaj main soch rahi thi ki wo jab bacche aayenge to maine puchungi ki aap 25 km cycle chala kar aate ho sirf center ke liye. To abhi to wo aaye bhi nahi, barish hone lagi, but ma'am itne aise the villages hai, this is the latest distance I'm telling you ki ye 25 km, 30 km, ma'am 25 to 30 km bahut tough hai cycle chalakar center तक आ पाना. एंड मैम दे आर कमिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, मैम इतने इतने डिस्टेंस से लड़कियां आती हैं, और मैम वो आके बस इतना ही कहती है, "मैम प्लीज हमारा टाइमिंग मॉर्निंग के बैचेस में लगा दीजिए, हम इवनिंग में जाएंगे तो देर हो जाएगी हमें." तो मैम वो सारे बच्चों को हम लोग मॉर्निंग में एंटरटेन करते हैं, सॉरी क्लासेस की हम लोग मॉर्निंग में ही लेते हैं.
2: सना, ये बात सुनकर मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव हैं, बिकॉज वो भी अलाउ करते हैं कि हमारी बेटियां इतनी दूर साइकिल चला के चली जाएं, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एक सेफ स्पेस पे जा रहे हैं, और रास्ते में भी क्योंकि वो ग्रुप में आती हैं इकट्ठी, तो उनको कोई ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता. दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यू मोटिवेट देम फॉर कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन एंड दे फाइंड दिस स्पेस सेफ, प्रोटेक्टेड. सपोर्ट इतना मिलता है, बुक्स उनको यहाँ से मिलती हैं, नॉलेज सपोर्ट मिलता है, आप उनके इश्यूज रिजॉल्व करती हैं. तो यही एक कम्युनिटी लाइब्रेरी का जो सर्विसेज हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड एक्चुअली, सो दैट इज हाईली अप्रिशिएटेड. मैं और भी, मेरे मन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैं थोड़ा और भी आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ तो आप कम्युनिटी को हैंडल करती हैं, जिनको समझाना, मोटिवेट करना, इनकरेज करना, और फिर उनको टाइम भी देना, और दूसरी तरफ है आपके विजिटर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो विजिटर्स हैं, क्योंकि कैलिसंस हैव द ऑफिस इन पुणे, दे कम टू यूपी क्वाइट ऑफन बिफोर कोविड. तो आप कैसे अपना दोनों तरफ बैलेंस बना के रखते हैं?
1: ma'am, sometimes so we have the information that they are coming, and sometimes they come like this only. So, because ma'am, I'm very punctual. I'm regular in the office, because I don't like taking leaves at all, and I don't allow the staff also to take leaves unnecessarily. So this is the thing, that when they come without any information, we all are here. We all are present in the center. So we know that abhi wo aaye hain, so I have to give my, at least they take my 1 hour. So I have to stop all the children ki aap log library mein jaake baithi, abhi main koi session nahi lungi, abhi main in logo ke sath baat kar rahi hu. Phir main unke sath pura unko explain karna pure center ke bare mein, kaise hum kaam karte hain. And they ask so much about everything, about Green India, about, because they are not the donors exactly, because they are coming with the donors, so they are from different companies also, so they don't know what Green India. So I have to explain them each and everything about Green, about the community, about the children coming to the center, what services we are giving at the center, what are the facilities that are being offered to the students in Green India. So this happens every time. And there was a very frequent in Badagaon center. So last year, like pandemic se to abhi tak sirf do hi visits hui hain, but 2018 and 19 was full of visitors. Every month there is somebody has to come to the center, and we sometimes feel like surprise that they are saying they're sitting over here in the office, and we see somebody moving inside the office, and I was like, good afternoon sir, tumhe aap kaam kar rahe ho to ekdam disturb mind mein, and everybody koi aage samne se khada ho jata hai. I was like, I take 2 minutes to think that who are they, and he's like, kabhi kabhi chehra hi nahi yaad aata ki kaun hai. So it happens sometimes with me.
2: And when you deal with the community, then you just simply motivate them, encourage them, listen to their issues, problems, and then you inspire them to come to the center regularly, right? So these yes, two ma'am. Things go parallel, right?
1: Exactly, ma'am. I remember one story.
2: Yeah, please continue.
1: Ma'am, I remember one story. There was one girl in my beauty section. She was a trainer in beauty and bar. So she was coming from like 7 to 8 kilometers far away. Ma'am, the one boy was there, was continuously usko pareshan karne ja raha tha morning mein aane ke time pe, morning sham ko jaane ke time pe. Then ma'am, she complained 2-3 times to me ki ma'am main nahi aaungi center, ma'am mujhe nahi sikhana, because abhi ghar mein pata chal jayega to ma'am bahut problem ho jayegi mere liye. And she was a trainer, so even though she was a student also, then I had to take care of it. Then ma'am, hamare paas ek prerak tha hamara jo hamare liye committee mein jaake session leta tha. I asked, I told her ki abhi ghar pe kuch mat bolo. Then I have told Deepak, aap jao aaj ma'am ko leke ghar bike se, aur aap dekho ki ma'am ko kaun pareshan kar raha hai. Phir ma'am unhone wo jaake ghar pe chhod ke aaya, phir usne mujhe aakar bataya ki ma'am ye hai. Phir maine apne husband ko bola ek baar ko ki aap jaiye, aap ek ghar mein jaakar complain karke aaiye ki ye kyun pareshan kar rahe hain. Ma'am, baad himself went there, aur uske baad he resolved that issue. तो मैम ये सारे चैलेंजेस गांव में बहुत आते हैं, क्योंकि मैम बिल्कुल सन्नाटा होता है, एकदम रास्ता अंधेरा होता है, बाघ होती है, आसपास बहुत सारे फार्म होते हैं, बाघ होती है जिसमें रोड पे भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता, सारे पेड़ इधर उधर से कवर होते हैं. तो मैम वी फेस दीज चैलेंजेस एवरी टाइम विद गर्ल्स विद बॉयज.
2: मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इन बाराबंकी एंड बड़ागाम आर मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट? And many girls come from these families to your center. Are there any stories of delayed age at marriage or continuing higher education, convincing their parents that they want to learn more from the Reed Center and establish themselves, then they'll get married?
1: Yes, ma'am. And there was one girl, she was coming to the center from 2018 only. So in 2019, when she was about to get married, she came to me ki ma'am, maine to pehle apne mummy papa ko bol diya ki aap shaadi to meri kar rahe ho, but main jab tak apna advanced teaching ka course center se mera pura nahi ho jayega tab tak main sisal nahi chahungi, mujhe nahi jana wahan. So ma'am, she was like, she stayed here for 6 months, she learned, completed her course, and then she went back. Muslim communities mein to especially jaise bachche 10th 12th ke ladke aa jaate hain, parents start searching for their marriage. But ma'am, a big transformation has also come here in Badagaon. I have also earlier discussed that ki abhi to parents kafi aware ho rahe hain dheere dheere, because they see all अदर कम्युनिटीज के उनके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, देन दे गेट मैरिड. यहाँ पर भी मैम लोगों का काफी माइंड ट्रांसफॉर्म हुआ है. जितने मेरे कम्युनिटी विद जितना मेरा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, हम सब लोगों ने उनको यही बोला है कि आप पहले अपने बच्चे को एटलीस्ट फिजिकली फिट हो जाने दीजिए, देन लेट हर गेट मैरिड. एजुकेशन तो बाद में आती है, आपको ये स्किल्स सीख रहे हो वो भी बाद में आता है, बट लेट हर गेट फिजिकली फिट टू गेट मैरिड. एटलीस्ट वो 18, 19, 20 साल की होनी चाहिए किसी की भी शादी करने के लिए. मतलब 20 इज वेरी यंग इफ यू काउंट एज पर द करंट सिचुएशन. 20 इज ऑल्सो वेरी यंग टू गेट मैरिड. सो दिस हैपेंस एवरी टाइम दैट वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स, वी हैव टू काउंसिल द गर्ल्स एंड दे कम एंड दे यू नो दे डिस्कस विद मी एवरीथिंग, स्पेशली द मुस्लिम कम्युनिटीज.
2: Very nice, very nice. It's very satisfying to know all these things, because it's not only about Muslim community or a Hindu community. Though jo hamare regulations bane hue hain ki mentally, physically, socially, the girl should be prepared to get married, only then she should get married. Aur jo the component jo bhi add ho raha hai ki she should be economically independent also, because COVID has taught us many things to do. Independent and be ready to, support the family when any emergencies come in the family. So, वो भी हमारे सेंटर की तरफ से आप हमेशा उनको कन्वे करती रहती हैं. सना, अभी हम जो फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम सैटेलाइट्स भी बना देंगे, राइट? और जब हम सैटेलाइट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और बाई चांस अगर थर्ड वेव आ जाती है और जो बच्चे 25-30 किलोमीटर दूर से आपके सेंटर में आते हैं, शायद वो ना आ पाए, तो उनके लिए जो हम सैटेलाइट्स बनाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो कम्प्लीटली तैयार हैं उस काम को करने के लिए, तो हम कब तक ये सैटेलाइट्स बना देंगे सना?
1: Yes, ma'am. I would like to say that, ma'am, if we are going for the sub-center or satellites, we should take, we should make the satellites for a time period, like 6 months for year or 1 year for at one place. Then we move in other direction, in the other village. Like if it Baragaon is the center, then it has, it in its stages there are many villages. So we should rotate from everywhere after 1 year here and after 1 year in the different villages, because that will help us to build good relations with the community. We will get more people benefit from the center, because it will be moving, like it will be a mobile center, then it will help many people over there. And if you talk about the district library, it will be a very, very good option if we are going with them and we are partnering with them, because that will make an image of Green India more powerful and more accessible to people, because they will know what Green India is and what facilities what we are giving to the children everywhere.
2: Very nice. Actually, the thought process which we are having is also matching, and we can do much more whatever we are committed to. And I'm sure that Barabanki Community Library and Resource Center can do wonders. That I'm sure under your guidance and commitment, what you're showing to Read India from the past 3 years. And we will also do the impact studies and collect the stories what you are sharing on this platform,
1: sure,
2: so that we can share with the wider community also. At this point, thank you so much for having the brief discussion with me. I would hand over to Smita now.
0: Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring interaction with Sana. So, Sana, बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करके. आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद योर चिल्ड्रन? कैसे आपके बच्चे, आई नो यू हैव 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, सो इतनी स्ट्रांग मदर को, इतनी स्ट्रांग फैमिली को देख के हाउ दे आर फीलिंग, स्पेशली बोथ ऑफ योर गर्ल, द ट्विंस, द ब्यूटीफुल ट्विंस दैट यू हैव. Anything that you want to share about them, how their lives have been impacted due to this entire, READ initiative being in your village and you being an inspiring person in your own community?
1: Yes, ma'am. During last year, if you talk about COVID only, ma'am, they were like, kuch karne ke liye nahi hai, mamma, kya karenge? Maine bola, kuch nahi. Jab center khul raha, aap center mein aake baitho. Ab bachche aate hain, aap unko padhao. इससे क्या होगा, आपकी खुद की नॉलेज बढ़ेगी, उन बच्चों को भी आपसे सीखने का मिलेगा, बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो तो आप उन्हें ज्यादा बेटर पढ़ा सकते हो, आप उनका पर्सपेक्टिव समझ सकते हो कि जो क्या है दैट वर्ल्ड. सारे छोटे बच्चों को अभी तक लवाल देवर टेकिंग द क्लासेस देयर एंड दे टेक सो गुड क्लासेस ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन एंड दे आर लाइक मैम आप पढ़ाइए, दीदी को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए. तो आई एम लाइक ओके जाओ पढ़ा दो आप. सो इट हैपेंस मैम दैट यस मैम आई एम it helps them. Every child, you know, if they share their knowledge with each other, they learn also, and everybody learns. I am learning till date, ma'am. I have learned so much from you, from Geeta ma'am, from everybody. So you know, the learning is never ends. I believe that.
0: And aapke parents ko kaisa lagta hai aaj wo Sana hai jo shayad kahin pe apni education bhi complete nahi kar pa rahi thi aur aaj wo logo tak education ko pahuncha rahi hai.
1: Ma'am, actually, my parents are separated. That was the reason I got married earlier. So, ma'am, Papa ke saath aisa koi connection hi nahi hai. But my mother feels very proud of us because the three of us are very, you know, active. And my other sister, you know, the sister who's living in Hong Kong also, she is also working for an NGO only. And very she's working nice. From past 7 years. So, we both are very social and we help each other a lot in everything.
0: Very nice, Anna. Any last message that you want to give to young girls or women who are in the same position or your community?
1: Yes, ma'am. Ma'am, only I can say only one thing. If you're getting married, if your parents want to get married early, maybe any because of any reason, आपको ये चाहिए कि आप give up मत करो किसी भी lifestyle, किसी भी you know life stage पर. Just don't give up and keep learning. That will help you for your entire life. Nothing much,
0: on those inspiring lines, if there's nothing else, then we can, you know, close this session for today. Thank you so much, Sana, for sharing your such a beautiful and inspiring journey. Thank you, Geeta ma'am, for constantly mentoring us, and thanks to Shushank for moderating the session. We wish you all the very best, Sana. Hopefully, you all the communities ko reach kariye. और जो आपकी सैटेलाइट सेंटर्स हैं वो भी उतने ही सक्सेसफुल हों जितना आपका प्रेजेंट सेंटर है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी थैंक आवर व्यूअर्स आल्सो फॉर पेशेंटली व्यूइंग आवर प्रोग्राम. वी कैन एंड द सेशन. वी विल जॉइन यू अगेन ऑन फ्राइडे विद अनदर एक्साइटिंग प्रोग्राम ऑन कल्चर नॉलेज.

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब ब्रजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर साथ तावुन।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री ब्रजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार।
1: ये वतन का राग।
0: किसी झील के ठहरे पानी में जो शांति होती है वो उनकी आंखों में थी। मुस्कुरा कर जागती एक सुबह में जो सादगी होती है वो उनके चेहरे पर थी। दूर तक फैले आसमान में जो धीरज होता है वो उनकी आत्मा में था। उनकी शालीनता अपनों को ही नहीं परायों को भी विमुग्ध कर देती थी। 5 फुट का छोटा सा कद और मात्र 39 किलो का वजन लिए चट्टान सा हौसला रखने वाला ये महान व्यक्तित्व था देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का, जिनके सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मुश्किल में पड़ जाती थीं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगलसराय में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मात्र 18 महीने की अल्पायु में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। मां राम दुलारी बच्चों के साथ अपने पिता के घर मिर्जापुर जा बसीं। अपने ननिहाल में रहते हुए बालक लाल बहादुर ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय के बाद उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वे उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकें। वे कई मील की दूरी नंगे पांव तय करके विद्यालय जाते, भीषण गर्मी, बरसात और ठंड में भी। कुछ बड़े होने के साथ ही आजादी के लिए देश में हो रहे संघर्ष में उनकी रुचि बढ़ने लगी। भारत में ब्रिटिश शासन का समर्थन कर रहे भारतीय राजाओं की महात्मा गांधी द्वारा की गई निंदा से वे अत्यंत प्रभावित हुए। शास्त्री जी जब केवल 11 वर्ष के थे तब से ही उन्होंने देश के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। वे गांधी जी से केवल प्रभावित ही नहीं थे बल्कि वे उनके आदर्शों का पूरी तरह से अनुसरण भी करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उन्हीं आदर्शों में से एक है जो शास्त्री जी के संपूर्ण जीवन में झलकता है। सन 1927 में उनकी शादी ललिता देवी से हुई तो दहेज के नाम पर एक चरखा और हाथ से बुना हुआ कुछ मीटर कपड़ा ही घर आया। खादी से उनका प्रेम आजीवन बना रहा। एक बार घर पर उनकी अलमारी से फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए। उन्होंने वो कुर्ते वापस मांगे और कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये कपड़े काम आ जाएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा तो ये फटे हैं, ये दिखाई नहीं देगा। उन कुर्तों को सहेजते हुए वो बोले, ये खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए।

गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत गहरा असर था। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ चला आ रहा जाति सूचक शब्द हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के बाद वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1921 के असहयोग आंदोलन के समय उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो उसमें शामिल हों, लेकिन शास्त्री जी अपना मन बना चुके थे और उनके संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ हुआ करते थे। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए जब दांडी यात्रा की तो इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री भी विह्वल ऊर्जा के साथ इस संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने कई विद्रोही अभियानों का नेतृत्व किया। 1942 के दिन थे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों पर था। देश के बड़े बड़े नेता जेलों में थे। शास्त्री जी आंदोलन को चलाने के उद्देश्य से अज्ञात स्थान पर जा बैठे थे। सरकार शास्त्री जी की गिरफ्तारी करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, पर शास्त्री जी का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। आखिर एक दिन अचानक इलाहाबाद में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि शास्त्री जी चौक की सार्वजनिक सभा में उपस्थित होंगे और आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डालेंगे। पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। सरकार का प्रयास था कि वो सभा में उपस्थित होने

स्वाधीनता संघर्ष के दौरान शास्त्री जी ने कुल 9 वर्ष का समय ब्रिटिश जेलों में गुजारा। इस दौरान लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक सहायता देती थी। सोसाइटी की ओर से 50 रूपये प्रतिमाह शास्त्री जी को भी मिलते थे। एक बार जेल से शास्त्री जी ने पत्र लिखकर पत्नी से पूछा कि 50 रूपये समय से तो मिल रहे हैं ना, और क्या ये पर्याप्त हैं? ललिता शास्त्री का जवाब आया कि घर का खर्च तो 40 रूपये में ही चल जाता है, वो 10 रूपये बचा लेती हैं। शास्त्री जी ने तुरंत सोसाइटी को पत्र लिखकर कहा कि उनकी आर्थिक सहायता घटाकर 40 रूपये कर दी जाए, 10 रूपये किसी और जरूरतमंद को दे दिए जाएं। उच्च आदर्शों से भरा उनका ये आचरण आजीवन बना रहा। शास्त्री जी ने न केवल आजादी के पहले बल्कि आजादी के बाद भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया। स्वाधीनता के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टर्स की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ करवाया। 9 जून सन 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का लगभग 18 महीने का कार्यकाल बेहद कठिन किंतु अद्वितीय रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने के फिराक में थे। देश में जब खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ तो अमेरिका ने प्रतिमाह अन्नदान देने की पेशकश की। शास्त्री जी तिलमिला उठे। उन्होंने देश का आवाहन किया कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ और सप्ताह में एक शाम उपवास करो। हमें जीना है तो हम इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। और देश उनके साथ खड़ा हो गया। सन 1965 में अचानक पड़ोसी देश ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। इस युद्ध में शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सबका मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। पड़ोसी देश को करारी शिकस्त मिली। देश ने याद किया 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिए गए उनके पहले भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत सम्मान और गौरव के साथ किसी भी देश से बातचीत द्वारा अपने विवाद हल करने को उद्यत है, लेकिन अगर कोई धमकी या तलवार के बल पर हमें झुकाना चाहेगा तो हम अपनी सारी शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। और ये उन्होंने कर दिखाया। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर दस्तखत करने के बाद 11 जनवरी सन 1966 की रात में ही उनका असामयिक निधन हो गया। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा की। गांधी जी को दिया वचन था, नहीं किया धन का संचय, अपरिग्रह का पालन करके किया विजित मन का संशय, शक्ति और साधन का सम्यक जनहित में करते उपयोग, आजीवन अनिकेत रहे पर सिद्धांतों से न था वियोग। नमन उनके योगदान को, नमन उनके सीधे सादे सरल पर विराट व्यक्तित्व को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और स्वराज संस्थान संचालनालय के लिए इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

0: मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, संगीतम मूर्ति की जन्मस्थली।
1: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था, तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई, छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
0: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
1: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे, लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
0: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
1: जब मैं मद्रास आया, तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
0: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. बसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था, और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है, उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
1: संगीत मेरी सांस है। मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
0: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

0: Sergio Me. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीवी जी रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई 2026 यानी आज से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू हो रहा है। ये अधिनियम ग्रामीण रोजगार, आजीविका सुरक्षा और गांव के सतत विकास को नई मजबूती देगा। पुराने मनरेगा से किस तरह यह अलग है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और 2047 के विकसित भारत के लिए क्या इसकी भूमिका होने वाली है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम सुर्खियों में कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि आज से जो एक नया अधिनियम अस्तित्व में आ रहा है वह किस रूप में पुराने का स्थान लेगा और नया बदलाव कहां कहां किस स्तर पर दिखेगा।
2: सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी उसमें बदलाव की जरूरत थी। वो योजना 2006 में लागू की गई थी और आज हम लोग 2026 में हैं
1: जी,
2: तो लगभग 19-20 साल का समय बीत चुका है और इन दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आमतौर पर मनरेगा को रोजगार मुहैया कराने की एक योजना बताई गई, लेकिन क्या रोजगार मुहैया कराना ही काफी है या हमें उससे आगे भी बढ़ना है। आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए आप किसी योजना के तहत खर्च करते हैं, तो क्या केवल ये आप सुनिश्चित करें कि 100 दिन के लिए किसी परिवार में किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, या फिर जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसका किस तरीके से आउटपुट आता है, यानी कि उसका असर किस तरीके से दिखता है। तो ये जो नई योजना वीवीजी रामजी है इसका मूल मकसद यह है कि रोजगार के साथ साथ लंबे समय के लिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं उसको पूरी की जाए। अब अगर मैं इसमें कहूं कि जो प्रमुख बदलाव हैं, तो पांच अगर मैं प्रमुख बदलाव की बात करूं तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव यह है कि जो गारंटी थी वो पहले 100 दिन की थी, अब वो 125 दिनों की है
1: जी।
2: दूसरा क्या है कि ग्रामीण स्तर की योजना, जैसे एक गांव की जरूरत क्या है, अब देखिए देश में 6,00,000-7,00,000 जितने भी गांव हैं हमारे, हर गांव की अपनी एक भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वहां पर बुनियादी सुविधाएं किस तरीके से विकसित की जानी है, उसकी मैपिंग कैसे की जाए, वो मैपिंग करने के बाद उस आधार पर उनके लिए जिसे कहा जाए कि ग्राम विशेष के लिए क्या कुछ संभव हो सकता है, ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरे की बात करूं तो तकनीक इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप तीन चीजों पर ध्यान रखिए कि एक है कि सैटेलाइट के जरिए एक गांव की एक छवि आपके सामने आ गई, उस छवि के जरिए ये पता चल गया कि इस गांव की बुनियादी जरूरतें क्या हैं, इसमें क्या कुछ कमी है और इसमें और जो है उसमें किस तरीके से सुधार की जरूरत है। मसलन आप सड़क देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, आपने सड़क बनवा दी, क्या सड़क बनने के बाद उसमें और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, उसमें रखरखाव में किस तरीके से सुधार की जरूरत है, वहां पर कितने हमें रोजगार मुहैया कराने की जरूरत होगी, उन सड़क बनने से आसपास के इलाकों में किस तरीके से बदलाव हुआ, ये सारी चीजें आपके पास एक सैटेलाइट इमेज के जरिए जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा उसी तरफ आप देखें कि जीआईएस मैपिंग में भी वही चीज होता है कि आपको पता चल जाएगा कि उस क्षेत्र विशेष में क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। तो ये जो तकनीक के जरिए है, तकनीक के जरिए आप ग्राम विशेष की जरूरतों को पूरा करने में आप कामयाब हो पाएंगे, ये तीसरा बड़ा बदलाव है। मैं दो और बदलाव की बात कर दूं उसके बाद आपसे अगला प्रश्न लेता हूं। दूसरा यह है कि जो हमारी परिसंपत्ति बने, जो असेट क्रिएशन हो, वो एक लंबे समय के लिए हो, ऐसा ना हो कि आपने एक जैसे एक घर बना दिया और आपने गांव खत्म कर लिया, बल्कि एक सड़क बने, वहां पर बांध बने, वहां पर जो है जो कुछ भी सुविधाएं बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई उसका और ज्यादा विस्तार हो, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्यूरेबल असेट का स्थायी जो परिसंपत्ति है उसका निर्माण हो। और पांचवी जो बात है कि बहुत सारी योजनाएं हैं ग्रामीण स्तर पर, हम देखते हैं कि वो अलग अलग टुकड़ों में चलाई जाती हैं। उसका असर क्या होता है कि आपने सड़क बनाने के लिए एक योजना बनाई, ग्राम उद्योग के लिए आपने एक अलग योजना बनाई, तो दोनों के बीच में कोई समन्वय है कि नहीं, कि जहां पर ग्राम उद्योग विकसित हो रहा है वहां पर सड़क का पूरी तरह से निर्माण हुआ है कि नहीं। तो ये जो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स इसको कहते हैं, कि यानी कि सभी योजनाएं एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके काम करें। ये पांच खास बातें हैं जो वीवीजी रामजी को एक नए स्वरूप देती हैं और जो कि आज से लागू हुआ।
1: यहाँ पर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि तकनीक के माध्यम से केंद्रित होकर काम बेहतर तरीके से होगा। यहाँ पर अहम सवाल ये है कि तकनीक के माध्यम से नियंत्रण ऊपर से नीचे की ओर होगा या गांवों की जो आवश्यकता है उन्हें ध्यान में रखकर ग्राम पंचायत या जो स्थानीय अधिकारी या स्थानीय जो हमारे लोक निकाय हैं उनके माध्यम से वो काम चयनित होंगे।
2: इसके लिए आप अगर 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था उसके गठन के समय में एक बड़ी खास बात कही गई थी। उसके गठन में कहा गया था कि हम जो योजनाएं बनाते हैं दिल्ली से बनाते हैं और गांव पे जाकर के थोप देते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, उसकी जगह पे हमको बॉटम अप अप्रोच करना है, यानी कि निचले स्तर का जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है या जो स्थानीय अधिकारी हैं वो बताएं कि हमारी जरूरत क्या है। अब यहां पर आपके पास तकनीक मददगार है, आपने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपने पता करने की कोशिश की, आपने जियो स्पेशल के जरिए पता करने की कोशिश की। एक और महत्वपूर्ण बात लैंड रिकॉर्ड, आप जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको सड़क बनानी है, आपको जमीन की जरूरत है, अब वो जमीन का खसरा और वो सब जो हम लोग ग्रामीण परिवेश में जिसका काफी महत्व होता है वो हमारे पास किस तरीके से उपलब्ध है। तो आज भी अगर हम कहें कि अगर वो केवल कागजों में है और उसका पूरा रजिस्टर है तो दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए एक योजना बनाना हो तो उस रिकॉर्ड के जरिए संभव नहीं हो पाएगा। तो वहां पर आपके पास एक तकनीक के जरिए जो आपका डिजिटाइज रिकॉर्ड है वो मदद करेगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आप इसमें ये समझ लीजिए कि जो निचले स्तर पे जो कुछ भी काम चल रहा है, जो अधिकारी हैं, जो निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनका इनपुट्स भी है और उस इनपुट को तकनीक के साथ जोड़ करके आप एक विस्तृत जिसको कहते हैं ना डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करते हैं और फिर उस गांव के लिए जो है वो गांव के समूह के लिए जो है वो आप कुछ काम करते हैं।
1: यहां पर आपने पहले ही जानकारी दी कि 100 दिन से बढ़ के 125 दिन हो गया, इससे जो मजदूर हैं या गांव में रहने वाले जो लोग हैं जो इस काम के लिए सामान्यतः अपने आप को उपलब्ध कराते हैं उनकी माली हालत में क्या बदलाव आएगा?
2: दो तीन चीजें हैं। एक तो आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम वेज न्यूनतम जो मजदूरी है जिसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है उसके मुताबिक मनरेगा में जो मिनिमम वेज था न्यूनतम मजदूरी थी वो 298.80 रूपये थी, अब वो 327.40 रूपये है। अब ये जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं लगभग 25-30 रुपए का और राज्यवार अगर स्तर पे आप देखें तो जैसे मैं कुछ राज्यों का एक जिक्र करूंगा आपके सामने तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी है वो लगभग 379 रुपए है अगर बिल्कुल मैं सटीक आंकड़े लेकर के चलूं। बिहार की बात करूं तो 300 रुपए का है, फिर पंजाब की बात करूं तो वहां 300 रुपए का है, तेलंगाना की बात करूं तो 305 रुपए का है, कर्नाटका की बात करूं तो 382 रुपए का है, तमिलनाडु में 345 रुपए है, आंध्र प्रदेश में 375 है। तो आप अगर उच्चतम दर देखेंगे मजदूरी की तो वो 450 रुपए का बनता है और न्यूनतम जो है वो 300 रुपए का बनता है और औसत जैसा मैंने आपको बताया 327 रुपए के करीब में बनता है। तो जब मजदूरी बढ़ती है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उसका असर देखने को मिलता है क्योंकि आज के दिन में अगर हमारी 65% आबादी, दो तिहाई आबादी गांव में रहती है, 50% के करीब श्रम शक्ति गांव में रहती है, अगर इनके पास इनके हाथ में अतिरिक्त संसाधन आते हैं तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। और
1: कई बार होता है कि योजनाएं नहीं है ये कहकर उन्हें काम नहीं दिया जाता और कागज पर वो दिखता रहता है कि काम चल रहा है, उससे निपटने के लिए यानी जो एक बैठा हुआ वहां उपलब्ध मजदूर है उसे काम नहीं मिल रहा, दिन उसके बढ़ गए लेकिन उसे अंततः भुगतान मिला या नहीं मिला वो समझ नहीं पाया, वहां चेक एंड बैलेंस किस रूप में हो?
2: यहीं पे तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप कहते हो कि हमें सड़क की जरूरत यहां पे है कि नहीं, हमारे लिए यहां पे विद्यालय के भवन बनाने की जरूरत है कि नहीं, अब आपने कहा कि यहां पे जरूरत नहीं है फिर भी वहां पर जो निर्माण कार्य के एवज में पैसे का भुगतान किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो गलत होता है और उसमें आपके संसाधनों का दुरुपयोग होता है। अब यहाँ पर तकनीक के जरिए, जियोस्पेटिकल के जरिए और आपके सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए आपको पता है कि इस इलाके में इस तरह के काम की जरूरत है। आपका डुप्लीकेशन जो है, दोहरावपन जो होता था कि एक ही काम को आप बार बार करें, जब भवन बन गया तो आप दोबारा भवन नहीं बनाएंगे ना, आप किसी दूसरी जगह पे बनाएंगे। तो चेक एंड बैलेंस करने में आज के दिन में आपकी सबसे बड़ी भूमिका आपकी तकनीक की है। और जहां पर आपके उपग्रह मौजूद हैं जो कि बिल्कुल छोटे से छोटे तस्वीर भी जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। दूसरा, जो पैसे का भुगतान है, जो मजदूरी का भुगतान है, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए होता है। तो डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो लाभार्थी है उसी के खाते में वो पैसा जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई उसके बाद से लेकर के 2014 से लेकर के आज हम 2026 में 53-54 करोड़ जो हमारे खाते बन चुके हैं, खाते खुल चुके हैं, अब उन खातों में इस पैसे का भुगतान होगा। तो यानी कि जो बिचौलिया होता था वो उसकी स्थिति नहीं रहेगी और लाभार्थी को मिलेगा। तो एक तरफ आपने ये सुनिश्चित किया कि वाकई में वहां पर निर्माण कार्य की जरूरत है, वाकई में वहां पर काम की जरूरत है, उसी हिसाब से आपने मजदूरी दी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी एक जगह पर बैठे और आपने कहा नहीं जी यहां पर हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन तकनीक हमें यह बता रहा है कि नहीं यहां पर तो 50 आदमी से काम हो सकता है क्योंकि उतना बड़ा दायरा नहीं है। तो आपके लिए एक चेक एंड बैलेंस हो गया। दूसरा ये हो गया कि काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कितने समय में पूरा हुआ, उसके ऊपर आप नजर रखेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो काम हो गया है दोबारा क्या उसी की बात, क्या कोई वही प्रस्ताव तो नहीं आया, तो वो भी आपके लिए जानना संभव होगा। और चौथी बात है कि पैसा उसी को मिले जिसने काम किया है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए वो संभव होगा, जो जैम ट्रिनिटी हम लोग कहते हैं, जनधन आधार और मोबाइल के जरिए। तो ये मेरे हिसाब से कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो कि इस योजना को और बेहतर बनाएंगे।
3: यहां पर एक और महत्वपूर्ण सवाल उभर के आता है कि जो मजदूर हैं, पुराना उनका कार्ड बना हुआ है, अब नई व्यवस्था में नया कार्ड उनका बनेगा, तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है उसमें उनके लिए क्या प्रावधान है?
2: मुझे लगता है कि अब के समय में उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पुराने कार्ड को देखें, पुराने कार्ड में कई बार ये भी बात आती थी कि एक ही जगह पर दोहराव की स्थिति हो गई, केवाईसी वो नहीं होता था। अब केवाईसी के लिए आपके पास आधार एक बड़ा माध्यम है, आधार के जरिए आप उसकी पहचान भी कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है नए कार्ड को बनने में या नई व्यवस्था को पूरी तरह से अमल करने में। और देखिए, ये कानून तो पिछले वर्ष पारित हुआ था, अब जाकर के उसको अमल किया गया है, तो इतना विश्वास किया जा सकता है कि ये जो बीच का समय था, इस बीच के समय में वो बुनियादी व्यवस्था बेहतर की गई है। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में अगर बीवीजी रामजी के लिए लगभग 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो मनरेगा के लिए भी 30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, ताकि जो पुराने कोई भी मामले हैं वहां पर भुगतान में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर जिसने उस पर काम किया है या जो अभी तक काम कर रहे हैं या जहां पर अभी इसको लागू पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए भी एक, जिसको कहते हैं ना, ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट जो है, जो परिवर्तन की जो बात है, वो उपलब्ध है। और मुझे उम्मीद है कि शायद वो इसको लागू करने में उसको दिक्कत नहीं होगी।
3: कुल मिलाकर यदि हम एक दो पंक्ति में समझना चाहें कि यह बदलाव किस रूप में नए भारत के निर्माण में सहायक होगा, उसे कम से कम शब्दों में किस तरह हम व्याख्यायित कर सकते हैं?
2: ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बदलते स्वरूप के हिसाब से नई योजना का खाका है, और मुझे लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से। अगर आप बदलाव नहीं करते हैं तो आप काफी पीछे रह जाते हैं।
3: हम पीछे न रहें और प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आप सभी श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: सुर्खियों में
5: मृदंगम ही उनकी धड़कन है, श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीतम मूर्ति की जन्मस्थली।
6: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
5: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
6: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
5: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
6: जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
5: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्त वत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो।
6: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा।
5: श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026।

इवनिंग एवरीवन, मैं अर्चना कुमारी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बेनीपट्टी सेंटर से हूँ। गीता मैम और रीड इंडिया, मैं आपके आभार हमेशा रहूंगी क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे थोड़ी सी नर्वस भी हो रही है। और मैंने अपनी लाइब्रेरी में मैम एक ही बात शेयर करती हूँ कि ये फाइनेंशियल इरा है तो सबको पैसे को अनेक चिंता लगी हुई है, लेकिन जो भी आ रहे हैं, क्योंकि यदि हमारे पास एक रुपए है और मैं आपको दे देती हूँ तो आपके पास दो रुपए जरूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन नॉलेज यदि हम शेयर करते हैं तो मेरे पास भी एक है और आपके पास भी एक है, तो फिर हम शेयर करेंगे तो मेरे पास भी दो हो जाएंगे और आपके पास भी दो हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चे हमारी लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और अपने नॉलेज को शेयर भी करते हैं। और मैं आभारी रहूंगी हमेशा क्योंकि सर सब अपने स्टोरी के, सब अपने लाइफ के नायिकाएं हैं, सब स्ट्रगल करती हैं अपनी लाइफ में। हमारी भी गवर्नमेंट जॉब जब छूट गई थी तो मैम ने मुझे पनाह दी, इसलिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी आजीवन। और मैम मैं तो इतनी लायक नहीं हूँ कि जी से स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं आपके ए को बरकरार रखूंगी जब तक। थैंक यू मैम।

റീഡ് ഇന്ത്യ മാനെ റൂറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രാമീൺ ശിക്ഷ എവം വികാസ് ഹമാരാ കാം തോ ലൈബ്രേരീസ് ബനാന ഹൈ ഓർ ആജ് കേ സമയ മേ ജോ ചർച്ച ഹോ രഹി ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഖാലി കിതാബ് പഢ്നേ കേ ലിയേ നഹീ ഹൈ ലൈബ്രേരീസ് ഏക് ഐസീ ജഗഹ ഹൈ ജഹാൻ ഹം ബഹുത് കുഛ് അപ്നേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ ഓർ സമുദായ കേ ലിയേ ഭി കർ സക്തേ ഹൈ മാനെ പഢേ തോ ഹം അപ്നേ ബച്ചോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ബഡോ കോ ഭി പഢായേ ഹം ഛോട്ടേ ബച്ചോ കേ സാഥ് ഭി ആക്ടിവിറ്റീസ് കരേ കി കിതാബ് ക്യാ ചീസ് ഹൈ ഓർ കിതാബ് ഉൻകേ ജീവൻ മേ ക്യാ മഹത്വ രഖതി ഹൈ പർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജർണി ഇസ് സമയ കേ സാഥ് സാഥ് ഹംനേ യേ സോചാ കി ഹമേ മഹിലാഓ കേ ലിയേ ഭി കുഛ കാര്യക്രമ കർനേ ചാഹിയേ അഗർ മഹില അപ്നേ ആപ് കോ നിഖാർ സക്തി ഹൈ അപ്നേ ആപ് കോ സക്ഷം ബനാ സക്തി ഹൈ ഓർ ജിമ്മേദാരി അപ്നേ ഷോൾഡർസ് പേ ലേ സക്തി ഹൈ കി അപ്നേ ബച്ചോ കാ വികാസ് കൈസേ കർനാ ഹൈ വോ ഭി റീഡ് ഇന്ത്യ അപ്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈബ്രേരീസ് ഓർ റിസോർസ് സെന്റർസ് മേ കർതി ഹൈ ഹംനേ ഔരതോ കേ ലിയേ ബഹുത് ഹി അച്ഛേ അച്ഛേ കാര്യക്രമ കിയേ ജൈസേ സിലായി സിഖാനാ ബ്യൂട്ടി പാർലർ കി ട്രേനിംഗ് ദേനാ ഓർ ഭി ബഹുത് സാരി ഐസീ ട്രേനിംഗ്സ് ഹൈ ജോ ഹം അപ്നേ സെന്റർസ് മേ കർതേ ഹൈ പർ ഉസ്കാ जो आउटकम है जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा। अगर दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो, तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानोइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह है। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है, पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है।

0: या मॉडरेट है या सिवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल हैं या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
1: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुंचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
2: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
3: देखो ना, जहाँ मुझे खुजली हो रही थी वहाँ कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
2: ओ, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
3: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
2: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
3: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
2: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
1: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हम में से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंगवर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में

0: हो सकती है। पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
1: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीजें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोक के फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
0: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंगवर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाँव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर ये इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो है, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर किसी आदमी को जो वॉट्स हैं तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से ये अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं। अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है तो इसका पूरा इलाज संभव है, लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीज की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीज सिंप्लेक्स और हर्पीज जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों, रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए, तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ, नाक, कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था, तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गईं। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे, इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ, तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपूर को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्य क्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिक कोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्य क्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धन से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

0: सभी श्रोताओं को मंजू
1: और महिपाल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे हैजा बीमारी पर।
0: हैजा रोग वीबीओ कोलेरी बैक्टीरिया से फैलता है
1: और इसका असर आपकी आंतों में होता है, जिससे उल्टी दस्त लग जाते हैं।
0: अभी कल की ही तो बात है, मेरी सहेली सुनीता अपने बच्चों को लेकर कल इंडिया गेट पर घूमने गई थी, मगर वहाँ पर उसने न जाने क्या खा लिया कि वो और उसके बच्चे सभी बीमार हो गए, उनको अस्पताल तक जाना पड़ा।
1: आप ठीक कह रही है, आजकल गर्मियों के मौसम में सभी बच्चों का दिल ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कटे हुए फलों को खाने का करता है,
0: और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। गंदे पानी का सेवन और दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से यह बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है।
1: हैजा फैलाने वाले बैक्टीरिया मनुष्य के मल में पाए जाते हैं, और जब मक्खियाँ उस मल पर बैठती हैं तो उनके पैरों की गद्दियों में ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं।
0: ये मक्खियाँ खाने की वस्तुओं पर बैठती हैं, और जब कोई इन वस्तुओं को खाता है तो यह उसकी आंत में पहुंचकर बीमारी पैदा करती हैं।
1: देखिए, यह बीमारी खुले में फल, खाद्य पदार्थ व अन्य प्रकार की खाने की वस्तुओं के सेवन से फैलती है। दूषित पानी ना पिएं, खुली जगह पर मल त्याग ना करें, और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकने का प्रयास करें।
0: इस रोग में जबरदस्त दस्त होने के कारण शरीर के पानी के साथ ही द्रव व लवण भी निकल जाते हैं। इनकी पूर्ति शरीर में फिर से करना जरूरी होता है। यदि दो दिन तक ऐसी ही स्थिति व इलाज में कोताही की जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है।
1: तो मंजू जी, सबसे पहले आप तो हमारे श्रोताओं को यह बताओ कि इस बीमारी के लक्षण क्या है, और श्रोताओं को यह कैसे पता चलेगा कि स्वस्थ व्यक्ति को हैजा हुआ है या नहीं।
0: हैजा के बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और जब यह पर्याप्त संख्या में हो जाते हैं तो वहाँ पर विष पैदा करते हैं। यही विष रोग का कारण बनता है। इसमें जबरदस्त उल्टियाँ व दस्त होते हैं। उल्टी में पानी बहुत अधिक होता है और उल्टी के साथ पतले दस्त लग जाते हैं, जिससे कि शरीर का सारा पानी दस्तों के कारण शरीर से निकल जाता है।
1: इस कारण तो शरीर कमजोर हो जाता होगा और मरीज की हालत तो बहुत बुरी हो जाती होगी।
0: आपने सही कहा, इस बीमारी में बुखार नहीं आता, बस रोगी निढाल, थका थका सा, कमजोर व शक्तिहीन हो जाता है। प्यास जल्दी लगती है, पल्स मंद पड़ जाती है, यूरिन कम आता है व बेहोशी सी महसूस होने लगती है।
1: तो फिर मंजू, हमारे श्रोताओं को क्या करना होगा? क्या इसका कोई वैक्सीन भी बना है? अगर हाँ तो जरा इसके बारे में तो बताओ।
0: देखिए महिपाल, यह एंटीबायोटिक दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं, मगर इसका एक वैक्सीन भी बना है जो कि 6 माह तक ही क्रियाशील रहता है।
1: तो मंजू, सबसे पहले डॉक्टर से इसका इलाज लेना चाहिए, और जब तक मरीज को बार बार नमक शक्कर का घोल बनाकर पिलाना चाहिए, जिसे हम ORS का घोल भी कहते हैं। यह किसी भी डिस्पेंसरी व अस्पताल में मुफ्त मिल जाता है। इसे पिलाकर भी रोगी के शरीर में लवणों की पूर्ति की जाती है।
0: हैजा से बचने के लिए खुले में बिकने वाली वस्तुओं को ना खाएं और हमेशा अपना खाना ढककर रखें।
1: दोस्तों, उल्टी दस्त लगने पर तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल या नर्सिंग होम में इसका इलाज करवाएं।
0: और हाँ, जहाँ भी जाए साफ सुथरा खाना ही खाएं।
1: मंजू, हैजा बीमारी पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, चलिए सुनते हैं उनके विचार।
2: मेरा नाम शालिनी है और मैं विवेक विहार से हूँ। हैजा फैलने का मुख्य कारण ये है कि हम जब साफ सुथरा खाना ना खाएं और बाहर के कटे हुए फल जिन पे मक्खियाँ बैठती हैं उनको खाने से जो कीटाणु आते हैं उन सब की वजह से हैजा फैलता है।
3: मेरा नाम अमी है। सड़ी गली चीजें अगर कहीं खाते हैं या उससे हैजा हो जाता है, या कहीं गंदगी फैली होती है वहाँ अगर आप रहते हैं, या उस जगह से भी हैजा होता है, मतलब जहाँ भी गंदगी होती है बस वहाँ से मतलब हैजा हो जाता है बस।
4: मेरा नाम सिल्वी है, मैं साकेत में रहती हूँ। हैजा मेली खुले में खाना रखने से और उसको खाने से होता है, तो जितना हो सके अपने आसपास सफाई रखें और खुला खाना को हमेशा ढक के रखें।
5: मेरा नाम निर्णय है, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से हूँ। हैजा बीमारी का मुख्य स्रोत गंदगी होता है, और जो मक्खियाँ जो भी बाहर खाने से वो हैजा बीमारी फैल जाता है।
6: I'm Madhu, I live in Kutub Enclave, and as far as my knowledge goes, cholera is caused by the pathogen called Vibrio cholerae. It's a waterborne disease, and we have to be careful about the kind of water we drink. In our home, we've got the 0B fitted onto the drinking water tap, so that we are able to drink filtered water.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हैजा बीमारी पर।
1: मंजू, इस विषय पर आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर संजीत, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं, और उनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सहयोगी गीता जी।
7: डॉक्टर संजीत आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, बच्चे शिकार हो जाते हैं बिकॉज बच्चों को पता नहीं होता कि खुला सामान जो मार्केट में बिक रहा है उसको नहीं खाना है, तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या शिक्षा देंगे?
8: देखिए, एक तो है कि ये जो बीमारी है ये मेनली अनहाइजीनिक और इनसैनिटेशन कंडीशन में ज्यादातर ये फैलती है और पेरेंट्स इसके सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो इनको सिखा सकते हैं कि कैसे सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन किया जा सकता है। सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ धोने का, कैन रिड्यूस दिस एपिडेमिक बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बाय सिंपल मैकेनिज्म्स, नो कॉस्ट, जस्ट बाय अवेयरनेस और बाय बिहेवियरल चेंज हम इसे कॉम्बैट कर सकते हैं।
7: इसका मतलब संजीत जी कि बच्चों को जो माता पिता हैं वो ज्यादा शिक्षा दे सकते हैं कि वो खाना खाने से पहले हाथ धोएं,
8: हाँ,
7: बाजार से खुला खाना न खाएं, ज्यादातर जहां मक्खी वगैरह हो उस जगह को साफ रखना चाहिए, भोजन ढक के रखना चाहिए
8: और गर्म भोजन खाना चाहिए। जहां आप कट फ्रूट्स और जहां ज्यादातर फ्लाइज बैठते हैं वहां से ये ज्यादा फैलती है। ये बीमारी इज ओनली ट्रांसमिटेड इन मैन, इट इज मैन इज द बेस्ट पर्सन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।
7: डॉक्टर साहब, एडल्ट्स भी इसका शिकार हो जाते हैं, ये मेरे को लगता है कि टोटल इग्नोरेंस है।
8: हाँ जी, और ये एडल्ट्स में ज्यादा प्रेवलेंट भी नहीं है क्योंकि उनका इम्यूनिटी भी ज्यादा होता है बच्चों से, बट ये एडल्ट्स में भी होता है क्योंकि एडल्ट्स ज्यादातर आजकल बाहर खाना भी पसंद करते हैं और कट फ्रूट्स और ज्यादातर अनकुक फूड या कुक्ड फूड जो कोल्ड हो गया है और उसपे मक्खी बैठा है उसमें भी ये ट्रांसमिट होता है।
7: और बीमारी का अगर सही तरीके से उसकी प्रिवेंशन के बारे में नहीं पता है कि इससे कैसे बच सकते हैं और इलाज के बारे में नहीं पता है तो ये घातक भी हो सकती है।
8: हाँ जी, इसका मेन कारण है कि इससे बहुत ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होता है, इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं, इसके कारण शॉक होता है और शॉक के कारण एक आदमी मर भी जा सकता है। और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम विद इन 24 आवर्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से डेथ देखा गया है। आजकल हैजा घट गया है पर ये एक एंडेमिक साइकिल होता है और ये साइकिल लास्ट साइकिल हमने जब देखा था वो 1967 में देखा था और ये इंडोनेशिया में हुआ था, पर उसके बाद स्पोराडिक केसेस हर टाइम देखा गया है। भारत में बहुत ज्यादा है अभी भी और इसका प्रिवेंशन के लिए अभी वैक्सीन्स भी है और बच्चों में ज्यादातर जब मेले होते हैं या रथ यात्रा होता है तो मास वैक्सीनेशन होता है, पर ये एक ज्यादातर इम्यूनिटी उसी टाइम के लिए ही देती है, बट टू हैव टू वैक्सीनेशंस अपार्ट इन अ मंथ्स टाइम गिव्स फुल इम्यूनिटी, पर एडल्ट्स में एक ही बार वैक्सीन की प्रयोग से कॉलेरा कॉम्बैक्ट किया जा सकता है।
7: तो ये बच्चे को इसका वैक्सीनेशन कब लगता है?
8: देखिए, जैसे दूसरा वैक्सीन है वैसे इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है।
7: अच्छा,
8: ये एज इन वेन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो आप जा रहे हैं कि तीर्थ में और जहां बहुत लोग जा रहे हैं तो वैसे आप 1 month अहेड आप एक वैक्सीन ले सकते हैं एंड देन जस्ट बिफोर यू लीव यू कैन टेक अनदर वैक्सीन।
7: तो ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं?
8: हाँ, एडल्ट्स भी ले सकते हैं, पर एडल्ट्स में 2 doses की जरूरत नहीं होता है क्योंकि उनका प्रीवियसली कुछ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहता है, तो इसमें एक ही डोज ऑफ वैक्सीन इज गुड एनफ।
7: तो ये तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई कि जब भी बाहर जा रहे हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग हों तो अपने बचाव के लिए 1 महीना पहले वैक्सीन ले सकते हैं इसकी, तो हम कुछ हद तक बीमारी से बच जाते हैं। तो डॉक्टर संजीत, ये जो प्रिवेंशन है वो तो इट्स ऑफकोर्स बेटर देन क्योर, पर आप थोड़े से सिम्टम्स बताएंगे हमारे श्रोताओं को कि जैसे बच्चा अगर हैजे का शिकार हो जाता है तो माता पिता को एकदम क्या लक्षण से पता चलता है कि ये हैजा का शिकार हुआ है।
8: इसमें बहुत ज्यादा दस्त होते हैं और उल्टियां भी होते हैं, और ये जो दस्त होता है ये बहुत वाटरी होता है और बॉडी वेट का जितना वजन होता है उसका ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है इसमें। और ये जो दस्त होता है इसको हम लोग राइस वाटर स्टूल बोलते हैं, क्योंकि वो आप रिलेट कर सकते हैं जब आप राइस बनाते हैं तो उसका
7: उसकी माड़ का जो कलर होता है वैसे दस्त का कलर होता है।
8: और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होता है सॉल्ट्स का, ये लीड करता है जनरली हाइपो वॉल्यूमिक शॉक को जिससे आदमी का डेथ भी हो सकता है।
7: ये शॉक इंसान को या बच्चे को लगता है कि जैसे ही बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है और उसको बहुत ही कमजोरी सी महसूस होती है।
8: हाँ, कमजोरी तो महसूस होती है, पर इसमें सबसे ज्यादा पहले देखा जाता है कि मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं।
7: हाँ, हाँ.
8: और क्रैम्प्स के बाद आपको आपका जो पल्स है
7: हाँ,
8: वो बहुत थ्रेडी हो जाता है।
7: थ्रेडी मतलब?
8: थ्रेडी मीन्स आप फील करना मुश्किल हो जाता है। और कई जगहों में तो आप फील भी नहीं कर सकते हैं। और आपका जो स्किन का टेक्सचर भी है वो भी लॉस होता है इसमें।
7: पीलापन आ जाता है स्किन?
8: नहीं, पीलापन तो नहीं आता है इसमें, पर इसमें ज्यादातर जब क्रैम्प्स होता है तो आप फेंट भी कर सकते हैं, आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है।
7: तो इसका मतलब इमीडिएटली पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। और ORS घोल भी पिलाते रहने की जरूरत है घर पे।
8: वो बहुत जरूरी है ORS घोल पिलाने में, जितना जल्दी हो डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि ये जो लॉस है हम तो घोल जो पिलाते हैं उससे तो बहुत ज्यादा है, तो इंट्रावीनसली भी फ्लूइड्स देके इसको बैलेंस मेंटेन करना होता है।
7: और कितने दिन का ये इलाज होता है? 2 दिन या 3 दिन या ज्यादा समय भी लग जाता है इसको ठीक होने में?
8: ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, जनरली 4 to 6 days में आप सही हो जाते हैं
7: अगर आप समय पे डॉक्टर
8: के पास पहुंचे। एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ता है, पर देर आर 2 schools of thought वेदर टू गिव एंटीबायोटिक्स और वेदर नॉट टू गिव एंटीबायोटिक्स, पर क्योंकि खाली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में भी वेदर इट कैन बी टेकन केयर ऑफ,
7: तो वो तो उस समय डॉक्टर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। पर ये तो पक्का है कि जैसे ही उल्टी और दस्त हो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है।
8: और पेशेंट को आइसोलेट करना का भी बहुत
7: अलग से उसको रखने की जरूरत होती है। इसका क्यों ऐसे है?
8: क्योंकि ये ट्रांसमिट होता है मैन टू मैन, सो इट इज बेटर टू आइसोलेट देम फॉर अ व्हाइल। तो उससे क्या होता है कि दी स्प्रेड यू आर एबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिजीज।
7: बस एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देते हैं इसके ऊपर?
8: एक है कि खाना खाने के पहले हाथ धो के खाना खाना चाहिए, स्वच्छ पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल के पीना चाहिए, और ज्यादातर बाहर के कटे हुए जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाना नहीं चाहिए, उसको घर ला के धो के खाना चाहिए। ये मेरा सुझाव होगा।
1: तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मंजू और महिपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं किसानों की सफलता की कहानियां। किसान न सिर्फ अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करता है, बल्कि वो खेतों में जीतोड़ मेहनत करता है ताकि आपकी और हमारी थाली तक भी भोजन पहुंचता रहे। हमारे देश में कई ऐसे किसान हैं जो कि आज के दौर में नवाचार, नई तकनीक को अपनाकर कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और कृषि में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भी हैं जो कि अपनी मेहनत के चलते आज अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये किसान इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ कि जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं, और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्किली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे। शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सेलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार ये जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
2: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226 उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था, और इसको मैंने विजय सुपर सीडर से की, उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जीएल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा एक उसमें 1 लीटर पानी डाल करके, और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था, और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है, और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
1: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
2: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं, और इससे जो है किसान भाई समझे कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
1: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं, जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
0: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
4: आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होश खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
0: आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में, जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया, यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी ये रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
5: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशुपालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशुपालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
6: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है, बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है, और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए, 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए।

0: अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है और मैं इसको नॉर्मल रेट पे मैं चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन है, नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से जो भी मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर आप हमारा ये सैंपल है इसको आप चेक करके देखिएगा, जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं, सर जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है।
1: यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं जो आजकल पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं, इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेहयुक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनर लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ पर इन्होंने काफी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके नेट ऑफ कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है, और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है, और आज के जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स है, और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर, और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं, और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका इनका कोरिलेशन रहता है। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में वहां भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं, और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
2: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
3: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए, और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
2: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कैसे, ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उप निदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
4: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है, और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है।

0: की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है। और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है। हाँ, और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है। इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी पांच संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं टेस्टिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
1: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है। और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारतवर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है इसमें कमी आने लगी है। तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है। और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है। और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है। और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए, 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए। यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
2: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।
3: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था। मेरे पास में अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था। अभी भी करता हूं, तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था और लगभग 5 या 6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी, तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1 से 1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूं, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी और खर्चा मेरा वही था लगभग 4.25-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़ करके लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उस स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60-65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
2: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपनाकर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
4: हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेल नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी पोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकेनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम वेर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सेंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती दो चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फॉस्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूँकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फॉस्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में लगातार हम आपसे जुड़े विषय जो हैं उनको शामिल करते हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो भी आपसे जुड़ा है। आज हम आपको जानकारी देंगे उन्नत बकरी पालन के बारे में, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, और यही वजह है कि बकरी पालन एक रोजगार का जरिया भी बन चुका है। यही जानकारी देने के लिए हम आ पहुंचे हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में। जी हाँ, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे ये जानकारी लेते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान भाई है वो उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खेत खलिहान।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे जो हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे दर्शक हैं, किस तरीके से उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं?
1: देखिए कि बकरी पालन के द्वारा किसान भाई अपने आर्थिक की उन्नति कर सकते हैं, अपने कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं
0: जी।
1: और ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन है। उसके लिए जो बकरी पालन है उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उनके ऊपर ध्यान रखना होगा। जैसे कि उन्नत बकरी प्रबंधन, उन्नत प्रजनन प्रबंधन, उन्नत पोषण प्रबंधन, उन्नत स्वास्थ्य प्रबंधन, उन्नत मार्केटिंग, स्मार्ट मार्केटिंग
0: जी।
1: अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए तो प्रति बकरी एक किसान एक वर्ष में 6,000 से 10,000 रुपया मुनाफा कमा सकता है।
0: लेकिन इसके साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे जो, क्योंकि उन्नत बकरी हम पालन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारी नस्ल है उसका चयन कैसे किया जाए, तो कौन सी जो उन्नत नस्लें हैं और कैसे उनका चयन, हमारे जो दर्शक हैं अगर वो बकरी पालन करना चाहते हैं तो चयन करें वो?
1: देखिये, हिंदुस्तान में बकरी की लगभग 24 नस्लें हैं
0: जी,
1: जिनको के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में हमारे पूर्वजों ने वहाँ की वातावरण एवं परिस्थिति के अनुरूप उनको विकसित किया
0: जी।
1: तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बकरी जिस क्षेत्र की हो वहाँ वही की नस्लों पर हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बकरी पूर्वी भारत की है, जैसे पूर्वी भारत में ब्लैक बंगाल नस्ल पाई जाती है
0: जी,
1: तो वहाँ के किसान उसी बकरी के ऊपर ध्यान दें। और जैसे उत्तर भारत है या उत्तर प्रदेश है
0: जी,
1: तो उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक बकरी पालन के लिए जो बर्बरी बकरी की नस्ल है
0: जी,
1: ये अति उत्तम है।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आसानी से बकरी पालन आप कर सकते हैं, लेकिन एक कम से कम अगर हम बात करें तो कितनी जगह इसके लिए चाहिए, क्योंकि बकरी पालन हम कर रहे हैं जगह का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, और कम से कम कितनी बकरियों से इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं?
1: दरअसल ये तो किसान के पास उपलब्ध उसके आर्थिक संसाधन उस पर निर्भर करता है
0: जी।
1: लेकिन जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर के 20, 25, 50, 100 बकरी रखकर लोगों ने बकरी पालन शुरू किया है
0: जी,
1: तो 50 से 100 बकरी पालन करने के लिए लगभग 1 से 1.5 एकड़ जगह चाहिए, जिसमें के बकरियों के आवास भी बनेंगे, भूसा स्टोरेज भी बनेगा, दाना स्टोरेज भी बनेगा और बकरियों के बाड़े भी बनेंगे
0: जी।
1: तो वैसे जो है बकरी को, एक बकरी को आवास के लिए 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए बंद आवास में, और इसकी दुगनी जगह चाहिए खुले आवास में।
0: बिल्कुल, जैसा डॉक्टर मनोज ने कहा कि तमाम प्रबंधन जो है वो आपको करने होंगे, बाड़ी की व्यवस्था होती है, और आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर संस्थान द्वारा जो बकरियां हैं उनको रखा जाता है। आपको भी दिखाते हैं और भी जानकारी हम देंगे, आइए हमारे साथ। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा आपने हमें बताया कि उन्नत नस्लें हैं और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं, तो किस तरीके से जो हमारे किसान या दर्शक हैं किस तरीके से वो उन्नत नस्लें ले सकते हैं?
1: देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया
0: जी
1: कि हमारे जो क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो बकरियों की जो उन्नत नस्ल है, जो प्योर ब्रेड है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे
0: जी।
1: तो किसान भाई को जब भी व्यावसायिक बकरी पालन आरम्भ करें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो शुद्ध नस्ल के जानवरों को ही रखें
0: जी।
1: अब जैसे कि अभी हम बर्बरी के बाड़े में हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: तो अब ये बर्बरी नस्ल के कुछ लक्षणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे कि ये जो है इसका जो कोट कलर है वो व्हाइट होता है, उस पे ब्राउन स्पॉट होते हैं
0: जी।
1: इसके जो कान हैं वो छोटे होते हैं और इरेक्ट होते हैं
0: जी।
1: आपने देखा हुआ कि हिरण की तरह
0: पहचान इसके हम कह सकते हैं,
1: ये बर्बरी नस्ल की पहचान है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे जितनी भी बकरियों की नस्लें हैं
0: जी,
1: उनकी अलग अलग पहचान है
0: जी।
1: अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम बकरियों का चुनाव कैसे करें
0: जी,
1: जो प्रजनक बकरे हैं उनका कैसे चुनाव करें।
0: बिल्कुल,
1: तो एक तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बच्चा प्रजनक बकरी के रूप में चुन रहे हैं वो शुद्ध नस्ल का हो, यानी कि उसके जो माँ बाप हैं वो भी शुद्ध नस्ल के हों। दूसरी बात यह है कि उसकी जो बढ़वार है, जो विभिन्न उम्र के सोपान हैं, जैसे कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीने पे, तो उसकी बढ़वार तेजी से होनी चाहिए और उसकी माँ के नीचे पर्याप्त दूध भी होना चाहिए। तो ऐसा नर प्रजनक बकरे के रूप में बहुत उपयुक्त रहेगा
0: जी।
1: और हम आमतौर पर 10 या 12 महीने की उम्र में ऐसे नर का चुनाव कर लेते हैं
0: जी।
1: उसके बाद हम देखते हैं कि ये बकरियों पे माउंट करता है, उन्हें कवर करता है कि नहीं। अगर ये बकरियों पे माउंट करता है, उनको गर्भाधित करा देता है, तो ऐसा बकरा उत्तम रहता है
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर मनोज, लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे, जो ऐसा कि आपने बताया जो बकरा है, लेकिन क्या कुछ उम्र जो होती है वो होती है कि उसके बाद ही उसका चयन आप लोग करते हैं? और एक अगर देखा जाता है कि जिसका बकरे का चयन कर रहे हैं, एक एक एक समय जो है वो निर्धारित होता है कि इतनी उम्र के बाद उसका चयन किया जाएगा?
1: देखिए, ये जो बकरियों में जो उम्र है
0: जी,
1: तो ये उनके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे कि जो बड़े आकार की बकरियां हैं उनमें प्रजनक बकरों को 2 उम्र का होने पर उपयोग में लाना चाहिए, जैसे कि जमनापारी, सिरोही, झकराना। लेकिन चूंकि ये बर्बरी मध्यम आकार की है, तो जब प्रजनक बकरे की उम्र 1.5 वर्ष हो जाए तब उसे हमें उपयोग में लेना आरंभ करना चाहिए
0: जी।
1: और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक बकरे से एक दिन में 2 या 3 बकरियों को ही गर्भित कराएं। अगर हम एक दिन में ज्यादा बकरियों को गर्भित कराएंगे तो उनके गर्भाधारण करने की संभावना कम रहेगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जैसा कि लगातार आप हमें सावधानियां जो हैं वो आपने बताई, लेकिन प्रजनन के समय भी कुछ तरह की जो सावधानियां हैं वो रखनी होगी, क्योंकि रोग की संभावना रहती है अगर बकरा और बकरी संपर्क में आते हैं।
1: देखिए, जो बकरे से जो प्रमुख बीमारी है जो बकरियों में फैलती है, जिसके द्वारा बहुत ज्यादा एबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, वो है ब्रुसोलेसिस
0: जी।
1: तो इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि हम प्रतिवर्ष बकरे की स्क्रीनिंग कराएं, उसका जो रक्त है उसको लेके जांच करवाएं, क्योंकि अगर कोई बकरा ब्रुसोलेसिस बीमारी से पीड़ित पाया जाता है तो उसे हमें कदापि प्रजनन में उपयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें यह भी रखनी है कि एक बकरे से एक रेवड़ में केवल उसे 1 से 1.5 वर्ष तक ही उपयोग में लाया जाए, क्योंकि इससे जो बच्चियां पैदा होती हैं वो पुनः जवान हो जाती हैं
0: जी।
1: तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें अंतर प्रजनन से बचाव के लिए इस तरह से मेटिंग प्लान बनाना होगा कि उसकी जो बच्चियां हैं या उसकी जो माँ हैं वो इस बकरे के द्वारा गर्भाधित न हों
0: जी।
1: दूसरा, हमें यह भी सावधानी रखनी होगी कि उस बकरे का जो बच्चा पैदा होता है, नर पैदा होता है, वह भी हम उसी रेवड़ में न इस्तेमाल करें। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूंगा कि वो प्रत्येक 1 से 1.5 वर्ष के बाद अपने नर को बदल दें
0: जी।
1: और जो दूसरा प्रजनक बकरा है वो दूसरे किसी किसान भाई के यहाँ से लेके आए
0: जी।
1: इसकी सुगमता के लिए वो ये भी कर सकते हैं कि अपना नर, अपना जो प्रजनक बकरा है वो किसी दूसरे को दे दें
0: जी।
1: और दूसरे का जो प्रजनक बकरा है उसे स्वयं इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अंतः प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होने पर उनकी जो वृद्धि दर है, जो बढ़वार दर है, दूध देने की क्षमता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है।
0: बिल्कुल, इसलिए जरूरी यही कि जो तमाम सावधानियां हैं ये हमारे किसान भाइयों को रखनी होगी जो बकरी पालन कर रहे हैं और जो बकरी पालन करना भी चाहते हैं। लेकिन उन्नत बकरी पालन से जुड़े कुछ और भी पहलू हैं वो भी जानते हैं, आइए हमारे साथ। डॉक्टर मनोज, आपसे हम ये और जानना चाहेंगे, क्योंकि अब बेड़े में हमें यहाँ पर शेड में हम देख पा रहे हैं तमाम जो बकरियां हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ संस्थान में हमने देखा अलग अलग जो शेड हैं वो बनाई गई हैं, क्या किस वजह से क्या जरूरत पड़ती है अलग अलग शेड्स की?
1: दरअसल ये जो उन्नत बकरी पालन है इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है
0: जी
1: कि जो नर और मादा है उनको 3 माह के बाद अलग अलग रखा जाए
0: जी।
1: दूसरा ये है कि फिर जो है जो 3 से 6 माह की, 6 से 12 माह की या उससे जो अधिक उम्र की जो बकरियां हैं उनको फिर से अलग अलग रखा जाता है
0: जी।
1: जैसे कि कोई बकरी गर्भवती है, दूध देने वाली है, उनको भी फिर अलग अलग रखते हैं।
0: बिल्कुल, और जिस शेड में अभी हमें ये कितनी उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं,
1: ये जो इस शेड में जो बकरी हैं ये आप देख रहे हैं ये सभी 6 से 9 माह की हैं
0: जी।
1: तो इस समय क्या है कि इनको एक अलग तरह का दाना, भूसा, चारा दिया जाता है
0: जी।
1: और जब ये बकरी 10 माह की हो जाएंगी फिर हम इनको गर्मी में आने पर गर्भाधित कराएंगे
0: जी।
1: अगर इनमें से कोई बकरी अभी गर्मी में आती है स्ट्रेस के स्ट्रेस शो करती है
0: जी.
1: तो हम उसे गर्भाधान के लिए नहीं भेजते हैं
0: जी.
1: क्योंकि ऐसा करने पर बकरी के ब्याने के समय उसका जो बच्चा है वो छोटा पैदा होगा
0: जी,
1: बकरी का स्वास्थ्य भी गिर जाएगा और आगे आने वाले ब्यात में उसका उत्पादन कम हो जाएगा
0: जी.
1: इसलिए हम ये तय करते हैं कि जैसे कि बर्बरी नस्ल है
0: जी,
1: कि इसमें जब तक कि बकरी 10 माह की न हो जाए
0: एक औसत उम्र हम मान सकते
1: औसत उम्र जो है और उसका जो वजन है वो भी 18 किलो होना चाहिए
0: जी.
1: उसके बाद ही हम बकरी को गर्भाधित कराते हैं.
0: बिल्कुल डॉक्टर मनोज, हम यहाँ देख भी रहे हैं जो बकरियां हैं तमाम वो आहार की आपने बात की थी, चारा प्रबंधन की, किस तरीके से एक विशेष आहार की जरूरत होती है, क्योंकि आपने कहा कि 6 से 9 माह हो चुके हैं इन बकरियों को, उसके बाद 10 माह की जब बकरी हो जाती है तो वो गर्भ धारण कर सकती है, वहां भी एक अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है.
1: देखिये बिल्कुल ठीक बात है कि जिस समय खासतौर से जैसे बकरी के बच्चे हैं
0: जी,
1: तो जैसे कि जन्म लेने से 3 माह की उम्र तक उनकी जो बढ़वार दर है वो सबसे ज्यादा होती है. जैसे कि बर्बरी नस्ल में 80 से 100 ग्राम वजन प्रतिदिन बढ़ता है, तो छोटे बच्चे होते हैं उस समय तो हम उनको 50 से 100 ग्राम दाना देते हैं
0: जी.
1: लेकिन जब वो 3 से 6 माह या 6 से 12 माह के हो जाते हैं तो उनकी दाने की मात्रा बढ़ती जाती है
0: जी.
1: लेकिन चूंकि 12 महीने की उम्र पे ये बकरियां परिपक्व हो जाती हैं तो इनको केवल मेंटेनेंस राशन दिया जाता है
0: जी.
1: लेकिन इससे पहले जैसे कि 6 से 9 माह की ये है तो इनको जो दाना है वो इनकी बढ़वार के लिए दिया जाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो जैसे कि बर्बरी नस्ल में हम 6 से 9 माह या 6 से 12 माह की उम्र में इनको 300 ग्राम दाना प्रतिदिन देते हैं. अगर ये बकरी जब 10 से 11 माह की हो जाती है और ये गर्भित हो जाती है तो इनकी एडवांस प्रेगनेंसी स्टेज पे हम उनको 200-250 ग्राम दाना और बढ़ा देते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बकरी है
0: जी,
1: ये तकरीबन 8 से 9 माह की है
0: जी.
1: ठीक है ना. और इसका जो वजन है वो तकरीबन 16-18 किलो है.
0: बिल्कुल.
1: अब ये बकरी 1-2 माह के अंदर गर्भ धारण कराने के लिए तैयार है
0: जी.
1: और ये उसकी एकदम परफेक्ट एज है, परफेक्ट अवस्था है. इसका वजन निश्चित तौर पर 18 किलो से अधिक होगा
0: जी.
1: हाँ, तो अगर ऐसी बकरी को हम प्रथम बार गर्भाधित कराते हैं तो आगे चल के ये बहुत ज्यादा प्यांत देगी, अच्छा उत्पादन देगी, ज्यादा बच्चे देगी, ज्यादा दूध भी देगी.
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई जो वयस्क बकरियां हैं, जैसा कि हमने देखा अलग अलग उम्र की यहाँ पर बकरियां हैं, लेकिन जो नवजात हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करनी है, हम चाहेंगे उनके पास भी हम चलें, उनके बेड़े में, उनके शेड में, और वहां हम जाने कि कैसे उनकी देखभाल आप कर सकते हैं जी.
2: क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने. पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार. हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श में, शुक्रवार शाम 7:30 पर.

0: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, यहाँ जैसा कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है। और खासतौर से यहाँ अगर डॉक्टर सिंह बात की जाए, हरियाली भी हमें नजर आ रही है, कई तरह के जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, तो ये सिर्फ छाया के लिए है, इनका कुछ अलग महत्व है?
1: देखिए, जो बकरियों के छोटे बच्चे हैं
0: जी,
1: उनका प्रबंधन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव विषय है
0: जी।
1: क्योंकि बकरियों में अगर छोटे बच्चों की देख रेख अच्छे से न की जाए,
0: जी
1: उनकी सफाई का ध्यान न रखा जाए,
0: जी
1: उन्हें समय पर पानी न पिलाया जाए, तो वो कमजोर हो जाते हैं, फिर उनमें बीमारी भी तरह तरह की हो जाती हैं।
0: जी
1: तो छोटे बच्चे जहाँ पे हों वहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई बहुत अच्छे से हो,
0: बिल्कुल
1: सफाई बहुत पर्याप्त हो, और उन्हें समय समय पर पीने का पानी और चारा भी मिलता रहे। जैसा कि आपने कहा कि ये जो वृक्ष आपने लगाए हुए हैं ये हरियाली के लिए हैं, ऐसा नहीं है, ये हरियाली के साथ साथ समुचित मात्रा में चारा भी उपलब्ध कराते हैं।
0: जी
1: और जो इन पेड़ों से जो चारा मिलता है वो हाई क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, इससे उनकी जो बढ़वार दर है वो बहुत ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम होती हैं।
0: जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम देख पा रहे हैं जैसे नीम जो है उसकी पत्तियां यहाँ पर फिलहाल जो ये छोटे बच्चे हैं ये खा रहे हैं, और किस तरह की इनके लिए विशेष देखरेख की जरूरत होती है?
1: देखिए, जो छोटे बच्चे हैं वो या बकरियां की
0: जी
1: सभी अवस्थाओं में वो सभी तरह के चारों को खाती हैं।
0: जी
1: यहाँ आप देख रहे हैं कि नीम है, पीपल है, पाखर है, बरगद है, देसी बबूल है, सू बबूल है, मलबेरी है,
0: जी
1: तो बकरियां इन सबको बहुत चाव से खाती हैं। और मैं किसान भाइयों को एक जरूर कहना चाहता हूं
0: बिल्कुल
1: कि जहां कहीं पर उन्होंने अपने बकरी का बाड़ा बनाया हुआ है
0: जी,
1: कृपया आप इस मॉडल को फॉलो करें और वहां पर तरह तरह के वृक्ष लगवाएं, और जब भी चारे की कमी हो उनको चारा खिलाएं।
0: बिल्कुल, तो ये तमाम सावधानी हम कह सकते हैं हमारे जो किसान भाई हैं उनको रखनी होगी, तभी आप देखिए उन्नत बकरी पालन कर सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की ही कि जो छोटे बच्चे उनका कैसे आप ख्याल रखेंगे, इससे ना सिर्फ जो पर्यावरण है वो हमारा अच्छा रहेगा, और एक संदेश भी जाता है कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो आप एक पेड़ के आप कई पेड़ आप जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपके जो बकरी पालन है, जो बच्चे हैं उनके आहार की बात है, और ये जरूरी कि उनको सही आहार मिले, तभी उसके बाद अगर आप सोचते हैं उनको मुनाफा अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि रोजगार के अवसर यहाँ पे संभावनाएं जो है वो काफी है, वो तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब आपको मुनाफा ज्यादा मिलेगा, और मुनाफा तभी होगा जब आप इनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। और आज यहाँ पर हम पहुंचे थे मखदूम में, जैसा कि हमने आपको बताया डॉक्टर सिंह जो लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ से लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ से जानकारी लेकर जाते हैं। उसके बाद एक बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं। एक यहाँ पर और भी जो किसान हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं जानकारी लेने के लिए, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ इस संस्थान से कितनी जानकारी उन्हें मिली है जिसका फायदा वो अभी तक उठा चुके हैं।
1: केंद्रीय बकरी अनुसंधान से बकरा मुझे प्राप्त हुआ और मुझे बकरियां भी कुछ प्राप्त हुई और बाहर से कुछ मैंने बकरियां परचेज करी, जिसमें मुझे जो है उनसे प्रोडक्शन हुआ और कम टाइम में, कम समय में मुझे अच्छे जो है उनसे बच्चे और उन्नत नस्ल के बच्चे प्राप्त हुए।
2: हमने संस्थान से प्रशिक्षण लिया था अपना ये अक्टूबर 2014 में, और संस्थान का एक कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत हमें कुछ ब्रीडिंग मेल और बकरियां मिली थी, जिससे कि नस्ल सुधार में हमने उनको यूज़ किया है। कुछ बकरियां हमने बाजार से भी ली हैं जो कि इतनी प्योर नहीं थी, और जो संस्थान से बक मिला हुआ था हमें प्योर नस्ल के जानवर, उसकी वजह से हमारे यहाँ अब बहुत सारे जानवर प्योर नस्ल के पैदा हो गए हैं और जिनसे हमें जो है काफ़ी मुनाफा हो रहा है।
3: यहाँ से सही नस्ल से हमें जो है फ़ायदा काफ़ी मिला, अच्छी नस्ल पैदा करने की वजह से बाज़ार में उसका रेट काफ़ी बढ़िया मिला और 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक के हमने बकरे बाज़ार में सेल करे। एक औसतन करीब 18 से 20,000 रुपये हमें हर बकरे के मिल जाते हैं बाज़ार में।

0: केंद्रीय भर्ती अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए, यहाँ के निदेशक जो हैं मनमोहन सिंह चौहान जी, वो सब हमारे साथ मौजूद हैं। मनमोहन सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर संस्थान की हम बात करें, किस तरीके से लगातार जो संस्थान है ये काम कर रहा है?
1: देखो, ये हमारा जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हिंदुस्तान में जितने भी बकरियाँ हैं, जितने भी डिफरेंट ब्रीड्स की हमारे पास जो है जो बकरियाँ हैं, उन पर पहले खोज हो, उन पर हम ये करें कि किस ढंग से अच्छी जो है नस्ल को बढ़ावा दें, और जो नस्ल हमारे पास पैदा हो जाती हैं, जो होती हैं, उसको हम जो ये है कि फार्मर्स तक पहुँचाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो ये और भी है कि बकरियों में क्या होता है कि हर बकरी हर जगह नहीं हो सकती है, उपलब्धता नहीं होती है। तो हमारा ये है कि कोई खास जो ब्रीड है, जो एक जगह, जैसे हमारा है कि जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पर कोई ब्रीड होगी, जहाँ पर बरसात कम होती है वहाँ पर दूसरी ब्रीड होगी, जहाँ पर ऐसी है कि कोई जो है उसका जो टेम्परेचर अलग है वहाँ पर और कोई ब्रीड होगी। तो हमारा ये है कि कौन सी ब्रीड कहाँ पर फिट होगी, और इस ढंग से हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में डिफरेंट एरिया पर हमारे यहाँ हो रहा है काम।
0: बिल्कुल डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया, जो तमाम नस्लें हैं वो इस संस्थान में है, और इसी की जानकारी जो है वो आप लगातार किसानों को भी देते हैं, लेकिन क्या ये पूरी प्रक्रिया है, कैसे जो किसान है वो नस्लों के बारे में जाने, यहाँ पहुंचे और इसकी जानकारी ले सकते हैं?
1: हमारे यहाँ क्या होता है कि हम हर साल जो है 4 या 5 हम मतलब किसानों के लिए ट्रेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर किसान आते हैं, हम उनका रख रखाव का ध्यान रखते हैं, 10 से 12 दिन वो हमारे साथ रहते हैं, और उनको जो भी हमारे पास जो ब्रीड है, जो हमारे पास जमुनापारी है, बरबरी है, या जखराना है, उसके बारे में हम ब्रीड के बारे में उनको डिटेल में नॉलेज देते हैं कि कैसे उनका रख रखाव होता है, कौन कौन सी वैक्सीन उनको होगी, कैसे उनके दवाइयों का वो होता है, ताकि जो है वो सारा सीख कर जाते हैं। जब किसान वापस जाते हैं तो उसके बाद में वो अपने यहाँ देखते हुए हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें इस ब्रीड का ये बकरी चाहिए या ये बकरा चाहिए, तो हमारे पास एक थोड़ा सा गाइडलाइंस है कि किस हिसाब से हमें उनको देना है, और हम किसानों तक वो अपने यहाँ की जो नस्ल है उनको पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ साथ हम ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर वो ठीक ढंग से रख रखाव करें, तो उसको डिटेल में हम ये कूद देते हैं कि ताकि आप ये जो आपने जो ब्रीड ले गए हैं इसका रख रखाव कैसे हो सके। अगर उससे हम फोन नंबर ले लेते हैं, उससे फोन पर पूछते हैं कि तुम्हारा ठीक ठाक से हो रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, ताकि हम यहाँ से अपने वैज्ञानिकों
0: समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर चौहान, अगर बात की जाए बकरियों की, तो गरीब की गाय कहा जाता है उसको, लेकिन अब इतने फायदे नजर आते हैं इस गाय के भी, क्योंकि प्रसंस्करण जो है वो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि चलन में आ गया, और इसका काफी फायदा जो है वो किसानों को होता है, तो क्या प्रसंस्करण की भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है?
1: देखो, अगर हम इसकी बात करें गरीब की गाय का, तो जो दूध इसका है, दूध में मुख्य गुण कुछ ऐसे हैं जो गाय और भैंस के दूध में नहीं है।
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बायोपेप्टाइड्स हैं जो गाय और भैंस में नहीं होते हैं, और इनका काम क्या होता है ये दूध का, कि अगर हम हमारे मानना है कि अगर इसका दूध को पिया जाए तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके जो एक तो हजम आराम से हो जाता है, ये कहा गया है कि ये इसका दूध कहीं ना कहीं आदमी के दूध के बराबर मिलता जुलता है। तो इसका मतलब है कि जो विटामिन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं इसमें इस ढंग से हैं, ताकि वो बच्चे के लिए भी हो या बड़े के लिए भी ढंग से इस्तेमाल हो सके।
0: जी,
1: और इसमें एक और है कि इसका जो फैट होता है, फैट का साइज जो है वो छोटा होता है, तो जिसको फैट को हजम करने की दिक्कत होती है उसका आराम से हजम हो जाता है। इसके अलावा हमारे इसके दूध में ये पाया गया है कि कुछ ऐसे वो होते हैं कि जो हमारा रोगी के जो रोग के वो होती है, जिसको इम्यूनिटी होती है, ये इम्यूनिटी को कहते हैं कि इनहांस करता है, बढ़ाता है।
0: बिल्कुल, उसको बढ़ा सकता है।
1: हाँ, बढ़ा सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो है इस दूध को ये माना गया है कि ये अच्छा है।
0: साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक यानी हमारे जो किसान है उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो उन्नत बकरी पालन की ओर?
1: देखो, अब सबसे पहले जो भी होता था बकरी पालन, उसमें क्या होता था कि जो बकरी ले गए वो अपने हिसाब से पालते रहते थे। अब हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो शिक्षा है हम दें, हम कई बार ये है कि अपने पंपलेट हैं हमारे यहाँ से छोटी छोटी किताबें हैं जो हिंदी में हमने की हैं, संस्थान से हम डिफरेंट जगह पर दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारे यहाँ एक ऑल इंडिया जो है कुछ वो है प्रोग्राम है, जिसमें हम कि सारे जगह जहाँ जहाँ पर जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वहाँ पर है केवी के हैं, किसी जो है विज्ञान केंद्र है, वहां तक हम पहुंचाते हैं, और ताकि वहां पर फार्मर्स आकर वैज्ञानिक जो ढंग से अगर इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको वो करते हैं, तो इससे एक तो ये है कि कम से कम उसमें कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट लें, और दूसरा ये है कि उनको नुकसान ना हो।
0: बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो अच्छे से और ज्यादा अच्छे से ना सिर्फ एक आजीविका के रूप में बकरी पालन कर सकते हैं बल्कि पूरे परिवार का उससे भरण पोषण भी कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।
0: साथ ही हमारे दर्शक जो है वो और अच्छे तरीके से अब समझ पाए होंगे कि अगर वो उन्नत तरीके से बकरी पालन करते हैं और उसके साथ साथ देखिए जो वैज्ञानिक पहलू हैं उनका भी आपको ख्याल रखना होगा, तभी एक उन्नत ढंग से आप बकरी पालन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: माय नेम इज प्रियंका चंदेलिया। बाय प्रोफेशनली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैगजीन शूट्स करती हूँ ग्रह शोभा के, एंड रीड इंडिया से मैं कोर्स कर रही हूँ, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग ले रही हूँ, जहाँ मैं दीक्षा मैम से मिली हूँ। दीक्षा मैम बहुत अच्छी है, इनका नेचर बहुत अच्छा है, सिलेबस भी काफ़ी अच्छे से रीड करा रही हैं मैम, एंड प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे से समझा रही हैं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। एक्चुअली सर मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, शाहबाद मोहम्मदपुर विलेज गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, एंड मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब पे हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट में क्लर्क है। मैं मदर भी एमसीडी डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। सर मुझे मॉडल बनना था बट मैं अभी उस लेवल तक जा नहीं पाई, बट मुझे लगा अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 4-5 ईयर्स हो चुके हैं मॉडलिंग लाइन में, बट मुझे इतना उसमें कुछ नहीं लग रहा। मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग से कुछ सीख सकूं, अच्छा कर सकूं। बट यहाँ पे आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है, एंड दीक्षा मैम ने बताया है मुझे कैसे क्या होगा, और एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के बाद जॉब के लिए भी अप्लाई कर चुकी हूँ, पासवर्ड रेस्टोरेंट द्वारका सेक्टर 23, कुछ टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग है वहाँ पे। एक्चुअली सर रीड इंडिया से मैंने एक ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया था, कुछ टाइम आई थी मैं यहाँ पे 4-5 ईयर्स से पहले, तब से ही मैं रीड इंडिया को जानती हूँ, एंड रीड इंडिया बहुत बेस्ट है। रीड इंडिया से सीखने को काफ़ी कुछ है, अगर हमें उस लायक बनना है तो हम किसी को, मैं बाहर जाके किसी को बता भी सकती हूँ रीड इंडिया से मुझे क्या क्या मिल रहा है एंड मुझे क्या क्या सिखाया जा रहा है। जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, एंड रीड इंडिया की जो कोर्सेज है वोकेशनल्स वगैरह के, वो बहुत बेस्ट है, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।
2: मैं पूनम तनवर, शाहबाद गांव में रहने वाली, दिल्ली में, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मुझे अपने पेरेंट्स पे इतना प्राउड है, उन्होंने मेरे लिए आज तक जो किया, सीरियसली उन्होंने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, और मैं अब उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ बन के दिखाना चाहती हूँ, जो लोग बोले कि ये उनकी बेटी है। मैं अपनी पहचान अपने पेरेंट्स के साथ बनाना चाहती हूँ, उनके लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि लोग देख के बोले कि यहाँ इन्होंने के लिए कुछ किया, बहुत अच्छा किया। उन्होंने मेरा एडमिशन पूर्णिमा स्कूल, इशावाद गांव के पूर्णिमा स्कूल में कराया, वहाँ यहाँ पर मैं बचपन से पढ़ी 5th क्लास तक, फिर उन्हीं के साथ मैं हर काम, ऐसा एक काम नहीं था जो मैंने उनके बिना आज तक किया, हर चीज़, स्कूल भी, यहाँ तक कि स्कूल लेने जाना, मुझे छोड़ने जाना, मेरे स्कूल सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मिल्क शेक भी वही बनाते थे, मतलब स्टडीज़ करना, अपने स्कूल से आके जो स्कूल में मैं पूरे दिन मस्ती करती थी, पढ़ाई करती थी, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ हर बात आके उनसे शेयर करती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले अपने पा के पास जाके अपनी शेयर करती थी। आज भी अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो मन उदास हो जाता है। मुझे अपनी मम्मी से भी बहुत लगाव है, बट लेकिन पा से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने, मतलब सारा दिन मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा रहती हूँ। मम्मी मतलब स्कूल में, स्कूल के लिए अगर ट्यूशन छोड़ाना या फिर और कुछ कर देना, बट लेकिन मैं पा के साथ जो मैं करती हूँ, सीरियसली वो बेस्ट मोमेंट मेरे पापा के साथ जो है, बहुत अच्छे मोमेंट है। मैं अपने लाइफ टाइम अपने पापा के साथ रहना चाहती हूँ, लाइफ टाइम उनके लिए जितना करूँ, मैं जितना करूँ उतना ही कम है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, गर्ल पावर जो होती है, वुमेन पावर, वो एक सबसे बेस्ट पावर होती है, वो गॉड ही उनको पावर देके भेजता है। अगर गर्ल्स बनाई है, वुमेन बनाई, तो उनके लिए भी एक स्पेशल पावर भी उनको दी है। ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती है, बाहर जाके पढ़ नहीं सकती है, कॉलेज नहीं जा सकती, या फिर ये वाला काम उनके लिए नहीं बना है, हर काम गर्ल्स के लिए बना है। अगर भगवान ने गर्ल्स को, वुमेन्स को बनाया है, तो उनके लिए भी हर काम बनाया है, वो पावर उनके लिए उनको दी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि गाँव की लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, शहर की लड़कियाँ ये कर सकती है, हर काम लड़कियाँ कर सकती है, हर चीज़ पॉसिबल है। हाँ, रीड इंडिया सेंटर पे आके मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स बनाए मैंने, टीचर्स के साथ बहुत मस्ती की। यहाँ पे आके मेरा कोई एम नहीं था कि मैं ये सीख के जाऊँगी, बस मस्ती के लिए आ गई थी। बट लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ सीखने को भी मिला, इतनी अच्छी टीचर्स मिली। उनके साथ जब मतलब वो डांटती भी है तो भी अच्छा लगता है। एक दिन बात ना करो तो टीचर भी परेशान हो जाती है, जिसको क्या हो गया। मतलब हर चीज़ यहाँ की हर चीज़ अच्छी है।
3: I'm Priyanka Jaiswal. I belong UP, Allahabad and living Sahabad, Mohammadpur. मैं यहाँ पे दिल्ली में कोर्स करने के लिए आई हूँ, फैशन डिजाइनर कोर्स। एंड वहाँ पे यूपी में अप्लाई नहीं था जॉब, मतलब कोर्स करने के लिए। हमारे पापा यहाँ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मैं उसके उन्हीं के साथ रहती हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलाई इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैं अपने गाँव वाली लड़कियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती ना, मैं उनको घर के बाहर निकालने के लिए सिलाई सेंटर खोलना चाहती थी, और भी फ्री कोर्सेज के लिए। मैं इतना ही कहूँगी अपने हर लड़की माँ बाप को कि प्लीज उन्हें बाहर भेजें, कुछ करने के लिए उनको भेजें। अधिकतर यहाँ पे उसके हस्बैंड यही सोचते हैं कि ये बोझ है, तो ऐसे ना करें, उसे मतलब समझे कि ये बोझ है। कम से कम अगर वो कुछ करेगी बाहर जाके तो कम से कम उसके घर में हेल्प ही होगा, अच्छा ही होगा जो होगा। मेरी बचपन से यही हॉबी थी कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन मेरी लंबाई छोटी होने के कारण मैं पुलिस नहीं बन सकी। इसलिए मैं ऐसे ही अपने गांव में ही हेल्प करना चाहती हूँ छोटा मोटा। और मेरी स्कूल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो अभी तक नहीं मिली ना, शायद न मिल पाएगी कभी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ अच्छे बनाने के लिए, कोर्स करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यही अच्छा मौका है। अपने माँ बाप से कहें हमें घर से बाहर करने के लिए, कोर्सेज के लिए जारी रखें। दिल्ली में पहले हमारे पापा लोग रहते हैं, हम तो बचपन से गांव में थे। तो इंटर मतलब 12th क्लास पास होने के बाद हम दिल्ली आए। जब दिल्ली यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे भी थे, तो इसलिए मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्सेज अप्लाई कर लिया।
4: रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है, और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना, और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन शायद कम ही लोगों को मालूम होगा कि 1857 से करीब 77 बरस पहले भारत की एक रानी थी जिसके युद्ध कौशल और बहादुरी ने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि उनको परास्त कर कई बरसों तक राज किया। हम बात कर रहे हैं शिवगंगा की रानी वेलु नाचियार की, जिनको आज भी तमिलनाडु के लोग वीर मंगई या बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। 3 जनवरी 1730 तमिलनाडु के रामनाथपुरम के राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा और रानी ने प्यार से इस कन्या का नाम वेलु रखा। बचपन से ही वेलु न सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी बल्कि इन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी और बिना हथियारों के युद्ध में भी महारत हासिल थी। वेलु अपनी मातृभाषा के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच और उर्दू में भी पारंगत थी। 16 बरस की आयु होते होते वेलु के लिए सुयोग्य वर की खोज शुरू हुई। राजा और रानी को उनके लिए शिवगंगा के राजा मुथुवडुगनाथ पेरिया के रूप में जीवन साथी मिला। करीब 20 वर्षों तक रानी वेलु और राजा पेरिया ने शिवगंगा पर राज किया। इसी बीच वेलु ने एक सुंदर कन्या विलच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन खुशियों के ये पल ज्यादा दिन नहीं चल सके। सन 1772 में अरकोट के नवाब मोहम्मद अली खान वालजा और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर शिवगंगा पर हमला किया। भीषण युद्ध चला और राजा की हार हुई। रानी वेलु से पति और शिवगंगा दोनों छिन गए। उन्हें अपनी दुर्मोही बच्ची की जान बचाने के लिए जंगलों में भागना पड़ा। रानी वेलु को संरक्षण मिला डिंडीगुल के विरुपची में, जहां इन्होंने गोपाला नायकर के संरक्षण में करीब 8 बरस बिताए। इतने दिन रानी अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगी रहीं। इस बीच इनकी मुलाकात टीपू सुल्तान के पिता और मैसूर के सुल्तान हैदर अली से हुई। कहते हैं रानी वेलु ने उनसे शुद्ध उर्दू में बात की थी, जिससे प्रभावित होकर हैदर अली ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि इनको अपनी बेटी की तरह माना। इस तरह अब वेलु के पास न सिर्फ एक मजबूत साथी था बल्कि मरुदू भाइयों और उदयाल जैसे शक्तिशाली सिपहसालार भी। अगले 8 वर्षों तक वेलु नाचियार धीरे धीरे अपने खोए हुए इलाके वापस पाने में लगी रही, और एक दिन वो भी आया जब वो अपने किले के सामने खड़ी थी। ये साल था 1780। रानी को मालूम था कि इस किले को भेदना आसान नहीं है, लेकिन इनके पास उस मुश्किल का तोड़ था। इन्होंने अपनी कमांडर कुइली के साथ मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये थी कि किले के अंदर विजयदशमी को प्रवेश किया जाए, जब आम दिनों के विपरीत किले में आने जाने पर उतने प्रतिबंध नहीं होते थे। कमांडर कुइली ग्रामीण औरतों के भेष में किले के अंदर प्रवेश कर गईं, और जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को कुछ समझ में आता वो उन पर कहर बनकर बरसने लगी। इस बीच अपने गुप्तचरों की मदद से कुइली को अंग्रेजों के गोला बारूद के भंडार का पता चला। उनके पास बस यही मौका था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर मंदिर के दिए में जलने वाला घी लगाया और आग लगाकर बारूद के भंडार में घुस गईं। जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसी धमाके के साथ शिवगंगा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। लिखित इतिहास का शायद ये पहला आत्मघाती हमला था। रानी वेलु ने अगले 10 बरस तक शिवगंगा पर राज किया और अपनी बेटी वेलच्ची को उत्तराधिकारी बनाया। 1796 में 66 बरस की उम्र में रानी वेलु का स्वतंत्र शिवगंगा में निधन हो गया। इनकी वीरगाथा दक्षिण भारत की कला और नाट्य का हिस्सा है। भारत सरकार ने सन 2008 में रानी वेलु नाचियार की याद में एक डाक टिकट जारी किया।
1: रीड इंडिया का कार्यक्रम सुनने वालों को गीता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वंदना जी, जो बच्चों के बारे में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: थैंक यू सो मच गीता जी।
1: वंदना, आप मुझे बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं 2 साल से 6 साल तक, गांवों में तो उनके लिए स्कूल ही नहीं है, आंगनवाड़ीज हैं, आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं, और हमें साइंस ये कहती है कि इन बच्चों को 6 महीने से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, तो इसमें आपका क्या विचार है?
2: बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि हमें 6 महीने के बच्चे से बच्चे को एक्टिविटीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जब एक छोटा बच्चा घर में आता है हमारे, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो बढ़ जाती हैं। उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। एक्सपेक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपना रोल प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम 3 महीने, आपने 6 महीने का बच्चा बोला और मैं 3 महीने से ही बोलती हूँ, या जब बच्चा घर में आता है उसी दिन से हमें जो वैल्यूज बच्चे को देनी है हमें उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा होकर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख पाए, तो उसे किताबों की आदत डालिए। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छी बातें बोले, तो उसके सराउंडिंग आप जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो चीज आप में भी आनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है छोटा बच्चा सुनता नहीं है, बट बच्चा माँ के पेट के अंदर से ही सुनना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे जब वो फैमिली में आता है,

0: करते हैं हम मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ देते हैं। मेड्स के ऊपर बच्चे छोड़ने का मतलब है बच्चे के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी, उसका रहना बोलना वो नहीं होता। सेकेंड पार्ट है मोंटेसरी स्कूल्स, डे केयर्स, जिसमें बच्चों के अंदर वो वैल्यूज डाली जाती हैं। तो क्योंकि आजकल वर्किंग वुमेन का कल्चर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, उसी के लिए हम लोगों का जो मोंटेसरी सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमें लाइन में लाना पड़ रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों के अंदर उन वैल्यूज को इनकल्केट कर सके।
1: वंदना, आपके सुझाव सुनने के बाद मेरे दिमाग में तीन बातें आ गई हैं, और तीन बातें ही अलग अलग हैं। एक तो ज्वाइंट फैमिली का ब्रेक होना, पर ज्वाइंट फैमिली का होना भी एक प्लस पॉइंट है। पर अगर हम ज्वाइंट फैमिली का प्लस पॉइंट समझते हैं, तो आजकल एजुकेशन में इतना गैप आ रहा है कि जो यंग मदर है वो कहती है मेरे बच्चे को एक पर्टिकुलर ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, जो मदर इन लॉ या मदर में वो टेक्निक नहीं होती है, तो वो भी गैप फिल करने के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। और जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो मेड्स को वो नहीं आता है तरीका बच्चों को रखने का, जिससे बच्चों को वो वैल्यूज नहीं आती हैं। तीसरी बात ये कि अगर वो मोंटेसरी स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स भी उसको एक जॉब की तरह लेती हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो मुझे तो ये इतनी बड़ी आगे आने वाले समय में समस्या लग रही है, और हम इससे झुलझ रहे हैं, हम भुगत भी चुके हैं, और आगे जो जनरेशन आ रही है उनको वैल्यू सिस्टम देना, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको हम कैसे एक बैलेंस ड्रॉ करें।
0: इस बैलेंस को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। सी, इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है। जैसे आपने मुझसे पहला सवाल किया कि अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हर मदर चाहती है कि मैं उसको अपने तरीके से वैल्यू दूं, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको आजकल के बारे में नहीं पता। बट उस मदर का ये समझना जरूरी है कि जो एक बेसिक वैल्यू है वो सेम है, सिर्फ देने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले या 20 साल पहले भी जो बच्चे बड़े हुए थे या जिस कैटेगरी में हम अपने आप को डालते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी गलत सिस्टम में फॉलो करा हमने, कि हम आजकल के बच्चों को सिस्टम में नहीं ला सकते हैं। तो जो आजकल की जेनरेशन, आजकल की जो मदर है, उसके माइंड में एक सिर्फ एक माइंडसेट उसका चेंज करना है कि जो वैल्यू आपके घर के लोग आपके बच्चे को दे सकते हैं वो बाहर की मेड कभी भी नहीं दे सकती। सेकेंडली, जो एक टीचर का आपने बोला कि आजकल 90% टीचर्स जो हैं वो ये मान के काम करती हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म पे काम करें, कि हमारी हर मंथ की सैलरी हमारी पॉकेट में आ रही है, बट हमें बच्चे के साथ कनेक्शन नहीं बनाना। सो मेरी लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जिन लोगों में पेशेंस नहीं है, जिन लोगों में पर्सनल टच नहीं है, वो लोग टीचर की जॉब के लिए कभी भी आगे नहीं आए। बिकॉज एक टीचर है जो बच्चे को बनाएगी या बच्चे को तोड़ेगी। माँ बाप के पास बच्चा रहता है पूरा दिन, लेकिन बीच में 6 घंटे बच्चा जो है वो स्कूल में टीचर के पास आ रहा है। तो जब हम किसी टीचर को भी अपॉइंट करते हैं तो हमें उनके साथ मिलकर ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चों से कैसे डील कर रही हैं। वैल्यू सिस्टम सालों से सेम चलता आ रहा है, उसको आगे पहुंचाने का तरीका धीरे धीरे साल में बदलता चला जा रहा है, जिसको हमें कनेक्ट करना है।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि वैल्यू सिस्टम्स तो वही है, पर हमें देने का तरीका बदलना है। देने का तरीका बदलने पे मुझे एक और सामने समस्या खड़ी हो रही है कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो कमर्शियल में बदलता जा रहा है। हर कोई पैसा देके डिग्री लेने की दौड़ में चला जा रहा है, और जो वैल्यू है एजुकेशन की वो कहीं ना कहीं बिखरती जा रही है, उसको भी समेटने की बहुत जरूरत है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम जो हमने ये बात करी, ये उस महिलाओं तक पहुंचनी चाहिए जहां पे रीड इंडिया के सेंटर्स हैं, और रीड इंडिया के जो सेंटर्स हैं उनके साथ हमने प्री स्कूल भी खोले हैं, और उन प्री स्कूल्स में हम कितने वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, और टीचर्स को कैसे हम ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज दे रहे हैं, जॉब भी दे रहे हैं, उससे हम डिनाई नहीं कर रहे हैं,

0: उनको पैसे भी उतने ही दे रहे हैं जो एक कमर्शियल स्कूल में मिलते हैं, पर जो हमारी ट्रेनिंग है, जो बच्चों का रखरखाव है स्कूल में और जो बच्चों को हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, मैं ये पढ़ाई नहीं कहूंगी, हम उनको वैल्यू सिस्टम दे रहे हैं। और अगर एक बच्चे की बुनियाद अच्छी बन जाती है तो वो बड़े होके इतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने आप अपनी राह को तराश करने की कोशिश करता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने का।
1: थैंक यू सो मच।

0: अमृत काल में प्रवेश कर चुके हमारे देश के लिए ये आजादी बेशकीमती है,
1: जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जांबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितनों ने तो बेहद कम उम्र होने के बावजूद स्वाधीनता की लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना रानी गादिल्लू की, जिन्होंने महज 13 बरस की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थीं। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का काटा रही रानी गादिल्लू देश की वो अकेली महिला क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय ब्रिटिश कैद में काटा। रानी गादिल्लू का जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के जोलियांगलोंग कबीले के रोंगमई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी गादिल्लू 13 बरस की आयु में नागा नेता जादव नांग, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, उनके संपर्क में आई। जादव नांग हिरका आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले ही 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने जादव नांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। आंदोलन का नेतृत्व बालिका गादिल्लू के हाथों में आ गया। गादिल्लू ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ गादिल्लू भूमिगत होकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रहीं। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के कई गांव जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर धावा बोल दिया। रानी गादिल्लू की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया कि गादिल्लू को पकड़ने के लिए खास बटालियनें तैनात की जाएं। लेकिन गादिल्लू भी अंग्रेजों से दो कदम आगे ही थीं। वो लगातार अपनी जगह बदलतीं और छापामार तरीके से अंग्रेजों पर प्रहार करतीं। लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर भी थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए गादिल्लू ने असम के पुलोमी में एक लकड़ी का किला बनाने का फैसला किया, जिसमें वो अपने 4000 साथियों के साथ रह सकें। किला बनाने का काम शुरू हो गया। इस पर काम चल ही रहा था कि असम राइफल्स ने कैप्टन मैकडोनल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला कर दिया और गादिल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। साल था 1932। गादिल्लू को इम्फाल ले जाया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गादिल्लू ने अगले 15 बरस गुवाहाटी, शिलोंग, तूरा और आइजोल की जेल में बिताए। गादिल्लू तभी मुक्त हो सकी जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कोहिमा में रहने के दौरान सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1982 में समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए रानी गादिल्लू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। 1991 में रानी गादिल्लू अपने जन्म स्थान लोंगकाव लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 1996 में रानी गादिल्लू को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बरस उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया। वही साल 2015 में रानी गादिल्लू के जन्म के 100 बरस पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। देश के इतिहास में वो एकमात्र महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय कारावास में काटा। रानी गादिल्लू को आज भी नागा समाज एक देवी के रूप में याद करता है, जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और लोगों के कल्याण को समर्पित कर दिया।

नमस्कार बहनों, मैं दिनेश मिगलानी आपका रीड इंडिया की कार्यशाला में स्वागत करता हूं। यह कार्यशाला रीड इंडिया के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापार कैसे किया जाए, स्वरोजगार पैदा करना एवं आपको आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यशाला को हमने तीन भागों में बांटा है। पहले भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार क्या होता है, उद्यमी कैसे बना जाता है, इसके अलावा एक सफल उद्यमी या सफल व्यापारी में क्या क्या गुण होते हैं, तथा एक व्यापार करते समय या आप जब अपना कार्य करते हैं उसको करते समय किन किन कार्य को आपने करना है। इसके अलावा हम यह भी सीखेंगे आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्या महत्व है। कार्यशाला के दूसरे भाग के अंदर हम यह सीखेंगे कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाती है और शुरुआत से लेकर व्यापार को खड़ा करने में हम कैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हम एक सफल व्यापार की तरफ अग्रसर हो सकें। कार्यशाला के तीसरे भाग के अंदर जो व्यापार हमने स्थापित किया है उसकी वृद्धि कैसे की जा सके एवं उस व्यापार के आंतरिक चीजों को में क्या क्या आपने ध्यान रखना है, कैसे अपने व्यापार के अकाउंट्स या लेखा बनाने हैं, किन किन चीजों को आपने संभाल के रखना है ताकि भविष्य में अगर आप किसी बैंक के पास जाएं तो कैसे उस व्यापार की वृद्धि की जा सके। तो बहनों चलो हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यशाला के पहले भाग से जिसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है व्यापार क्या है। मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा चार्ट भी बनाया है आपको समझाने के लिए। तो पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं व्यापार क्या है। बहनों आप देखते हैं आपके आसपास में कुछ लोग बैंक में नौकरी करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अलावा कोई किसी कारखाने में कार्य करता है। तो यह नौकरी करना जीविका कमाने का एक साधन है। तो इस तरह के जीविका कमाने को हम कहते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी होंगे जो एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं या किसी ने कोई कारखाना खोला हुआ है। तो जीविका कमाने के इस साधन को हम कहते हैं स्वरोजगार या व्यापार। ये तो हम जानते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसे से ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। यदि आप आत्मनिर्भर हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा विश्वास होता है। एक सफल गृहिणी या एक महिला जो आत्मनिर्भर है वह उस आत्मनिर्भरता से पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेती है। आज के समय में सरकारी नौकरियां काफी कम हैं और हमारी बहनें जो गांव में रहती हैं कम पढ़ी लिखी हैं। यदि आप शहर में रहते हैं तो छोटी मोटी नौकरी या जीविका का कोई साधन आसानी से बनाया जा सकता है, पर गांव में रहने के कारण छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिल पाती। तो हमारी बहनों के पास में अपना कार्य शुरू करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि गांव में आप देखेंगे काम भी नहीं मिलता आजकल। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रोजगार का साधन तो है नहीं, तो इसके लिए हमें छोटा मोटा कार्य तो करना पड़ेगा और वो जो कार्य है वो एक तरह से हमें व्यापार करने या उद्यमी बनने की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे मन में पहली चीज अब ये आती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आत्मनिर्भर होने के लिए। अब वो करना जो है वो कोई ना कोई आपको व्यापार करना है या कोई ना कोई आपको आत्मनिर्भर होने के लिए स्वरोजगार शुरुआत करनी है। तो स्वरोजगार की आप जो शुरुआत करेंगे, शुरुआत करते समय सबसे पहले हम यह समझें कि जो एक सफल उद्यमी है, जो एक सफल व्यापारी है, उसमें क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह एक व्यापारी बन पाया या एक उद्यमी बन पाया, ठीक है। तो मैंने एक पहला चार्ट बनाया है यहां पर आपको ये समझाने के लिए कि एक सफल उद्यमी में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला जो गुण है, सबसे पहली जो चीज है जो हमारी बहनों में भी है, वो होती है पहल।
पहल से हमारा क्या मतलब है, जैसे ही हमारे आसपास आप देखते हो रोजाना हमारे मन में कई तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक है, वो विचार आने के बाद हम उनके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर हिचक के उनको कार्यान्वित नहीं करते, ठीक है। अब एक जो सफल व्यापारी है, अगर उसके सामने कोई विचार आता है तो विचार आने के बाद वह उसके बारे में चीजों को समझता है और समझने के बाद वह ये देखता है कि यदि उससे कोई बिजनेस बनाया जा सकता है, कोई व्यापार किया जा सकता है, तो वह उसके तरफ अग्रसर हो जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है पहल। तो हमारी बहनें जो अब यहां बैठी हैं, अगर आपके मन में कोई भी विचार है, कुछ बहनों को ऐसा लगता होगा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, या पापड़ बहुत अच्छे बनाती हैं, ठीक है, या चटनी अच्छी बनाती हैं, इसके अलावा हमारी बहनों के पास में सिलाई कढ़ाई बुनाई या गांवों के अंदर मिट्टी के बर्तन या हम कहें मिट्टी के खिलौने या आजकल साज सज्जा की जो चीजें हैं जो गांव की महिलाओं को बचपन से सिखाई जाती हैं, जो उनको आती हैं, तो इस तरह का अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार है जहां आपको ये लगता है कि उसमें आप काफी अच्छे हैं, तो पहल अगर आप करेंगे तो एक सफल व्यापारी की तरफ यह आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक सफल उद्यमी का दूसरा जो सबसे गुण होता है वह होता है जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति। अब देखो, आप कोई भी व्यापार करते हैं, सबकी इच्छा यह होती है कि व्यापार आपका सफल हो, पर ऐसा होता नहीं है, हर व्यापार सफल नहीं होता। फिर भी हमारे अंदर जोखिम उठाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यदि हम जोखिम ही नहीं उठाएंगे, यदि हम किसी भी कार्य में जोखिम नहीं उठाएंगे, तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वह है हमारा जोखिम उठाना, क्योंकि जोखिम उठाने से ही कार्य होगा। फिर होता है अपने अनुभव से सीखना। व्यापार करते समय, कोई भी कार्य करते समय गलतियां तो होती हैं, ठीक है, अगर उन गलतियों से हम नहीं सीखेंगे तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा नुकसान जो होगा उसको हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जोखिम उठाने की शक्ति काफी कम है। तो इसलिए हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। एक बार गलती हो जाए कोई बात नहीं, पर यदि दोबारा वह गलती फिर से होगी तो यह हमारी बहुत भारी गलती होगी। फिर प्रेरणा, हमारे अंदर एक प्रेरणा होनी चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए। मान लीजिए हम बहनों के बीच में कोई एक बहन ऐसी है जो कुछ कार्य करती है, कार्य करना मतलब वो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे धन कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, तो हमें उससे प्रेरित होना चाहिए। अगर आप उससे प्रेरित होंगे तभी आपके मन में यह इच्छा जागेगी कि मुझे भी उस बहन की तरह आत्मनिर्भर होना है। इसके अलावा आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में वही सफल होता है जो अपने पर विश्वास करता है। यदि आप अपने पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो आप सोच के देखिए दूसरा कोई व्यक्ति आप पर क्यों विश्वास करेगा, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं है। तो आप अपने पर विश्वास पैदा कीजिए, आपको यह समझना चाहिए कि आप यह कार्य कर सकती हैं। व्यापार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक महिला जो सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे घर को संभाल सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, खाना बना, आप देखो आप कार्य देखिए, एक महिला की सुबह से आप दिनचर्या की शुरुआत करें आखिर तक शाम तक देखें तो एक महिला इतना कार्य करती है कि अगर उसी कार्य को व्यापार के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आत्मनिर्भरता होने का जरिया बन सकता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, वह होता है निर्णय लेने की योग्यता, ठीक है, या निर्णय लेने की क्षमता। आप देखेंगे आपके जीवन में या कोई भी कार्य करते समय काफी बार ऐसे मौके आते हैं जहां आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। यदि आप उस निर्णय लेने की में क्षमता रखते हैं,
तो निर्णय लिया, आपका निर्णय गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। देखो धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सभी निर्णय सही होंगे। निर्णय हमारे गलत भी हो सकते हैं, निर्णय हमारे सही भी हो सकते हैं, बट हमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, हमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास होना चाहिए। तो एक सफल जो व्यवसायी है उसमें यह गुण तो सबसे पहले है। और मेरे हिसाब से हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, इन सब बहनों में ये सब बातें हैं, बट उन्हें उनको बस अपने अंदर झांकना है, उनको अपने अंदर से प्रेरणा लेके आनी है, उनको यह करना है कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी आत्मनिर्भर होना है, हमें भी स्वरोजगार पैदा करना है जिससे हम अपने परिवार का अच्छे ढंग से भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, ताकि उन बच्चों को भविष्य में इस तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े जो शायद आज हमारी बहनें गांव में रहकर कर रही हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि अगर आप एक उद्यम शुरुआत करना जा रहे हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत के बाद आपको किन किन कार्यों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन कार्यों को आपने करना पड़ता है मैंने चरणबद्ध उन कार्यों को लिखा है ताकि आप यह समझ सके कि आप अगर एक बिजनेस या कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरोजगार की शुरुआत करते हैं तो यह कार्य आपको जरूर करने होंगे। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है अवसर की पहचान करना। ठीक है, हमारे जीवन में अवसर आते जाते रहते हैं। आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, घूमते घूमते आपने देखा कि फला जगह पर काफी लोग आते हैं, वहां खाने पीने का कोई भी सामान नहीं है। ठीक है, अगर आपने यह सोच लिया क्यों ना मैं हर रोज दोपहर के वक्त वहां जाकर कुछ खाने का सामान बनाकर जो घर में बनाया जा सकता है, ऐसा सामान जिसको आसानी से बनाया जा सकता है और वह खाने लायक है और आसानी से लोग खाते हैं, अगर आप वहां जाकर बेचना शुरू कर दें, हो सकता है शुरुआत में लोग ज्यादा ना खरीदे, पर अगर वह सामान आपका बिकने लग जाए तो यह अवसर होता है, इसे हम अवसर कहते हैं। अवसर कहीं भी आपको मिल सकता है, अवसर को पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए, हर जगह पर अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो उद्यमी का कार्य है, जो आपके लिए भी है, आपके लिए पहला कार्य यह है कि आप उस अवसर की पहचान करिए। आप यह देखो कि ऐसी क्या चीज आपके पास में है, ऐसा क्या मौका आपके पास में है, यदि आप उसे उस मौके को फायदा उठा पाए, उस मौके को व्यापार में बदल पाए। तो सबसे पहला काम है हमारा है अवसर को पहचान। अवसर को पहचानने के बाद विचारों को कार्यान्वित करना। कई बार क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पहल करनी है, अवसर तो मिल गया, आपको लग गया हाँ भी ये कार्य किया जा सकता है। अब उस कार्य को करने के बाद आपको यह देखना है कि उस विचार जो आपके मन में आया है उसको कैसे एक व्यापार के फॉर्म में लाया जाए, कैसे उसको जमीनी स्तर पर आप उस पे कार्य करिए। तो यह एक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वह होता है अपने विचारों को जमीनी स्तर पर लाकर कार्यान्वित करना ताकि कुछ शुरुआत की जा सके। इसलिए मैंने यहां सबसे पहले ही आपको बताया पहल सबसे इम्पोर्टेंट है, पहल आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, और पहल विचारों को कार्यान्वित करना तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा होगी। फिर संसाधनों को उपलब्ध कराना, जब आपके मन में यह बात बिल्कुल बैठ जाए कि अब तो मुझे कुछ कार्य करना है, आपने यह फाइनल कर लिया, यह आपने निश्चित कर लिया कि यह कार्य आप करेंगे, इस तरह का व्यापार आप शुरुआत करेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे उसको करने के लिए किन किन संसाधन आपको चाहिए, क्या क्या संसाधन आपको चाहिए। तो एक व्यापारी को इन सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और उन संसाधनों को उपलब्ध कराना उसका कार्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं खाने की बात, अब मैं देखो अगले भाग के अंदर मैं अलग अलग एक एक उस पे आऊंगा, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। मान लीजिए कहीं हमने खाने का छोटा मोटा सामान बेचना शुरुआत किया, तो खाने को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक,
बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक हर तरह का संसाधन आपने जुटाना है, और क्योंकि हमारे पास में पैसा भी कम है, जोखिम उठाने की क्षमता कम है, तो इसलिए हमें यह सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कैसे कम से कम पैसे से हम अपनी शुरुआत कर सकें। स्थापना करना, व्यापार को स्थापित करिए, शुरुआत करिए, उसके बाद प्रबंधन करना, ये सब एक व्यापारी का कार्य है। शुरुआत हो जाती है कई बार, शुरुआत में हमें रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, बट धीरे धीरे अगर हम डटे रहेंगे, अगर हमारी पहल ठीक थी, अगर हमारा अवसर ठीक था, तो उसमें वृद्धि भी होगी और उसमें फायदा भी होगा। आप देखेंगे जीवन में कभी भी ऐसा, कई बार ऐसा मौका आ जाता है, हमें यह लगता है कि अब यह कार्य करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर हम कुछ समय और कार्य करते रहें तो वह कार्य सफल हो जाता है, वही चीज व्यापार में होती है, ठीक है। तो यह सब चीजें हमें अपने दिमाग में बिठाकर फिर हम सोचेंगे कि क्या हमारी बहनें व्यापार करने के लिए उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रेरित होके वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लेके आए, आत्मविश्वास पैदा करें, और उनके साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखें कि ये कार्य उन्हें करने पड़ेंगे। अंत में इस कार्यशाला के अंतिम भाग में मैं यह जरूर बात करूंगा कि आपको स्वरोजगार के फायदे क्या है, व्यापार का आपके जीवन में क्या फायदा है, ठीक है। देखो, व्यापार का हमारे जीवन में सबसे पहला, सबसे मुख्य फायदा जो होता है वह होता है आत्मनिर्भर होना। हम अपने जीवन में जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम दूसरों पर आधारित रहेंगे, तब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, और आत्मनिर्भर होने के बाद हम अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ जो आत्मविश्वास हमारी बहनों में आएगा, और उसके साथ जो उनके परिवार की तरक्की होगी, क्योंकि परिवार की तरक्की होगी तभी देश की तरक्की होगी। अगर परिवार ही हमारा उन्नति नहीं करेगा तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से दो चीजों में फायदा होता है, एक तो हमारी परिवार उन्नति करता है और परिवार के साथ साथ देश भी उन्नति करता है, परिवार आगे बढ़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, हमारी एक विशिष्ट पहचान बनती है। अब हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जो आत्मनिर्भर हैं, जो कुछ ना कुछ कार्य करती हैं और उस कार्य करने से धन कई अर्जन होता है उन्हें, तो वो जो उनकी एक विशिष्ट पहचान बन जाती है, समाज में उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो जो विशिष्टता आपके अंदर आएगी, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका परिवार और देश उन्नति करेगा। तो अंत में कार्यशाला के पहले भाग के अंदर मैं यह आपको फिर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो घर में रहती हैं, वो कृपया करके अपने मन में यह जरूर लेके आए। देखो, सबसे पहली चीज आपकी इच्छा शक्ति है। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अपने मन में इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी, आत्मविश्वास अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यह सोचेंगे कि किस तरह का व्यापार हमें करना है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं, और उस व्यापार को करने के लिए संसाधनों को कहां से एकत्रित करेंगे। रीड इंडिया हमारी बहनों को काफी सपोर्ट करती है, सहायता भी करती है। तो इस कार्यशाला के माध्यम से हमने व्यापार के बारे में सीखा। कार्यशाला के दूसरे भाग में हम व्यापार की स्थापना से लेकर व्यापार के बाकी भागों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।

0: प्रीति लता वादेदार, एक ऐसी स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों के शासन में जीना तो दूर, उनके या उनकी पुलिस के हाथों मरना तक गवारा नहीं था। प्रीति लता का जन्म सन 1911 में चटगांव में हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश में है। कोलकाता के बेथुन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद वो चटगांव के बालिका विद्यालय में पढ़ाने लगी। यहाँ उनका परिचय प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन से हुआ, जिन्हें लोग मास्टर दा कहते थे। मास्टर दा से ही उन्हें पिस्तौल चलाने का विधिवत प्रशिक्षण मिला। जून 1932 में चटगांव के एक मकान में अंग्रेजी सेना ने मास्टर दा, प्रीति लता और दूसरे क्रांतिकारियों को घेर लिया। घमासान मुठभेड़ में कई क्रांतिकारी शहीद हो गए। प्रीति लता सूर्य सेन के साथ बच निकलने में सफल हो गईं। पुलिस ने प्रीति लता की सूचना देने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा कर दी। अखबारों में जब उनकी तस्वीर छापी गई, तब उनके माता पिता को उनके क्रांतिकारी होने का पता चला। इस घटना के बाद प्रीति लता का कद क्रांतिकारियों के बीच बढ़ गया। सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने की योजना बनाई। 24 सितंबर 1932 को मास्टर दा ने प्रीति लता को एक जोखिम भरे कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। ये कार्य था पहाड़ताली यूरोपियन क्लब पर हमला। पुरुष वेश में प्रीति लता अपने युवा साथियों के साथ पीछे की गली से क्लब में घुस गई। क्लब के लगभग 50 सदस्य नाचने गाने में मस्त थे। प्रीति लता और उनके साथियों ने बम फोड़ने शुरू कर दिए। हमला इतना घातक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक यूरोपियन महिला मारी गई और कुछ लोग घायल हो गए। दोनों तरफ की गोलीबारी में जैसे ही एक गोली प्रीति लता को लगी, वैसे ही उन्हें ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने घेर लिया। वो जिंदा पुलिस के हाथों नहीं आना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने तुरंत साइनाइड की गोली खा ली। इनकलाब जिंदाबाद का उद्घोष किया और हमेशा के लिए धरती की गोद में सो गई।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: माय नेम इज नौशाबा अंसारी। मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन 10th है और मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है। उसके बाद मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बीच में रुक गई थी। फिर मैंने जॉब की 2 साल आगरा में ही हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरा 1.5 साल का बेटा है। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो यहाँ पर मैंने TG का एंड NTT का कोर्स किया, कर रही हूँ मैं यहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ आकर के। मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, अपना फ्यूचर बना सकती हूँ, अपने बेटे का भी फ्यूचर बना सकती हूँ। मेरे इन-लॉज भी एग्री हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर अभी तक भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है NGO के सिवा, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर और भी खुलने चाहिए ऐसे, जो उससे सभी लेडीज़ को, लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिले, जिनके फादर मदर निकलने नहीं देते घर से। यहाँ अच्छा लगता है, टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ के सारे।
3: हेलो, मेरा नाम दीपा है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं मैरिड हूँ। मेरा एक बेटा है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर के फॉर्म भी भरे थे, पर मैं 6 महीने का ही कोर्स कर पाई कि बीच में मेरी शादी आ गई, जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाई। शादी के 1.5 साल बाद मेरा बेटा हुआ। जैसे बेटे होने के बाद तो जैसे मैं डिप्रेशन में रहने लगी। उसके बाद मुझे रीड इंडिया के बारे में पता चला, तो मैंने अपने इन लॉज को कन्वेंस करने की कोशिश की, पर राजी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन काफी समझाने के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उन्होंने तो परमिशन दे दी, उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को मनाने में भी काफी कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरा बेटा अभी 1.5 साल का ही हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गए। उसके बाद मैं यहाँ आई तो मैंने NTT का कोर्स किया, उसके साथ साथ ही मुझे वहाँ पे सर्वे करने आए तो मुझे यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के बारे में भी पता चला। फिर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर का कोर्स भी किया। उससे मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। उसके रीड इंडिया आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, मुझे काफ़ी कम महसूस होता था और मैं अपने आप को काफ़ी आज़ाद महसूस करती थी। मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं शादी के बाद और बच्चों के बाद काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी, उसमें भी मुझे काफ़ी ये लगा कि मेरा डिप्रेशन दूर हो रहा है, खुल के सांस ले पा रही थी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे काम अपने आप से खुद कर सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने आप को अच्छा फ्यूचर दे सकती हूँ, मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे काफ़ी काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या फिर बिल पे करना, टिकट करना और भी काफ़ी बैंक में के काम सभी घर पे हो जाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है खुद से अपना काम करके, या फिर भाई पहले बहुत बहुत देर तक धूप में लाइन में जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे ही अपना सब कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम रिया है, मैं 10th में स्टडी करती हूँ और मेरी क्लास बीच में अभी कुछ दिनों से बंद हो गई थी, क्लास आना बंद हो गया था मेरा और मेरे घर वाले एग्री नहीं थे, लेकिन मैम ने कॉल करके समझाया, फिर मेरे घर वाले एग्री हुए, मेरे को भेजा। मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और जो भी कोर्स आता है, मैं पहले टीचर ट्रेनिंग भी कर रही थी, फिर उसके बाद अब मैंने कंप्यूटर क्लास ज्वाइन किया है। ये महसूस किया मैंने कि हाँ, जो मैं चाहती हूँ फ्यूचर में बनना, अपने करियर में कुछ करना, उससे ये हुआ है कि हाँ मैं बिल्कुल, मेरे को हो गया है, घर वालों का सपोर्ट हो गया है, टीचर्स ने समझाया था, कॉल की थी कि हाँ ये कर सकती है कुछ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

नमस्कार बहनों, मैं रीड इंडिया द्वारा आयोजित वर्कशॉप के दूसरे भाग में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम दिनेश मिगलानी है। इस वर्कशॉप के पहले भाग में हमने यह सीखा था कि हमारे जीवन में आत्मनिर्भरता की क्या उपयोगिता है, कैसे हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो घर की बहनें हैं, कैसे वो आत्मनिर्भर होकर अपना एवं अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं एवं देश की उन्नति में अपना योगदान प्रदान कर सकती हैं। पहले भाग में हमने यह भी सीखा था कि व्यापार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं। यह हमारा भाग दो है वर्कशॉप का। इस भाग दो के अंदर हमारा जो मेन प्वाइंट है सीखने का, वह यह है कि व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए। व्यापार जो होता है, व्यापार करने के लिए हमारी एक व्यापारिक मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। व्यापारिक मानसिकता क्या होती है? व्यापारिक मानसिकता होती है कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए हम जोखिम उठाते हैं। तो व्यापार का पहला मूल मंत्र क्या है? जोखिम उठाना, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे मन में यह दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कि हमें व्यापार करना है, ठीक है। अब तक के सेशन में हमने यह तो समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, बट अब इस सेशन में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि व्यापार का पहला कार्य क्या है। व्यापार का सबसे प्रथम कार्य होता है अवसर की तलाश करना, सबसे पहला जो कार्य है। अगर आपके पास अच्छा अवसर है, ठीक है, अगर आपको यह पता चल गया कि मैं अगर ये काम करूं तो इससे मैं आत्मनिर्भर हो सकता हूं, तो आप मान लीजिए आधा कार्य आपका हो चुका है। जैसे हम जनरल एक हिंदी में बात कहते हैं ना कि किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आधा कार्य तो वहीं पर हो जाता है। ऐसे ही व्यापार में सबसे इम्पोर्टेंट यह होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह यह होती है कि अवसर की तलाश हो जाए, ठीक है। अब देखो, यदि हम व्यापार करने का विचार कर रहे हैं तो हमारे मन में कई तरह की संभावनाएं आती हैं, कई तरह की बातें आती हैं, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, ठीक है। कई तरह के अवसर हमारे दिमाग में आते हैं, तो हमें हर जगह संभावना दिखती है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अगर मुझे किसी कार्य में संभावना दिख रही है तो मात्र उत्तेजना में आकर मैं वह कार्य शुरू कर दूं। पहले हमें यह समझना होगा कि क्या जो कार्य क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है, क्या उस कार्य क्षेत्र के अंदर वो कार्य क्षेत्र व्यवहारिक है या नहीं है, क्या व्यवहारिक है उसमें व्यापार करना। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहां बात करेंगे पहले कि क्या क्या अवसर हमारे पास में, हमारी बहनों के पास में हो सकते हैं जो गांव में रहती हैं या ऐसी जगहों पर रहती हैं जो शहरों से ज्यादा दूर नहीं है, शहरों के आसपास है, ठीक है। या हमारी बहनें जो कम पढ़ी लिखी हैं, जो वैसे नौकरी नहीं कर सकती बट कुछ अपनी ओर से कुछ कार्य करके पैसा कमाना चाहती हैं, तो इसमें देखिए, वैसे आजकल के समय में, आजकल के समय में सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा जो लोग शामिल है, वह खाने पीने की चीजों से रिलेटेड व्यापार में है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हर आदमी अपना कुछ पैसा खाने पर खर्च करता है। आप देखिए, अगर आप दिल्ली के पास किसी गांव में रहती हैं या आप चंडीगढ़ के पास कहीं रहती हैं या कोई बहुत बड़ा शहर या छोटा शहर भी आपके पास में है, तो अगर शाम को मार्केट में घूमने भी चले जाएं तो आप यह देखेंगे कि जगह जगह पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे हैं, ठीक है, और उन ठेलों पर वह वो सामान बेच रहे हैं, वो खाने पीने की चीजें बेच रहे हैं जो घर में बड़े आसानी से बनाई जा सकती हैं। जैसे कि मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि देखो हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ जो पुरुष उनके घर में है या उनके कुछ बच्चे जो एज में उनकी काफी एज है, तो वो उनकी सहायता कर सकते हैं बाहर जाके खाने पीने चीजों को बेचने में। जैसे कि गोलगप्पे हैं, पानीपुरी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आप देखिए, पानीपुरी को बनाना कितना आसान है, कुछ भी नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। और एक पानीपुरी 2 या 3 रुपए की ज्यादा की आपकी बिकती है, और अगर आप किसी बड़े शहर में उसे बेच रहे हैं तो वो ज्यादा की आपकी बिकने वाली है। पानी तो बेचना आपने,
ठीक है, तो चीजें आसान है तो आपको अवसर तलाशता है। तो खाने पीने की चीजों में आप और बहुत कुछ देख सकते हैं, ऐसी ऐसी सूखी चीजें होती हैं जो खाई जाती हैं, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं खाना, तो उनको बेचा जा सकता है। इसके अलावा कढ़ाई बुनाई और सिलाई से रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि हमारी गांव की महिलाएं कढ़ाई और सिलाई में काफी तेज होती हैं, मतलब क्योंकि यह प्रशिक्षण उन्हें अपने परिवार से ही मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में सभी महिलाएं शहर में आप देखेंगे या सभी लोग अपने घरों को चमकाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घर में साज सज्जा हो, तो जो हाथ से बुनाई हुई चीजें काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, काफी ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो यदि आप में हाथ की कला है जिसमें आप सिलाई कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, तो आप छोटी-छोटी कपड़ों पर कढ़ाई करके उसको एक डिजाइनिंग पीस में बना के शहर में बेच सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्वेटर एवं डिजाइनदार कपड़े, आज के युग में, आज के समय में जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, नौकरियां करती हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वे अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना सकें। तो जनरली वो महिलाएं क्या करती हैं, दुकानों पर जाकर स्वेटर खरीदती हैं। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लीजिए आप जहां रहते हैं आपसे पास कोई शहर या गांव है, आप उस गांव में अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखें तो आपको स्वेटर बनाने के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो आप एक बच्चे का नाप लेके उसकी स्वेटर बना सकती हैं। तो यह एक तरीके से आपका आत्मनिर्भर होने का जरिया हो सकता है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि ऊन जो है वह तो जिस परिवार ने बनवानी है अपने हिसाब से आपको देगा, ठीक है। तो आपको तो ओनली जो आप अपने हाथों से काम कर रही हैं उसी की ही मेहनताना आपको मिलना है। इसके अलावा साज सज्जा का सामान है, मैंने पहले ही आपको बताया कि सभी लोग अपने घरों को ऐसा चाहते हैं कि उनका घर चमका चमका रहे, घर उनका शानदार सा दिखे, ठीक है। तो घर को शानदार दिखाने के लिए हम साज सज्जा का सामान बनाते हैं। तो यदि हमारी कुछ महिलाएं, अगर आप में कुछ ऐसा हुनर है जो आप ऐसे डिजाइन बना सकती हैं मिट्टी के उससे कपड़े के ऊपर जो घरों में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य से आधारित, हर महिला अपने आप में सुंदर दिखना चाहती है, चाहे कोई भी महिला, मैं कहता हूं चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर महिला यह चाहती है कि वह सुंदर दिखे। अगर वह कहीं से जाए तो लोग माने कि हाँ वो सुंदर है, ठीक है। तो आज के समय में चाहे आपके पास पैसा है चाहे पैसा नहीं है, चाहे आपके आमदनी के साधन है चाहे आमदनी के साधन हमारे कम है, फिर भी हमारी महिलाएं जो भी उनके पास में चीजें अवेलेबल है उनको यूज करके सुंदर दिखना चाहती है। तो यदि आप सौंदर्य से आधारित कार्य कर सकते हैं जिसमें छोटा मोटा आपका ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैं एक ब्यूटी पार्लर नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि आप अपने घर से ही जिसमें छोटी छोटी महिलाओं की जो जरूरतें हैं वह कार्य सीख के आप अपना कार्य शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो संस्था है रीड इंडिया है, यह हम अपनी लाइब्रेरीज या अपने सेंटर्स के माध्यम से आपके ब्यूटिशियन कोर्स की ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और यदि आप हमारी संस्था के थ्रू जुड़े हैं और आप अगर आप ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेते हैं तो इतना तो आप सीख ही जाते हैं कि कैसे महिला को सुंदर दिखाया जाए, ठीक है। तो यह एक आपका अच्छा कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप बच्चों के खिलौने बना सकते हैं, लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, यह वो चीज है जो हमेशा चलती है। देखो कोई भी इंसान है जब उसका बच्चा कुछ भी मांगे उससे, ठीक है, जब छोटा बच्चा है तो खेलने के लिए इंसान, अब चाहे उसका इनकम सोर्स है या नहीं है, फिर भी वह बच्चों के लिए काफी पैसा खर्च करता है। तो आप कोई भी, जैसे आप देखेंगे शहरों के अंदर शाम को या सुबह में जो गुब्बारे वाले होते हैं वह भी एक अच्छी कमाई कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपका बच्चा गुब्बारे की डिमांड कर रहा है, गुब्बारा मांग रहा है, तो आप उसे गुब्बारा लेके देंगे। और आप सोच के देखिए, एक गुब्बारे को फुलाकर और उसको एक डोर से बांधने में
आपका कुल खर्च कितना है और कुल कितना पैसा उसके लिए लिया जाता है। 10 रुपए से कम गुब्बारा नहीं बिकता, ठीक है। और यदि आप उस गुब्बारे पे खर्चे की बात करें तो आपका 1 से 2 रुपए का गुब्बारा आता है, 1-2 रुपए आप यह मान लीजिए उससे जो आपने डोर बांध दी है, तो 3 से 4 रुपए के खर्च को आप 10 रुपए तक बेच सकते हैं, ठीक है। ये एक सोच की बात है, अभी देखने में हमें लगता है कि यह बेचना बहुत मुश्किल होगा, पर आप देखिए हजारों लोग ये कार्य करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन आप सकते हैं बना। देखो गांव में हम बहुत तरह की कलाएं सीखते हैं, अगर हमारे हाथ में हुनर है, तो हम ऐसी कोई भी चीज बनानी सीख सकते हैं, और यह सब चीजें शहरों में बड़ी आसानी से बेची जा सकती हैं। आप देखिए किसी भी बाजार के अंदर, कोई जो बड़े बड़े शहर है वहां तो सड़कों पर बाजार लगता है, ठीक है, सड़कों पर बाजार लगता है, तो लोग आते हैं अपने से जो भी सामान उन्हें चाहिए उन्हें खरीदते हैं। तो यदि आप कोई ऐसी चीज बनाने में अगर आप में हुनर है तो यह भी आपकी आत्मनिर्भर होने का रास्ता खोल सकती है। इसके अलावा पापड़, अचार, जो ऐसी सूखी चीजें हैं, देखो अचार है, जो लोग बहुत साफ सुथरा ढंग से अचार बनाते हैं, यदि वह शहर में जाकर उसका विपणन करें, उसकी मार्केटिंग करें, तो अचार बिकना शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से ताजी चटनी, कटी हुई सब्जियां, देखो आजकल के युग में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, जो महिलाएं जॉब करती हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी है चाहे वह प्राइवेट नौकरी है, तो वो महिलाएं चाहती हैं कि उनके घर के छोटे मोटे कार्य जो हैं वह उन्हें किए मिले। तो आजकल आप देखोगे पहले मार्केट में जाते थे तो वहां सब्जी खरीदी जाती थी, ठीक है, बट आज जमाना ऐसा आ गया है कि मार्केट में कटी हुई सब्जियां खरीदी जाती हैं। अब आप आलू वाले भैया को बोलोगे कि भैया मुझे 1 किलो आलू देना, अब आप ये नहीं कहोगे 1 किलो आलू देना, आप उसे ये कहेंगे मुझे आलू की सब्जी बनानी है तो 1 किलो कटे आलू देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि यह वो सारी बातें हैं जिनको जिनमें से आप यह देख सकते हैं कि व्यापार की, इन सब चीजों में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि जब आप अवसर के बारे में सोचती हैं, अवसर के बारे में तलाश शुरू करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें क्या आता है, ठीक है। और कई बार ऐसी चीज होती है जो हमें आती नहीं है, बट हमारे मन में आता है कि इस चीज से कोई ना कोई व्यापार किया जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी अवसरों को कुछ मैंने यहाँ पर बताए हैं, या इसके अलावा बहनें हमारी इतनी सारी यहाँ बैठी हैं, और मैं तो यह मानता हूं कि हमारे बहनों की जो सोचने की शक्ति है वह सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो बहनें आपस में एक समूह में होती हैं। जब आप किसी समूह में बैठे होते हो तो इतने सारे दिमाग एक साथ कार्य करते हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, आज डिस्कस कर सकते हैं भी यह आइडिया आपके मन में है, तो जो भी आइडिया आपके मन में आए, जो भी व्यापार करने की बात आपके मन में आए, आप यह उस व्यापार करने के मुद्दे को अपने सहेलियों के साथ में उनसे बात करिए, क्योंकि जब आप किसी आइडिया को दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको उसमें से कुछ और अच्छी बात सुझा सकता है। तो पहला जो हमारा मुद्दा है वह है अवसर को तलाश करना। मैं फिर बार बार इस बात पे जोर डाल रहा हूं, यहाँ पर हमारी महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हैं, यदि उनके मन में कोई भी अवसर है, यदि उन्होंने किसी अवसर को अगर तलाश लिया, ठीक है, और उत्तेजना में आकर व्यापार शुरू कर दिया, उत्तेजना मैं नहीं कहूंगा, पहले सोच समझकर अगर उन्होंने सारी बातें सोच समझकर कार्य करना शुरू करा, तो 100% उनका कार्य यह है सफल होगा, ठीक है। अब अवसर तो तलाश लिया, ये मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, मैं मान रहा हूं, कुछ बातें मैंने बताई हैं, कुछ आप लोग भी आपस में बात करेंगे, तो यह मैं मान के चल रहा हूं कि अवसर तो हमने तलाश लिया। अब अवसर तलाशने के बाद में यह नहीं है कि जैसे ही आपने अवसर तलाशा तो मतलब आपका व्यापार चल पड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अवसर तलाशने के बाद में हमारी जंग शुरू हो जाती है, हमारी जंग शुरू हो जाती है किसके साथ में, हमारी जंग शुरू हो जाती है भाग्य के साथ में। हमारी जंग की शुरुआत हो जाती है जो मार्केट में दूसरे लोग हैं जो उसी तरह के सामान को बेचते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद दूसरा जो कार्य हमारे करना होता है वह होता है विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान, अब आपको लगेगा कि विपणन क्या होता है और अनुसंधान क्या चीज होती है, तो विपणन अनुसंधान से हमारा मतलब यह होता है कि आइडिया या जो हमने अवसर के बारे में बात करी है, अब हम यह देखेंगे कि उस अवसर में कितना दम है, क्या जो हमारा ग्राहक है क्या वह उसे पसंद करेगा कि नहीं करेगा, क्या हमारा ग्राहक जो हमारा जिसको हमें सामान बेचना है वो उसमें अलग क्या चाहता है। तो विपणन अनुसंधान के अंदर सबसे पहले हम ग्राहक की बात करते हैं, सबसे पहला हम क्या बात करते हैं, ग्राहक की, क्योंकि अंत में पैसा तो आपको ग्राहक नहीं देना है, मतलब सारी बातें अपनी जगह, कोई भी अगर हम इसमें से सामान को चुनाव करते हैं, कोई भी व्यापार करने की शुरुआत करने की बात करते हैं, तो अंत में जो पैसा है जो सामान बेचा जाएगा वह तो किसको बेचा जाएगा, ग्राहक को ही बेचा जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें ग्राहक के बारे में सोचना होता है कि ग्राहक क्या हमारी वस्तुओं को पसंद करेगा या नहीं करेगा, और क्या ग्राहक हमारी चीजों के बारे में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ग्राहक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राहक को समझने के लिए हम पहली चीज यह देखते हैं कि हमारी चीजों में क्या क्या विशेषता है, ठीक है, और ग्राहक की क्या क्या आवश्यकता है। दोनों में हमें एक तरह से बांध बनाना होता है, भाई ग्राहक की आवश्यकता क्या है, क्या हमारी जो वस्तु जो हमने बनाई है क्या उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लें, मान लो खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, अब देखो हर तरह के ग्राहक है, कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है, ठीक है, तो वो ऐसी वस्तुएं खाना पसंद करते हैं जो काफी साफ सफाई से बनाई गई हों, इसके अलावा ज्यादा मसालेदार न हो, ठीक है, तो हमें उन ग्राहकों को हमें देखना होगा कि हम किन ग्राहकों को टारगेट करके अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अंत में पैसा तो ग्राहक ने ही देना है। इसके अलावा मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो सामान हम बना रहे हैं, उससे दूसरे सामान और क्या क्या अवेलेबल है, ये हमें जरूर देखना होता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजना में आकर हम अपना कार्य शुरुआत कर दें और जब हम मार्केट में सामान बेचने जाएं तो हमें यह पता चले कि हमारे सामान के अलावा जो दूसरे सामान मार्केट में उपस्थित है वह क्वालिटी वाइज या उनमें गुणता हमसे ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों के प्रोडक्ट्स को भी देखना है, उनको समझना है कि उनके प्रोडक्ट्स में क्या है और हम अपना जो सामान बनाएंगे हम उनसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यदि हमारा सामान दूसरों के सामान से बेहतर होगा तभी उसका मार्केट में बिकने के चांसेस ज्यादा है, तभी हम एक अच्छी बाजार में अपने आप को अच्छा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दूसरों के सामान को भी देखना होगा, सामान को देखने के बाद फिर हम यह देखेंगे कि हम अपने सामान को दूसरों के सामान से कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और फिर यह भी आपको समझना है कि क्या हमारा सामान जो हमने बनाया है क्या वह ग्राहक की इच्छाओं को पूरा करता है, क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यदि हमारा सामान ग्राहक की आवश्यकताओं को दूसरों के सामान से ज्यादा पूरा करता है तो इसका मतलब हमारे सामान को मार्केट में चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा एक मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर इंग्लिश के अंदर, पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग। अब हमारी कुछ बहनें हैं वह नहीं समझ पाएंगी कि पायलट क्या होता है, अब ये तो आपको पता ही है बहनों कि पायलट का मतलब होता है जो जहाज उड़ाता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि किसी को हम जहाज दे रहे हैं तो पहले ही उसे कहें जा बेटा जहाज उड़ा, हजार सवारी ले जा साथ में, ऐसा तो नहीं है। पहले हम कुछ थोड़े से पोर्शन पे ट्राई करके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में नमक खरीदने चले, आप बाजार में नमक खरीदने चले और हमने जो सड़क के किनारे नमक बेच रहे हैं उनसे बात करनी शुरुआत करी, वहां दो ढेरियां लगी हुई थी, ठीक है, एक ढेरी में नमक था और दूसरी डेयरी में भी
नमक था। हमें यह देखना

खर्च करने की बजाय पहले हम थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सामान बनाकर देखेंगे और उसे उस थोड़े से सामान को मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, यह समझने के लिए कि क्या हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि यदि हमारा सामान मार्केट में बिकने लायक नहीं है और हम काफी ज्यादा सामान बना लेते हैं तो इसमें हमारा जोखिम ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले कुछ सामान बनाकर हम मार्केट में बेचने की ट्राई करें, बेचने की कोशिश करें और यदि हम अपनी कोशिश में सफल हो जाते हैं और ग्राहकों के फीडबैक से, जो ग्राहक हमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो हम आगे नई से नई चीजें बना सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे हम ज्यादा सामान नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उस सामान की मार्केट में पायलट टेस्टिंग करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या वह हमारा सामान जो है मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। इसके अलावा साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आज के युग में, आज के समय में साफ सफाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी ग्राहक, कोई भी, मान लीजिए मैं ही हूं, मुझे अगर कुछ भी खरीदना है तो पहली बात मैं सामान को देखूंगा क्या साफ सफाई है, या जहां पर वह बनाया जा रहा है या जहां पर बैठ के आप उसे बेच रहे हो, क्या वह साफ सुथरी जगह है या नहीं है। तो सामान को बनाने से लेकर उसको बेचने तक, किसी भी सामान को बनाने से लेकर और उसे बेचने तक साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि साफ सफाई हमारे देश की पहचान है। मोदी जी का नारा है ना स्वच्छ भारत, तो ये जो स्वच्छ भारत की बात है वो इसी बात से निकली हुई है, साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, खाने पीने की चीजें हैं, बच्चों के खिलौने हैं, जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है पैकेजिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, पैकेजिंग। पैकेजिंग आकर्षित होनी चाहिए। देखो आप मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं, आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सामान को देखते हैं, जो सामान सबसे ज्यादा आकर्षित ढंग से जिसको पैक किया जाता है हमारा मन पहला उसी पे टिकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, और देखो सामान तो जब आप यूज करते हैं उसके बाद ही समझ में आता है कि वो कितना आपके लिए कारगर होगा, बट सबसे पहली चीज जो ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है वह होती है सामान की पैकिंग। तो पैकिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम एक छोटे बच्चों के गिफ्ट की बात भी करें तो हर चीज को पैक किया जाता है, पैक करने का एक उपयुक्त तरीका होता है। तो रीड इंडिया के सेंटर्स के माध्यम से पैकेजिंग कोर्स भी चलाए जाते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि सामान को कैसे पैक किया जाए, कैसे रैप किया जाए अच्छे रैपर्स के अंदर। तो पैकेजिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप अचार बेच रहे हैं, आप चटनी बेच रहे हैं, तो उसको किस ढंग से पैक किया जाए। ठीक है, पैक करने के बाद उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देखते ही समझ जाए कि इसके अंदर क्या चीज है। ठीक है, और अंत में हम बात करेंगे मूल्य निर्धारण की। अब यह काफी ज्यादा कठिन प्रश्न हो जाता है कि सामान का मूल्य क्या रखा जाए, सामान का मूल्य क्या रखा जाए। ठीक है, तो जो सामान हाथ से बनाया जाता है वैसे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। हम तो एक चीज कहते हैं कि जो हाथ से बनाई जाती है वह अतुलनीय चीज है, वह मतलब बेशुमार कीमती है, पर ऐसा नहीं है। ग्राहक तो कीमत के हिसाब से ही, अपने सामान उपयोगिता के हिसाब से ही सामान खरीदेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि हम यह चाहें कि इतना मुनाफा कमा लें कि एक ही सामान को बेचकर मुनाफा कमाएं। देखो मुनाफा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सामान की कीमत को ज्यादा रखें, ठीक है, दूसरा हम अपने सामान की कीमत में, हमने मन में सोच लिया कि यदि मेरी 100 रुपए लागत है और 100 रुपए की लागत के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20% का लाभ चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने एक परसेंटेज अपने मन में फिक्स कर ली, तो मैं सामान की कीमत को इस तरह से रखूंगा कि लागत के बाद जितना मुझे लाभ चाहिए उतना मैं लाभ उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है?
ठीक है,

0: या हम क्या करें कि अपने सामान की सेल को बढ़ाएं। यदि ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा सामान बिकेगा, तो ज्यादा सामान बिकेगा तो कम, अगर कीमत कम भी है, कीमत अगर कम भी है तो भी हमें लाभ उतना ही होगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि एक बार में लाभ न कमा लिया जाए, लाभ कमाएं, मुनाफा कमाएं, बट ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा मुनाफा कमाएं कि ग्राहक दूसरी बार हमारे पास आए ना। तो हमारे सामान में क्वालिटी के हिसाब से, सामान की उपयोगिता के हिसाब से हमें उसका मूल्य निर्धारण करना होता है। मूल्य निर्धारण करते समय हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट बिल्कुल सेम जो हैं उनका मूल्य कितना है। ऐसा ना हो कि हमारे सामान का मूल्य उनके मूल्य से काफी ज्यादा हो, जिससे कि हमारे सामान के बिकने के जो चांसेस है वह कम हो जाए। तो हमें मूल्य निर्धारण पे भी काफी ध्यान देना चाहिए। तो इस भाग के अंदर हमने कई बातों पर बात करी, तो मैं आशा है मुझे कि हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं उनको यह समझ में आया होगा कि व्यापार करना जितना बाहर से आकर्षित करता है अंदर से उतना आसान नहीं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है हर हिस्से में, व्यापार के हर भाग में। ये नहीं कि हमने सामान बना लिया और हम यह सोचें कि हमारे घर से बिक जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसके अलावा सामान तो हमने बना लिया अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से बनाया गया सामान ग्राहक की सोच से यदि मैच नहीं करता तो वह सामान हमारा बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ग्राहक हमारे लिए देवता है, जैसा ग्राहक चाहेगा सामान तो हमें वैसा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तेजना में आकर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर सामान बना दिया जाए और फिर हम उसे बेचने जाए मार्केट के अंदर, तो यह भी मूर्खता होगी। पहले हमें यह देखना चाहिए, थोड़ा बहुत सामान बनाकर बेचने की ट्राई करनी चाहिए और यह पता करना चाहिए कि किन किन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ सकता है या हमारे सामान में किन किन बातों, किन किन चीजों से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज जितनी अच्छी पैक्ड होगी, जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी उसकी उतनी ही उपयोगिता ज्यादा है, उतने ही वह ग्राहकों को आकर्षित करती है और उसके बिकने के चांसेस उतने ज्यादा हो जाते हैं। और मूल्य तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है कि ग्राहक आपका सामान तभी खरीदता है जब वह सामान उसकी उपयोगिता के हिसाब से, जो मूल्य आप उसे बता रहे हैं उसके साथ यदि वह मैच कर जाता है तो ग्राहक आपका सामान जरूर खरीदेगा। आशा है इस भाग को, वर्कशॉप के इस दूसरे भाग को समझने के बाद आपको यह जरूर समझ में आया होगा कि व्यापार करने की शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे कैसे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। इसी वर्कशॉप के भाग तीन के अंदर हम यह सीखेंगे कि मार्केटिंग कैसे की जानी चाहिए। सामान तो आपने बना लिया, मूल्य भी निर्धारण कर लिया, कंपेयर भी कर लिया, कैसे मार्केटिंग करी जाए। और इसके अलावा, मार्केटिंग के अलावा हम यह भी देखेंगे कि कैसे अपने खाते बनाए जाए। मतलब आप कुछ ना कुछ खाता बना जरूर होना चाहिए ताकि आप यह देख पाए कि कितनी हमारी लागत लग रही है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है और महीने या दो महीने के अंत में हमें कितने का लाभ होगा। तो वह हम इस वर्कशॉप के भाग तीन में सीखेंगे। आशा करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।
1: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
2: हेलो, मेरा नाम नीलम है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पे एक बार रीड इंडिया वाले हमारे उधर सर्वे करने आए थे, उनके थ्रू मुझे रीड इंडिया के बारे में पता लगा, फिर मैं इधर आने लग गई, मैं रीड इंडिया से जुड़ गई। यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ से पार्लर भी सीखा है और कंप्यूटर भी। इस टैग के कोर्स में मैंने IT बनाना और किसी की लोकेशन सेंड करना, और पहले मैं घंटों उसकी लाइन में, बैंक की लाइन में खड़ी रहती थी, बट जब से फ़ोन, मतलब इसकी नॉलेज मुझे हुई है, कंप्यूटर की, तब से मैं अपने फ़ोन में ये डाउनलोड करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकती हूँ, पैसे भेज सकती हूँ, और उससे मतलब कैब करके मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। अब मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो रीट इंडिया से जुड़ने के बाद मेरे साथ हुई है वो ये कि मैं घर में रह के डिप्रेशन में रहने लग गई थी, अब मैं फ्री माइंड हो गई हूँ, मैं मतलब आज़ाद होकर सोच सकती हूँ और थोड़ा मेरा दिमाग भी मतलब सही रहने लग गया है। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी घर में रह के, मैं बाहर भी कहीं नहीं जाती थी और घर में रह के यही रहने लग गया था, बस डिप्रेशन नहीं रहने लग गया था। अब यहाँ आके मैं बिल्कुल ठीक रहने लग गई हूँ। हाँ, मैं हाउसवाइफ के लिए ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बाहर आइए, आपको नहीं सीखना नहीं है वो ठीक है, बट आप आइए, सीखने के बहाने से ही आइए ताकि आप मतलब मेंटली तौर पर सही रह सकें और आपको एक दूसरे से बात करके कुछ नया पता लगे, मतलब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो तो कुछ अच्छा ही पता लगे अपने परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, उनकी परवरिश के बारे में, बहुत कुछ आप यहाँ आके जान सकते हैं। थैंक यू रेड इंडिया।
3: Hello everyone, my name is Lancy and I passed 10th class. Then I think to join Read India Academy to improve my condition. मैंने अकेडमी ज्वाइन की रीड इंडिया और उसमें हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ TEG, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स। ये एक कोर्स है जो वुमेन और गर्ल्स के लिए है। ये वुमेन और गर्ल्स की बैड कंडीशन को इम्प्रूव करता है। जैसे पहले घरों में महिलाएं निकलती नहीं थी और कोई निकलने नहीं देता था, भाई और उनके पिता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये प्रोग्राम चला है तो इसके लिए सब यहाँ पे वुमेन और गर्ल्स आती हैं, कंप्यूटर कोर्स करती हैं और सिलाई करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं जिनसे वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आगे भी एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया है 21 डेज का भी और मैं बेसिक कंप्यूटर भी कर रही हूँ। और मैंने इंटरनेट के थ्रू मेलिंग सीखी है, वेबसाइट से लिंक बनाना सीखा है और मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी है। पहले मतलब मुझे कुछ नहीं करना आता था, मुझे किस सबकी ज़रूरत होती थी, लेकिन आज कल मैं खुद कर रही हूँ ये सब और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं बहुत इंडिपेंडेंट फील करती हूँ। थैंक यू रीड इंडिया एकेडमी।
4: गुड आफ्टरनून, माई नेम इज़ तनु तनवर। आई पास 10th क्लास एंड आई ज्वाइन रीड इंडिया अकेडमी इन शाहबाद मोहम्मदपुर। दिस इज़ ओनली वन अकेडमी हु टीच अस कंप्यूटर। दिस अकेडमी हेल्प्स टू बी अ वुमेन इंडिपेंडेंट। रीड इंडिया स्टार्ट्स टैग प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स ओनली टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन फॉर वुमेन्स एंड इट हेल्प्स अस इन फॉर्म फिलिंग एंड ऑल्सो वी हेल्प्स आर पेरेंट्स, देन वी ऑल्सो रिजर्व टिकट्स। थैंक यू।
5: आई एम श्वेता, आई स्टडी इन इग्नू यूनिवर्सिटी और आई डन NPTT कोर्स फॉर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रजौरी गार्डन। और हमारे जो यहाँ पे शाहबाद में ये है ना NGO, मैं यहाँ से क्लासेस ले रही हूँ टैग की, तो इससे मेरे को काफ़ी चेंजेस आए हैं और थोड़ा सा लगा के भाई यहाँ पे आके हाँ बाकी को भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफ़ी हेल्प है, मतलब टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, कोई दबाव नहीं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और दूसरा फिर इससे ये है कि नॉलेज बढ़ती है यहाँ पे आके एक दूसरे को, मतलब हम जाके जैसे हम आ रहे हैं किसी को बता रहे हैं डिटेल दे रहे हैं तो इससे काफ़ी चेंजेस आते हैं, मतलब किसी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक तो पास में है और ऊपर से यहाँ पे कोई ऐसे प्रेशर वाली बात नहीं, ऐसे कोई मतलब फोर्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, कोई बता नहीं रहा, इसमें ये होता है। और मतलब होना चाहिए कि हर घर से कोई एक भी आए ना, तो ये नहीं मतलब कि सिर्फ घर में या एक फैमिली में, इसमें पूरे एरिया में चेंजेस आ सकते हैं अगर हम लाना चाहें तो। और उसके बाद जैसे होती है ना फैमिली टाइम से पहले मतलब लड़कियों को मतलब घर बिठा लेते हैं, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल कंडीशन लगा लो, कुछ भी हो, जिससे लड़कियां घर बैठ जाती हैं, पढ़ाई कर नहीं पाती, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे, इस लाइन में आने से, क्योंकि इसमें मतलब इतना कोई ज़्यादा हाई फाई फीस वगैरह भी नहीं लगती कि जिससे भाई कोई अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें नॉर्मली होता है फाइनली, मतलब ये कि जैसे नॉर्मली फैमिली होती है वो भी कर सकती है और जो मतलब बिल्कुल लो होती हैं वो भी कर सकती हैं। और जैसे मतलब भाई होती हैं, कुछ फैमिली जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ लड़कों को करती हैं कि भाई लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं बढ़ सकती, और शादी वादी कर देते हैं, उनकी पढ़ाना नहीं चाहते उनको आगे। तो उनके लिए भी मतलब है कि भाई वो कर सकती हैं आके, तो उनको लगेगा, खुद ही लगेगा, मतलब चेंजेस आ जाते हैं। और इससे मतलब इतना कुछ सिखाते हैं हमें यहाँ पे ये कि मतलब हमें खुद लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग वर्क में, और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन मतलब कुछ भी वर्क है वो हम कर सकते हैं। तो इससे हमें हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं और घर वालों के में भी आते हैं, और इससे ये आगे हमारा जो फ्यूचर होता है ना वो सेव हो जाता है, क्योंकि अगर हम आज अपने पैरों पर खड़े तो तभी तो अपने बच्चों को हम बना सकते हैं मतलब इंडिपेंडेंट। अगर बच्चों को कुछ सिखाना तो उसके लिए पहले खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, इससे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ जानकारी होगी, हमें कुछ डिटेल्स होंगी, तभी हम किसी के सामने मतलब रख सकते हैं। एक शादी करना और मतलब लाइफ को घर में दबा के रखना, ख़त्म कर देना, सब कुछ नहीं होता आज के टाइम में। मतलब जितना बढ़ो आगे उतना कम है, और हर किसी को बढ़ना चाहिए, किसी एक को नहीं, हर किसी को, जहाँ से जैसी हेल्प मिलती है, जो मिलती है वो करनी चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है कि सिर्फ यही कर सकता है, यही बोल सकता है, मैं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। सबको है मतलब एक फ्रीडम होती है अपने आप में, लाइफ अपनी है, किसी का प्रेशर नहीं होता कोई के मतलब हम किसी के प्रेशर में आके अपनी लाइफ ख़राब कर दे, या मतलब बोल ले नहीं, कुछ नहीं करे, आगे नहीं बढ़े। एक दो बार मतलब होता है भाई, डर होता है एक, लेकिन बार बार निकलने से ना सब डर खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है खत्म करने से खत्म होएगा, ऐसे डरने से तो डर बढ़ता ही है, कोई मतलब दूसरा उसको ख़त्म नहीं कर सकता आके। अब हम हैं जैसे कुछ होती हैं लड़कियाँ, जरूरी नहीं है कि हर लड़की को फ्रीडम होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे सिर्फ पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, बाकी फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि मतलब मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि सबको ये था ट्वेल्थ कर लिया, पास आउट हो गया, स्कूल शादी कर दो, ये वो। लेकिन मेरे पेरेंट्स शुरू से वर्किंग है, तो वो चाहते हैं, उनको पता है पैसे की कीमत क्या है, तो वो चाहते हैं मतलब तो बच्चे कुछ अच्छा करें, ताकि उनको इस लाइन में ना जाना पड़े, और वो अपने पैरों पे खड़े हो, मतलब अच्छे से अच्छा काम करें, और दुनिया में मतलब उनकी एक अलग पहचान हो। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और आज मैं यहाँ हूँ। और एक शादी की तो एक लास्ट में एक वो होता है कि भाई अब तो करनी है, वो तो एक लास्ट मोमेंट होता है कि अब तो भाई स्टेप लेना ही है। उससे पहले ना सिर्फ स्टडी के बारे में सोचना चाहिए, कैसे लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। ज़रूरी नहीं होता कि मतलब घर वालों ने बोल दिया आप सुन के बैठ गए, चलो भाई कोई नहीं, उनको समझाना चाहिए अपने तरीके से, ऐसे भी नहीं कि लड़ लो, ये कर दो वो कर दो, नहीं, प्यार से समझाओ, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या दुनिया में क्या हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंस है। और वैसे भी आजकल तो हर कोई लड़का भी अच्छा नहीं मिलता, हर कोई फैमिली भी अच्छी नहीं मिलती, वो तो किस्मत की बात है, सुख दुख तो किस्मत का होता है। तो इसलिए हमें जितना हो सके ना अपने पैरों पर खड़ा होकर इंडिपेंडेंट होकर मतलब सोचना चाहिए, लास्ट एक मोमेंट होता है जो स्टेप लेना है, उससे पहले अपनी लाइफ बनाओ, जो करना है वो करो, बाकी करो सिर्फ ऐसा ही कि घर वालों को भी अच्छा लगे और खुद का भी एक स्टैंड हो और दुनिया में अपनी पहचान हो।

0: अमृत काल में प्रवेश कर चुके हमारे देश के लिए ये आजादी बेशकीमती है,
1: जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जांबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितनों ने तो बेहद कम उम्र होने के बावजूद स्वाधीनता की लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना रानी गादिल्लो की, जिन्होंने महज 13 बरस की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थीं। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का कांटा रही रानी गादिल्लो देश की वो अकेली महिला क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय ब्रिटिश कैद में काटा। रानी गादिल्लो का जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के जोलियांगलोंग कबीले के रोंगमई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी गादिल्लो 13 बरस की आयु में नागा नेता जादव नांग, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, उनके संपर्क में आई। जादव नांग हिरका आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले ही 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने जादव नांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। आंदोलन का नेतृत्व बालिका गादिल्लो के हाथों में आ गया। गादिल्लो ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ गादिल्लो भूमिगत होकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रहीं। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के कई गांव जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर धावा बोल दिया। रानी गादिल्लो की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया कि गादिल्लो को पकड़ने के लिए खास बटालियनें तैनात की जाएं। लेकिन गादिल्लो भी अंग्रेजों से दो कदम आगे ही थीं। वो लगातार अपनी जगह बदलतीं और छापामार तरीके से अंग्रेजों पर प्रहार करतीं। लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर भी थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए गादिल्लो ने असम के पुलोमी में एक लकड़ी का किला बनाने का फैसला किया, जिसमें वो अपने 4000 साथियों के साथ रह सके। किला बनाने का काम शुरू हो गया। इस पर काम चल ही रहा था कि असम राइफल्स ने कैप्टन मैकडोनल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला कर दिया और गादिल्लो को गिरफ्तार कर लिया गया। साल था 1932। गादिल्लो को इम्फाल ले जाया गया, उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गादिल्लो ने अगले 15 बरस गुवाहाटी, शिलोंग, तूरा और आइजोल की जेल में बिताए। गादिल्लो तभी मुक्त हो सकी जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कोहिमा में रहने के दौरान सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1982 में समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए रानी गादिल्लो को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। 1991 में रानी गादिल्लो अपने जन्म स्थान लोंगकाव लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 1996 में रानी गादिल्लो को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बरस उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया। वही साल 2015 में रानी गादिल्लो के जन्म के 100 बरस पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। देश के इतिहास में वो एकमात्र महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय कारावास में काटा। रानी गादिल्लो को आज भी नागा समाज एक देवी के रूप में याद करता है, जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और लोगों के कल्याण को समर्पित कर दिया।

नमस्कार बहनों, रीट इंडिया द्वारा आयोजित व्यापार को कैसे स्थापित किया जाए एवं आत्मनिर्भर कैसे बना जाए की वर्कशॉप के भाग तीन में मैं दिनेश मिगलानी आपका स्वागत करता हूं। अभी तक के दो चरणों में या दो भागों में हमने यह सीखा था कि आत्मनिर्भरता की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है एवं भाग दो के अंदर हमने यह सीखा कि व्यापार कैसे किया जाए, व्यापार की शुरुआत कैसे की जाए, शुरुआत करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे ग्राहकों की आवश्यकताओं को हमें देखना है और कैसे मूल्य निर्धारण करना है। भाग तीन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा जो है कि सामान को कैसे बेचा जाए, सामान की मार्केटिंग कैसे करी जाए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो, वैसे तो मार्केटिंग जो सामान को बेचना है यह एक तरह की कला है, यह एक तरह की कला है और कला ऐसी होती है जो इंसान में आंतरिक तौर पर होती है, वंशागुणत होती है। मैं तो ये कहता हूं कि वह जन्म जाति होती है। हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं बहनें हमारी ऐसी हैं जो बातों को बहुत अच्छे ढंग से बताती है और इतने अच्छे या रोचक ढंग से बताती हैं कि सामने वाला उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और सारा जो बाजार का खेल है वह केवल विश्वास का खेल है। यदि ग्राहक आपकी बातों पर विश्वास कर रहा है वह आपसे सामान खरीदेगा, उसके बाद सामान का उपयोग करेगा और यदि वह आप सामान का उपयोग और आपकी की गई बातें अगर आपस में मेल खाती हैं तो ग्राहक संतुष्ट ग्राहक माना जाता है, जो एक व्यापार अच्छे व्यापार का सूचक है। ठीक है, तो इस भाग के अंदर हम दो भागों में बात कर रहे हैं। पहला भाग जो है सामान को कैसे बेचा जाए। देखिए, सामान बेचने के लिए सबसे पहले हमारी अपनी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए अपने सामान के बारे में। हमें यह लगना चाहिए कि हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है, हमारा सामान औरों से क्यों अच्छा है। यदि हमें यह लगेगा कि मेरा सामान बहुत अच्छा है तभी मैं अपने ग्राहक को यह बता पाऊंगी कि मेरा सामान औरों से क्यों अच्छा है। तो पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी चीजों के तरफ एक सकारात्मक सी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए या हमारे मन में यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो सामान हम बेच रहे हैं यह मार्केट में उस दाम पर सबसे अच्छा मिलने वाला सामान है। ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ साथ आपको अपने सामान के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए, सिंपल सी बात है, एक साधारण सी बात है, मैं अपने सामान के बारे में तभी बता सकता हूं जब मुझे अपने सामान की हर बात के बारे में जानकारी होगी। मैंने सामान कैसे बनाया, किस किस कच्चे माल का उसमें प्रयोग करा, बनाते टाइम मेरी विधि क्या थी, क्या मैंने साफ सफाई का ध्यान रखा या नहीं रखा, हर चीज के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सामान के बारे में बताते हैं तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको उसके बारे में एक पूर्ण रूप से जानकारी होगी। ठीक है, तो सामान की जानकारी होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक अच्छे मार्केटिंग के लिए। हम ये कहें अच्छे जो सामान बेचने वाला होता है उसके लिए महत्वपूर्ण बात यही होती है कि सामान की जानकारी और उसका सामान दूसरे सामान से कैसे अच्छा है। क्योंकि जब हमें अपने सामान की जानकारी होगी तो हम अपने ग्राहक को यह बता पाएंगे कि हमारा जो सामान, अगर जो सामान हम बेच रहे हैं वह दूसरे सामान से कैसे अच्छा है, कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि तभी ग्राहक हमारा सामान खरीदेगा। तो सामान की विशेषताएं, जानकारी एवं दूसरे जो मार्केट में सामान अवेलेबल है उससे कंपैरिजन करना, या हम कहें कि उससे हम नाप पाए कि हमारा सामान उनसे कितना अच्छा है। इसके बाद हमारी वाक्पटुता होनी चाहिए। देखो, वाक्पटुता बोलने की कला है। बोलने की कला मतलब यदि कोई ग्राहक हमारे पास में आता है तो हमें बात करनी है उससे, ग्राहक से। ठीक है, क्योंकि हम यदि ग्राहक ने मान लीजिए मुझसे किसी सामान के बारे में पूछा और मैं उसे एक रूखा सा जवाब दे दूं तो सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि ग्राहक मेरा सामान नहीं खरीदेगा। और यहीं यदि मैं एक बहुत अच्छे ढंग से उसे जवाब दूं, अच्छे ढंग से अपने सामान की विशेषताओं के बारे में बताऊं तो ग्राहक उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और ग्राहक हमारा सामान खरीदता है। तो आपकी बातचीत की कला सामान बेचने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे बातचीत कला व्यक्ति या महिला
अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकती है। और कुछ कार्य हमारे ऐसे हैं, मैंने शुरुआती लेक्चर में आपको बताया था कि कुछ कार्य हमारे ऐसे होते हैं जिन कार्यों में हमारा व्यापार जो है वह सारा जो आधारित होता है, जैसे कि एक ब्यूटिशियन का कार्य है, जो ब्यूटी पार्लर वाली महिला है जो साज सज्जा का सामान या सौंदर्य से आधारित जो काम करती है, तो उसको बातचीत में पारंगत होना चाहिए। यदि वह जिस महिला के सौंदर्य पे कार्य कर रही है, यदि वह उससे बातचीत करती है बहुत अच्छे ढंग से, उसे हर चीज को समझाती है, हर चीज की उपयोगिता बताती है, हर चीज का महत्व बताती है, तो जो दूसरी महिला है जो उसके पास एज ए ग्राहक आई है, अगली बार उसी के पास ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं अपनी बात करूं, देखो मैं बाल कटवाता हूं, ठीक है, बाल कटवाता हूं तो मैं उसी नाई के पास जाना पसंद करता हूं जो बड़े प्यार से बोलता है। बोल तो मेरे घर के आसपास काफी नाइयों की दुकानें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम हर बार एक ही नाई के पास जाते हैं, या मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं तो ज्यादातर आप देखोगे, ज्यादातर आप एक ही दुकान पे जाएंगे, बार बार उसी दुकान पे जाएंगे। यदि वह दुकानदार आपसे कुछ पैसा ज्यादा भी लेगा तो भी आपको यह लगेगा कि उसी दुकान पर जाना ही आपके लिए लाभदायक है। क्यों? क्योंकि हम यह देखते हैं कि सामान खरीदने के साथ साथ हम जिससे सामान खरीद रहे हैं क्या वह हमसे अच्छे ढंग से बातचीत करता है या नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो बातचीत है, जो उसकी बात करने की कला है, वह हमें सम्मोहित कर लेती है। तो हमारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वह बातचीत करने में काफी अच्छी हैं। मैं पर्सनली जानता हूं, बहुत लोगों से हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो वाक्पटुता होती है, महिलाओं की जो बात करने की कला होती है, वह पुरुषों के मुकाबले काफी अच्छी होती है। तो उनकी जो बातचीत करने की कला है वह आपको अपना सामान बेचने में काफी ज्यादा सहायता करती है। इसके साथ साथ हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का पहला नियम यही है कि अपने सामान के बारे में बताते समय कभी संकोच ना करें, मन में कभी संशय ना लाएं, ठीक है, ना ही कभी आपको ऐसा लगे कि मैं बार बार वही चीज बता रहा हूं, हर ग्राहक को बताता हूं और ग्राहक मेरे सामान को पसंद नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई ग्राहक सामान खरीदना ही नहीं चाहता, तो यदि आप उसे विशेषताएं बताएंगे, उपयोगिता बताएंगे तो आपकी बातों पर ध्यान न दे। तो हमें निरंतर बिना संकोच किए एक अच्छे तरीके से अपनी चीजों के बारे में ग्राहकों को बताना चाहिए। साफ सुथरा रहें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। यदि आप मार्केट में जाके सामान बेचते हैं, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, तो वहां पर कोई भी ग्राहक अगर आपके पास आता है तो ग्राहक पहले ये देखता है कि जो व्यक्ति सामान बेच रहा है वो किस वेशभूषा में है, कैसे बैठा है। यदि आप देखिए, मुझे कुछ खाने का सामान खरीदना, मान ली छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, अब मेरे सामने तीन पानी पूरी वाले ठेले हैं, ठीक है, मैं किसी उस ठेले पर जाना ज्यादा पसंद करूंगा जहां जिस ठेले पर जो पानी पूरी खिला रहा है वह साफ सुथरा व्यक्ति होना चाहिए, हाथ साफ हो, कपड़े साफ हो, क्योंकि तभी देखो आज के युग में कोई भी ग्राहक है वह आपसे तभी बात करना पसंद करेगा, तभी आपकी दुकान पर आना चाहेगा जब आप एक साफ सुथरे होंगे, ठीक है। तो हमें अपने ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा मेहनत तो देखो पहली चीज है, मेहनत के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपने एक बार मेहनत कर दी फिर आप मेहनत करना बंद कर दें, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मेहनत कश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना मेहनत के आप कोई भी व्यापार नहीं चला सकते। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य व्यापार का है, लाभ कमाना तो है ही है, लाभ कमाने के साथ साथ ग्राहक की संतुष्टि लक्ष्य है। तो मार्केटिंग में या सामान बेचने में आप जो आपने ज्यादा ध्यान रखना है, एक तो ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक मार्केटिंग से एक संतुष्ट ग्राहक उस पैसे खर्चने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक जब दूसरे ग्राहकों को आपके सामान के बारे में बताएगा तो दूसरे ग्राहक भी आपके सामान के लिए आकर्षित होंगे। तो हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी सामान बेचें, जिस तरह का सामान बेचें, जिस ग्राहक को हम बेचें, वह ग्राहक हमसे संतुष्ट होकर जाए, वह हमारे सामान से संतुष्ट हो, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक आपका बेस्ट मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, क्योंकि वह हर जगह जाकर आपकी बात को बताएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ पैसा खर्च करके मार्केटिंग करना चाहें तो हम कुछ पैम्पलेट छपवा सकते हैं अपने सामान के बारे में,
हमें पता है भी इस पर्टिकुलर एरिया के लोग हमारे सामान को खरीद सकते हैं, तो हम उनके घरों पे जाकर एक एक पर्चा फेंक सकते हैं। तो ये कई सारे माध्यम हो सकते हैं। आप देखो वैसे तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिल्कुल छोटे स्केल पर, मतलब उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके पास ना तो काफी ज्यादा पैसा है, वह जो उनके पास साधन उनके पास है उन्हीं को ही यूज करके, उन्हीं का ही उपयोग करके आत्मनिर्भर होने की ट्राई कर रही हैं। तो यदि कुछ पैसा आ जाता है, यदि हमारा कार्य चलने लग जाता है, तो हम फिर अपनी मार्केटिंग के तरीकों को उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम पर्चे छपवा सकते हैं, हम एक बैनर बनवा सकते हैं जिसपे जो भी सामान हम बेच रहे हैं उस सामान से, उससे सामान में क्या क्या है, उस सामान में क्या क्या विशेषता है, जो मार्केट में दूसरा सामान अवेलेबल है वह सामान उनसे कितना अच्छा है, उस सबके बारे में उस पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सामान बेचने की ट्राई करिए, सामान बेचने की कोशिश करनी चाहिए, और जो एक मेहनत कश कार्य है जिसमें काफी मेहनत लगती है, और संतुष्ट ग्राहक को करना हमारा पहला उद्देश्य है। ये हुआ हमारा पहला पार्ट। भाग तीन के दूसरे पॉइंट्स, जो दूसरी बात हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होती है, खातों में हिसाब रखना। देखिए हम व्यापार तो शुरू कर देते हैं, ठीक है, और व्यापार शुरुआत करने के बाद शुरुआती दौर पर जब हमारे पास में कुछ जमा पूंजी होती है तो हम उसे खर्च करते हैं। ठीक है, कई बार हमारी बहनें या काफी लोग ऐसे होते हैं जो हिसाब किताब नहीं रखते, और कुछ समय के बाद में उनको यह नहीं समझ में आता कि उनका कितना पैसा किस चीज पर खर्च हुआ और उन्होंने कुल कितना पैसा खर्च किया, और जो अब वह लाभ कमा रहे हैं क्या वह उस उनकी कॉस्ट या उसके खर्चे के अनुरूप है या नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा न जाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप एक अपनी डायरी जरूर बनाइए, एक डायरी अपनी जरूर बनाइए। ठीक है, उस डायरी में कुछ भागों में आप उसे बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या भाग बना सकते हैं? एक भाग के अंदर तो आप यह देखो, मान लीजिए ये मेरा पहला पेज है, आपने आगे तो लिखना था, लिख दिया ओम नमः शिवाय, भगवान जी का नमस्कार करके अपना स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जो लक्ष्मी माता का प्रतीक है। उसके बाद पहले पेज पर आप ये देखिए, हमने इसके दो भाग कर दिए। ठीक है, एक भाग हुआ हमारा खर्चे का और एक भाग हो गया हमारा आय का। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां लिखेंगे सारा खर्चा, जो भी खर्चा होता है आपको एक एक करके रोज का खर्चा लिखना है, और यहां हमने लिखनी है आय, मतलब उससे हमें कितने का सामान बिका। मान लीजिए अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मैं उस महीने में मैंने जितना भी खर्चा किया वह मैं सारा एक तरफ लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जितनी भी मुझे आय हुई सामान बेचने से, जहां जहां से पैसा आया वह मैं सारा यहां पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और महीने के अंत में हम जोड़ कर लेंगे दोनों तरफ का और यह देखेंगे हमें लाभ कितना हुआ। ठीक है, ऐसी अगले महीने आपने करना है। मतलब आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपए व्यापार में लगाए हैं तो 100 रुपए किस किस जगह पे आपने खर्च किए हैं। ठीक है, और यदि महीने के अंत में हमारी जेब में 500 रुपया है तो हमें यह जरूर पता हो कि वह कहां से हमारे पास में आया है। तो इससे हमें दो बातों में फायदा होता है, एक तो हम यह कंपेयर कर सकते हैं, यह हम आपस में तुलना कर सकते हैं कि मान लीजिए जो कच्चा माल मैंने आज खरीदा, अगले महीने अगर मैं वह कच्चा माल खरीदने दोबारा जा रहा हूं तो क्या उसकी लागत में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, उसकी मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। यदि मैं कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करूंगा, यदि मैं कोई खाता नहीं बनाऊंगा, तो मैं इस चीज को ढूंढ नहीं पाऊंगा कि पिछले महीने मैंने जो सामान खरीदा था उसकी लागत क्या थी, उसका मूल्य क्या था, और इस महीने जो मैं सामान खरीदने वाला हूं उसका मूल्य क्या होगा। क्योंकि यदि सामान का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसी के हिसाब से अपनी जो वस्तु है, अपना जो सामान है, उसका भी मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि अगर आपकी लागत बढ़ेगी तो हम अपनी वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जरूर बनाइए, खर्चा सारा लिखो, आय सारी लिखो। ठीक है, इसके अलावा आप यह देखो कि व्यापार चलाने के लिए आपने किन किन चीजों को खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एसेट हैं, एसेट का मतलब होता है कि जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, वह भी उस डायरी में आप एक जगह पर लिखिए क्या क्या सामान आपने व्यापार के लिए खरीदा है। इसके अलावा आप जब ग्राहकों से मिलते हैं तो जो आपके संतुष्ट ग्राहक है, आप ट्राई करिए, कोशिश करिए उन संतुष्ट ग्राहकों के पते भी आपके पास में हो। यदि ग्राहकों के पते आपके पास में होंगे
तो किसी कारणवश अगर कोई ग्राहक आप तक सामान लेने नहीं आ रहा है तो आप अपने सामान को वहां तक जाकर बेच सकते हैं। जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ता है फिर हम और चीजों पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए शुरुआती दौर पर हमने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, ठीक है, और 6-8 महीने की मेहनत के बाद में वह व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। अब मुझे ये लगता है कि मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं और लागत बढ़ रही है, तो मैं अकेला उस व्यापार को नहीं संभाल सकता। तो फिर हम यह सोचते हैं क्यों ना किसी को साझेदार बना लिया जाए, तो फिर हम साझेदारी में आ जाते हैं। तो इस तरह से समय की मांग के साथ साथ, देखो मैं तो अंत में फिर ये कहूंगा, समय की मांग के साथ साथ हमें किस तरह के व्यापार के स्वामित्व पे जाना चाहिए, एकल व्यापार करना चाहिए या साझेदारी का व्यापार करना चाहिए, वह सब बात जो आती है वह बात आती है कि हमारे व्यापार का स्केल कितना है, क्या हमारे व्यापार में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा फिर आप बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि अगले 6 महीने मेरे पास में इतना पैसा ज्यादा आएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा मैं अपने बैंक में डाल सकता हूं जिसपे मुझे कम से कम ब्याज तो मिलेगा ही, ठीक है। उसमें आप अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, यदि आपका सेविंग खाता है या आपका बचत खाता है तो कुछ ब्याज गवर्नमेंट आपको देती है, सरकार की तरफ आपसे मिलता है, तो इस तरह से आप बैंक खाता खुलवाइए। तो धीरे धीरे एक अच्छे व्यापार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इसके बाद भी व्यापार और ज्यादा बढ़ रहा है तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि यदि बैंक में हमारा पैसा जमा होगा, हमारी साख होगी, तभी बैंक हमें फ्यूचर में हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन प्रदान करेगा। अंत में फिर मैं एक बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जो बहनें हमारी यहां पर बैठी हैं, इन वर्कशॉप के माध्यम से मैंने आपको एक कागजी तौर पर समझाया है कि व्यापार क्या होता है, व्यापार कैसे किया जाता है, व्यापार के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद अवसर कैसे तलाशते हैं, अवसर तलाशने के बाद हमें अपना सामान बनाना होता है, सामान बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा उसका मूल्य निर्धारण कैसे करना चाहिए, और उसके बाद सामान बनाने के बाद उसको कैसे बाजार में बेचा जाए, और बेचते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, इसके अलावा जो हमने सामान बेचा है या जो हमने खर्चा किया है या जो हमारी आय हुई है, उस आय को कैसे एक लेखा के तौर पर एक उसके खाते बनाए जाने चाहिए, एक कॉपी में जरूर, आप एक डायरी में जरूर उसको एंट्री करिए, और धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ जाता है तो किन किन बातों का आपने आगे ध्यान रखना है। आशा करता हूं मैं कि इन वर्कशॉप के 3 भाग जो मैंने आपको, आपने जो मेरे 3 भाग देखे, इनको सुनने के बाद आपके मन में यह इच्छा तो जरूर पैदा होगी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए आपको, और आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है। हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो घरों में रहती हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और परिवार की जिम्मेवारी भी उनके ऊपर है, तो उन महिलाओं को उन महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूर आना चाहिए कि वह भी आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार को पाल सकती हैं और अपना गुजारा कर सकती है। अंत में रीड इंडिया के माध्यम से मैं दिनेश मिगलानी आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी तत्परता से और इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से मेरे लेक्चर्स को सुना। धन्यवाद, नमस्कार।

स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम, यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन. तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था. जैसे देखिए, अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे. आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं. आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में. ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्वलेंट टू 12th माना जाता है. मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है, तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा. तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपका एक तरह से 12th के इक्वलेंट होता है. तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या लें, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्वलेंट टू क्लास 12th. अब डिप्लोमा की जो फिलोसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं. जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है, वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें, तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है. जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है. आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है. आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए. आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज. आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है. थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी. तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद. मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते. तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें. तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है. मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है. वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में. काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं. आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है. तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं. आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है, ठीक है. इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है. अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 5-6 स्ट्रीम की हम बात करते हैं,
बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है, तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है, बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है क्योंकि एज भी आपकी कम है ना। अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4-5 सालों में आप जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमाज की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गावा में या एनसीआर के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती है काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर
जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका, हाँ जी मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए एसेंशियल आइटम है, ठीक है। आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है। मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट। उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का, अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते

यूनिट्स है, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली। स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो। रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे भी, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है। तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं। पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर ITI, वो क्या करते हैं ITI भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो ITI है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो ITI आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं NCR एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल VLCC का नाम आप सबको पता ही होगा, VLCC एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है,
तो मतलब

0: इट्स अ वेरी वाइल्ड, इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स है, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है, बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में, डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं, वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोग की जो वेबसाइट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है, मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं, तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है, हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है अभी, इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं कई मैक्सिमम टाइम चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब दे दे, एक तरह से ये हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हो, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के हमें शो करता हूँ किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है। तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। ठीक है, अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है। तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। आप देखिए, कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक में हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स हैं, होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है। तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आई हुई है, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI आई है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, पर इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गावा की बात करते हैं तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई हुई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ जिसे हम कहते हैं, कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी हैं जो आपको एक टाइप से जो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है, बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं। आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है। कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी भी क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ कोविड-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे, जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल। और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इन टू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, यूएसए था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से, दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना। ठीक है, अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहां पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए भी उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं। ठीक है, तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहां पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूं जो डीएमआरसी है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं डीएमआरसी के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं डीएमआरसी में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है, अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि डीएमआरसी ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है। बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था, उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो डीएमआरसी के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th-10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीट का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीट का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है, उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है, भी आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीट कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं पीएसयू की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ओएनजीसी, गेल, इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है, ओएनजीसी में, गेल में, कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की, तो बीटेक आप करते हैं, तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है, तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है, और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है, तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिटर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड, जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड, बाकी आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी, जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर भी आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है टेंथ पास करके 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं, प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके या प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक आप स्कोप है, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर, आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर। मेरा है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर के जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती हैं, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं, जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है, टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: मेरा नाम प्रियंका है, मैं शाबान मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। हम परिवार में 5 सदस्य हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा और 3 बहन भाई। मेरा भाई 9th क्लास में है, बहन मेरी जॉब करती है, पापा टूरिज्म में है और मम्मी ने यहाँ से रीड इंडिया सेंटर से नर्सिंग का कोर्स किया था। आज वो जॉब कर रही हैं हॉस्पिटल में। मैंने 5 साल पहले रीड इंडिया सेंटर से कंप्यूटर कोर्स किया था, उसके बाद मैंने एनटीटी किया और आज मैं एज अ लाइब्रेरियन रीड इंडिया सेंटर में जॉब कर रही हूँ। मेरा जो एम था वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना था। अब मैं रीड इंडिया सेंटर की मदद से यहाँ से कोर्स करने के बाद मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ काम करने के साथ साथ मैं अपने घर पे भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी घर पे निभाती हूँ, वैसे ही मैं अपनी जिम्मेवारी यहाँ रीड इंडिया सेंटर के साथ निभाती हूँ। अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, पूर्ण तरीके से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी वर्किंग है, तो छोटे भाई की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभाती हूँ। मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, स्कूल से लेके आती हूँ। उसके अलावा मैं उसकी स्टडी में हेल्प करती हूँ, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती हूँ और उसके अलावा उसकी सारी जिम्मेवारियां मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके काम भी करती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम निशा सैनी है। मैं जब छोटी थी, 10 साल की थी और 6 क्लास में थी, तो मैं शुरू से ही यहीं पे आना शुरू किया है। एनजीओ के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शुरू से पसंद रहा है मेरे लिए, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, मैं ना पिछले 7 साल से आती रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मतलब एनजीओ में बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं कर लूँगी, अगर कर सकी तो कर लूँगी, अगर जो मुझे इंटरेस्ट रहा जिस चीज़ में, मैं वो करूँगी और एनजीओ में आऊँगी। शुरू से आती रहूँगी। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, मैंने पढ़ा भी है, लेके भी गई हूँ घर, बहुत अच्छी बुक्स हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं, यहाँ के मैम सब अच्छे हैं। अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अब जो बॉयज होते हैं ना, पेरेंट्स ना सिर्फ बॉयज की ही मानते हैं, आजकल के ना बॉयज की बहुत डिमांड वगैरह है और गर्ल्स से जो कुछ कर दे, जैसे बॉयज के तरह जॉब करना चाहती हैं या कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों पीछे रोकते हैं, क्यों मना करना चाहते हैं। आखिर लड़की भी तो है, करके दिखा सकती है वो लड़की, जो लड़के काम कर सकते हैं ना वो करके दिखा सकते हैं। लड़की को सब लोग कमजोर पता नहीं क्यों समझते हैं, आज के देश में नहीं समझना चाहिए। और वो लड़की ताकतवर होती है, वो अच्छी भी होती हैं और वो समझ सकती हैं, वो पेरेंट्स को खुद अच्छे से कमा के खिला सकती है, जितने बॉयज कमा के नहीं खिला सकते। अब बॉयज से ना बहुत मतलब भी होते हैं, बड़े होते होते ना अपने पेरेंट्स को उल्टा सीधा बोलते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। मुझे बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बॉयज ना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते और ना ही गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते। जो अच्छे से बात करते हैं पता नहीं कैसी नज़रों से देखते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। वो बॉयज है ना बहुत गंदे होते हैं, बॉयज की तरफ तो बहुत ही कमी जितना होता है उतना ही तक बात रखें, फ्रेंड है तो फ्रेंड ही तक रहे, उससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बॉयज से ना एकदम जैसे आगे आगे अपना करियर करते हैं वैसे वैसे ना लोग नए नए मिलते हैं और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, खिलाया पिलाया। शादी हो जाती है तो उसके बाद अपनी वाइफ की ही सुनते हैं, पता नहीं क्यों सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो हमें पढ़ाया लिखाया हमारे पेरेंट्स ही है, जो कुछ है उनकी रिस्पेक्ट करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें, जैसे हमें बचपन से पेरेंट्स ने रखा हम उनकी तरह बड़े होके अच्छे से रखें। मैं एक महिला और लड़की के ऊपर एक कविता है मैं सुनाने जा रही हूँ। मैं चाहती थी कि जींस पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं जो सूट पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं सब सारी जिंदगी जीऊँ, पर पेरेंट्स ने मेरे को ये सब करने नहीं दिया। जो बॉयस होते हैं उन सबको आज़ादी दी। शादी होने के बाद ससुराल में गई, सास ने बोला ये करो वो करो, लेकिन कुछ भी करने ना दिया। जो कुछ था सब उसके नाम का था, सिंदूर उसके नाम का, चूड़ी उसके नाम की, पायल उसके नाम का, साड़ी उसके नाम की, बिछिया उसके नाम का, नाम प्लेट भी उसके नाम का, नेम भी उसके नाम का, आखिर मेरा क्या है मेरे नाम का। थैंक यू।

भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी का करो या मरो आह्वान और देश भर से अनगिनत आजादी के मतवाले बलिदान की राह पर चल पड़े। उन्हीं में से एक वीरांगना थी कनकलता बरुआ। असम के गोहपुर में जन्मी कनकलता के मन में क्रांति का अंकुर महज 7 वर्ष की उम्र में ही फूट चुका था, जब कनकलता ने पास के गांव में हुई एक क्रांतिकारी सभा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तेजपुर में मृत्यु वाहिनी दल के गठन के दौरान कनकलता दल की सक्रिय सदस्य बन गयी। आंदोलन के समर्थन के लिए मृत्यु वाहिनी ने गोहपुर पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्णय लिया और 20 सितंबर 1942 को हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए कनकलता जुलूस के साथ आगे बढ़ने लगी। पुलिस की चेतावनी से बेपरवाह निर्भीक कनकलता के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ता रहा। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। गोली लगते ही कनकलता गिर पड़ी और आखिरकार हाथ में तिरंगा और दिल में आजाद राष्ट्र का सपना लिए ये महान स्वाधीनता सेनानी हमेशा के लिए पंच तत्व में लीन हो गई।

0: నా పేరు సరిత. మా గ్రామం పేరు కలుగుట్ట గ్రామం. నేను కడతట్లపల్లి గ్రామంలో రీడ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ద్వారా సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ నేర్చుకున్నాను. దానివల్ల నాకు చాలా లాభం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫేక్ కాల్స్ నమ్మకూడదని, ఈమెయిల్ ఐడి, గూగుల్ పే, బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటివి చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు. ఇంకా దీనిని నేను మా ఫ్రెండ్స్ కి, మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి, మా చుట్టుపక్కల వాళ్లకు నేర్చుకోవాలని చెప్పాను. దీనివల్ల మనకు చాలా లాభం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
1: పేరు ధనశ్రీ. మా ఊరు పేరు వెళ్ళండి. మా ఊరు నుంచి నేను 5 కిలోమీటర్స్ వరకు నడిచి కడపనకంకి వెళ్ళి చదువుకునేదాన్ని. అప్పుడు మా కడపనకం పక్కనే కడతటిపల్లి ఉంది. మా ఊరు నుంచి 2 కిలోమీటర్లు. అక్కడికి వెళ్లి నేను కంప్యూటర్ నేర్చుకున్నాను. అంతకుముందు అయితే అసలు నాకు ఓపెన్ చేయడం అసలు టైపింగ్ చేయడం అసలు ఏమీ రాదు. మా స్కూల్లో ఉంది కానీ అది ఎక్కువగా యూజ్ చేయరు, అసలు నేర్పిరు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా నాలెడ్జ్ పెరిగింది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ 9th లో ఉన్నప్పుడు నేను నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ కాబట్టి నాకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా యూజ్ అవుతా ఉంది. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది వెళ్లారు, వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేలా చెప్పాను. కాబట్టి కంప్యూటర్ క్లాసెస్ వెళ్ళినందుకు చాలా యూజ్ అవుతుంది నాకు. ఎంఎస్ ఆఫీస్ ద్వారా పెయింటర్, పవర్ పాయింట్ ఇంకా చాలా నేర్చుకున్నాను. నాకు కంప్యూటర్ నేర్చుకున్న ద్వారా చాలా యూజే ఉంది, కానీ ఏమీ నష్టం లేదు. కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది చెప్పాను. చెప్పి వాళ్ళని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్లి ఇంకా చాలా రీడ్ ఇండియా సెంటర్ మాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దానివల్ల మాకు చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి మా ఫ్రెండ్స్ తో పాటు మేము అందరూ వెళ్ళి కంప్యూటర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ రీడ్ ఇండియా.
2: హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ షాన్వి ఫ్రమ్ బారెట్పల్లి. డ్యూరింగ్ కోవిడ్ పీరియడ్ ఐ అటెండెడ్ ది సైబర్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ కండక్టెడ్ బై రీడ్ ఇండియా. Before this class, we had no idea about such thoughts. This class helped me and surrounding people a lot. We got to know that we should not share the OTP and passwords with others. Before this class, one of my friend lost 2000 rupees, but now we all are aware of such thoughts. This class was really very helpful. We all are thankful to Read India. Thank you very much.
3: मेरा नाम रेखा सिंह है. हम कटहरी गांव में रहते हैं. हमारी उम्र 40 साल है. हम हाई स्कूल तक पढ़े हैं. जी, हमारे यहाँ रीड इंडिया का सेंटर खुला है. वहाँ पर कंप्यूटर सिलाई सबसे जुड़ा है. हम लोगों को पता चला तो हम लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन कराए और पढ़े सीखने भी आते थे. वैसे हम लोगों को बहुत सारा चीज सिलने और काटने का आ गया. वैसे हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो इतना सब बहुत कुछ आ गया है. मास्क वगैरह, फ्राक, कुछ बेबी मेकर और बहुत से सलवार, कुर्ता, कुछ ब्लाउज, पेटी कोट बताया गया. सब कुछ काटे, अच्छे से सिले, अपना भी सिले, अपने घर वालों का सिले. थोड़ा सा हम लोगों का बचत भी हुआ.
4: मेरा नाम आकांक्षा शुक्ला है. मेरी उम्र 20 साल है. हमने यहाँ रीड इंडिया के सेंटर समराइज से सिलाई सीखी है. पहले हमें थोड़ी बहुत सिलाई आती थी. उसके बाद हम जब यहाँ सीखने आए तो हमें पूरी तरह से सिलाई आने लगी है. और पहले अपने कपड़े कहीं टेलर के यहाँ सिलवाते थे, अब हम अपने आप सिल सकते हैं. इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आया. जब हम यहाँ सिलाई सीखने आए तो हमें कई सारी ट्रेनिंगें मिली और उससे मेरे जीवन में व्यक्तित्व में सुधार भी आया. और हम अब अपने जैसी लड़कियों को ट्रेनिंग देना चाहती हूँ.
5: मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है. मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ. मेरी उम्र 16 साल है. रीड इंडिया सेंटर जो कटहरी में खुला है उससे मुझे पर्चे के द्वारा पता चला. जो रीड इंडिया सेंटर के पर्चे छपे थे वो मेरे तक पहुँचे तो मैं यहाँ पर आई और इससे जुड़ी. मेरा एडमिशन हो गया और फिर मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ, जिससे मुझे फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने पर मैं इससे जुड़कर काम कर सकती हूँ. पहले मुझे कंप्यूटर बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मेरे आसपास कहीं भी कंप्यूटर सेंटर नहीं थे. लेकिन जब यहाँ रीड इंडिया सेंटर खुला तो मैं कंप्यूटर में सीखी और मुझे लगा कंप्यूटर बहुत आसान होता है और मुझे कंप्यूटर के सारे डर खत्म हो गए। और मैं रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत थैंक यू सो मच करती हूँ और यहाँ पर जो मैम है और टीचर है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
6: मैं विनीता मौर्य है, मैं ग्राम कटहरी में रहती हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, एक अच्छा तक पढ़ी हूँ। मेरे गांव में रीड इंडिया सेंटर खुला है, जब मुझे पता चला तो मैं यहाँ आई, अपना एडमिशन कराया और फिर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मुझे सिलाई करना लगभग आ चुका है, जैसे कि मास्क बनाना, बच्चों के कपड़े सिलना, औरतों के ब्लाउज सिलना, ये सब मैं कर लेती हूँ। अगर अवसर आया तो ये सब मैं सिलकर बाहर को निर्यात कर सकती हूँ।
7: कोमल पाल है, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने रीड इंडिया सेंटर सिमराई बाराबंकी ट्रेनिंग ली है। पहले मुझे मतलब सिलाई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बाद मैंने मतलब अपने कपड़े स्वयं सिल सकते हैं, अपने पूरे घर परिवार के, और जो मतलब जो पहले था जो पैसे दूसरे को देते थे, अब वो पैसे मतलब खुद मतलब बचत कर सकते हैं। और मेरे ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया।
8: मेरा नाम विमलेश सिंह है, हमें अनेक प्रकार के हमारे जीवन में बदलाव आए हैं सिलाई को लेकर। और जब मैं जो भी चाहती हूँ सिलाई से संबंधित जो ग्रुप बनाकर वो आगे काम भी कर सकती हूँ, अपना सिलाई का कोई सेंटर खोल सकती हूँ या समूह बनाकर मैं इकट्ठे कपड़े सिल सकती हूँ, सिलकर मार्केट में भेज सकती हूँ, जो भी चाहती हूँ सिलाई संबंधित कार्य कर सकती हूँ।
9: असम है, मेरी उम्र 21 ईयर है, मैं बी ए द्वितीय वर्ष में पढ़ती हूँ, मेरे ग्राम का नाम कटारी चंदार है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरे गांव में रीड इंडिया का सेंटर खुला, उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लिया और आज हम अच्छे से कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों को कंप्यूटर सीखने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि हम लोगों के घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर सेंटर है और वहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ता था, इसलिए घर के पेरेंट्स भी इसकी इजाज़त नहीं देते थे। उसके बाद जब से ये सेंटर खुला तब से हम लड़कियाँ आत्मनिर्भर हुए और कंप्यूटर के बारे में सब कुछ जान सके। और आज स्थिति ये है कि हम लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, अच्छे से चला भी रहे हैं, और ऐसा रीड इंडिया सेंटर की वजह से हुआ। कंप्यूटर को सीख कर हम आगे अपने रोजगार के अवसर अच्छे से खोज सकते हैं।
10: आई एम राखी फ्रॉम केलवाड़ा, मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और इसे लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। निधि मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया इस ट्रेनिंग में, जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या होते हैं, वह समूह जो हेल्थ की जानकारी रखता है उसे हेल्थ वर्कर कहते हैं। इसमें हेल्थ वर्कर का कार्य रहता है कम्युनिटी डेटा इकट्ठा करना, उसमें मतलब जन्म और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब जानकारियाँ ली जाती हैं। हमारे आसपास की सफाई भी जरूरी होती है, शारीरिक हाइजीन में होता ही है। और मैम ने बताया था कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, तो हैंड वॉश के मैम ने 5 चरण बताए थे जिसका हमें रेगुलर यूज करना चाहिए। यदि हम रेगुलर हाथ धोएंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी, हम स्वच्छ रहेंगे। तो मैम ने बताया कि हमें वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर होता है तो हमें क्या लेना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर में हमें कॉफ़ी की मात्रा लेनी चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा पाई जाती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। मैम ने बताया शारीरिक क्रियाएं वगैरह जो होती हैं हमारे शरीर में, उसके बारे में बहुत कुछ बताया है, जो हमने अच्छे समझाए, सबको समझाया भी है। हमारे आसपास जो व्यक्ति थे हमने उनको हमारे मतलब संपर्क में उनको बताया कि मैम ने हमें ये बताया है, आप भी इसका उपयोग करें, समय पर एंटीबायोटिक दवाएँ लें। मैम ने हमें ये जल्द से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, ORS घोल हैजा में लिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसे हमें लेना चाहिए, ये अच्छा होता है। और मैम ने COVID-19 के बारे में भी बताया था, जो चल रहा है इसे हमें बचना चाहिए, ये खांसी और छींक के माध्यम से फैल रहा है, इसलिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा होगा। मैम ने अस्थमा के बारे में बताया था कि ये सांस की बीमारी होती है, जिससे मतलब हमारी जो श्वास नली होती है वो उसमें सूजन आ जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और बलगम आता है तो मतलब सांस लेने में मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो इसके उपचार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक दवाओं का यूज करना चाहिए। और बस मैम ने बहुत कुछ बताया है कि हमें बहुत अच्छा लगा और मैं इस संस्था को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू।
11: आई एम पूनम कश्यप फ्रॉम केलवाड़ा। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है और हमें इस ट्रेनिंग में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में बताया गया है और उनकी रोकथाम के बारे में और हमें किस प्रकार से उनका उपचार करना चाहिए वो भी बताया गया है। रीड इंडिया संस्था द्वारा हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमें मीना दीदी ने कई प्रकार की बातें समझाई हैं। उन्होंने हमें संस्था पर बुला करके कई प्रकार से बीमारियां जो चल रही हैं कई प्रकार की उनके बारे में जानकारी दी है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी बट हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं रीड इंडिया का धन्यवाद करती हूँ।
12: मेरा नाम सरोज सुमन है, मैं खाकरा की रहने वाली हूँ। मैंने हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें दीदी ने बताया कि हमें किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए और कैसे हमें बीमारियों से लड़ना है और कोरोना के बारे में भी बताया और हमें ब्लड प्रेशर हाई व लो के बारे में बताया। कोरोना काल में हमें किस प्रकार से अपनी सावधानी बरतनी है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, इस प्रकार हमें बताया। इससे हमें बहुत कुछ लाभ हुआ है और हमने गांव में जो लोग जानते नहीं थे उन्हें जाकर घर घर जाकर उन्हें बताया समझाया किस प्रकार हमें रहना है। धन्यवाद।
13: मेरा नाम मीना पांचाल है, मैं खाकरा गांव से रहने वाली हूँ। मैंने रीड इंडिया संस्था से हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है। इसमें दीदी ने कोरोना के बारे में जानकारी दी है, कोरोना काल में कैसे हमें अपना सावधानियां रखनी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बारे में बताया दीदी ने। और हमें ब्लड प्रेशर में बीपी लो हाई कैसे चेक करना चाहिए उसके बारे में, पल्स रेट के बारे में भी बताया कि हमें कैसे नापनी चाहिए, पल्स रेट का पता कैसे लगता है वो बताया। और उन्होंने पानी से होने वाली बीमारियां, हवा से होने वाली बीमारियां, घर की सफाई आदि के बारे में हमें बताया है, शारीरिक स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी है और हमें बहुत अच्छे से समझ में आया और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद।
14: हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशी ठाकुर है, विलेज काकरा राजस्थान से हूँ। मैंने रीन इंडिया के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग ली है जो डॉक्टर निधि गुलाटी द्वारा ली गई थी। निधि गुलाटी मैम ने हमें सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्या होता है और कम्युनिटी से कैसे जुड़ना होता है इसके बारे में हमें बताया। साथ ही मैम ने हमें कोरोना काल में स्टे सेफ के बारे में बताया। फिर मैम ने हमें हाउ टू हैंड वॉश के बारे में बताया और फर्स्ट स्टेज इसके हमें अच्छे से डिटेल्स में समझाए और हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया और अगर हम पर्सनल हाइजीन नहीं करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ाए। शारीरिक क्लीनिंग एंड हाइजीनिंग के बारे में हमें डिटेल में समझाया और ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें पल्स कैसे चेक करते हैं इसके बारे में समझाया। मैम ने हमें अच्छे से बताया कि हमें 2 फिंगर्स को थंब के नीचे रखकर कैसे हमारी 1 मिनट तक हमें हमारी पल्स चेक करनी चाहिए। साथ ही अपना बीपी बढ़ने पर हमें ज़रूरी पल्स चेक कराने के बाद ही अपना बीपी के बारे में श्योर होना चाहिए और नॉर्मल बीपी कितना होता है, हाई बीपी कितना होता है इसके बारे में बताया। साथ ही उन्होंने हमारे बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया और बॉडी टेम्परेचर हमारा 2 तरीके से नापे जाता है, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट से। इसके बारे में हमें मैम ने बहुत डिटेल से बताया और इसके बाद मैम ने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, कब होता है। मैम ने हमें बताया कि ब्लड प्रेशर हमें 1 मिनट तक चेक करवाना चाहिए और हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। साथ ही वर्कआउट या कॉफ़ी टी पीने पर हमारा ब्लड प्रेशर हमें नहीं चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एज यूजली सही नहीं आएगा, ये गलत ही आएगा। और साथ ही हमें बताया कि ब्लड प्रेशर 2 तरीकों का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मैम ने हमें बताया कि ग्रामीणों में नॉर्मल क्या क्या बीमारियां होती है और उनके बारे में डिटेल से समझाया, जैसे टीवी, शुगर, पीलिया, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, ऐसी कैंसर जैसी और भी कई बीमारियों के बारे में बताया। उसके बाद मैम ने हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, लीवर, किडनी, इसके बारे में मैम ने हमें बताया। साथ ही हमारी बोन्स किस तरह से काम करती है और ये कैसे हमारी बॉडी में जुड़ी हुई है और भी काफ़ी सारी जानकारी मैम ने हमें डीपली समझाई। ये बहुत ही अच्छी जनरेशन, अच्छे से मैम ने हमें समझाया एंड थैंक यू वेरी मच हमें इतनी सारी डिटेल्स।
15: मैंने

0: ट्रेनिंग कराई गई थी, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया था और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें टैली के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था कि टैली क्या होती है, इसमें क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, ऐसे कोई बात नहीं थी, कोई सूचना मतलब कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन उस ट्रेनिंग में हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और हमने बहुत कुछ सीखा है, ऐसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने बीए कर रखी है और जैसे कि इसमें लागत मूल्य के बारे में सिखाया गया, लागत मूल्य वह होता है जिसमें कोई माल अथवा सेवाएं से जो करे वह प्राप्त किया जाता है, उसको लागत मूल्य कहा जाता है। वसूली मूल्य वह होता है वसूली मूल्य जिसे बाजार में कोई चीज या कोई संपत्ति को बेचकर जो राशि प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, उसको वसूली मूल्य कहा जाता है। और जैसे कि संपत्तियां के बारे में बताया गया था, संपत्ति तीन चार प्रकार की होती है जैसे कि चल, अचल, दृश्य, अदृश्य। दृश्य संपत्ति वह होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो दृश्य संपत्ति होती है। अदृश्य संपत्ति उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, एहसास नहीं कर सकते, तो वह अदृश्य संपत्ति होती है। बहुत सारी चीजें की जानकारी दी गई मैम ने और बाद में हमें सभी प्रकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी एंट्री करना सिखाया है मैम ने।
1: हेलो, मेरा नाम रिंकू कुमारी है, मैं बारा जिले के मुसेन माता गांव की रहने वाली हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते ना तो कोई कहीं जा सकता है और ना ही कहीं से आ सकता है, तो इस माहौल में रीड इंडिया के द्वारा टेली हमें जूम ऐप पर घर बैठे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई गई और उसमें हमें खाता खोलने के बारे में, लेन देन के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया। और मान लो जैसे कोई बिजनेस करना हो या फिर दुकान खोलनी हो तो उसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं, और साथ ही ये भी बताया गया कि डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और भी टेली के बारे में जैसे हमें पहले कुछ नहीं आता था और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर हमसे पहले जो लड़कियां थी उन्होंने इसके बारे में सीखा और हमें इसके बारे में बताया विस्तार से सब कुछ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कि परचेज कैसे करते हैं, माल खरीदा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और लेन देन के बारे में बताया और उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत विस्तार से और बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और हमने उनसे क्वेश्चन भी किए और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हमें सब कुछ बताया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रीड इंडिया को, टेली को और मैम्स को जिन्होंने हमें घर बैठे ही कोरोना काल में भी ऑनलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध करवाई। थैंक यू।
2: हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते और रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद। मेरा नाम वर्षा है और बारा जिले के पास ही के गांव की मैं रहने वाली हूँ, समरानिया से। रीड इंडिया को मेरा धन्यवाद इसलिए क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में टेली की ट्रेनिंग घर पर ले पाना बहुत मुश्किल था, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन फिर भी हमने टेली की ट्रेनिंग करी रीड इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अच्छे से कर पाए हम लोग। इतना सब कुछ सीखने को मिला हमें घर रहकर, कैसे क्या खरीदना है, कैसे क्या बेचना है, क्रय विक्रय, परचेज करना, लेन देन कैसे करना चाहिए, कैसा क्या देखना चाहिए, जो कि हम पहले नहीं सीख पाए थे। मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की लेकिन मैं नहीं सीख पाई थी, लेकिन इसमें रीड इंडिया की तरफ से जो ट्रेनर थे हमारे मैडम, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से सिखाया, जो हम भूल जाते थे वो भी बार बार उन्होंने हमें बताया, उनकी मदद से हम बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पाए। पता भी नहीं चला कि इतना टाइम कैसे निकल गया। मैडम सर सभी ने बहुत अच्छे से सिखाया। रीड इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूछे सवाल, जिनके ट्यूशन जो कि हम नहीं कर पाते थे वो ट्यूशन उन्होंने पूछकर हमारी कमियां भी दूर करी हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिली है।
3: हेलो, मेरा नाम मुस्कान मुखर्जी है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ रही हूँ, और मैंने जब रीड इंडिया के बारे में सुना, मेरे पापा ने आके मुझसे बोला कि वहाँ पर रीड इंडिया की ट्रेनिंग हो रही है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने फॉर्म भरा और एडमिशन किया। एडमिशन करने के बाद मुझे पहले से कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी थी, फिर भी मैंने यहाँ पे फोटोशॉप और भी कई चीज़ें सीखी है। सीखने के बाद मैं यहाँ से लैपटॉप लेके गई थी, मुझे बोला गया कि यहाँ से लैपटॉप ले जाओ और तुम और भी बच्चे

0: महिला समूह की सदस्य हूँ और मैं राजविका से जुड़ी हुई हूँ। हमें पता चला है कि ये रेडियो इंडिया वाले फ्री में कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखा रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, हमने जानकारी ली है यहाँ पर, हमने यहाँ पर फोटोशॉप वगैरह सीखा है हमें। और मुझे राजविका वालों ने CSC ID बनाकर दे दी है, तो हम मैं पैसे की लेन देन कर रही हूँ। थैंक यू रेड इंडिया।
1: रेड इंडिया माध्यम से मैं जुड़ी हुई थी और ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया था, जो उसमें मुझे बहुत जानकारी मिली है, जैसे कि मोबाइल के बारे में, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना और बैंक का जो है, जो उसमें खाता नंबर, आधार कार्ड का नंबर किसी को नहीं देना चाहिए, उसमें नुकसान हमको ही होगा, इसलिए इसका जानकारी हमको मिला है। हम पहले से, मान लो किसी ने फोन कर दिया कि जे तुम्हारा मोबाइल में इतना पैसा है, लॉटरी लग गया तुमको, जो नंबर दे दो बैंक का या आधार कार्ड का नंबर, इसे नहीं देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जैसे मोबाइल में फोन आए कि तुम्हारा फोटो भेजो या कुछ और भी भेजो, नहीं भेजना चाहिए, उसमें हमारा ही खराब होगा, इसलिए हम नहीं भेजते, हम इसमें सतर्क हैं। और भी है बहुत सारे, जो अभी मीटिंग में मिला हुए थे, जो ट्रेनिंग में, जो उसमें अभी हम बढ़िया तरह से सीख गए। हमारे मोबाइल में ऐसा करना चाहिए, उसमें इसको पासपोर्ट लगाना चाहिए, जो कोई लेके छेड़छाड़ी ना करे, और कहीं पे भी जाओ फिर भी नेट मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत खांसी भी आए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करो और अपने मोबाइल को सुरक्षित रखो। ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी जानकारी मिला है, जो इसलिए आप सबको धन्यवाद।
2: नमस्ते, मेरा नाम काजल बाला, गांव नाटे से, मैं रेड इंडिया संस्था साइबर सेफ्टी से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे हमें हमारे जैसे पर्सनल नंबर, मैसेज, OTP ये सब किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही हमें सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग नहीं करनी चाहिए। हमें बैंक संबंधी ऐसे कोई मैसेज आए उस पर हमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। हमें जैसे और भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिले, जो भविष्य में हमारे काम आएंगे। और इसके अंतर्गत हमने जैसे हम जैसे शॉपिंग करते हैं, उसके लिए अलग अलग वेबसाइट का हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जो हमें पता ना हो, और ना ही हमें इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ जानकारी ऐसी, मतलब जो ज़रूरत ना हो ऐसी चीज़ की जानकारी भी नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ हमने इस संस्था में सीखी है, और ये खुद मैंने भी, मतलब ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है, और मैं इसके बारे में जैसे अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सभी को मैं इसके बारे में जागरूक करूँगी कि कैसे सेव रखा जा सकता है हमारे बैंक अकाउंट, हमारे OTP, ये सब मैं उनको भी ये सब करके जागरूक करवाऊँगी।
3: मेरा नाम अंकिता बंसल है, मैं भवरगढ़ 12 राजस्थान से हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन में अभी तक BSc किया है। मैंने रीड इंडिया से साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग ली है। इस ट्रेनिंग में मुझे साइबर क्राइम से कैसे बचे के बारे में बताया गया था, और हम किस तरह से अपने मोबाइल के डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में बताया था। हम जैसे कि हमें किसी भी फर्जी ईमेल को नहीं खोलना चाहिए। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं जिनमें होता है कि तुम इस लिंक पे क्लिक करो तो तुम्हें वाउचर मिलेगा, कोई गिफ्ट फ्री मिलेगा, लेकिन वो सब कुछ फर्जी होता है। वो कुछ हैकर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। उन लोगों के द्वारा बनाई गई साइट होती है जो कि आपके फोन में आपके डाटा को चुरा सकती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उनके पास पहुंचा के वो आपको एक साइबर क्राइम के थ्रू ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपसे किसी भी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कोई भी लिंक या फिर ईमेल जो भी है उन्हें नहीं खोलना चाहिए। इस ये लिंक से कभी कभी हमारे फोन में एंटीवायरस भी ला देते हैं। इसके अलावा जो हमारा पासवर्ड होता है वो लंबी डिजिट का होना चाहिए, लाइक तुम्हारा नाम भी छोटा मोटा नहीं होना चाहिए। उसमें हैशटैग, @ ऐसे वर्ड्स यूज किए जाने चाहिए ताकि कोई उन्हें हैक ना कर सके। और इसके अलावा हमें सोशल मीडिया के सभी जो भी एप्स होते हैं

0: प्राइवेसी रखनी चाहिए ताकि आपके बारे में ज्यादा लोगों को पता ना चले। इस तरह से हम हमारे मोबाइल डाटा को सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू।
1: नेहा राठौर है, मैं बबरगढ़ की रहने वाली हूँ और रीड इंडिया से हमें होम मेकिंग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी गई थी और इसपे हम घर पर बैठकर इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं और इससे हमें रीड इंडिया पर हमें बॉडी वैक्स और बॉडी बटर ये चीजें हमको सिखाई गई थी और इनमें वो शहद घी और वो ग्रीसलीन और रिबाम ये चीजों से हमने वो प्रोडक्ट बनाया था। इसको पैकिंग किया था और इसको तीन तरीके से हमने पैकिंग किया था, लिपस्टिक के शेप में और डिब्बी में और वो पोटली वाले में और रीड इंडिया में। यह सब चीज हमको रिया दीदी ने सिखाया था और इसमें मीना दीदी भी की और हम 8-10 लड़कियों ने ये चीज सीखी थी। थैंक यू रीड इंडिया।
2: मेरा नाम लीना यादव है, ग्राम हरिद्वार पोस्ट बोयल तहसील सावा डिस्ट्रिक्ट बारा से बिलोंग करती हूँ। मैंने रीड इंडिया ऑनलाइन सेलिंग से ट्रेनिंग ली थी जिसमें हमें बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट सेलिंग करना, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया था। हमको प्रोडक्ट कैसे सेल करना चाहिए ये हमें आना चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा कैसे शेयर कर सकते हैं, इन सब चीजों को लेके हमको उस ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था। जैसा कि हमको सीखने को मिला, बहुत सारे एप्स होते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कई सारे वेबसाइटें होती हैं जिनसे हमको ये सब कुछ शेयर करना होता है। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर डालकर हम उसको शेयर कर सकते हैं, किसी भी जानी मानी वेबसाइट से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम अनजानी वेबसाइटों से ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और सार्वजनिक वाईफाई से बचें। और भी कई सारी चीजें थी उसमें, पेज बनाना ये सब कुछ था उसी में, और अपना ऑनलाइन अपना मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब अप टू डेट रखें और ओटीपी वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें। ये कई सारी चीजें हम लोगों को उसी के अंतर्गत सीखने को मिली। मैं बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन सेलिंग के बारे में हमको बहुत कुछ जानकारियां मिली हैं। थैंक यू।
3: मेरा नाम जया बंसल है और मैंने रीड इंडिया से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखा है। इसमें मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब पर किस तरह से मार्केटिंग की जाती है वो सब सीखी है और फेसबुक पर पेज कैसे बनाया जाता है ये सब सीखा है, किस तरह से फेसबुक पर मार्केटिंग की जाती है और व्हाट्सएप पर किस तरह से प्रोडक्ट डाले जाते हैं, किस तरह से सेलिंग की जाती है और इस तरह से, और मैं करती भी हूँ, प्रोडक्ट्स डालती भी हूँ, इससे मेरी इनकम भी बढ़ी है और इस तरह से मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू रीड इंडिया।
4: मेरा नाम सुनीता, मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ। मैंने सीखा है यहाँ पे तुड़पाई करना सीख लिया, प्लाजो बनाना सीख लिया और पेंटिंग बनाने के लिए बेबी एंटिंग ये बना ली मैंने और अब वो बना के आई अम्ब्रेला वाले बाद वो प्लाजो।
5: अभी जो यहाँ पे रीड के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो भी उसमें भी आप थे?
4: हाँ, मैं दो बार ले गई थी।
5: दो बार आप लेके गए।
6: मेरा नाम निशा सिंह गौतम है और मैं तुगलपुर की रहने वाली हूँ और यहाँ मैं सिलाई मशीन सीखना चाहती थी पर वहाँ कहीं दुकान वकान भी नहीं थी। अब ये तो बहुत महंगे होंगे उसमें सिखाते थे। आसपास की लड़कियाँ सिलाई मशीन सीखने के लिए जाती थी और मैंने उनसे पूछा अभी कि आप कहाँ जाती है तो उन्होंने बताया कि एक केंद्र खुला पड़ा है बीमटेक केंद्र, तो मैं भी उनके साथ जाने लगी यहाँ के सीखने लगी और मुझे आता भी कुछ नहीं था। मैंने तुरपाई से स्टार्ट किया था और मुझे अब सूट सलवार में बना देती हूँ और यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है कि अनजान इंसान मतलब अनजान जो लड़कियाँ बच्चे आती हैं वहाँ कैसे रहा जाता है और कोई भी मतलब बुरा उरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं और यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब सही है। जब लॉकडाउन लगा था तो यहाँ से हमें मतलब बहुत काम वाम मिल रहा था और मैं जब भी सीखने आती थी क्योंकि यहाँ मतलब बहुत कम उसमें सिखाया था और हमें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं कि बाहर जाके क्या करना है और यहाँ से मैंने अपनी एक मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ से पूरी मशीन सीख लूंगी, जब मुझे डिप्लोमा मिल जाएगा तो मैं एक दुकान भी खोलूंगी अपनी, जिसपे मैं औरों को भी सिखा सकूँ और अपना काम भी वो कर सकूँ।
7: नमस्ते आप सभी को, मेरी तरफ से मैं तनु सैफी, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने यहाँ के बहुत कुछ सीखा है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था और यहाँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ मतलब बहुत अच्छे सिलाई सिखाते हैं और यहाँ सबकी केयर भी बहुत अच्छे से होती है, सबकी हैप्पीनेस का भी ध्यान रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें सीख ली बनाने में, कपड़े में बहुत सारे कपड़े सीख लिए, जैसे सूट सलवार प्लाजो पैंट बहुत सारे।
8: खुद कटिंग कर लेती हो? पहले आपको कटिंग आती थी या पहले सिलाई आती थी?
7: कैंची भी चलाने नहीं आती
8: थी। कैंची भी चलाने नहीं आती थी, अच्छा। तो अभी सीखने के बाद आपका क्या है कि मैं क्या करना चाहती हूँ आप लाइफ में?
7: मैं ये दूसरों की हेल्प पहले तो,
8: हाँ,
7: और फिर अपनी एक छोटी सी शॉप,
8: बुटीक टाइप। अच्छा, बुटीक खोलना चाहती हैं आप यहाँ सीखने के बाद?
9: मेरा नाम गीता है और मैं यही पास से तुगलपुर गांव से आती हूँ। पहले मैं यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और लेडीजों के साथ, बहुत लेडीज पढ़ती थी, मैं भी पढ़ती थी यहाँ। और फिर पढ़ते पढ़ते एक साल सा हो गया, उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे, मुझे सिलाई का शौक था, थोड़ा थोड़ा घर में ही मतलब करती रहती थी और मैंने सीखा भी था कहीं थोड़ा बहुत। रीड इंडिया की तरफ से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे काम भी यहाँ रीड इंडिया की तरफ से ही मिला है। पहले घर में रहती थी ना, मन नहीं लगता था बिल्कुल भी, ऐसे लगता था कहाँ कैद में रहती हूँ, और यहाँ आके तो एक नई जिंदगी सी मिली है। बस यही है कि उन्होंने हमें काम दिया, यहाँ बच्चों के लिए सेंटर खोला और फ्री चल रहा है यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़े खुशी से आते हैं बच्चे। कौन सिखाता है, नहीं तो हजार हजार रुपए देते हैं मंथ के यहाँ पे। तो बच्चे, गरीब बच्चे नहीं सीख पाते, बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो मतलब टाइम से पहले आ जाते हैं सीखने के लिए, मतलब उनको लगन है सीखने की।
8: लगन है सीखने की।
10: उनको फायदा, मुझे कुछ लोगों से पता चला कि हमारे गांव में रीड इंडिया सेंटर है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जिनमें से कि मैंने ऑनलाइन सेविंग के बारे में सीखा है। इसके बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बट अब बहुत कुछ पता है, मैं इसके बारे में सीख चुकी हूँ और जानकारियाँ मैं देती रहूंगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पे कैसे हम ऑनलाइन सेविंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला है।
11: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ पूनम मैम का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया सेंटर से जुड़ने का मौका दिया। फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ महिपाल सर का, जिन्होंने मुझे रीड इंडिया फैमिली का हिस्सा बनाया और उससे जोड़ा, सभी को जानने का एक मौका दिया। रीड इंडिया के बारे में मैं नहीं जानती थी, बट जब यहाँ पे जुड़ी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो जो मैंने सीखा वो एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि फोटोज वगैरह, एडिटिंग वगैरह, वीडियोस, शॉर्ट्स, फोटोज, ये सब लेना मुझे नहीं मालूम था। जब मैं रेड इंडिया सेंटर से जुड़ी मुझे मालूम हुआ, इन सब चीज़ों से मैं अनजान थी, बट जुड़ी तो मैंने एडिटिंग सीखी, वॉइस स्किल। जरूरी नहीं कि हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारी वॉइस स्किल कैसे, ये मायने लगता है हम कैसे बोलते हैं, कितना उतार चढ़ाव हमारी आवाज में है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं, जरूरी ये है। जैसा कि अब वॉइस स्किल में मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ कितना ठहराव रखना है, लेकिन जब महिपाल सर ने हमें इतना सब कुछ सिखाया, हमने सीखा भी और बहुत कुछ किया भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में हम सभी के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, हम सभी ने आज से पहले ऐसा जीवन कभी नहीं देखा था, बट इस दौर में हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। जैसे कि सब अपने घर में हैं, हम भी हैं, हमने इस समय में हम खाली नहीं बैठे, रीड इंडिया सेंटर से हम लोग जुड़े, फिर हमने सीखा कि ऐसे दौर में हर इंसान जब घर में बैठता है तो हर इंसान बोर होता है, दम घुटने लगता है लोगों का घर में बैठ के, लेकिन इस दौर में हमने घर में बैठ के नहीं बल्कि हमने सीखा, ऑनलाइन क्लास ली, सर से हमने बहुत कुछ सीखा। अब जैसा कि हमने बहुत सारे FM रेडियोज को सुना होगा, बट हमने सुना ही था लेकिन कभी उन्हें करीब से नहीं जाना था, लेकिन रीड इंडिया सेंटर के जुड़ने के कारण हमने इसे करीब से जाना और उसे देखा और किया। और जैसा कि हम जानते लोगों की आवाजों को सुनते हैं पर ये नहीं जानते कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, जब हम इससे जुड़े तो हमने किया तो हमें पता चला कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों को सिर्फ वॉइस के थ्रू हम सुनते हैं बट कभी जाना नहीं, जब किया तो लगता है कि हाँ कितनी मुश्किल है ये चीजें। बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें जानकर, करने के बाद बहुत मतलब कि हमने किया तो बहुत एक्सपीरियंस मिला। अब जो मैं आपके सामने जो बोल पा रही हूँ, ये सब महिपाल सर, पूनम मैम की, इन सभी की बदौलत है कि मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर बोलने का ला पा रही हूँ आप सभी के सामने। इससे पहले मैं बहुत नर्वस हुआ करती थी, बोलने मेरी आवाज भी नहीं करती थी। इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद लेना चाहती हूँ और रीड इंडिया सेंटर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतना सब कुछ सीखने का मौका मिला।
12: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं शाहबाद में रीड इंडिया सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया है। पहले हमें नॉलेज थी बट इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी अभी हमारी डेवलप हो गई है। अभी हमें यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिली है जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं। अब हम यहाँ से वीडियो खुद बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आकर बहुत फायदा हुआ है, सीखने को मिला है। थैंक यू।
13: मेरा नाम रितिका है, मैं 16 साल की हूँ और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर की हूँ। मैंने रीड इंडिया से एडिटिंग का कोर्स किया है। यह कोर्स करने के बाद मैंने इसको अपनी स्कूल लाइफ में यूज किया है। जितनी हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और जितनी भी वीडियोस एडिटिंग होती हैं क्लास की, वो सब मैं ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली है। अब मैं कोई भी काम आसानी से कर लेती हूँ। हमारी स्कूल असेंबलीज होती हैं, हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब मैं ही देखती हूँ एडिटिंग करने के लिए। और फ्यूचर में मैं इसको अपनी करियर में यूज करना चाहूंगी। थैंक यू।
14: मेरा नाम माया श्री है, मैं 32 साल की हूँ। मैं रीड इंडिया सेंटर द्वारका सेंटर से टैली का कोर्स कर रही हूँ। मुझे टैली के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ रीड इंडिया सेंटर पर आने के बाद टैली के बारे में मेरी नॉलेज इम्प्रूवमेंट हुई है। इसलिए मैं अब अपनी नॉलेज को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हूँ।
15: मेरा नाम वंशिका जैन है, मैं 17 साल की हूँ। मैं यहाँ रीड इंडिया द्वारका सेंटर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स सीखती हूँ। मैंने यहाँ बहुत सारी ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखा और मैं अब तक मैं फोटोज एडिटिंग आसानी से कर सकती हूँ। और मैंने पोस्टर डिजाइनिंग करना सीखा और पैम्पलेट्स बनाना सीखा। मैं इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ और मैं अपना करियर ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना चाहती हूँ।
16: मेरा नाम उपासना है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर के बारे में अपनी एक फ्रेंड से सुना। यहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स मैंने किया, जहाँ पे मुझे सिखाया गया कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू अपना प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाए, वो भी सेफली। थैंक यू।
17: मेरा नाम रेशमा वर्मा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। जब पहले मैं यहाँ रीड इंडिया सेंटर में एडवांस्ड कोर्स कर रही हूँ। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी, पर मेरे हाथ में सफाई नहीं थी और ना मुझे इतनी ज्यादा चीजें आती थी जो आजकल चल रही है। अब मेरे हाथ में सफाई भी आ गई है, जैसे जिप लगाना और चैन वगैरह लगाना, सब प्लाजो में जेब लगाना, इन सब चीजों में। और अब मैं मुझे यहाँ आके बहुत सारा कुछ नया सीखने को मिला है, जैसे पैंट, प्लाजो, फ्रॉक सूट, ये सब। और अब मैं बहुत खुश हुई सीखने के बाद। मैं अपने सूट अपने आप सीती हूँ और मैं अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बताती हूँ कि मैं हमारी रीड इंडिया सेंटर से सिलाई सीखी है। और वहाँ के मैडम और बाकी स्टाफ सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे से बिहेवियर करते हैं और बहुत अच्छे से सिखाते हैं। चाहे कितनी बार भी पूछो, बहुत अच्छे से बताते हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ, आगे जब मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मैं जॉब करूंगी और नहीं तो मैं अपना घर बैठ के सिलाई भी करूंगी, अपने भी, बाहर के भी। और आगे कभी फ्यूचर में मिला तो कहीं और अप्लाई जरूर करती रहूंगी, जहाँ नौकरी मिले वहाँ मैं करूंगी। धन्यवाद।
18: मेरा नाम गरमा है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। और मुझे पहले थोड़ा बहुत आता था और अब यहाँ पे आने के बाद मुझे सब कुछ आ गया है लगभग। अभी बस फिनिशिंग थोड़ी बहुत बाकी है, वो भी मेरी कम्प्लीट हो जाएगी और इसके बाद मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहूंगी, जिसमें मेरे पास थोड़े बहुत पैसे या कुछ भी होगा, जिससे मैं अपना कुछ कर सकूंगी, अपना काम निकाल पाऊंगी और अपना कुछ करियर कर पाऊंगी। जॉब भी करना चाहूंगी, अगर मेरे को फैसिलिटी मिलेगी आगे चल के तो मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगी।
19: मेरा नाम अर्चना तिवारी है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर गाँव में रहने वाली हूँ। मैंने रेड इंडिया से स्टिचिंग, एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है। पहले मुझे फिनिशिंग नहीं आती थी, अब मैंने सब कुछ सूट वगैरह, गले की डिजाइन, बाजू, सब कुछ करना सीख लिया है। अब मैं
20: खुद से अपना कुछ करना चाहती हूँ।
21: मेरा नाम बेबी श्वेता है, मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ। मैंने रीड इंडिया सेंटर से एडवांस टीचिंग का कोर्स किया है। पहले भी मुझे सिलाई आती थी, लेकिन जब से मैंने एडवांस टीचिंग का कोर्स किया है, जब से मेरे कपड़ों में और अच्छी फिनिशिंग आती है, मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने के लिए मिला, जैसे कि चोली कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अम्ब्रेला कट बाजू, बोट नेक। और पहले मुझे गले की डिजाइन वगैरह, सूटों के डिजाइन, ये सब अच्छी तरीके से सिलना नहीं आता था। जब से मैंने ये एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छे से सिलना आता है। मेरे कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़े खुद ही सिलती हूँ। मेरे पास बाहर से भी कुछ कपड़े सिलने के लिए आते हैं, जिससे मेरी अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस एडवांस स्टिचिंग करने से मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। थैंक यू।
22: मेरा नाम मंजू है, मेरी उम्र 28 साल है। रीड इंडिया से मैंने एडवांस टीचिंग का कोर्स किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी निजी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे पास टीचिंग के लिए कपड़े आते थे, लेकिन उनमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन रीड इंडिया में आने के बाद मैंने फिनिशिंग के साथ साथ बहुत सारे नए नए डिज़ाइन बनाने सीखे। हाँ, मुझे नए नए डिज़ाइन सीखने को मिले जो मुझे पहले नहीं आते थे। लेकिन ये कोर्स करने के बाद मेरे पास बाहर से कपड़े सिलने के लिए भी आने लगे। रीड इंडिया में आने से पहले मुझे पैसों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे दूसरों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अब मैं अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ और खुद ही अपना पैसे कमा सकती हूँ। और अब मैं बाहर से गारमेंट स्टिचिंग करके अपने इनकम पा रही हूँ। रीड इंडिया में आने के बाद मुझे बहुत खुशी और सफलता मिली है।
23: मेरा नाम मीनू है, मैंने रीड इंडिया सेंटर से ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। पहले मैं इतनी कैपेबल नहीं थी, जो मैं किसी के पास बोल नहीं पाती थी, बट मैं बोलती थी और मैं एक रिसेप्शन की जॉब भी करती हूँ शाहबाद मोहम्मदपुर में। थैंक यू सो मच।
24: मेरा नाम किरण राजपूत है, मैं 49 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने रीड इंडिया से मार्केटिंग ऑनलाइन का कोर्स किया था, जिसका बेनिफिट ये हुआ है मुझे कि मैं अपने जो काम मैं कर रही थी उसको मैं अच्छी तरह से और प्रेजेंट कर पाई हूँ और मार्केटिंग स्केल को और अच्छे से समझ पाई हूँ कि किस तरह से हम लोग मार्केटिंग को ऑनलाइन के साथ क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी क्वालिटीज़ को किस तरह से हम और ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों के आगे प्रेजेंट करने में हमें मुझे आसानी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ रीड इंडिया का, जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स चलाया, जिससे कि मुझे बहुत बहुत बेनिफिट फ़ायदा हुआ है। थैंक यू फॉर द रीड इंडिया।
25: हेलो, मेरा नाम आशु है, मैं शाहबाद की रहने वाली हूँ। मुझे रीड इंडिया सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड से पता लगा। मैं यहाँ आई, फिर मेरी सुमन मैम से बात हुई। सुमन मैम ने मुझे बताया यहाँ पर मैं टॉलर एंड सिलाई सेंटर का भी काम सिखाया जाता है। फिर मैंने हर्बल के प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैंने हर्बल के प्रोडक्ट में लिप स्क्रब, लिप बाम एंड बॉडी लोशन, फेस क्रीम और साबुन बनाना सीखा। मैंने उसको खुद घर पे यूज़ किया और मेरी फैमिली में भी यूज़ किया। उसके बहुत ही बेटर रिजल्ट आया। एंड थैंक यू सुमन मैम एंड थैंक यू रीड इंडिया सेंटर। थैंक यू सो मच।
26: नमस्कार, मेरा नाम सरिता सुबेदी, मैं शाहबाद के रहने वाली हूँ। मुझे अपने फ्रेंड से पता चला रीड इंडिया के बारे में। जैसे मैं वहाँ जाके पता करी तो वहाँ मुझे पता चला कि हर्बल प्रोडक्ट के अलावा वहाँ पर सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर के कोर्स भी सिखाई जाती है। जैसे मैं सुमन मैम से मिली और सुमन मैम से जानकारी ली कि यहाँ पर हर्बल प्रोडक्ट बनाने सिखाई जाती है, तो मैंने ज्वाइनिंग किया और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सीखा। मैम ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से नेचुरल, बिल्कुल बिना केमिकल के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, हर्बल प्रोडक्ट, जिसमें से बॉडी सोप, बॉडी वाटर, लिप बैम, लिप स्क्रब, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाना सिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बॉडी लिप बाम, बॉडी स्क्रब एंड फेस क्रीम मैंने बनाया भी खुद और यूज किया, मेरी फैमिली को भी यूज कराया। सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने मतलब बहुत तारीफ किया। इसीलिए थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया इतने अच्छे प्रोडक्ट सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच।
27: मेरा नाम सोनिया है और मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ।
0: मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना था, तो मैं ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए पूछने गई तो मुझे वहाँ फीस बहुत महंगी बताई जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। तो मुझे किसी से रीड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं रीड इंडिया सेंटर में गई और मैंने वहाँ जाके मैम से पूछा कि मैम मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। तो मैम ने मुझे ब्यूटिशियन के कोर्स के बारे में बताया और साथ में वहाँ स्टिचिंग, कंप्यूटर और हर्बल प्रोडक्ट बनाना सिखाया जाता है। तो मैंने वहाँ पे ब्यूटिशियन का कोर्स करना स्टार्ट कर दिया और मुझे 3 मंथ्स हो गए ब्यूटिशियन का कोर्स करते करते और मुझे बेसिक पार्लर पूरा आ चुका है। तो मैं रीड इंडिया सेंटर को और सुमन मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिसके वजह से मुझे मेरा ब्यूटिशियन का कोर्स पॉसिबल हुआ हो पाया है, क्योंकि महंगी फीस की वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो थैंक यू सो मच सुमन मैम एंड थैंक यू सो मच रीड इंडिया सेंटर।
1: हाय, माझं नाव सामी इस्मेल जगेश्वर आहे। माझं शिक्षण 11वीपर्यंत झालेलं आहे। मी रीड इंडियामध्ये 3 महिन्यामध्ये कोर्स करते। त्यामध्ये मी ब्लाऊज, साधा ब्लाऊज, कटोरी ब्लाऊज, परत प्रिन्स कटोरीवाला ब्लाऊज वगैरे सर्व शिकते।
2: हाय, मेरा नाम है रेशमा अब्दुलरऊफ जोगिनकर। मैंने 12वी की हूँ सायन्स से, गोरेगाव से, और मैं 3 महीने से रीड इंडिया से कोर्स कर रही हूँ बेसिक टेलर कोर्स का। और उसके बाद मैंने उसमें सीखी हूँ झबला, बिनबाही का, सादी चड्डी, फैंसी बॉनेट, उसके बाद प्रिंस कटोरी ब्लाउज, फ्रॉक और पंजाबी सूट। थैंक यू।
3: हाय, माझे नाव अक्षत अशोक कांबळे। मी ऍग्रीकल्चर डिग्रीमध्ये डिग्री करत आहे आणि इथे खामगाव मंडी इंडियामध्ये मशीन शिवण क्लास करत आहे। त्याच्यामध्ये जे दररोजच्या लग्नासाठी जे कपडे आहेत त्याच्यामध्ये शिकवलं जाते आणि इथे खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या, रीड इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी शिकण्यासारख्या मिळाल्या, त्यामुळे त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करते। थँक्यू।
4: नमस्कार, माझं नाव मनवा जीवन अडवीलकर। माझं शिक्षण पीवायबीए मधून झालेलं आहे। मी इथे रीड इंडिया सेंटरमध्ये 3 महिन्यापासून कोर्स करत आहे। त्या कोर्समध्ये मी बिनबाईचा झबला, कटोरी ब्लाऊज, प्रिन्स कटोरी, साधा ब्लाऊज, ड्रेस हे सगळं शिकली आहे। थँक्यू रीड इंडिया।
5: माझं नाव नौशीन वजीर जोगिरकर। माझं शिक्षण 12वी। मी रीड इंडिया सेंटरमध्ये कोर्स केला आहे शिवण क्लास, 3 महिन्याचा कोर्स आहे। त्याच्यामध्ये बिनभाईचा झबला, चड्डी, सलवार कमीज, ब्लाऊज हे सर्व शिकवले गेले आहे। हा कोर्स भेटण्यामधून तुमचे आम्ही आभारी आहोत।
6: आपकी उम्र 22। रीड इंडिया सेंटर से आपने कौन सी ट्रेनिंग ली?
27: कंप्यूटर के पार्लर की।
6: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में बताएं।
27: ट्रेनिंग लेने से हमें ये फायदा हुआ है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उससे हमारी इनकम बढ़ सकती है, ट्रेनिंग बच्चों को दे सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं।
6: आप आगे क्या करना चाहती हैं?
27: कंप्यूटर ही कोचिंग ले रही हूँ, कंप्यूटर में ही स्कोप है, कंप्यूटर से ही जॉब कर रही हूँ
6: यहाँ पे। आपका नाम क्या है?
27: स्वाति।
6: आपकी उम्र?
27: 24।
6: रीड इंडिया सेंटर से आपने कोई ट्रेनिंग दी?
27: यस मैम, हमने 2 ट्रेनिंग ली थी, पार्लर का और कंप्यूटर का।
6: तो आपने कंप्यूटर में क्या क्या सीखा?
27: कंप्यूटर में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग
6: बेसिक सीखा आपने। और पार्लर में?
27: पार्लर में मैम कटिंग, फेशियल, ब्लीच, वैक्सिंग।
6: ट्रेनिंग लेने के बाद आर्थिक स्थिति के बदलाव के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं?
27: कंप्यूटर सीखने के बाद घर पर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग पढ़ाता है कंप्यूटर के बारे में, उससे अच्छी खासी इनकम होती है।
6: और पार्लर का?
27: पार्लर में मैम बस साइड में चल रहा है।
6: अच्छा, जीवन के निर्णय और पारिवारिक निर्णय लेने की आपकी क्षमता में कोई सुधार हुआ?
27: यस मैम, पहले से ज्यादा इनकम होने लगी है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया।
6: गुड। आप आगे क्या करना चाहती हैं?
27: मैम पार्लर में कर रहा है, पार्लर खोलना है,
6: अपना पार्लर खोलना है। अच्छा, तो पार्लर की पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद मतलब आप चाहते हो अपना पार्लर?
28: माझं नाव आदिती संजय वाळंकर। माझ्या गटाचे नाव महालक्ष्मी गट, गाव विनेरे। आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड मेणबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतले। तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले, मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवी उमेद मिळाली. रीड इंडिया सेंटर विनेरे व टाटरे मॅडम यांचे आम्ही आभार मानतो.
7: जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडमनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे सुद्धा मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन मॅडमनी आम्हाला दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आम्हाला नवीन उमेद मिळाली आहे. त्यामुळे आम्ही टाटरे मॅडम आणि रीड इंडिया संस्थेचे विनेरेकडून आभार मानत आहोत.
8: माझे नाव शर्मिला मंगेश विसापूरकर. माझ्या गटाचे नाव जय बजरंग महिला बचत गट, गाव विनेरे. आम्ही रीड इंडिया सेंटर विनेरे येथे पापड व मेणबत्ती बनवण्याचे प्रशिक्षण घेतले. तेथे टाटरे मॅडम यांनी आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारे मेणबत्ती बनवण्याची माहिती दिली व त्यातून पुढे व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन केले. मार्केटिंगचे आश्वासन दिले, त्यामुळे बचत गटाच्या वतीने व्यवसाय सुरू करण्याची नवीन उमेद मिळाली. या वतीने टाटरा मॅडम, रीड इंडिया व टाटरा मॅडम यांचे मी आभार मानतो.
9: माझे नाव श्वेता संतोष सकपाळ, वय 24 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरे येथून मी ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स केला. यामध्ये मला फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझाईन आणि व्हिडिओ बनवायला शिकवलं. त्याचा आम्ही नक्कीच भविष्यात उपयोग करू व रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला जे फ्रीमध्ये कोर्स प्रोव्हाइड केले त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद.
10: माझं नाव श्वेता रोशन सप्पा, वय 29 वर्ष, रेड इंडिया सेंटर विनेरेकडून आम्हाला ग्राफिक डिझायनिंगचा कोर्स शिकवण्यात आला. या कोर्समध्ये आम्ही फोटो एडिटिंग, बॅनर डिझायनिंग आणि व्हिडिओ कशा बनवायचा हे शिकलो. या शिक्षणाचा उपयोग आम्ही भवितव्यात नक्कीच करू. रेड इंडिया सेंटरने आम्हाला हा जो कोर्स फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केला त्याबद्दल त्यांचे मनापासून धन्यवाद.
11: मेरा नाम लक्षा है, मैं रीड इंडिया पडवाई सेंटर सिलाई सीखी है. मैं पडवाई में रहती हूँ और मैं इस सेंटर में आती जाती रहती हूँ. इस सेंटर से मैंने अच्छी सिलाई सीखी है. अपने घर के कपड़े सिलती हूँ और मोहल्ले के भी कपड़े सिलती हूँ. इस रीड इंडिया का धन्यवाद करना चाहती हूँ. मैं इस रीड इंडिया में सिलाई सीख कर और सिलाई करती हूँ मैं और कपड़े सिलती हूँ. उससे जो पैसा आता है मैं अपने कॉलेज की फीस करती हूँ, जमा करती हूँ. मेरा नाम निशा है, मैं पढ़वाई रीड इंडिया से सिलाई सीखी है. मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और तरह तरह के डिजाइन के कपड़े सीना चाहती हूँ. और मेरा एक सपना ये है कि मैं एक सेंटर खोल सकूँ जिससे बच्चों को अच्छे से डिजाइन के कपड़े सिखा सकूँ. मेरे तरफ से सेंटर को धन्यवाद.
12: मेरी एज 21 है. मैं लास्ट ग्रेड पर रहती हूँ. मैं रीड इंडिया सेंटर में एडवांस स्टिचिंग का कोर्स किया है. मुझसे काफी कपड़े सिलाई के आ गए हैं, जैसे कि डिजाइनिंग कुर्ती, डिजाइनिंग पेंट, प्लाजो, गरारा, फरारा, लहंगा, चोली वगैरह वगैरह काफी सिलाई आ चुकी है. और मेरे डिजाइनिंग में अपने डिजाइन खुद करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना डिजाइन सिलाई करना. और मेरे डिजाइन सिलाई के लोग भी मतलब कहते हैं मेरे भी सीधे, इस वजह से मेरे मतलब काफी सिलाई आती है घर पर. और मैं सिलाई की वजह से अपने घर में काफी हेल्प कर सकती हूँ. और मैं पहले मतलब अभी कुछ नहीं कह सकती थी अपने बारे में, पर अब मैं सबसे कुछ भी कह सकती हूँ. और मैं अपना खर्च खुद ही उठा सकती हूँ. पढ़ाई वगैरह का भी काफी कुछ अपना नहीं कर सकती हूँ. मैं एडवांस सिलाई सीख के मुझे काफी लाभ हुआ है.
13: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फिजा है. मैं कलघर में घोसियान मोहल्ले में रहती हूँ. रीड इंडिया कलघर सेंटर हर्बल कॉस्मेटिक का कोर्स कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि लिप बाम, बॉडी वैक्स, बॉडी बटर और वगैरह काफी कुछ सीखने मिला है और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं रेड इंडिया कलघर सेंटर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ.
14: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनब है और मेरी एज 18 ईयर्स है. और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर आने से पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी यहाँ आने के लिए भी बहुत ज़्यादा. और मेरी फैमिली में भी बहुत ज्यादा इनकम की प्रॉब्लम थी। मेरे पापा प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मम्मी सिलाई करती हैं, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ कर सकूं अपने मम्मी पापा के लिए या अपने खुद के लिए, कि मैं अपना खुद खर्च अपना खुद लूं, मम्मी पापा से नहीं लूं। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने खुद काम करूं, खुद कुछ भी करके अपना खुद ही निकालूं खुद भी। फिर मैंने मुझे यहाँ पे रेड इंडिया सेंटर के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर आई। मैंने यहाँ पे आके बेसिक सिलाई का भी कोर्स किया है और ऑनलाइन सेलिंग का कोर्स किया है। इसके थ्रू मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स और मेंटल हेल्थ का कोर्स है, और ये सब लेने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्री रहता है। पहले मैं किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी, और अब अच्छे से मैं सबसे बोल पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट जागा है, दूसरों के सामने बोलने का, कुछ करने का एक हिम्मत आई है। पहले मुझे कुछ नहीं आता था बिल्कुल। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके, और अब भी मैं पूरी कम्प्लीट स्टिचिंग कर चुकी हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। इससे मैं अपनी इनकम भी अच्छे से काम कर लेती हूँ और मैं अपना खर्च खुद निकालती हूँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले मैं मेरी पढ़ाई रुक चुकी थी इस काम पैसों की वजह से ही और पापा की मजदूरी के काम की वजह से ही, मगर जब से मैंने अपना काम शुरू किया है या मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया है, उसके बाद मैं अपने खर्च और स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई खुद में करती हूँ, खुद अपना खर्च निकालती हूँ। और यहाँ पर आने के बाद मैंने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैंने अपने डिज़ाइन अपलोड किए और मैं उसको अब सेल करती हूँ उस पर। उससे मुझे बहुत अच्छी इनकम हो जाती है और अपने मैं इस वजह से अपने घर में भी पूरी हेल्प देती हूँ और मैं अपनी पढ़ाई वगैरह भी खुद कर लेती हूँ। और मेरे रेडिया सेंटर आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है और मैं रेडिया सेंटर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रेडिया सेंटर। अच्छा।

सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ किरण, गांव माजरी से। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी शायरी कहना चाहती हूँ। के घड़िये बोलिया करती इब कुछ दिन आते चुप हूँ, के घड़िये बोलिया करती इब कुछ दिन आते चुप हूँ। बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी इब हूँ, बताओ मन्ने के मैं इसीये थी जिसी इब हूँ। इनकी हर बाता ने रुवाई हूँ, इनकी हर बाता ने रवाई हूँ, इनकी हर आदता ने सताई हूँ, इनकी हर आदता ने सताई हूँ। माँ बाबू भाई भाण, माँ बाबू भाई भाण, हर रिश्ते तो भरी है मेरी जिंदगी, पर मन ने इना बेरा मैं क्यों ना खुश हूँ। बताओ मन्ने कि मैं इसी

एवरीबॉडी इज वेलकम ऑन दिस सेशन। तो आज हम सेशन जो है, आप सबको पता है लीडरशिप पे ही मैं सेशन लेती हूँ। और सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी कि सबके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। एवरीबॉडी शुड एक्नॉलेज कि हाँ, मैं एक लीडर हूँ, किसी ना किसी रूप में मैं लीडर हूँ। तो ये सब एग्री करते हैं इस बात पे कि लीडरशिप तो है, हम उसको इनवोक करते हैं कि नहीं करते, वो हमारा डिफरेंट कंसर्न है, बट एवरी बॉडी हैज अ लीडरशिप क्वालिटी इन दैट। एग्री करते हैं आप सब मेरे से? तो चैट में थोड़ा यस लिख दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, एवरीबॉडी एग्रीज दैट एवरीबॉडी हैज द लीडरशिप क्वालिटीज। किसी में परसेंटेज वेरी कर ज्यादा है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, बट एवरीबॉडी हैज दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत करते हैं कि हर एक में लीडरशिप क्वालिटीज होती है, पर हमें क्या करना होता है, उस लीडरशिप क्वालिटीज को इन्वोक करना होता है। इन्वोक मतलब कि पहचानना होता है और उसको जागरूक करना होता है। जो हम नहीं कर पाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मे बी कोई भी सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कोई चैलेंजेस ऐसे होते हैं, या हम अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते। इंटेंशंस तो सब में होती हैं कि हमें लीडर बनना है, पर हम अनइंटेंशनली भी उसको इन्वोक नहीं कर सकते हैं। इन्वोक मतलब कि उनको पहचानना, उनको रिकग्नाइज करना, और उनको एवरी टाइम वी हैव अ फीलिंग इन आवर माइंड, यस वी आर लीडर्स विद इन आवर सेल्व्स। सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स अलग अलग होती हैं। कोई बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, कोई डरता है कि मैं बात बोलूं तो मेरी बात पता नहीं पहचानी जाएगी कि नहीं पहचानी जाएगी, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो स्मिता उसके ऊपर लाइफ स्किल्स का सेशन लेती है, और वो कल इस बात को भी हाईलाइट करेगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल हेल्प अस इन डेवलपिंग आर लीडरशिप स्टाइल, आर लीडरशिप विद इन आवर सेल्स। इफ वी हैव लीडरशिप, हाउ टू इन्वोक दैट थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच स्मिता विल हाईलाइट टुमारो। द सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम जो कहना चाहते हैं अपने, जब हम लीडरशिप का रोल प्ले करते हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। सबको पता है कि बातचीत के दौरान कम्युनिकेशन के तीन प्रकार के हम यूज करते हैं टूल्स। एक तो हम वर्बली बोलते हैं, दूसरा हम लिख के बताते हैं, और तीसरा 80% ऑफ आर बॉडी लैंग्वेज आल्सो स्पीक्स अबाउट आर लीडरशिप क्वालिटीज। कि हम किसी के सामने अगर टिमिड बन के बैठ जाते हैं, टिमिड मींस कि हम अपने आप को कमजोर साबित साबित करते हैं कि हम कमजोर हैं,

कॉन्फिडेंट नहीं है हम, लाइक वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुली व्हाट वी वांट टू से, दैट इज द बॉडी लैंग्वेज. बट यस, रिटन एंड ओरल आर द टू टूल्स नॉर्मली वी यूज फॉर शोइंग आर लीडरशिप क्वालिटीज एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर. दो साइलेंटली ऑल्सो, जो बहुत सारे लोगों का ये भी विचार है और मैं भी सहमत करती हूँ उससे, कि साइलेंट कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट साइलेंट कम्युनिकेशन इज कन्वेड थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. सो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है. दूसरा बात, हम ये होते हैं, सोचते हैं कि क्या हम ठीक है या गलत है. ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, कि क्या मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, सुनने से और अपने आप को एक्सपोजर देने से इन राइट सोसाइटी, मेरे वर्ड्स अंडरलाइन करिए, इन राइट सोसाइटी अगर हम बैठ के कुछ भी बात बोलते हैं या कुछ सुनते हैं या सीखते हैं, तो हमारे अंदर का जो लीडरशिप सैंक्टिटी है, मैं इसको सैंक्टिटी बोलती हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं थी जो आज जो आपके सामने हूँ, तो इसलिए मैं बहुत क्लियरली आपको समझा पा रही हूँ कि लीडरशिप हर एक में होती है क्वालिटी, पर उसको उसको पॉलिश करना, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी पड़ी है उसको हटाना और अपनी बाकी के स्किल्स को एनहांस करना ही हमें हेल्प करता है अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहांस करने में. तो एक तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट हो कि हम राइट बोल रहे हैं, राइट वे में कन्वे कर रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है वो भी ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वो भी ठीक है. तो ये कैसे आता है? पढ़ने से, सुनने से, आंखों से देखने से, कानों से सुनने से, और सोसाइटी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, उसको जानने से हमारा कॉन्फिडेंस, हमें क्लैरिटी भी आती है, हमें करेज भी मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. जो थर्ड पॉइंट है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, सब लेते हैं, सुबह उठते ही चाहे छोटा डिसीजन हो और रात के सोने तक चाहे छोटा डिसीजन हो, चाहे बड़ा डिसीजन हो, चाहे घर के बारे में हो, चाहे समाज के बारे में हो, चाहे बच्चों के बारे में हो, चाहे ऑफिस के बारे में हो, चाहे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके बारे में हो, या हम कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेते हैं. डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं पहले कि ठीक है या नहीं, वो प्रैक्टिस से हमें आता है जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, और फिर हम डिसीजन अपना कन्वे करते हैं. और बहुत बारी हमें एक्सपीरियंस ये होता है कि हम डिसीजन शायद इमोशनली ले रहे हैं या हम अपना दिमाग इस्तेमाल करके डिसीजन ले रहे हैं. तो ये जो कश्मकश है हमारे दिल में, जो हम ये इसके बारे में सोचते रहते हैं, वो एक आर्ट है. उसको हमें प्रैक्टिस से ही आता है और उसको हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ पीपल के साथ डील करते हैं और हमारा डिसीजन डिपेंड करता है कि हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसको हम ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन अपना कन्वे करें या नहीं करें. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, और अगर हम इनको ध्यान में नहीं रखते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने डिसीजन गलत भी ले सकते हैं. हम जब अपनी बात किसी के सामने रखते हैं, कोई उसको एक्सेप्ट करता है, कोई उसको क्रिटिसाइज कर देता है,
या कोई उसको डिस्कार्ड कर देता है। सिमिलरली मैं आज अगर सेशन ले रही हूँ तो अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं 29-30 लोग लाइन पे हैं, उनमें से हर कोई 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं किसी को सोचती हूँ तो मैं एक कुछ हद तक, मे बी 90%, मे बी 80%, मे बी 70% मेरी एब्जॉर्प्शन लेवल होता है। क्यों होता है, ऐसे वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितने अलर्ट हैं। हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, शायद घर की टेंशन है, चाहे ऑफिस की टेंशन है, चाहे मैं आई रास्ते में मुझे बस नहीं टाइम से मिली, या मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, या मेरे बच्चे के स्कूल का कुछ है, या हस्बैंड के साथ कोई बात है। एनी रीजन जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है वो हमारे एब्जॉर्प्शन लेवल को उसका असर होता है, राइट? तो हम तभी कहते हैं कि हमें अपनी सोच को उस हद तक ही एक्सटेंड करना चाहिए, स्ट्रेच करना चाहिए कि हम उसका उसका असर हमारी दिनचर्या पे नहीं हो। प्रॉब्लम सबके साथ है, चैलेंजेस सबके साथ हैं, पर ये प्रैक्टिस के साथ आता है। अगर हमारे अंदर कुछ लीडरशिप की शक्तियां हैं या कुछ लीडरशिप के भावना है अपने अंदर लीडरशिप को डेवलप करने की, तो विद प्रैक्टिस हम ये जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, हम किसी हद तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हमें ये हमेशा ये लेसन हमें मिलता है कि हम अपने पास्ट को एनालाइज करें, अपने प्रेजेंट को उसी तरीके से एक्शन लें और अपने फ्यूचर को एनविजन करें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, क्योंकि लीडरशिप थोड़ा हटके होता है, वो दिनचर्या के साथ, हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसको नहीं जोड़ सकते हैं। और मैं क्यों बार बार इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि हमें अपनी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, जो सो रही हैं, उनको जगाने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी कहना चाहूंगी कि आज मैं आपको 10 E's की फिलॉसफी समझाऊंगी कि 10 E's क्या है। E मतलब कि कैपिटल E। एक तो हम बहुत ज्यादा, मैं जिस भी गांव में जाती हूँ, जिस सेंटर में जाती हूँ, हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं, और हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ। तो जब हम बहुत ज्यादा इमोशनली एंटैंगल होते हैं तो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करते हैं। दिस इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट कि अगर हम इमोशनली बह जाएंगे तो हमें अपने दिमाग से जो सोचना है वो शक्ति हमारी कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। वी आर वर्किंग विद वुमेन फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। आई वॉज ट्रेवलिंग, आई वॉज इन रामपुर, आई वॉज इन उधम सिंह नगर, आई मेट हंड्रेड्स ऑफ वुमेन जिनको मैं बार बार यही कहती हूँ कि देर इज अ नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस बिटवीन इमोशंस एंड योर ब्रेन, दिमाग के साथ। तो ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, पर ये प्रैक्टिस से आता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस के जो स्टेप्स हैं मैं आज आपको समझाऊंगी कि क्या स्टेप्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि ऑलवेज अगर कोई हमारे पास सेंटर में आ रही है कोई इशू लेके, अपना पर्सनल इशू है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और हम उसको सुनते नहीं हैं, हम अपना बिना सुने, बहुत 90% लोग क्या होते हैं, सुनने की क्षमता कम रखते हैं और अपना डिसीजन करने हम बहुत जल्दी करते हैं।
इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बिना सोचे समझे, बिना सुने, बिना उसको एनालाइज करे, हम अपनी बात पहले रखने की कोशिश करते हैं। और ये घर में भी होता है। हमें सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथी अपनानी चाहिए। एम्पैथी मींस, एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख के उस इंसान की प्रॉब्लम को रियलाइज करें। शायद आप उस प्रॉब्लम से ना गुजरे हो और दूसरा इंसान उस प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, और वो उसके पास एक ही उम्मीद है कि मैं सेंटर में जाऊंगी, मैं अपनी टीचर से ये बात कहूंगी, या अपने पीयर ग्रुप में ये बात कहूंगी, या मैं अपने कोऑर्डिनेटर के सामने ये बात रखूंगी। और हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम उनको टाइम नहीं दे पाते, पर हमेशा हमें उनकी सिचुएशन में अपने आप को रख के अगर हम वो प्रॉब्लम को एनालाइज करें, उस प्रॉब्लम को इमोशनली ना देख के, जो हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं लीडरशिप की, या लाइक किसी की सिचुएशन को समझने की, उसको सामने रख के अगर हम उसको हेल्प करें, तो हम बहुत ही रियलिस्टिक वे में उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने दो चीजों को यहाँ पे एम्फेसाइज किया, जो भी मैंने अभी बोला है, कि इमोशंस को कंट्रोल में रख के और एम्पैथी के साथ अगर हम दूसरे की प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझते हैं और उसको हम ठीक ढंग की सलाह देते हैं, तो वो इंसान भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा और हमको भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने किसी के लिए कुछ किया। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, आगे चलो। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी शुड ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ब्रेन, बट वी कैन नॉट बी रथलेस। इसमें भी फर्क है। देखिए, एक तो मैं बोल रही हूँ कि आप 100% इमोशनली कोई डिसीजन कन्वे नहीं करें। दूसरा, मैं बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग का, ब्रेन का इस्तेमाल करें, उसको सोचें, उसकी सिचुएशन में अपने आप को रखें, बट हमें बहुत हार्श, बहुत रथलेस जो होते हैं, रथलेस मींस विदाउट, मैंने कम्युनिकेशन की पहले बात करी थी आपके साथ, कि विदाउट विदाउट एनालाइजिंग व्हाट वी आर कन्वेइंग, हाउ वी आर कन्वेइंग, व्हाई वी आर सेइंग दिस, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजर्स, वी आर लीडर्स। हम यहाँ पे लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैनेजर तो ये बोलते ना कि मुझे नहीं पता तेरे घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, इट्स योर कंसर्न, मुझे तो ये काम चाहिए चाहिए, मुझे आज ही करके दो, नहीं तो कल से जॉब पे नहीं आना। ऐसे कभी सेंटर्स में बात हुई है? नेवर एवर। मुझे नहीं पता कि आज तक हमने कभी इस लहजे में किसी से बात की है। हम कभी भी नहीं करते हैं। दैट इज द वन ऑफ द मेजर वैल्यू ऑफ रीड इंडिया विच वी पास ऑन टू आर कोऑर्डिनेटर्स, आर टीम, आर स्टेक होल्डर्स, एवरीबॉडी। एम आई राइट? तो रथलेस बिल्कुल नहीं होना। एम्पैथी इज द आंसर, पुटिंग योर सेल्फ इन टू देयर शूज एंड एनालाइज व्हाई शी इज सफरिंग, व्हाई शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम टुडे, और उसको पूरा टाइम देना है उसकी प्रॉब्लम सुनने का। और ये मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब भी सेंटर में जाती हूँ, कोई भी लेडी मेरे पास आती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको टाइम देती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ। बट हाँ, बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें मैं नहीं जा पाई हूँ, जैसे बिहार के सेंटर्स हैं, मैं नहीं जा पाई। बैंगलोर का सेंटर है, कोविड की वजह से मैं नहीं जा पाई। बागेपल्ली मैं पहले बहुत बार गई हूँ, आंध्रा भी गई हूँ,
श्री सिटी भी गई हूँ, पर जितना फ्रिक्वेंटली मुझे जाना चाहिए उतना फ्रिक्वेंटली मैं नहीं ट्रैवल कर पाती हूँ. अर्लियर बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड सेकेंडली अभी इतने सारे सेंटर्स बढ़ गए हैं कि वो ट्रैवल करना ही थोड़ा सा टफ हो जाता है. नाउ जब हम एम्पैथी की बात कर रहे हैं, तो हमारे हमें अपनी एक प्रैक्टिस ये भी शार्प करनी चाहिए कि हम उस सिचुएशन को एनालाइज करें, इवैल्यूएट करें कि व्हाई दिस हैज हैपेंड टू हर. ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. उन रीजंस को हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनको एनालाइज नहीं करते हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं, और हम जल्दी से अपना डिसीजन लेके हम अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं. जब हम इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं, या अगर हम इस तरीके से दूसरों को सलाह देते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत शॉर्ट टर्म होता है, बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता. हम उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज करके उस दिन के लिए अपना सोल्यूशन निकाल रहे हैं, पर वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है. हमें हमेशा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोचने की आदत डालनी चाहिए अपने आप को. जितना हम इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम अपने आप को ये जो वेब है चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का, डे टू डे लाइफ का. वेब का मतलब क्या होता है? जाला. उससे हम अपने आप को आस्ता आस्ता बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. तो मैंने चौथा ई यहाँ पे क्या बोला? इवैल्यूएट करना, उस सिचुएशन को परखना, उस सिचुएशन को जांचना. और ये हम अगर आदत डाल लेंगे अपने, तो ये हमारी एक रूटीन बन जाएगी कि व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम एक्टिंग लाइक दिस, व्हाई व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट एक्शन आई एम टेकिंग.

0: तो ये हमें क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश भी करता है, और ये डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत असर करती है ये चीज। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फिर अगर हमारे में लीडरशिप का स्पार्क है, तो हम उस दूसरे पर्सन जो हमारे पास आया है अपनी प्रॉब्लम को लेके, हम उसको एनेबल करते हैं कि अपनी सिचुएशंस को खुद
1: हाँ,
0: ही एनालाइज करो। हम अपना डिसीजन उनपे नहीं थोपे, हम अपना ये नहीं कन्वे करें कि यस आप तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो अगर हम उनके उनके अंदर एक आदत डालते हैं कि हम उनको एनेबल करते हैं कि आप अपनी सिचुएशन को खुद एनालाइज करो, और उनको बहुत ही हलीमी से हम उनको समझाते हैं, तो शायद हम उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद एनालाइज करें, खुद अपने जीवन में आगे बढ़े, और अपनी प्रॉब्लम्स को उलझाना की बजाय उनको रिजॉल्व करने की आदत डालें। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस प्रोसेस से अगर हम चलते हैं, हम उसको एनेबल करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एम्पावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको किसी ना किसी तरीके से बातचीत करके, समझा के, उसको हेल्प करके उस शक्ति को भी हम उभारने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एम्पावर भी कर रहे हैं। एम्पावर किसके लिए कर रहे हैं, जो सिचुएशन में वो फंसी हुई है, जो सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस सिचुएशन को एनालाइज करके कामली कंपोज मैनर में वो अपने सॉल्यूशंस खुद ही ढूंढ रही है, और हम उसको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरिंग। हम भी ऐसे ही करते हैं। रीड इंडिया क्या करती है, एंगेज करती है, एनकरेज करती है, एम्पावर करती है, और आपको आगे बढ़ने का खुद ही आप अपना रास्ता ढूंढते हो। मैं खाली जो आप लोग करते हो उसी को आपके सामने रख रही हूँ, मैं कोई नई चीज आपके सामने नहीं रख रही हूँ, ठीक है? जब हम एम्पावर करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इनकलकेटिंग दी हैबिट ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस फॉर राइट एक्शन एट राइट टाइम। आप तीन चीजों को नोट करिए कि जब आप उसको एम्पावर एनेबल कर रहे हो, उसको एम्पावर कर रहे हो, तो आप उसमें एक आदत इनकलकेट कर रहे हो। इनकलकेट का मतलब उसको एक आदत उसमें ये बहुत अच्छे से डाल रहे हो कि वो राइट डिसीजन ले, राइट एक्शन ले उस डिसीजन के ऊपर, और राइट टाइम पे ले, ठीक है? ये तीनों चीजें बहुत जरूरी है। तो वो कैसे आती हैं, जब हम पिछले जो पांच स्टेप्स मैंने बताए हैं उनपे हम रेगुलर प्रैक्टिस करने की आदत डालें, उसको रोज प्रैक्टिस करें, अपने दिनचर्या को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को उसके साथ हम जोड़ें। तो मैंने आपसे अभी तक जो बात की है वो इमोशंस की बात की है, एम्पैथी की बात की है, इवैल्यूएट करने की बात की है, एनेबलिंग करने की बात की है, एनकरेज करने की बात की है, और उनको एम्पावर करने की बात की है। तो ये पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं सबको मेल भी कर दूंगी, ठीक है? सो विद दीज फाइव ईज यू आर एनेबलिंग द अदर पर्सन टू एनलाइटन हिज और हर ओन पाथ ऑफ ग्रोथ। तो उसको एक रोशनी की किरण मिलती है कि हाँ, अरे ये तो ठीक ही है, इन्होंने मुझे बताया कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल

0: सकती हूँ। मुझे इन्होंने रास्ता दिखाया, डिसीजन मेरा है, उन्होंने खाली मुझे रास्ता दिखाया है कि आप इस रास्ते पे भी चल सकती हैं, सेकंड लेन में भी जा सकती हैं, थर्ड में भी जा सकती हैं, फोर्थ में भी जा सकती हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि आपने उसको डिस्कस किया है, उसको एनालाइज किया है, उसको इवैल्यूएट किया है, और आपने अपना राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम इसी बात को आगे लेके चलें, तो मैं ये कहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है। चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो कभी तो वो विजिबल हैं सरफेस पे, और कभी वो इनविजिबल भी हैं। विजिबल ये है कि हाँ, सामने सिचुएशन खड़ी है, सामने पहाड़ गिर गया है और मुझे सड़क पार करनी है, और जब तक मैं उस पहाड़ को, पत्थर को अपने रास्ते से नहीं निकालूंगी, नहीं आगे धकेलूंगी, तो मैं सड़क पार नहीं कर सकती। कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में होती हैं जो बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट प्रॉब्लम्स तो हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए भी हमारे को रास्ता ढूंढना है। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निकलेंगे, उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ का व्हीकल आगे बढ़ाने के लिए। और वो कैसे बढ़ेगा, कि हमें अपने आप को सेल्फ एनकरेज भी करना है आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम अपने आप को सेल्फ एनकरेज नहीं करेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, और हम कहेंगे कि वी विल गिव अप, नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस। जब ये थॉट्स हमारे माइंड में आने शुरू हो जाएंगे, तो हम वेवरिंग माइंड हो जाएगा हमारा, हम फिर भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू में मैंने क्या बोला, कि हम अपने आप को इमोशनली वीक करें, या हम अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को दिमाग से सोच के हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। और उसको किसने करना है, आप लोगों ने करना है। कोई भी लीडर आपके दिमाग में घुस के आपकी सोच नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपके इमोशंस को नहीं बदल सकता है, कोई भी लीडर आपको उंगली पकड़ के चलाना नहीं सिखाएगा। लीडर खाली आपको रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना किसने है, आपने चलना है। ठोकरें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे, इमोशनली वीकनेस भी आएगी, बट लीडरशिप सेज दैट यू हैव टू ब्रेक द बैरियर्स। ब्रेक द बैरियर्स मीन्स जो भी रास्ते में उलझने आ रही हैं, उनको सही दिमाग से, बहुत हलीमी से, पेशेंस से, परसिवरेंस से, उनके सॉल्यूशंस निकाल के आगे बढ़ना है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, बट बिकॉज हमारा माइंड इतना वेवरिंग होता है, हमारे पे इतने प्रेशर्स होते हैं माइंड पे, हम राइट डिसीजन एट राइट टाइम नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाते हैं। अनलेस वी हैव क्लैरिटी इन आर माइंड, वी कैन नॉट डेवलप द करेज फॉर शेपिंग आर ओन लाइफ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। इज इट राइट? अगर हम हमेशा कंफ्यूज ही हैं, हमें क्लैरिटी नहीं है माइंड में, और क्लैरिटी प्रैक्टिस से आती है। अगर आप अपनी दो सिचुएशंस को एनालाइज करके उसका ठीक टाइम पे उसका सलूशन निकाल लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी अपने आप ही शार्प हो जाएगी। ये मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर अगर हम हमेशा रट में ही रहेंगे, हम अपने आप को वीक ही समझेंगे, हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस भी नहीं आए। अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में, दूसरों के बारे में, समाज के बारे में, कि मुझे समाज ने दिया क्या है, मेरे परिवार ने मुझे क्या दिया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए क्या किया है, मेरे परिवार ने मेरे लिए क्या किया है, अगर हम ये क्वेश्चन मार्क की जिंदगी जिएंगे तो हमें क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जिंदगी से एफर्मेशन की जिंदगी में आना है कि हाँ, ये चैलेंजेस हैं मेरे सामने, इन चैलेंजेस को मुझे रिजॉल्व करना है, और इन चैलेंजेस की प्रायोरिटी भी आपने तय करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, एक बहुत प्रायोरिटी सिचुएशन हमारे सामने है, हम उससे आंखें छुपा के हम दूसरी प्रायोरिटीज को रिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये हम लोग सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आज मैं ये सेशन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं एक लाइफ सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। पर हमें प्रायोरिटीज भी अपने आप ही तय करनी है कि ये 100% प्रायोरिटी है, ये 80% है, ये 60% है, ये 40%। ये हमारी दिनचर्या, ऑफिस में भी यही होता है कि हम अपने पूरे 8 घंटे ऐसे ही पास कर देते हैं। हम मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजों को छोड़ के लेस प्रायोरिटी वाली चीजों के ऊपर फोकस कर देते हैं, और मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देती हैं। उनको रिजॉल्व करने के लिए हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है जो हम बाकी की चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, और इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने आप को एनकरेज भी किया और हमने अपनी लाइफ में एनविजन भी किया। जो मैंने आपको बोला था ना, मोस्टली स्टेटमेंट ये होती है कि यू लिव इन योर प्रेजेंट, राइट, इन अ मैनर दैट योर पास्ट गिव्स यू द हैप्पीनेस। आज का पल जो प्रेजेंट है वो पल अगले मोमेंट में वो पास्ट बन जाएगा, बनेगा। जब वो पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट को इस तरीके से जिया है कि आपका पास्ट आपको खुशी नहीं देगा तो आप दुख को ही लेकर आगे बढ़े। तो आपने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूज नहीं किया, आपने अपने प्रेजेंट को इस तरीके से नहीं जिया कि जब वो पास्ट बने तो आपको उसमें सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, आपको उसमें खुशी मिले। और खुशी अगर हम खाली अपने लिए ढूंढेंगे तो बहुत छोटी सी खुशी होगी, वो एक बिंदु होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यू लिव योर प्रेजेंट इन अ मैनर, व्हेन इट बिकम्स पास्ट यू फील हैप्पी अबाउट दैट। ये बहुत 4 अक्षर की स्टेटमेंट है पर बहुत पावरफुल है। इस स्टेटमेंट को अगर हम इग्नोर करते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा फ्यूचर तो कभी एनलाइटन फिर हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसमें तो पास्ट का भी इफेक्ट आएगा, प्रेजेंट का भी आएगा, और वो हमारा फ्यूचर बनेगा। सो वी हैव टू एनालाइज व्हाट वी आर डूइंग। हम एक समाज में रहते हैं, हमें हमेशा अपने दुख का गाना नहीं गाना है। वी लिव इन अ सोसाइटी, वी कैन नॉट जस्ट सिंग आवर ओन सॉन्ग्स, चाहे हमारी दुख हो चाहे हमारी खुशी हो। वी ऑल्सो हैव टू लेंड आवर ईयर्स टू लिसन टू दी सॉन्ग्स ऑफ अदर्स। हमें अपने कान जरूर दूसरों के लिए रखने हैं कि हम उनका भी गाना सुन सके, चाहे वो दुख सैड सॉन्ग हो, चाहे वो खुशी का सॉन्ग हो, चाहे वो स्ट्रगल्स का सॉन्ग हो, चाहे वो ग्लोरी का सॉन्ग हो। हमें दूसरों को भी स्पेस देनी चाहिए उनके बारे में सुनने की, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में। वी जस्ट रिएक्ट, दूसरे इंसान की बात ही खत्म नहीं होती है और हमारा सोचने का स्केल इतना हाई हो जाता है, वो हमें रिएक्ट करने के लिए इतना मजबूर कर देता है कि दूसरे इंसान की बात वो किस लहजे में कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्या चीज उसको अंदर से प्रोत्साहित कर रही है ये बात कहने की, हम बिल्कुल उसके ऊपर क्रॉस मार देते। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये जो जर्नी है ये लाइफ की हमारे हाथ में है, अब हमने डिसाइड करना है कि हम किस रास्ते पे चलें, कौन सा रास्ता अपनाएं और अपनी लाइफ की डायरेक्शन हम कौन सी रखें। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन आर अचीवमेंट्स एंड कीप ऑन रिड्यूसिंग द लिस्ट ऑफ चैलेंजेस, ये हमारा मिशन होना चाहिए। ये आसान नहीं है, प्रैक्टिस से आता है। जितना हम दूसरों की मदद करेंगे उतना जो सुपर पावर है वो हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर हम अपना ही दुख को इतना बड़ा और इतना एनहेंस कर देंगे तो जो हमारी क्षमता है दूसरों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की वो खत्म हो जाएगी। तो इस बात को भी बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आदत डाल लेते हैं, आप अगर मैं कल भी परसों रामपुर में मैं लड़कियों को बोलकर आई थी कि आप अपनी एक डायरी बनाएं और जो भी अच्छी चीज आपने सीखी, आपने समझी और आपने करी उसको अपनी डायरी में लिखें, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी मैं वो डायरी देखना चाहूंगी। एंड दैट डायरी इज ए बाइबल फॉर यू, दैट डायरी इज ए कुरान फॉर यू, बिकॉज हमें स्पिरिचुअल बुक्स भी क्या कहती हैं, हम अपने आप को सुधारें, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, हम अपना सुख भी लोगों के साथ बांटे, खाली दुख नहीं बांटे, और दूसरों के दुख में शामिल होके उनके चैलेंजेस में शामिल होके उनको भी हेल्प करें उसमें से बाहर आने की। यही कहते हैं हमारी स्पिरिचुअल होली बुक्स। और अगर हम अपनी एक होली बुक लिखना शुरू कर दें तो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा आपका, जब एक साल के बाद आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं, है ना, कितना अच्छा लगेगा आपको वो पढ़ के। तो आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ये आपको हेल्प करेगा जब आप पेपर पे लिखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए और पॉजिटिव चीजों को इंवाइट करने के लिए। जो आपकी नेगेटिव चीजें हैं वो आपसे आस्ता आस्ता दूर जाना शुरू कर देंगी और पॉजिटिव चीजें आपके आसपास रहेंगी और आपको हमेशा एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बस मैं आज इतना ही कहना चाह रही थी। अगर किसी के कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो हमारे पास 10 मिनट हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मैंने इतने सारे ईज की आपके साथ आज बात करी है वो मैं शिवानी को दे दूंगी या मैं इसी मेल पे लिख दूंगी सबको। मैंने बात करी है इमोशंस की, एम्पैथी की, इवैल्यूएशन की, एनकरेजमेंट की, एम्पावरमेंट की, एनेबलमेंट की, एनलाइटनमेंट की, एनविजन करने की, लाइफ्स को एनरिच करने की, और लास्टली जब आप अपनी डायरी लिखना शुरू करेंगे तो आप एम्फेसाइज करेंगे दूसरों के सामने में कि इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू, बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन, यू हैव प्रूफ विद यू दैट यू हैव डन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कोई कमेंट, और कोई शेयर करना चाहता है कुछ तो प्लेटफॉर्म आपके पास है। हमारे पास 10 मिनट हैं और हम 10 मिनट में फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए थैंक यू सो मच, हमें इनक्रेज करने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच।
2: मैं सुवर्णा बोल रही हूँ मैम, पूना सेंटर से। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम आपने, जैसा मोटिवेट किया, मतलब हम भी आपके सेशन से हम भी बहुत अच्छा मतलब स्ट्रांग बन जाते हैं, आपका सेशन अगर सुना तो।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक पॉइंट आप एक वर्ड शेयर कर दीजिए सबके साथ जिस जो वर्ड ने आपको मोटिवेट किया है।
2: इमोशनली हम भी स्ट्रांग बन जाते हैं मैम, आपका सेशन अगर सुना ना।
0: हाँ, वेरी
2: यस
0: गुड
2: मैम,
0: वेरी
2: थैंक यू मैम।
0: गुड।
3: मैम अंजू द्वारका सेंटर से,
0: हाँ जी अंजू,
3: आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मैम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी जो आपने बताई है।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस। प्रैक्टिस करिए उसको, स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन सरपास एवरीबॉडी।
3: जी मैम,
0: ये बहुत जरूरी है। इसको खाली सुनने से तो समझ में आता है पर प्रैक्टिस करने से और भी ज्यादा अच्छे से। थैंक
3: थैंक यू मैम। मैम
0: यू। थैंक यू अंजू।
4: इस पे चलने के लिए भी हमें पावर चाहिए, थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे जरूर इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि बहुत कुछ है जिसपे प्रैक्टिस करना है। ऐसा लगता है कुछ चीज टूट जाती है, कुछ चलती रहती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि इसके बाद हमें लगता है कि हमें किस किस जगह चीज को इम्प्लीमेंट करना है, इससे हमें पता चलता है कि हमें अभी और क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है।
0: बिल्कुल
4: एग्जाम
0: बिल्कुल।
4: है जी मैम,
0: पहले अपनी लाइफ को स्ट्रांग बनाना है, फिर दूसरों की लाइफ को भी स्ट्रांग बनाना है। दोनों
4: जी मैम, जी मैम,
0: चीजों का दारोमदार आपके कंधों पे है।
4: जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम।
5: गुड आफ्टरनून मैम, फरहा बोल रही हूँ रामपुर से।
0: फरा कैसी हो आप?
5: ठीक है मैम। आपने बताया कि हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है करना, कभी भी अगर हम सेंटर पे बेनिफिशियरीज को सिखाते हैं तो यही नहीं होना चाहिए कि उसका एडमिशन किया और सिर्फ हमारा मतलब है उसको सिखाने से कि आज उसने क्या सीखा, कल क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है, बट उसके साथ हमारा एक अंदर से बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए कि वो फैमिली में कैसा चल रहा है उसका, उसके अंदर की क्या प्रॉब्लम है वो हमसे शेयर कर सके। अभी मैंने लाइब्रेरी के सेशन में भी ये शेयर किया था और यहाँ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक बेनिफिशियरी मेरे पास आ रही थी और वो आती थी, कंप्यूटर सीखती थी और चली जाती थी। काफी लड़कियां थी जो हंसती भी थी, बोलती भी थी, बट उसको किसी से कोई मतलब नहीं। आई और उसने सीखा और वो चली गई। तो मैंने नोट किया, 15 दिन 20 दिन, एक दिन मैंने उसे याद करने के लिए कुछ दिया कि आपको ये याद करके लाना है, तो वो अगले दिन याद नहीं करके लाई और बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कि मैम आप हमें डांटेंगी। मैंने कहा आपने मतलब देखने से पहले ही सोच लिया कि हमें मैं डांटूंगी। मैंने कहा डांटूंगी नहीं, आप मुझे बताओ कि आप रो क्यों रही हो कि मैंने ये स्पेलिंग याद नहीं की। तो मैंने कहा आपने याद क्यों नहीं की कि वो मेरी ना मम्मी मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे ऐसी धीरे धीरे बात निकलवाई, मम्मी क्यों परेशान करती कि मेरी पापा ने दूसरी शादी कर ली, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो कहती है अब तुम्हें कहीं पढ़ने नहीं जाना है, घर का काम करना है और भैंसों को देखना है, दूध वूध बेचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है और मुझे पढ़ना है मैम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मम्मी से बात करने आऊंगी घर पे और उनको समझाऊंगी और आप सेंटर पर आओ, आपको जो सीखना है वो सीखो, बट ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी बात करनी होगी खुद के लिए घर पर। तो उसको ये बात काफी समझ में आई, उसने अपने पाप मम्मी तो नहीं सुन रही थी उसकी बात, लेकिन उन्होंने अपने पापा से वो बात की और हम उसके गाँव गए। हमने उसकी मम्मी से जब फेस टू फेस बात की तो वो बहुत तेज किस्म की थी, वो यही बोल रही थी कि नहीं अब ये क्या करेगी पढ़ के, नहीं पढ़ना है, इसकी शादी करनी है हमें और ये है और वो, और वो जो उनकी सगी बेटी थी उनको पढ़ा रही थी। मतलब गाँव में ये होता है कि वहां पर सगा सौतेले का थोड़ा सा रखते हैं कि इनको नहीं करना है, तो वहां उनको हमने बहुत इनकरेज किया और बोला कि शादी से पहले अगर आप 1-2 महीने हमारे सेंटर पे भेज दो, पूरी हमारी जिम्मेदारी रहेगी, आप सीखने दो जो वो सीखने के लिए बोल रही है, आप फीस मत देना, आपको लगता है कि मेरी बेटी के लिए वहां फीस जा रही है और मैं नहीं दे सकती, आप फीस मत दीजिएगा लेकिन इसको भेजो क्योंकि ये सीखना चाहती है। तो वो उस चीज से बहुत खुश हुई और उसकी मम्मी ने ठीक है आधे पौन घंटे के लिए सेंटर पे भेजना शुरू किया। तो वो जो उसकी बातें दिमाग से थी और जो वो सोचती थी, डरती थी, वो टेंशन में रहती थी, तो वो धीरे धीरे दूर हुई। तो वो सारी चीजें आपने हमें बताई कि हमें कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है सेंटर पे। अगर हमारे पास एक एक बेनिफिशियस आ रहा है तो हमें उससे हर एक बेनिफिशियस से बात करना चाहिए, क्या पता हम अपनी बात समझा के उसको कुछ इनकरेज करें उसकी लाइफ के लिए, क्या पता उसकी सोच चेंज करें, उसके जितने भी दिमाग में निगेटिव पॉइंट है उसको दूर करके उसको पॉजिटिव सोच में बदले। तो ये बात आपका ये पॉइंट हमेशा हम नोट भी करते हैं, करते भी आगे, और आज आपने जो बताया वो काफी हमारे लिए काम आता है। थैंक यू
0: फरा, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं सबको सबको ये बोलना चाहूंगी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं परसों मैं कब थे हम फरा के सेशन में, ऑन ट्यूसडे मैं स्मिता डिंपल मैम फरा और अकबर के सेशन में सेंटर में थे और इट वॉज अमेज्ड। 50 से ऊपर लड़कियां थी जो इनके सेंटर में बैठी थी और सबने बुर्का पहना हुआ था। बहुत गर्मी थी, मेरी हालत एकदम खराब थी बिकॉज मुझे बहुत पसीना आता है वहां पे, तो आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। पर वो माहौल देख के ना मैं अपने आप को रोक पाई, ना स्मिता अपने आप को रोक पाई, ना डिम्पल अपने आप को रोक पाई, ना फरह रोक पाई और ना ही अकबर रोक पाया। हम पांचों ने इतना उन लोगों के साथ बातचीत की, इतना उन लोगों को समझाया और वो ना वर्ड्स अपने आप आते हैं उनसे बात करने के लिए। एंड फरह, अकबर इज नॉट हियर टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे ऑनलाइन। आज आपका फेस्टिवल है पर फिर भी आप सेशन मिस नहीं कर रही हैं। और उस दिन मेरे सामने से वो आंखों के आगे से वो सीन ही नहीं जा रहा है कि इतनी सारी लड़कियां वहां पे हमें सुनने के लिए आई हुई थी और पीछे की लड़कियां स्टूल्स पे खड़े होके हमारी शक्ल देख के हमें सुनना चाह रही थी। दैट वॉज अमेजिंग फरा, you are a real leader and you are working in the community.
5: Thank you.
0: very well.
5: ये सब आपसे ही सीखा है मैम, जो आप सिखाते हैं वो हम आगे करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा उस दिन मुझे। डिम्पल ने अपने सेंटर के, स्मिता ने अपने एक्सपीरियंसेस, फरा ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैं हमेशा फरा को कोट करती हूँ कि फरा को मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो दरवाजे की एक पार्टीशन थी, फरा उधर से बोल रही थी और मैं इधर से बोल रही थी। आज फरा सबके सामने इतनी कॉन्फिडेंटली बात करती है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर हमने ऐसे 10,000 या 20,000 भी लड़कियों को तैयार कर दिया तो वो लड़कियां कभी भी पीछे मुड़ के अपनी लाइफ को नहीं देखेंगी, और आप लोगों की भी गारंटी है बिकॉज यू पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, राइट? ठीक है, थैंक यू फरा।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड
6: आफ्टरनून मैम, मैं गरिमा ग्रेसी शशि।
0: हाँ जी शशि।
6: यस मैम, लड़कियां आपसे बात करना चाहती मैम, वो आपका सेशन सभी सुन रही हैं और मैम सभी लड़कियां अभी आपके सामने हैं लाइव में, वे कुछ बात करना चाहती हैं मैम।
0: हाँ जी बोलिए।
7: और हम चाहते हैं कि हमें और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमने कभी सोचा भी था कि यहाँ ट्यूशन भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ गरिमा ग्रेस सेंटर में ट्यूशन आके बहुत अच्छा काम हुआ है मैम। एक और तो कहना आता है ना, सुनता हमें वो पहचानने के लिए मिला है मैम से, सती मैम से, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत खुशी आ रही है मैम।
0: वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। गरिमा ग्रह एक ऐसा सेंटर है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि कीर्ति नगर में एक एमसीटी का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स था जिसको पीवीआर नेस्ट ने बिल्कुल रेनोवेट कर दिया और उसमें दो कमरे हमें दिए हैं जिसमें हमने लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेक्शन और स्टिचिंग सेक्शन और ब्यूटी एंड वेलनेस का सेक्शन बनाया है। और पैर रखने की जगह नहीं होती है, ये सब औरतें इतने इतने उत्साह से उस सेंटर में आती हैं, कोई इनहिबिशन नहीं है कि वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पे हमें नहीं बैठना, वहां पे हमने नहीं सीखना, जहाँ सीखने की इच्छा होती है वहां पे राह भी निकल आती है। ये मेरा विश्वास था, तभी हमने पीवीआर नेस्ट के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पे सेंटर खोला था। थैंक यू सो मच, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फरजाना, आप कैमरे में आई और फिर चली गई, आप कुछ कहना चाहती हूँ?
8: थैंक यू मैम,
0: बोलिए।
8: सो मच, आपका सेशन लेकर हमें ये महसूस होता है कि लीडरशिप सबके अंदर होती है, लेकिन आपका जब हम सेशन लेते हैं ना, हम अपने अंदर से उसे जगह पाते हैं। तो बात है तो सिर्फ उसे जगाने की है मैम, और फिर आपकी बातों से और आपके समझाने के तरीके से, आपके सेशन से हमें इतना अच्छा लगता है कि हमको ये अपने ऊपर कर पाते हैं कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मैं भी बहुत कुछ हूँ।
0: अब फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये शेयर करने का, और ईद मुबारक, आज आपका त्योहार है और फिर भी आप सेशन अटेंड कर रही हैं। और फरजाना एक ऐसी लड़की है जो इतने रिमोट एरिया से और आगे इतनी बढ़ गई है, और इसका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया, और ये इतनी औरतों को एम्पावर करती है, तो अभी ये अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देख सकती है, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना फरजाना?
8: जी मैम, मुझे तो ना हर बार और अच्छा लगता है मैम, ऐसा लगता है तो पिछली जब मैं भी आप करती हूँ ऐसा लगता है मैं वो फरजाना हुई नहीं, पता नहीं कैसे ऐसे हो गई मैं। बात करने का तरीका, मतलब जो भी पहले था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैम, सिर्फ जो भी है आपकी वजह से है और हम बहुत अच्छा कर पाए, और आगे भी इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा करेंगे रीड इंडिया के।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना। सना, यू ऑल्सो केम ऑनलाइन एंड देन यू क्लोज्ड। यस,
9: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून,
9: हाउ आर यू मैम? हैप्पी ईद।
0: हैप्पी ईद टू यू ऑल, सबके परिवार को मुबारक, और सबने बहुत अच्छी खीर भी बनाई होगी आज मुझे पता।
9: यस मैम, थैंक यू मैम फॉर द सेशन, फॉर टेकिंग आउट टाइम हम लोगों के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू।
0: नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है और मेरा काम है
9: मैम। एक्चुअली ये सेशन होता है, इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, ऐसे हमारी बात हो, वीडियो कॉल पर हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं, सारे सेंटर्स के लोग इकट्ठा होते हैं, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं, तो हमें भी लगता है बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अदर सेंटर से भी सीखने को मिलती रहती है कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी लर्निंग्स बढ़ती हैं, तो ये सारे सेशन बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। और मैम कल का सेशन पता मैम का है, वो भी बहुत अवेटेड सेशन है।
0: बहुत अवेटेड सेशन है, और मैं आपको बताऊं, स्मितो और मैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। इट्स नॉट दैट आई स्पीक एक्सटेम्पोर, मैं पहले अपने थॉट्स को कोलेट कर लेती हूँ, एक पेपर पे लिख लेती हूँ और स्मिता के साथ डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हम कैसे यू नो एम्पावरमेंट जो है या लीडरशिप है, हम हवा में बात नहीं कर सकते, हमें बहुत ही पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करके, उसको समझा के, उसको कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं, वो डिस्कस करने में हमें भी एम्पावरमेंट मिलती है, हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, पर उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एड्रेस करना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, इट्स ए कलेक्टिव सेशन फॉर एवरीवन। हम सारे इकट्ठे तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की हम आ सकते हैं, अदरवाइज फिजिकली मिलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला कि मैं फरा के सेंटर पे हम लोग गए थे, इट वाज इतनी गर्मी थी मैं आपको बता नहीं सकती, एंड थैंक्स टू ऑल द गर्ल्स हु केम देयर, मोर देन 50 to 60 गर्ल्स वर देयर, एंड दे वर बबलिंग विद एनर्जी कि हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, हमें अपनी लाइफ में कुछ करना। तो वो प्रोत्साहन देख के हमें भी एनर्जी मिलती है, हमें भी खुशी होती है, और फिर हमारा और करने का दिल करता है। ठीक है,
9: वेरी गुड मैम,
0: थैंक यू सर।
10: मैम मैं सेशन आपका पूरा सुना है, फिलहाल मैं बस में ट्रैवलिंग पे हूँ, पर आपसे बहुत कुछ सीखा सभी लोगों ने और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और आपसे सीख के कुछ आगे बढ़ने की कोशिश है लाइफ में, जो हम अपने टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम।
0: सुमन इज अनदर एग्जाम्पल, जो मैंने आज एक पिक्चर आपकी आंखों के आगे दिखाने की कोशिश की है। सुमन इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरा इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, सना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट, फरजाना इज एन एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ये हमारे सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं और शायद ये लोग ही मुझे इनकरेज करते हैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम सब तक पहुंच जाए तो एक्चुअली रियल माने में हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। थैंक यू सुमन, बस में सेशन सुनने का, थैंक यू सो मच।
10: थैंक यू मैम, थैंक यू,
0: थैंक यू,
6: थैंक यू मैम,
0: थैंक यू जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको फिर से ईद मुबारक और सब लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बोलते समय ईर्ष्या भाव से अपने विचारों की रक्षा करो, वे आपके मनोभाव हैं। क्योंकि कोई भी मूर्ख आपके शब्दों से पकड़ लेगा कि कब आपने ये कहा था। विचारों में शब्द की प्रतिष्ठा को स्थान देने वाले महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अतरसुईया मोहल्ले में 26 अक्टूबर सन 1890 को हुआ था। उनके पिता जय नारायण मिडिल स्कूल में शिक्षक थे, जो उन दिनों एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल कहलाता था। उनके पिता धार्मिक संस्कारी व्यक्ति थे। गणेश शंकर की कुछ आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के मुंगावली और विदिशा नामक स्थानों पर भी हुई। सन 1907 में उन्होंने निजी विद्यार्थी के रूप में हाईस्कूल की परीक्षा पास की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। हार कर उन्हें नौकरी करनी पड़ी। शुरू में उन्होंने करेंसी कार्यालय में नौकरी की। यहां अंग्रेज अधिकारी से मतभेद और लड़ाई होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने कानपुर के हाई स्कूल में शिक्षक की नौकरी की। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का भाव तो मन में घर करने ही लगा था। अपने मन के भावों को लेकर विद्यार्थी जी ने अपनी पहली पुस्तक 16 वर्ष की आयु में लिखी। शीर्षक था हमारी आत्मोत्सर्गता। ये पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी चंद्र प्रकाशवती को समर्पित की। राष्ट्रवादी उथल पुथल का ये दौर था। विद्यार्थी जी की इच्छा थी कि वे सार्वजनिक जीवन में आएं और पीड़ित लोगों का दुख दर्द साझा करें। उनके सामने दो विकल्प थे, या तो साहित्यिक पत्रकारिता करें या राजनीतिक, जन जन से जुड़ी हुई। उनके छुटपुट लेखन को देख पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विद्यार्थी जी को मासिक पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के रूप में काम करने के लिए कहा। किंतु विद्यार्थी जी राजनीतिक विषयों में अधिक रुचि रखते थे, अतः उन्होंने सरस्वती के स्थान पर अभ्युदय नामक पत्रिका में काम करना श्रेयस्कर समझा। सन 1913 में विद्यार्थी जी कानपुर लौट आए और स्वतंत्र पत्रकारिता आरंभ की। कानपुर से प्रताप का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसने पत्रकारिता और मानवता के उच्च मानदंड स्थापित किए। 1915 में गांधी जी नील किसानों का दुख दर्द समझने चंपारण आए थे। विद्यार्थी जी ने प्रताप में भी बिहार के निलहे किसानों की व्यथा कथा को विस्तार से स्थान दिया। कानपुर के मिल मजदूरों का कम वेतन और जमींदारों द्वारा रायबरेली में किसानों का उत्पीड़न, इन सब पर प्रताप में मुखरता से लिखा। उनकी कलम आम आदमी के दुख दर्द की हमदर्द बन गई।

लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात के बाद विद्यार्थी जी गांधी दर्शन के अनुयायी बन गए। सन 1917-18 के होम रूल आंदोलन में उन्होंने तन मन से भाग लिया और कानपुर में मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। अंग्रेजों की नजर अब उन पर पड़ चुकी थी और रायबरेली उत्पीड़न पर लेखन और मुकदमे के चलते विद्यार्थी जी को 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई। इस कारावास की सजा के दौरान कविवर पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रताप के संपादन का भार संभाला, जो दैनिक बन चुका था। सन 1922 में उन्हें छोड़ा गया और कुछ समय बाद फिर से एक उत्तेजक भाषण देने के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सन 1924 के आसपास कानपुर क्रांतिकारियों का गढ़ बन चुका था। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई। दोनों ने एक दूसरे को समझा और वे अभिन्न मित्र बन गए। भगत सिंह प्रताप में काम करने लगे और बलवंत सिंह के छद्म नाम से लेख लिखने लगे। विद्यार्थी जी अपने स्कूल के दिनों में विश्व के अनेक चोटी के साहित्यकारों, विशेषकर क्रांतिकारियों को पढ़ चुके थे, अतः भगत सिंह का लेखन उन्हें रास आया। अपने कई सर्वोत्तम लेख भगत सिंह ने प्रताप में ही लिखे। ये विद्यार्थी जी का संपादन कौशल ही था कि 2 समानांतर विचारधाराओं, गांधीवादी और क्रांतिकारी, दोनों को अपने पत्र में वे स्थान देते रहे। पाठक वर्ग भी दोनों विचारधाराओं से लाभान्वित होता रहा। सन 1925 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसमें मुक्त भाव से भाग लिया। सन 1925 में हुए प्रांतीय विधानसभा चुनावों में विद्यार्थी जी कानपुर से चुने गए। 4 वर्ष तक यहां काम करने के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी द्वारा कानपुर में स्थापित बीच वाला चौक मंदिर उनकी सभास्थली थी, जहां विद्यार्थी जी रोज मीटिंग करते। मजदूरों की दशा सुधारने के लिए सन 1928 में विद्यार्थी जी ने मजदूर सभा की स्थापना की। सन 1929 में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया और उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह के नेतृत्व करने का भार सौंपा गया। हिंदी भाषा के राष्ट्रीय महत्व से वे भली भांति परिचित थे और इसे राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे। 1930 में गोरखपुर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने अपनी वैचारिक पक्षधरता स्पष्ट कर दी। प्रताप में निरंतर लिखे जा रहे लेखों को आधार बनाकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया और 9 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद ही उन्हें छोड़ा। कुल मिलाकर गणेश शंकर विद्यार्थी को 5 बार जेल यात्रा करनी पड़ी और प्रताप में प्रकाशित लेखों के लिए भारी जुर्माने की रकम भी अदा करनी पड़ी। कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद के झंडा गीत के विद्यार्थी जी प्रशंसक थे और कानपुर में 19 अप्रैल जलियांवाला बाग दिवस की स्मृति में इसका सामूहिक गान आरंभ करवाया।

विद्यार्थी जी का कहना था कि मैं उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ एक सेनानी हूं, चाहे वो नौकरशाहों, जमींदारों, पूंजीपतियों या उच्च जातियों द्वारा किया जा रहा हो। मैंने अपना सारा जीवन उत्पीड़न और अमानवीयता के खिलाफ लड़ा है और ईश्वर मुझे आखिरी दम तक लड़ने की ताकत दे। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी लेखनी हमेशा सजग रही और उन्होंने सभी धर्मों के बड़े नेताओं को फटकारा जो केवल अपने धर्म को महान बताते हुए अन्य धर्मों की आलोचना करते थे। विद्यार्थी जी के इन विचारों के कारण कई बड़े धार्मिक नेता उनसे नाराज रहा करते थे। अपने सर्वधर्म समभाव के विचारों के प्रचार के लिए विद्यार्थी जी ने हिंदुस्तानी बिरादरी नामक संगठन बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस संगठन का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव और विभिन्न त्योहारों पर संयुक्त आयोजन करना था। वे ये समझते थे कि साम्राज्यवाद की ताकतें विभिन्न धर्मों के संकीर्ण विचार के लोगों को लालच देकर या भड़काकर धार्मिक उन्माद फैला सकती हैं, और ये सही भी है, ऐसा होता रहा है। विद्यार्थी जी बार बार इसके खिलाफ अपनी कलम चलाते रहे। सन 1931 में अंग्रेजों ने तीन प्रमुख क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दे दी। विद्यार्थी जी स्वयं इन क्रांतिकारियों के बहुत नजदीक थे, पर स्वयं कुछ समय पहले ही जेल से बाहर आए थे, इसलिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। अन्यथा वे इन क्रांतिकारियों के लिए बड़ा जन समर्थन जुटा सकते थे। कानपुर में सौमनस्य का वातावरण बिगड़ चुका था। असंतोष की लपटें चारों ओर फैलकर हिंसा का वातावरण बना चुकी थीं। ऐसे में विद्यार्थी जी स्वयं उसको शांत करने मैदान में कूद पड़े। उस दावानल में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया और वे स्वयं इसका शिकार हो गए। एक ऐसा जीवन जो हमेशा शांति की धारणा लेकर उत्साहित रहा। 25 मार्च सन 1931 को अशांति की भेंट चढ़ गया। उनके विचार और कलम की शक्ति आने वाले दिनों में भी शब्द साधकों का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। शत शत नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं। लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे बाय हुक एंड क्रूक, वेदर दे स्टैंड अलोन, वेदर दे हैव चैलेंजेस, वेदर दे हैव पीपल दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग देम, दे वॉक थ्रू ऑल दीज थिंग्स। तो इसको क्या बोलते हैं? चेजिंग योर गोल्स। हम अपने गोल्स को चेज करते हैं कि हम कैसे उनको फुलफिल करें। तो जब हम अपने गोल्स चेज करते हैं, हमारे ड्रीम्स, हमारे एम्बिशंस, तो हमें डिसरिगार्ड द पीपल हु टेल यू इट कैन नॉट बी डन। जो लोग बोलते हैं कि ये तो हवा में बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है। डिसरिगार्ड मींस, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ। डिसरिगार्ड मींस डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको। तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है। टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है। तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो है ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा। क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस। गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें। हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे। 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप। हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ, तो हम Somehow we are able to realize our dreams. Somehow we are able to, ambitiously do the things what we want to do. Do you all agree with me what I have said? Chasing your goals. बिल्कुल ये practical चीजें हैं. मैंने कोई theory नहीं लिखी है यहाँ पे. सारी ये practical day to day हमारी life में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में. आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे और अगर अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टावर है. एंड दे कलेक्टिवली डिसाइडेड कि आज हम टीवी टावर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं. राइट तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में. थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे. कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा. मतलब कि दे वर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टावर तक पहुंच गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टावर. ऊपर टॉप में पहुंच गए एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड. और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी. वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टावर के टॉप पे पहुंच गए. जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे. और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था. वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं. लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टावर पे जाना. तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसके. टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स. तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है. बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर. तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर. तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ. तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे. और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है देखा जाए तो, बहुत छोटा सा होता है. तो वो क्या टीवी टावर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊंगा. पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है. और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे. तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से. बहुत इजी स्टोरी है और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे. तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थॉट लेट मी शेयर विद यू. बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको. तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स. नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व. हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है. वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स. वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आवर प्रोग्रेस. बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है. वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं. पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ. तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है. हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे. तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए. मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस. The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देते. पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें. और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेज करना पड़ता है. और अपॉर्चुनिटीज को चेज हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है. अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं. ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. वॉट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज looking for alternative opportunities. अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें. So the problems look bigger. Focus on gaps and resolve the problems. The last point is very very important. कि हम अगर gaps को analyze कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन. ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन. They can see into the future. They have a clear, exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. मैंने बहुत simple words में पहली दो slides में बताया. ये definition है कि great leaders vision होती है. हम बहुत देर से बात कर रहे हैं इसकी. They can see the future. वो जो मैं रे ऑफ सनलाइट की बात कर रही हूँ, दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज. उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड वॉट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है. एंड दे हैव वेरी एक्सेलेंट, वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो. तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप देके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही विजनरी कहलाते हैं. दूसरा क्या है? करेज. वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज. अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से, जमीन से, खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइम कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे, बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा, बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे, इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन, बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए. आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, इमीडिएट नीड्स क्या है, कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए, इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट वन और टू अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं, और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आपको नहीं पता. आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि 1 साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूअसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाए, चाहे 4,000 कमाए, चाहे 6,000 कमाए, राइट. और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2,000 से 6,000 तक लेके जाए, 6,000 से 12,000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है. सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है. हम कैसे करें उसको हमें करना है. जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन. ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे. क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है. इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है. मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो. जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा. द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट. It means that you have the self-confidence and self-awareness to recognize the value of others without feeling threatened. समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, that doesn't mean कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोज, राइट. तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है. दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन्स ईगो. अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे. पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट. इट मींस दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, that you recognize you may not have the answers, but it means that you give credit where credit is due, which many people struggle to do. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए. हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ. मैं तो ठीक था, बिल्कुल. मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था. अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता? जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे. पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं श्योर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन। इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट? और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो एनजीओ पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और एक महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं? दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स. दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. कि आप जहाँ बैठे हो, आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? दे फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस. आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो. जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो, कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए. जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड. बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा. मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी. बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते. तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया. इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम, जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं, वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? The last point is cooperation. Gain the cooperation of others by making a commitment to get along well with each key person every single day. रोज आप अपने connections, अपनी networking, अपने staff का teamwork को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे refine करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है, 5-6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी, दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है. विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये सातों पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें, और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर. राइट. लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको. अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 इयर्स ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज. झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना. इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल. This style was first described during the late 1970s and later expanded upon by researcher Bernard M. Bass. मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं. ठीक है. These leaders tend to be emotionally intelligent, energetic and passionate. They are not only committed to helping the organization achieve its goal, but also to helping group members fulfill their potential. This sentence में मैंने summarize किया है जो last 7 points मैंने बताए हैं एक leader की qualities के बारे में. अब leader की qualities तो बता दी कि leader को करना क्या है. पहले तो हमने goals भी chase करे, फिर हमने अपने वो points भी यहाँ पे highlight करे best qualities के. फिर अभी हम कह रहे हैं कि transformational leadership best है क्योंकि वो emotionally intelligent है. emotionally intelligent का means है कि मैं दूसरों के personality की कदर करती हूँ, उनके thoughts की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट. और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है. रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है. तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं. हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं. तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है. द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात करें, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज. हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है. मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स. इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट. मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम. हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 3 पॉइंट्स हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी. हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा. उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं. हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम. और परसिस्टेंस जो मैंने बोला था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट? हर एक इम्पोर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट? हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं। हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं, अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो, हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे, अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है, राइट? दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीपल एज दे वर्क टूवर्ड्स गोल। एफिशिएंसी इम्प्रूव करने की जरूरत है। हेल्प पीपल टेक एक्शन, एनकरेज पीपल टू एंगेज इन हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स। हेल्थ ओरिएंटेड बिहेवियर्स मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं, राइट? हेल्प पीपल अवॉइड अनहेल्थी एंड माल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है, राइट? बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम, हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना? ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्दी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए। एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूं, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पे मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको, एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे, राइट। और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है? आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी, राइट। इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जीज उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल। आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसका। ठीक है, 5 मिनट है हमारे पास। हाँ, और ये स्लाइड्स रोज हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं। मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा। अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, राइट। आप प्लीज ये करिए, आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स है, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए। आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को, और एक्शन उसी तरीके से लेंगे। ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए। ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट।
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ,
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल।
1: हमेशा कोई
0: पता
1: चीज
0: है
1: हो
0: ये
1: जाती है, घट जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हम ना सुनने कि अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं, हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है, टेंडेंसी है। वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू।
1: मैम, हाँ जी, हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। यही आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली समराइज
1: थैंक यू सो
0: किया,
1: मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल। एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी। मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से. जी मैम, जैसे सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं. आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में आपका ये एग्जांपल देके, और मैंने उसको ना एक डेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 3-4 दिन से मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता था कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा. बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है. तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पर करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा. वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है. उससे मुझे बहुत फायदा हुआ. रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है.
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है. और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो. पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए. तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है. देयर एंड देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: यस बिल्कुल. और एक चीज और, कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे. तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था. लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो.
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी.
2: जी,
0: तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको. हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने के, राइट?
2: यस.
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है?
2: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच. और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.

एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सबके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती है, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए।

को अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इम्प्रूव की जा सकती है, ठीक है। तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ कि आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स। तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इसे सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं। क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी हैं, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं। तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में। या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं। सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं। फिर आपके 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं, ठीक है। कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसी आती है। तो ये एक स्किल होता है, तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का। और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे। जो सी टेट होता है इसमें आपके क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक के टीचर आप बनते हैं। और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक। तो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है। और ऐसे ही जो 9th से लेकर 12th तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो 9th से 12th तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, 6 टू 8 में टीजीटी, और क्लास 1st से लेकर 5th क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सी टेट के बारे में। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सी टेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती हैं, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है तो सी टेट आपके लिए एक असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सी टेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सी टेट जो है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड-19 के कारण अभी एग्जाम

0: हम अभी फास्ट सितंबर के मंथ में तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, बट जनरली सी टेट का जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सी टेट का एग्जाम होता है। इसमें 2 पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर 1, सेकेंड इज पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होता है वो होता है क्लास 1 से 5 के लिए, और पेपर 2 होता है 6 to 8 के लिए। इसका मतलब अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक कोई भी क्लास के लिए टीच करना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे पेपर 1 और मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या है पेपर 1 और पेपर 2 अपीयर करते हैं। दोनों की क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं। जैसे आपको क्या होना चाहिए, 12th में अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो 12th में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और 12th विद 50%। सी टेट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो 12th में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर 1 जो है, पेपर 1 मतलब एलिमेंट्री क्लासेज के लिए क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज 1 एंड 2, ये 2 लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब 2 लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब 5 सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट आते हैं। 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर 1 होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर जिसको हम क्लास 1 से क्लास 5 तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है, जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले पेपर 1 जो देना है वो आपका ये रहता है 1 to 5 के लिए, और सिमिलरली पेपर 2 होता है, पेपर 2 स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको 2 लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सी टेट आपने क्वालिफाई करना है, और अब मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए, और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो 1st से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी, आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का, आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सी टेट के, क्योंकि हर साल में 2 बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है, तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सो कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सीटेट के बारे में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ध्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ध्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, तो पहले एक स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, एक बुक को जब आप देखते हैं उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में दो बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है, और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि 12th के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये 12th के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस है, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप 12th के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसी एंटिटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एंटिटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एंटिटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है चाहे आपका एंटिटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशन आप। अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती हैं, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए है, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं 8 से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग हैं, जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी 12th होनी चाहिए, और 12th के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एनटीटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इम्पोर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्त है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जेबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आपने बीए किया हुआ है बीएससी किया हुआ है उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एचटेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टर 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 इयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है चाहे पेपर 3 है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और 3 अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर 1 देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है। जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम, जो सब्जेक्ट का पैटर्न है कि हरियाणा में पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती। आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चन आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस हैं, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम EVS कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर TGT के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको एसए, साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने, जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपियर करते हैं, ठीक है। तो एसटेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एस्टेट का पेपर होता है, एस्टेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एस्टेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एस्टेट सीटेट एस्टेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी ही नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी, इसको 7 साल के लिए कर दें तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज ऑल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एस्टेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में री 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना, देखिए क्या, जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एस्टेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं। तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है। नहीं, एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं, इसमें हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है, मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं। पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और वेन यू गो इन टू द साउथ, तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रीट का ये पेपर 1 है, ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर 2 होता है जिसमें आपका अगर आप आरटीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, कि ये रेगुलर अफेयर है। हर साल 2 साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप 2-3 चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो 12th के बाद आप कुछ ना कुछ अपना JBT करिए, चाहे आप बेटे NTT का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप DLD करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल 3 की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल 2 में तो वो साइंस और SST में च्वाइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं, कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, SST का भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं TGT लेवल के लिए, तो TGT लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और SST तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि PGT में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली TGT में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, SST भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली 8th क्लास तक का मैथ्स करना है, 8th क्लास तक की आपको साइंस करनी है, 8th क्लास तक का आपको SST पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो 12th करने के बाद से ही अपना JBT कर लीजिए, NTT कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और सिर्फ प्राइमरी के लिए एंटाइटल है, और CTET का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी 2 इयर्स की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको 2 साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो 5 साल ट्वेल्थ के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको 12th के बाद कम से कम 5 इयर्स लगाने पड़ेंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 ईयर का बीएड। और वही अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम 7 ईयर 12th के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं, तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आती हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे की ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे, महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं मतलब प्राइमरी टीचर के लिए या आपका जो आरटीजीटी के लिए, ठीक है, हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती है। आपका केवीएस है केंद्रीय विद्यालय है तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है, तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की, इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है इनकी भी वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है, तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप वहां फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, अब टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ये एक सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेड मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया अब कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेड तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे, तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती है, ठीक है, तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले जैसे मैं आपको बताऊं आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसी आई थी, मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एसटेट का पेपर क्वालिफाइड है तो वो जॉब पे लग गया था, फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई, अब पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है, तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसी है अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। अभी जैसे मैं पढ़ रहा था आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में री 2020 के अंदर 30,000 की अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसा होता है, जनरली क्या होता है कि देखिए आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना आपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती है तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो ही जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब्स होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसीज है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में दो बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में एक बार तो कंडक्ट होता ही है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप रीट की मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें तो साल डेढ़ साल में एक बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पर होते ही है। डीएसएससी की भी वैकेंसीज आती रहती है, मतलब हर साल दो साल में वैकेंसीज आती है, केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशंस पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके ट्वेल्थ में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल वहीं फिर हम में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज है उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे, आप जैसे मैंने आपको बताया अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है तो आपको बीएड करना मस्त है, वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है। ठीक है, उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं, एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है, और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 इयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है, और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं। और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर का आपका पेपर होता है, जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है, जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है आपने उसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए टाइटल है, वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए, कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है कंपेरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे, चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, बट अगर क्वालिफिकेशंस पूरी है तो। हाँ, अब सपोज आपने बीएड नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है, और एक बार आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल नहीं परसों, विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती है, तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माई साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी है, और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर। तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ उनको आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्योंकि
0: नहीं,
1: काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई मैं
0: प्राइवेट प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो कई
1: एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ।
0: बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका। अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है। वो ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपियर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है।
1: नहीं है
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप सीटेट
1: हाँ
2: हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते। हाँ
0: हाँ
3: गुड आफ्टरनून सर, पर बोल रही हूँ रामपुर से।
0: गुड
3: सर मुझे
0: आफ्टरनून
3: ये
0: सर। हाँ
3: पूछना था, सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सीटेट का एग्जाम है ना वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सीटेट करेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सीटेट पास करना पड़ेगा। बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करना है आपको।
3: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो
0: हाँ
3: सी
0: जी
3: टेट का भी एग्जाम दिया था तो अभी 3 नंबर से रह गए थे हम,
0: हाँ
3: तो
0: जी
3: बस
0: हाँ
3: मैं
0: जी
3: पूछ रही हूँ कि सी टेट या यूपी टेट पे से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद सुपर
0: उसमें
3: टेट फिर आएगा
0: नहीं, नहीं ये
3: तो
0: क्या
3: हम दे
0: करते
3: सकते
0: हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसीज निकालते हैं ना तो उसमें वो सी टेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा,
3: यूपी
0: तो वो
3: टेट?
0: थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। बट ये है कि अगर आप जो सी टेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: अच्छा यूपी में नहीं हो सकता ये,
0: मतलब
3: यूपी से
0: नहीं
3: यूपी कहीं चले?
0: चल जाता है, मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है बट वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें, क्योंकि
3: हाँ
0: देखिए क्या है कि इसका क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब जब आपकी वैकेंसीज आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सी टेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
3: अच्छा सर, जो सुपर टेट है यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे ही होता था, जॉब लग जाती थी।
3: जी
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। फिर जब
3: हाँ
0: वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई हो, फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग।
3: ओके
0: जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एसटेट क्वालिफाई कर लिया, एसटेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका, तो इस तरह से चलता है इसमें।
3: ठीक है सर,
0: एक
3: थैंक यू सर।
0: एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस। देखिए जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है उसके बाद आपको 2 ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है, क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन 2 सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर। देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो 2 टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडहॉक पे दिखाती है तो वहां पर आपका चल जाता है, मतलब। तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एसटेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें, जैसे जो टीजीटी का पेपर है हाँ उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया भी, जैसे 150 नंबर का पेपर आता है तो 30 क्वेश्चन तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पेडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चन में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आपकी कॉलेज रेगुलर करना चाहिए ना वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज। तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्विवेलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीए बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है, तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु
5: शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजा हृदय शाह लोधी की।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: 1857 का विद्रोह प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना जाता है, लेकिन वीरभूमि बुंदेलखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल सन 1842 के बुंदेला विद्रोह में ही बज उठा था। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का पहला संघर्षपूर्ण प्रयत्न था, जिसके अग्रणी नेता थे हीरापुर के राजा हृदय शाह लोधी। अपने लोगों पर उनका गहरा प्रभाव था, यही कारण है कि उनके आह्वान पर अनेक लोधी राजा, जागीरदार, मालगुजार, तालुकेदार और किसान अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। बुंदेला विद्रोह के प्रमुख नायक थे हृदय शाह और सागर जिले के मधुकर शाह। दरअसल ब्रिटिश सत्ता के बढ़ते अत्याचार के कारण लोगों के भीतर अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक आक्रोश उन दिनों व्याप्त था। लोधी राजाओं के भीतर भी इसीलिए विद्रोही भावना बलवती हुई और वे जनता को जागृत करने में जुट गए। बुढ़वा मंगल मेले की तर्ज पर महोबा के सूपा गांव में मेले का आयोजन किया गया, जहां चरखारी राज्य के पूर्व राजा मंडन शाह और विकट राय के वंशज लोधी जागीरदार निवास करते थे। इन्हीं लोधी जागीरदारों ने इस मेले की सारी व्यवस्था की। इस मेले के बहाने बुंदेलखंड के अनेक राजाओं और जागीरदारों से संपर्क कर अंग्रेजी राज के विरुद्ध योजनाएं बनाई गईं। मेले में जैतपुर महोबा के बुंदेला राजा परीक्षित, हीरापुर के राजा हृदय शाह, चिरगांव झांसी के राय बहादुर भगत सिंह, सागर जिले के मधुकर शाह बुंदेला जैसे कई जागीरदारों ने बड़ी संख्या में भाग लिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हुए। विद्रोह को सफल बनाने तथा प्रजा का राज्य स्थापित करने का संदेश सावधानी पूर्वक सभी जगह पहुंचाया जाने लगा। बुंदेलखंड के दक्षिण में सागर नर्मदा क्षेत्र में क्रांति की आग सुलगाने का काम कर रहे थे राजा हृदय शाह और जागीरदार मधुकर शाह। इस अभियान में नरसिंहपुर के ढिल्लन शाह भी अपने क्षेत्र के असंतुष्ट जमींदारों और लोगों को लेकर विद्रोही बन गए। इस तरह बुंदेलखंड के दक्षिणी भाग में विद्रोह की ज्वाला जल उठी।

राजा हृदय शाह के नेतृत्व में कंपनी सरकार के ठिकानों पर आक्रमण कर दिया गया। पहले आक्रमण में एक चौकी पर अधिकार कर अंग्रेजों को मार भगाया गया। इस आक्रमण से अंग्रेज तिलमिला उठे। पूरी तैयारी के साथ कैप्टन ब्राउन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने हीरापुर पर चढ़ाई कर दी। भारी सेना को देखकर नगर खाली कर दिया गया। अंग्रेजी सेना ने हीरापुर को लूटकर तहस नहस कर दिया। राजा हृदय शाह अपनी सेना के साथ हीरापुर से तेजगढ़ आ गए। दरअसल तेजगढ़ में पहले राजा हृदय शाह के पूर्वजों का ही राज था और अब उनके वंश के एक लोधी जागीरदार की जागीरदारी यहाँ थी, इसलिए हृदय शाह को यहाँ से सहायता का विश्वास था। और हुआ भी ऐसा ही। तेजगढ़ में हृदय शाह और उनकी सेना का स्वागत हुआ और भरपूर सहयोग किया गया। राजा हृदय शाह ने नरसिंहपुर पर घेरा डाल दिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। हृदय शाह ने दमोह, जबलपुर और नरसिंहपुर के बहुत से हिस्सों पर अधिकार कर लिया। अब उनकी सेना आगे बढ़ी और उसने सागर के मुख्यालय को घेर लिया और अंग्रेजों को परास्त कर सागर को मुक्त करा लिया। जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ था, वहां उनकी भारी सेना जमा थी, इसलिए राजा हृदय शाह उससे बचते हुए अपनी सेना को एक तरफ से निकालकर आगे बढ़ गए। उनकी सेना ने नर्मदा नदी को पार किया। स्थानीय किसानों ने हृदय शाह की सेना का साथ दिया। इस तरह राजा हृदय शाह की सेना ने कंपनी सरकार के अधिकारियों को परास्त किया और नगर गांव अंग्रेजों से खाली करवाते चले गए। राजा हृदय शाह अंग्रेजों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े थे। उन्हें पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोषणा की गई। राजा हृदय शाह ने परिस्थितियों को देखा और भूमिगत हो गए और अब

भूमिगत होकर वो छापामार युद्ध का संचालन करने लगे। एक वर्ष तक वो इसी तरह अंग्रेजों से लोहा लेते रहे, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सका। वे लगातार छापामार युद्ध शैली से आक्रमण करते। उन्हें जनसमर्थन इतना था कि अंग्रेजों की गतिविधियों की पूरी जानकारी उन्हें मिल जाया करती थी, किंतु उनकी कोई भी जानकारी कंपनी सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी। बड़े बड़े मालगुजार उनके भोजन आदि की व्यवस्था करते, साथ ही खतरों से सचेत भी कर देते। इस तरह स्वराज हेतु एक सघन संघर्ष जारी रहा।

राजा हृदय शाह की सक्रियता से गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो और ब्रिटिश सेना अध्यक्ष दोनों ही घबरा उठे। बुंदेलखंड क्षेत्र अंग्रेज सैनिकों के लिए कुछ अपरिचित भी था। अंग्रेजों ने मदन सिंह नामक एक व्यक्ति को अपने मार्गदर्शन हेतु नियत किया, लेकिन वो स्वयं देशभक्तों के साथ था। उसने अंग्रेजी सेना को जंगल में भटकाकर विद्रोहियों को इसकी सूचना दे दी। इस तरह अंग्रेजी सेना परास्त हुई। अब थक हार कर अंग्रेजों ने दमन और शक्ति के स्थान पर आत्मसमर्पण और क्षमादान की प्रक्रिया अपनाने पर विचार किया। लॉर्ड एलनबरो की ओर से घोषणा की गई कि जो विद्रोही अपराधी प्रवृत्ति का त्याग कर सामाजिक जीवन बिताने की इच्छा से आत्मसमर्पण करेंगे, कंपनी सरकार उन्हें क्षमादान देगी। इसके साथ ही दबाव बढ़ाने के लिए इलाहाबाद, बनारस, नागपुर, झांसी, कानपुर तथा इटावा से फौजें मंगवाई गईं। कुछ स्थानीय जागीरदारों से भी सहायता ली गई। साथ ही भारी इनाम की घोषणा कर फूट डालने का प्रयास भी किया गया। इस तरह विद्रोहियों का उत्साह गिरने लगा। पुरस्कार के लालच में भाई भाई का दुश्मन बन गया। 21 नवंबर 1842 को राजा हृदय शाह को इनाम के लालच में पकड़वा दिया गया। उन्हें चुनार दुर्ग में कैद कर बहुत यातनाएं दी गईं। उनकी गिरफ्तारी से इस पूरी मुहिम को बहुत क्षति पहुंची। उनका पूरा परिवार बंदी बना लिया गया। राजा हृदय शाह, राजा परीक्षित तथा मधुकर शाह इस विद्रोह के स्तंभ थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन वो आग जो राजा हृदय शाह ने प्रज्वलित की थी, भीतर ही भीतर वो सुलगती रही और सन 1857 में भयंकर विस्फोट के रूप में फूट पड़ी। राजा हृदय शाह की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह की इतनी भीषण स्थितियां पैदा हुई कि कंपनी सरकार के लिए इसे दबा पाना संभव नहीं था। इसलिए सन 1843 में उन्हें इस शर्त के साथ रिहा कर दिया गया कि भविष्य में वे विद्रोह नहीं करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्रेमी और स्वाभिमानी राजा हृदय शाह भला किस शर्त में बन सकते थे? अवसर मिलते ही 1857-58 के स्वातंत्र्य समर में उनका पूरा परिवार समस्त सैन्य बल के साथ पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में डट गया। उनके एक भाई सावंत सिंह ने 1857 के समर में अपने प्राणों की आहुति दी। दूसरे भाई गजराज सिंह भी गिरफ्तार हुए तथा फांसी पर लटका दिए गए। हृदय शाह के पुत्र मेहरबान सिंह ने भी 1857 के समर में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस तरह उनके पूरे परिवार ने स्वाधीनता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। 28 अप्रैल सन 1858 को राजा हृदय शाह ने अंतिम सांस ली। नमन भारत के ऐसे महान वीर सपूत को।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: उजेर के पास कुछ इनपुट्स आए थे, उन इनपुट्स के बेसिस पे हमने जब काउंट किया तो स्टेज फियर या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही कॉमन इश्यू निकल के आया था, जिसपे कि सभी लोगों को लगा कि एक सेशन होना चाहिए। तो ये जो सीरीज में हमारा ये सेशन है, नया सेशन है आज, और दिस इज फोकस्ड ऑन स्टेज फियर एंड फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। किसी को पता है ये किसी के साथ होता है, स्टेज फियर या पब्लिक स्पीकिंग का? मतलब किसी के सामने अगर बात करनी है, एक जन या दो जन से ज्यादा अगर लोग हैं और बात करनी है, खड़े होके बात करनी है, किसी को लाइफ में कभी घबराहट हुई या किसी ने कोशिश करी है स्टेज पे बोलने की, या फिर जब शुरू में स्टेज में क्लास में बोलते थे, स्कूल में करते थे?
1: मेरा नाम फातिमा है। मुझसे बात नहीं होती है, घबराहट होती है सबके सामने बात करने में,
0: तो अभी तो
1: बात
0: आप
1: करने
0: इतने अच्छे से
1: जाती
0: बात कर रहे हो, घबराहट क्यों होती है फातिमा जी?
1: हूँ। टेस्ट पे जाकर मुझसे बात नहीं हो पाती है।
0: स्टेज पे जाके बात नहीं हो पाती, ठीक है? अभी हम ये आप मानते हैं कि स्टेज पे जाके बात करने में घबराहट होती है, लेकिन अभी देखो आपको मिला के शायद 51 लोग आपको सुन रहे हैं, 51 people are listening to you। अभी क्यों घबराहट नहीं हो रही है आपको? हो
1: वो तो रही थी अभी, लेकिन अब आपसे बात
0: रही
1: हुई
0: थी?
1: तो कम हो गई।
0: अच्छा, घबराहट हो रही थी, फिर भी हिम्मत करा आपने और आप आगे आई और आपने उसको ओवरकम किया और फिर भी अपनी बात कहने की कोशिश करी। तो क्या फरा मैम ने इनकरेज किया आपको? क्या उन्होंने कहा कि यू नो यू कैन टॉक, ऐसा नहीं है कि तुम भी अपनी बात आगे रख सकती हो? तो अगर कोई हमें इनकरेज करे या अगर हम थोड़ा सा उस पर काम करें, तो शायद धीरे धीरे करके हम उस स्टेज फियर या लोगों के सामने बात करने का जो फियर होता है उसको ओवरकम कर सकते हैं। क्या हम सभी ये बात मानते हैं? अगर
1: जी
0: हम
1: मैम,
0: मानते हैं तो हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे।
1: जी मैम, मुझे पराही मैम ने कहा था आपको घबराहट होती है, आप मैम को बोलिए, वो आपको सोल्यूशन बताएंगी।
0: देखिए, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, लेकिन टिप्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके ऊपर हमें खुद काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई गोली नहीं है कि मैं आपको बोलूं आप इसकी दो डोज सुबह ले लीजिएगा, दो डोज शाम को ले लीजिएगा, तो आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं और आपको खुद पे अपनी मेहनत करना होगा, जिससे कि ये कोशिश करके धीरे धीरे हो सकता है ये फियर कम हो जाए। आप इतने अच्छे से बात करती हैं, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, आप जब बात करती हैं तो आपकी आंखों में एक चमक रहती है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुल के बात करना चाहिए। और कोई है हमारे साथ जिसको डर
1: थैंक
0: लगता है स्टेज फियर? कभी अभी नहीं, हो सकता है पहले लगता हो। मुझे बहुत डर लगता था, स्टेज फियर बहुत ज्यादा था एकदम, मैं किसी के सामने तो शायद बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी, स्कूल से ही ऐसा फियर था। इवन रीड में आके भी बहुत फियर था, वो तो मैम ने इनकरेज किया लगातार कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू। तो अगर कोई इनकरेज करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, हम खुद पे काम करते हैं, तो वो काम आसान होता है धीरे धीरे। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी और को ये फियर है या हम ये टॉपिक पे नहीं बात करना चाहते हैं?
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून।
1: मैम आबिदा रामपुर कलघर से।
0: अच्छा आबिदा जी,
1: जी मैम, जैसे आपने अभी बोला कि सेम यही मेरे साथ होता था कि जब मैंने न्यू न्यू रीड ज्वाइन किया था, उस टाइम में लड़कियों तक से बात नहीं कर पाती थी। बहुत घबराहट फील होती थी कि मैं लड़कियों से अपनी बात समझा पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं रीड के साथ लगातार जुड़ी रही, बात करती रही, लाइफ स्किल्स के सेशन लेती रही, तो मेरे अंदर काफी घबराहट दूर हुई। और फिर अकबर सर ने काफी मुझे इंकरेज किया, बताया कि आबिदा आपके अंदर इतनी स्किल्स है और आप क्यों नहीं बताते हो, क्यों नहीं बोलते हो। तो फिर मैंने कोशिश की और आज मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ आपसे।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कहा आपको ये फीडबैक मिला और आपने उस पर कोशिश करी। अच्छा, आपको ये पता है कि सभी से मैं बात कर रही हूँ कि ये जो स्टेज फियर है या फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है रिसर्च का। और एक स्टडी हुई थी फॉरेन कंट्री में, इंडिया से बाहर ये स्टडी हुई थी, शायद इंडिया में भी हुई हो। ये 75% लोगों में रहता है किसी ना किसी लेवल पे, यानी कि 100 में से 75 लोग ऐसे होंगे। कुछ लोग पैदा होते हैं और उनको कॉन्फिडेंट होता है, वो शुरू से ही बहुत आउटस्पोकन होते हैं, उनको कोई झिझक नहीं होती अपनी बात रखने में, वो एक कैटेगरी है। बट उसके अलावा 75% लोग हैं, अगर 100 लोगों में गिनती करेंगे, उनको किसी ना किसी लेवल पे स्टेज फियर जरूर होता है। और इसका एक साइंटिफिक नाम है, कोई मुझे बता सकता है बिना गूगल करे कि उसका नाम क्या है? किसी को पता है? इस फियर का नाम है ग्लॉसोफोबिया। ग्लॉसो फोबिया, यानी कि ये कोई, आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको ही है या सिर्फ गिने चुने लोगों को ही है, इसको एक साइंटिफिक नाम भी दिया गया है, इसका नाम है ग्लॉसोफोबिया। अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये बहुत ही कॉमन एंजाइटी है या फियर है ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हैं, कोई बता सकता है क्या होता है अगर आपको स्टेज पे भेज दिया गया है, माइक दे दिया गया है, तो क्या फियर होता है? क्यों आपको लग रहा है कि आपको स्टेज फियर है? क्या ऐसी चीजें होती हैं? हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी होने लगती हैं, लोगों से आई कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, जो बोलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ?
1: जी मैम, अर्चना बोल रही हूँ।
0: हाँ जी
1: मैम, एक्चुअली वो क्या होता है, पैर एकदम से कांपने लगता है और हम जो बोल रहे होते हैं ना, तो बस पता नहीं लाइन गैप होने लगता है, उसके वर्ड जो है हम भूलने लगते हैं, पीच का लेवल हाई हो जाता है और अजीब, बहुत ही नर्वस फील होने लगता है।
0: वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, एग्जैक्टली ऐसा।
1: अभी अभी मैं आपको, इवन मैं अभी आपको बोल रही हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि मैं, यदि आप सामने रहते तो शायद मैं नहीं इतना बोल पाती।
0: अच्छा, बिल्कुल, ये बिल्कुल यही बात होती है कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं तो हमें लगता है कि मुंह सूख रहा है और क्या बोलना चाह रहे हैं ना, जो बोलना चाह रहे थे वो भूल गए हैं हम। अच्छा, बात जो है आधी ही बीच में रह जाती है और हम उस पॉइंट से कहीं और डाइग्रेस हो जाते हैं, ऐसा होता है। फिर हाथ एकदम कांपते हैं, पैर एकदम ठंडे ठंडे होने लगते हैं कि आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, किसी से आंख मिलाते हुए डर लगता है। अच्छा, भी ऐसा होता है कि ये टीचर ना मुझसे क्वेश्चन ना पूछे, मैं पीछे बैठ के आराम से, मतलब मुझे बस आई कांटेक्ट नहीं करना, जैसे आई कांटेक्ट होगा तो टीचर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ये भी एंजाइटी हुई है किसी को? ये भी पार्ट ऑफ ग्लॉसोफोबिया ही है। तो हमें ये स्टेज फियर होता क्यों है, या पब्लिक स्पीकिंग में जो ये फियर होता है हमें क्यों होता है? ज्यादातर अगर मोटे मोटे उसको भागों में बांटा जाए तो हमें ये लगता है कि जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन, जो हमारा फर्स्ट या सेकंड सेशन था लाइफ स्किल्स का, कम्युनिकेशन स्किल, वो हमारी वीक है। यानी कि हम बोलते हुए घबराते हैं, या हमें बोलने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करना है उसमें हम घबराते हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं है बोलने के लिए, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो बात हम रखना चाह रहे हैं दूसरे के सामने वो दूसरे के इंटरेस्ट की है, वो दूसरे को, हम ये जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं कि क्या पता उसको मेरी बात पसंद नहीं आए, क्या पता वो मुझे जज करना शुरू कर दे, और इस चीज से घबरा के हम एंग्शियस हो जाते हैं और फिर जो है हम शब्द भूलने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद जो मैं बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ ये दूसरे के सामने मैं बोलने की काबिल नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में या बचपन में हमने कभी कोशिश करी हो और मजाक बना दिया गया हो, हमारा हमारी बात का मजाक बना दिया हो, तो वो दिमाग में ना कहीं सबकॉन्शियस में यहाँ पे पीछे फिट हो जाता है कि अगर मैं बात करूंगा या बात करूंगी लोगों के सामने तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो पुराने बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से भी कभी कभी हमें वो स्टेज फियर पैदा होने लगता है। शुरुआत में हो सकता है ना हो, लेकिन आप कभी स्टेज पे गए अपनी असेंबली में, या अगर आप ट्रेनर हैं, आप ट्रेनिंग करते हुए कुछ ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, या आपको माइक दिया है स्टेज पे कुछ बोलने के लिए और आपके साथ कुछ आप नहीं बोल पाए, तो वो भी हमारा कॉन्फिडेंस और कम कर देता है। ऐसा होता है किसी के साथ या हुआ है किसी के साथ? मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, शायद इसी वजह से ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं आपके साथ। और किसी वजह से स्टेज फियर आपको लगता है होता है बच्चों में, हम में, या फिर इन जनरल पब्लिक में स्टेज फियर होता है? किसी के पास कोई इनपुट है? क्योंकि यही पांच रीजंस नहीं है, इसमें बहुत सारे और भी रीजंस हैं। कई बार हमें बोलने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया जाता जब हम छोटे होते हैं, या हमारे घर में, या हमारे स्कूल में, स्कूल में अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो सबको तो कॉमन नहीं दिया जाता ना, जो वॉलंटियर करेगा हाँ बेटा तुम बोलो असेंबली में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में शुरुआत से छोटे से ही शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये जो फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है ये और बढ़ता जाता है कम होने की बजाय, अगर हम इस पे काम नहीं करें या हम प्रैक्टिस नहीं करें। क्या सब मानते हैं इस चीज को?
1: नमस्ते नमस्ते मैम।
0: नमस्ते ईशा जी।
1: मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बच्चों को खड़ा करते हैं जैसे प्रेयर वगैरह में कुछ बोलने के लिए असेंबली में, कि कुछ पोयम सुनाओ, तो
2: बच्चों को आने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते, अपने घर पे तो सुना देते हैं लेकिन हम लोगों को नहीं सुना पाते, क्योंकि उनमें एक डर सा पैदा होता है कि हम सबके सामने बोलेंगे तो हमसे बोला नहीं जाएगा, या मैम से डर लग रहा है, इस चक्कर में बच्चे बोल ही नहीं पाते, एक फियर सा रहता है हर समय।
0: तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, यानी कि दूसरों का ओपिनियन जो है, जो नेगेटिव ओपिनियन है, उसको हम पहले से ही सोच लेते हैं हम बोलेंगे और लोग हमें नेगेटिव जज करेंगे, है ना। फियर ऑफ जजमेंट जो होता है दूसरे लोगों के ओपिनियन, नेगेटिव ओपिनियन को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं, बल्कि जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, आप कह रहे हो कि बच्चे को पोयम आती भी है तभी भी वो सुनाने में झिझकता है, क्यों? क्योंकि वो जब आसपास के बच्चों को देखता है या दूसरे टीचर्स खड़े हैं या और पेरेंट्स खड़े हैं असेंबली में, तो उसको लगता है कि ये मेरे अंदर जो है मेरे को जज करेंगे, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो वो मुझे हंसेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या कुछ करेंगे। इसे कहते हैं फियर ऑफ जजमेंट। अभी तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना, ये फियर ऑफ जजमेंट मतलब दूसरों की ओपिनियन की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती रहती है, और हम अपनी कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम बोले ही नहीं ताकि हमें जज ही ना किया जाए। क्या ऐसा होता है? जब हम बोलेंगे तो हमें जज कौन करेगा? नहीं, बात सही है। जब हम हाथ ही नहीं खड़ा करेंगे आंसर देने के लिए तो हमें कोई जज ही नहीं करेगा। तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बजाय वो फियर को और बढ़ावा देते हैं। बट हमारा मकसद यही है कि जब हमारे यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं या जो हमारे यहाँ से महिलाएं आगे काम करने जा रही हैं, एटलीस्ट वो अपनी बात को कह सके। पब्लिक स्पीकिंग मतलब अगर 10 लोग भी खड़े हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी रैली हो या पूरा ऑडिटोरियम भरा हो, उन लोगों के सामने ही बात करनी है। अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अपनी बात को अगर हम सही से नहीं रख पा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर है, मतलब हम कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है। इस फियर को कम कौन करेगा? अगर ये हमारे अंदर है तो हमको ही इस पे काम करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स कर सकते हैं कि पहले तो हम इसकी बहुत ज्यादा ये ना करें कि हम जो दूसरे हमें देख रहे हैं या जो दूसरों का ओपिनियन है वो वही सच है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे पैदा होगा? पहले तो ये है कि जो टॉपिक पे आपको बात करनी है, मान लीजिए कोई टॉपिक अगर ऐसा है जिसपे कि आपको पता है आपको बोलना है, तो आप उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके जाइए। अगर आपको पता है आपने क्या बोलना है, अगर 10 पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं तो आपको पता है कि एक एक मिनट आप इन 10 पॉइंट्स पे बोलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन करना है ऑडियंस से तो क्वेश्चन करेंगे और आपका स्पीच खत्म हो जाएगा। अगर डिबेट है या अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको अपनी व्यू पॉइंट देने हैं, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके जाइए। जब आपको पता है आपने क्या बोलना है तो आप स्टैमर नहीं करेंगे, यानी कि सोचेंगे नहीं। ऐसा होता है ना, हम बात बात करते करते ऊपर देखने लगते हैं, फिर हमें याद नहीं आता, फिर हम करते हैं ये सब चीजें भी हम अवॉइड करेंगे, कर सकते हैं अगर हम अपने टॉपिक, जैसे मुझे आज आपके साथ ये वाला टॉपिक पे बात करना था, तो मैं 2 दिन से रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक के ऊपर, और इस टॉपिक के ऊपर मेरे को लगा कि हम एक बिगनर्स लेवल के लिए कितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। अब एक दिन के अंदर किसी का कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो सकता कि वो स्टेज पे जाके और पूरा अपना स्पीच दे दें, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स छोड़ सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस छोड़ सकते हैं। तो मैंने अपने टॉपिक पे रिसर्च करी, अब मुझे पता है, और फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि अच्छा इस पॉइंट पे मुझे क्या बोलना है, अगले पॉइंट पे मुझे कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो इससे क्या है, आपको भी आसानी है और मैं टाइम भी वेस्ट नहीं कर रही और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने क्या बोलना है आपके साथ। तो फर्स्ट इज कि आप अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है और आपको इम्प्रॉम्प्टो नहीं, पहले से पता है आपका टॉपिक, तो आप उस पर रिसर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। जब आप बात कर रहे हैं अपने पॉइंट्स को सिंपल रखिए, बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत सारा डेटा मत यूज करिए, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े शब्द और डेटा हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। जब आप अच्छे स्पीकर बन जाएंगे तब आप कोशिश करके उसको अपने टॉक में इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर आप शुरुआत में पब्लिक स्पीकिंग पे या स्टेज पे बोलने पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी जो आपकी बात आप रखना चाह रहे हैं उनको छोटे छोटे सरल सेंटेंसेस में तोड़ के आगे बोलने की कोशिश करें। अगर आप अपनी जो बात कहना चाह रहे हैं उसको आपने लिख लिया छोटे छोटे शब्दों में, उसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में तोड़ दिया, तो अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि शीशे के सामने प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि शीशे में आप देख पाते हैं कि आप कैसे लग रहे हैं। आजकल तो आप मोबाइल में भी अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो, और देख सकते हैं कि जब मैं अपनी बात कह रही हूँ स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग में, कुछ मेरे को किसी बात पे चर्चा करनी है तो मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। और हो सकता है मैं हाथ ज्यादा मूव कर रही हूँ, जैसे मेरी आदत है मैं हाथ काफी मूव करती हूँ, तो क्या वो अच्छा लग रहा है, क्या वो बुरा लग रहा है। कई लोग होते हैं वो ऐसे पेन को भी, पेंसिल को भी ना ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे भी करते हैं, इवन स्टेज पे भी, या माइक पकड़ा है तो माइक को ऐसे ऐसे कर लेंगे, तो माइक पे आप जो बोल रहे हैं ना वो लॉस्ट हो जाता है। जब आपने माइक छोड़ा तो माइक इधर उधर करा, क्योंकि हाथ का मूवमेंट का आदत होता है, तो वो माइक से जो आप कहना चाह रहे हैं वो लॉस्ट हो जाएगी आवाज। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज को आप माइक बना लीजिए, इसको माइक बना लिया, अब मैं शीशे के बात करना है। तो पहला हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स बना लिए कि जिस टॉपिक पे मुझे बात करनी है वो टॉपिक, कि मैंने अच्छे से डेटा बनाया, उसको सिंपल पॉइंट्स में लिखा, बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो शब्द बोलने में ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, जब आप बहुत लोगों के सामने है, जबान सूख रही है और आप में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ा शब्द आया तो आप डर गए, अरे बाप रे मैं इसको कैसे बोलूंगा या बोलूंगी, तो उसको सरल रखिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने शब्दों को आराम से बोलिए, बहुत जल्दीबाजी में बोलने से भी फंबल हो जाता है। फंबल पता है क्या होता है, मतलब जो कहना चाह रहे हैं वो शब्द ठीक से बन के बाहर नहीं आता, फंबल हो जाता है। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच बोलने वाले हैं ना, तो कोशिश करिए कि वेन्यू, वेन्यू मतलब जहां पे आपने बोलना है, स्कूल का वेन्यू है या कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में पहले से पहुंच जाइए ताकि आप एनवायरमेंट को पहले से देख लें। अच्छा जगह कैसी, कई बार क्या होता है जगह इतनी इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेटिंग मतलब वो प्रभावित कर लेती है आपकी सोच को, और आपको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं उसको आप नहीं कह पाते ठीक तरीके से, क्योंकि आप इंटिमिडेट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उस एनवायरमेंट से। बट अगर आप पहले से ही वहां पहुंच जाए, 5-7 मिनट पहले पहुंच जाए, वहां बैठ जाए, बैठ के आप देखें, अच्छा यहाँ से लाइट आ रही है तो यहाँ से मेरे को यहाँ पे खड़े होके बोलना है, ये 10 लोग हो सकता है सामने, अगर 10 चेयर्स पड़ी हैं तो अच्छा ये 10 लोग यहाँ से देखेंगे, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बन जाता है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि अगर पहले से ही आप चले जाते हैं कहीं किसी जगह पे और फिर धीरे धीरे 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए, कहने का मतलब है कि अगर आपको बात करनी है या कुछ बोलना है तो इमीडिएटली, कभी कभी हम एंटर करते हैं किसी रूम में ना तो वो रूम के एनवायरनमेंट से भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो जाकर आप चाहें तो अपने वेन्यू पे पहले से पहुंच जाइए, उसके साथ आप एक अपना रिश्ता बना लीजिए कि हाँ मेरे को पता है कि ये इस तरह से दिखाई देता है और इस तरीके से लाइटिंग है और यहाँ पे खड़े होके मुझे बोलना होगा और ये मेरा टॉपिक है, इसको मैंने प्रिपेयर करा है, प्रैक्टिस करा है। अपनी सांस, ब्रीदिंग को हमने पुराने कई सेशंस में, मेंटल हेल्थ के सेशंस में, इवन जो योगा का सेशन था उसमें ब्रीदिंग के ऊपर बात करी, क्योंकि ब्रीदिंग से जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो कई हद तक कम हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलने को बोला जा रहा है और आपको घबराहट हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम ब्रीदिंग पे भी काम कर सकते हैं, यानी कि लंबी सांस ली, लंबी सांस छोड़ी, इससे क्या होगा कुछ हद तक हमारी जो एंजाइटी है वो कम हो सकती है। हमने प्रिपेयर तो पहले ही कर लिया, हमारे पास हमारे पॉइंट्स भी हैं बोलने के लिए, हमने प्रैक्टिस भी कर ली शीशे के सामने, हमने ये भी देख लिया कि वेन्यू कैसा है, मैं कहाँ जाके बोलना है मुझे, या बोलना किस जगह पे खड़े होके बोलना है, और अब अगर घबराहट कम करनी है तो हम आंखें बंद करके या वैसे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, इससे भी कई हद तक हमारा जो है मेंटल एक स्टेबिलिटी आ जाती है। कभी कभी हाथ ठंडे हो जाते हैं तो आप हाथ को भी ऐसे रब कर सकते हैं, जब आपका शरीर कंफर्टेबल होगा ना तो आपका जो घबराहट है कई हद तक कम हो जाएगा। समझ आ रही है सभी को?
3: यस मित्र जी, वेरी नाइस
4: जी मैम।
5: यस मैम,
0: लग रहा है कि कुछ हेल्पफुल है ये टिप्स?
3: यस मैम,
4: काफी है मैम।
0: अच्छा, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं, जो काफी इनफैक्ट अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो कभी कभी ना अगर उनको काफी डेटा देना है या कोई फैक्ट्स मतलब जो सत्य है उसको कोट करना है, तो वो क्यू कार्ड, छोटे क्यू कार्ड्स देखे आपने, छोटे क्यू कार्ड्स होते हैं, मतलब पेपर को छोटा छोटा काट के वो अपने हाथ में रखते हैं। कभी देखा है आपने कोई स्पीकर्स हैं या फिर जो जो मास्टर ऑफ सेरेमनी यानी कि जो होस्ट कर रहे हैं वो अपने हाथ में क्यू कार्ड्स रखते हैं? किसी ने देखा है क्यू कार्ड, क्या होता है क्यू कार्ड?
5: नहीं, देखा नहीं कभी।
0: क्यू कार्ड क्या होता है? छोटा कार्ड होता है, उसपे आप जो बोलने वाले हैं उसके मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं। मान लीजिए आज मुझे लाइफ स्किल्स पे बोलना है, तो लाइफ स्किल्स पे मुझे कौन सा टॉपिक कवर करना है? पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग पे मुझे कौन से टॉपिक कवर करने, पब्लिक स्पीकिंग क्यों होता है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कौन से टिप्स एंड टेक्निक्स कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है, फियर ऑफ पीपल जजिंग यू, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमने अभी पढ़ा था ना, ग्लॉसोफोबिया बोलते हैं इसको, है ना। तो ये चीजों को हम क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है हर किसी के पास वो ना हो, आप जहाँ पे बोलने जा रहे हैं हो सकता है वहां पे पीपीटी ना हो, अगर मेरे पास पीपीटी नहीं होती तो मैं छोटे छोटे क्यू कार्ड माने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पे अपने की पॉइंट्स को छोटे शब्दों में और जो मैं कहना चाह रही हूँ उसके अलग अलग पॉइंट्स बना के मैं छोटे छोटे पांच या छह क्यू कार्ड्स रख लेती ताकि जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ वो मिस ना हो जाए। आप अपने जैसे अगर सेशन ट्रेनर्स हैं जो हमारे, वो ट्रेनर्स अपने सेशन को प्लान करते हैं, सेशन को प्लान करते हुए वो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, आज मुझे ब्लाउज बनाना सिखाना है तो मैं कटिंग सिखाऊंगी, मैं उसकी ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी और मैं उसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, फिर उसको मेजर कैसे करना है और अलग अलग ब्लाउज कैसे बनाना है, ये पांच पॉइंट लिखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, उसी को अगर हम एक छोटे कागज पे लिख रहे हैं तो उसे क्यू कार्ड बोलते हैं। क्यू कार्ड मतलब अगर मैं पॉइंट भूल रही हूँ तो वो मुझे क्यू कार्ड एक क्यू एक एक आइडिया दे देगा कि अच्छा मुझे इस पॉइंट पे भी बात करनी थी, कहीं मैं भूल ना जाऊं। समझ में आया? अदरवाइज मैं एग्जाम्पल्स या फोटोग्राफ्स के थ्रू और भी बता सकती हूँ। किसी को समझ में आया क्या, कोई बता सकते हैं क्यू कार्ड्स क्या होते हैं? कभी किसी ने यूज करा है क्यू कार्ड अपने ट्रेनिंग सेशन में? हमारे साथ बहुत सारी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, क्या टीचर्स ने यूज किया है क्यू कार्ड कभी?
4: हेलो जी मैम, सुमन
0: जी। सुमन जी,
4: हाँ जी मैम, जैसे अगर हमें कहीं पे बोलना होता है तो पहले मैं क्यू कार्ड का मतलब तो मुझे खैर आज ही पता लगा है, हाँ जी, पर मैं अपने नोट्स हमेशा लिख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है वहां पे, ये मैं हमेशा करती हूँ उस चीज के लिए, हाँ जी। और बोलते हुए थोड़ा सा मुझे लगता है मैं ना बीच बीच में रुक जाती हूँ कभी कभी, हाँ जी।
0: कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से होता है, जितना ज्यादा आप खुल के कोशिश करेंगे वो रुकना, पॉज इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं और अननेसेसरी पॉज नहीं है, एक पॉज दिया है आपने अपने थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए, तो वो गलत नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि आप अपनी सोच को 2 सेकंड दे रहे हैं और उसको रिकलेक्ट करके फिर से उस मुद्दे पे आ रहे हैं, है ना। और क्यू कार्ड मतलब वो आपको इशारा देता है, क्यू का मतलब होता है इशारा देना कि अच्छा ये टॉपिक था, इस पे ये वाला पॉइंट भी आपको बोलना था, तो अगर आपके टॉपिक में 6 पॉइंट्स हैं तो आप हर एक पॉइंट को अलग अलग क्यू कार्ड पे लिख सकते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको मेहनत ना लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि इतने सारे 50 लोग आपको घूर रहे हैं और ऐसे सबकी आंखें ऐसे हो रही कि अच्छा क्या बोलने वाला है, आगे क्या बोलेगा या बोलेगी, तो घबराहट हो जाती है। अगर बड़ा बड़ा लिखा हो कि अच्छा अब मुझे ये बोलना है, तो वो आपका जो अगर ध्यान भटक रहा है या कॉन्फिडेंस कम हो रहा है ना, तो योर कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो मैंने रिहर्सल करी थी, इसके तो मैंने बात करी थी, तो मैंने प्रैक्टिस
4: की,
0: तो मैं ये बात कह सकती हूँ। तो वो क्यू, क्यू का मतलब इशारा करना कि अच्छा ये जो है आप ये वाला पॉइंट भूल रहे हैं और ये भी आपको बोलना
4: जी मैम, इसीलिए मैं लिख देती हूँ हमेशा।
0: हाँ एब्सोल्युटली, हाँ आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो जरूर लिख लीजिए या क्यू कार्ड्स का यूज करिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आपको सारी बात कवर करने में और सारे की पॉइंट्स कवर करने में. अगर प्रेजेंटेशन है भी तभी भी आप लिख के जाएगा, बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई, मेहनत करके 2-3 दिन लगा के प्रेजेंटेशन बनाई, प्रैक्टिस भी करी, और जब प्रेजेंटेशन को लगाया तो टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, वो प्रेजेंटेशन चली ही नहीं या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप घबराने लग जाएंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, मेरे तो पॉइंट्स ही लॉस्ट हो गए. तो अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है या आपके पास ऐसे छोटे छोटे कार्ड है, क्योंकि बड़ा सा पर्चा लाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में कि अच्छा ये तो लिख के लाए हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट टू बिकम अ बेटर स्पीकर या टू बिकम अ मतलब अच्छा और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आप क्यू कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के भी ला सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं.
4: थैंक यू मैम.
0: और कोई कुछ शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस?
5: जी एक बार मेरे साथ क्या हुआ, हम लोग का यहाँ पे 26 जनवरी का फंक्शन था हमारे सेंटर पे, तो मैंने कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करी थी, बट मेरे स्टाफ ने और गांव वाले सब इकट्ठे थे, देयर वाज ऑलमोस्ट 800-1000 पीपल वर देयर, और चेयर सब भर गई, लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इधर, तो मेरे को एकदम से माइक पकड़ा दिया गया, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट, आई वाज अबाउट टू स्पीक, तभी मैंने देखा मेरे जो जेठ हैं वो सामने खड़े हैं, उनको देख के मैं एकदम घबरा गई, पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत खिंचाई करते हैं, वो ना बहुत मजाक बनाते हैं चीजों को लेकर,
0: फियर ऑफ जजमेंट.
5: राइट राइट. तो मैंने एकदम से इमेजिन किया वो सामने है ही नहीं. Absolutely. और मैंने उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके आई स्पोक सो वेल, सारी चीजें मैंने उसमें कलेक्ट करी और पूरा सबको डिटेल में बताया कि हु वी आर, व्हाट वी आर डूइंग हियर, सब कुछ सबको बताया. दैट वाज रियली वेरी नाइस, बट वो एक मिनट के लिए तो मैं घबरा गई थी. तो फिर मैंने वही अपनी चीज मैंने सोचा वो है ही नहीं सामने,
0: है ही नहीं, बिल्कुल. जो चीज आपको घबराहट दे रही है, यहाँ पे सीमा जी के साथ क्या हुआ, उनको वो फियर ऑफ जजमेंट आ गया कि तो मेरी फैमिली है, अच्छा ये मेरी खिंचाई करेंगे बाद में जाके, लेकिन अब इतनी बड़ी ऑडियंस थी, 800,000 लोग थे, उनको भी लगा कि भाई वो इम्पोर्टेंट है या मेरा कॉन्फिडेंस, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं दिन रात काम करती हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फैमिली है, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहे थे, वो नेगेटिव फियर आप में पैदा कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ही दिमाग ने आपको बोला कि सीमा देखो हो सकता है वो कल को तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बट यू हैड दैट कॉन्फिडेंस, आपने वो कॉन्फिडेंस था जिसने उसको ओवर पावर किया. करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज व्हाट द स्टेज फियर इज, कि दूसरे के जजमेंट को लेके हम इतना बड़ा अपने दिमाग में खवा बना लेते हैं कि हम अपना जो बात कहना चाह रहे हैं उसको भूल जाते हैं. दूसरी बात ये भी होती है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या कहना, तो नेचुरली स्टेज फियर होगा ही, अगर हमें पता ही नहीं हमें बोलना क्या है तो स्टेज फियर आ ही जाता है. तो इस पे पैनिक नहीं करें, इस पे वर्क करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू वर्क ऑन इट स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. कुछ टिप्स जो हमने अभी शेयर करी हैं उसको फॉलो करें. जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं शीशे के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने. कोशिश करिए कि छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, अगर आप न्यू स्पीकर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो छोटे ग्रुप से स्टार्ट करिए, और ये मत सोचिए कि आपका दूसरे लोग कितना हंसेंगे या कुछ. तो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपेयर इट वेल एंड ट्राई एंड डिलीवर इट. और फीडबैक आप ले सकते हैं, फीडबैक से डरिए मत, फीडबैक पे काम करना सीखिए. अगर आपके दोस्त ने या आपके फैमिली में किसी ने बताया है कि आप बात करते हुए ऐसे, ये कुछ भी पॉइंट्स आपको अगर बताए हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे घबराना नहीं है. सो स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंसेस, टेक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक लीजिए और उस पर काम करिए. बहुत हद तक अगर आप दूसरे लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हम जरूर सीखते हैं, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना वो हमारी एक इंद्री है बोलने वाली, बट और जो बाकी की इंद्रियां हैं जब हम सुनते हैं तो वो भी हमारे काम में आती हैं. आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो हम जब दूसरे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ना उससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है. आप किसी को हिंदी में बोलते हुए सुन सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हुए सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं कि उनका टॉकिंग स्टाइल क्या है और एक अपना टॉकिंग स्टाइल डिवेलप कर सकते हैं. तो अगर आपको फियर ऑफ टॉकिंग इन पब्लिक है तो आप जरूर जो मोटिवेशनल वीडियोज हैं, फ्री वीडियोज हैं ऑनलाइन, उनको देखिए, उससे काफी हद तक आपको टिप्स मिलेंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जब आप कहीं पे बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबली ड्रेस करिए। अगर आपका ड्रेस अप कंफर्टेबल नहीं है ना, अगर आप उस ड्रेस अप में कंफर्टेबल नहीं है, आप कभी भी अच्छी बात नहीं रख पाएंगे। आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ। दैट डजंट मीन कि बहुत मेकअप करके या बहुत डेकअप होके जाइए। अगर आप प्रोफेशनली बोल रहे हैं, तो हमने आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ सेशन में टिप्स थी कि हाउ टू ड्रेस अप प्रोफेशनली। प्रोफेशनली ड्रेस अप होके जाइए और अवॉइड करिए ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां जब आप पहनेंगे ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दिस, आई एम सेइंग कि अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको लग रहा है वो आपको स्पीकिंग में या जो स्टेज शो है उसमें प्रॉब्लम देगा, तो आप अपना कंफर्ट पहले देखिए कि मैं किस चीज में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा भी नहीं कि चप्पल में चले जाए, प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाएंगे लेकिन एक कंफर्टेबल चीज में जाएंगे। कोई बहुत टाइट कपड़े, बहुत ऐसे कपड़े जो पब्लिकली हम नहीं पहनने चाहिए या एक प्रोफेशनली नहीं पहनने चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। जब आप कहीं बोलने जा रहे हैं तो खाना अच्छे से खा के जाइए, क्योंकि अगर आपका शरीर जो है वो कंफर्टेबल होगा, अगर उसे भूख लग रही है या आपने बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लिया है और एसिडिटी हो रहा है, तो जब आप कंफर्टेबल फिजिकली नहीं है तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एम आई राइट? अगर आप बहुत सारा खाना खा लेंगे तो क्या होगा, नींद आने लग जाएगी, हमारी एनर्जी खुद ही कम हो जाएगी। अगर हमारी एनर्जी कम हो गई तो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उतने अच्छे से हम नहीं कह पाएंगे। खाना खाइए, हल्का खाना खाइए। अगर आप एक लार्ज गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं या अगर आपको पता है कि आप में नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, आलस आ सकता है, उबासी आ सकती है, अब आप स्टेज पे बात करें और बीच में ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। नहीं तो कोशिश करिए कि बहुत हैवी ऑयली खाना ना खाएं। अगर आप नेक्स्ट स्पीकर हैं या आप आपका जल्दी ही बारी आने वाला है, लेकिन भूखे भी मत रहिए, पेट में गुड़गुड़ हो रही होगी तो वैसे ही हाथ पांव सब ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल हम बोल नहीं पाएंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, प्रैक्टिस वेल, दैट इज द ओनली, मैंने पहले भी बताया, कोई गोली नहीं है कि दो डोज सुबह लीजिए, दो डोज शाम को लीजिए और अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। नहीं, हमें खुद पे काम करना होगा। टिप्स हमने शेयर करी, इन टिप्स पे काम करेंगे डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकता है। अपने टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो ही आप अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी जो अच्छे स्पीकर होते हैं ना, वो ऑडियंस के साथ एंगेज करते हैं, मतलब जैसे हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बात करने की, ताकि ऐसा ना हो कि ये बोरिंग हो जाए। हो सकता है आपके ऑडियंस आपसे एंगेज नहीं करना चाहते, तो उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। हो सकता है टॉपिक उनका इंटरेस्ट का ना हो, हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा या उनके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं वो उस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके साथ इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो घबराइए मत, अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कोई आंसर नहीं आता है तो घबराइए मत, स्टिल ट्राई एंड एंगेज विद योर ऑडियंस। तो उससे क्या होगा, आपको एक इंटरेक्टिव सेशन करने में आसानी होगी और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होगा। बट ये सब चीजें तब पॉसिबल नहीं है अगर आपको एक टॉपिक पे बोलने को बोला जाए। ये तभी पॉसिबल है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या आप टीचर हैं, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है। बट अगर आपको एक लेक्चर, मतलब एक टॉपिक पे बोलना है, डिबेट है या फिर किसी टॉपिक पे आपको सिर्फ बोल के जाना है, तब आप एंगेज नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ ऑडियंसेस को सुनना है और वो दैट इज अबाउट इट। तो अपने जो ऑडियंस है ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप जो अपनी बात कहना जा रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं। जैसे अभी मुझे पता था कि ये हमारे लाइफ स्किल का जो सेशन है वो किस एज ग्रुप के लिए है, तो जो हमने अपने सेशंस प्रिपेयर करे और जो इसका नंबर ऑफ स्लाइड्स रखा वो इसी हिसाब से रखा कि हम इसको एक घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं की पॉइंट्स वो कवर हो जाएं। बहुत इस पे पता है लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं। अगर हम इसी एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। मेरी आदत है जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है. अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है. इसमें कोई सही या गलत नहीं है. बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा. कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता. तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है. एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है. अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं. जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कॉन्टेक्ट में प्रॉब्लम आया कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कॉन्टेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ. अगर आई कॉन्टैक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, तो थोड़ी घबराहट होने लगती है, अब ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, अब ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है. अगर ऐसा है तो आई कॉन्टैक्ट मोर देन 5 सेकेंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं. आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टैक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए. ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है. कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं. तो अगर आपने कॉन्फिडेंस

0: टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए। पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉट मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है, हमने पीपीटी पे बना लिया सब कुछ हो गया लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं। तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे लिखे हुए हैं कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है। तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर, पब्लिक स्पीकिंग। कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में। आई होप दिस इज हेल्पफुल, ये प्रैक्टिस से ही जाएगा। और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है, 75 से 80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पे काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं। तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन, ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है, लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है। आई होप दिस इज हेल्पफुल। मेरे पास कोई शेरो शायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को, बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो।
1: नमस्ते
0: शिल्पा जी,
1: मैम,
0: एक
1: फ्रॉम बायरेडीपल्ली।
0: यस यस अंकित,
1: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कांटेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी, अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच।
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं, और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है। इन 3 या 4 मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में, पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
2: मैम,
0: आफ्टरनून
2: मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे याद आया, अभी जब भी हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का, दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड, एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम, एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम, आई रिमेम्बर दैट, सो दैट आई एम फेंट मैम, बट आई कैन से दैट यू helped me so much, even speak your name, your family, about all that, and after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place. Thank
0: कई
2: you
0: बार
2: so
0: ऐसा
2: much.
0: होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है, ऐसा होता है जो मैंने पहली बार ही माइक अपने हाथ में पकड़ा, मुझे लगा ये क्या है, और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि

0: ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से, तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया है, तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
1: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे हम मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं। बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई मैंने। जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाई।
0: बोल नहीं पाए. मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने बोल लिखे थे,
1: जी
0: प्लीज
1: मैम,
0: इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हो, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं. सो यू ट्राई, एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू टॉक नाउ. डोंट बी वरिड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है. वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. रेखा तो वैसे ही रहेगी,
1: यस
0: उसकी
1: मैम,
0: लाइफ
1: तो
0: वैसे ही चलेगी.
1: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है, पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं, या मेरी
0: एग्जैक्टली
1: बात के मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती.
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना, वो दूसरे के पास नहीं है. जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है. फॉर एग्जाम्पल, जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं. तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं?
1: हाँ जी मैम,
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, छोट दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा. अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा.
1: ओके
0: सो अभी आप बोले, इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी. तो आई
1: यस
0: कांटेक्ट से डरना नहीं है. आई कांटेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है. ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है. बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो. अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है, उसकी तरफ देखो ही मत. नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा. उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है. कुछ लोग होते हैं करते हैं, उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो. ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा.
1: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल लेती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है
0: गुड इवनिंग पहला.
1: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था, बहुत धक धक, और जो अपनी बात मैं कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ. वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी, घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत. जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात मत. लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर. तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती हैं या नोट्स में रहती है, इससे आप अच्छा बोल पाते हैं. सेम
2: अब तो परा शायरी भी करती है
0: परा शायरी
2: अब
0: भी
2: तो
0: करती है.
2: परा परा शायरी की शायरी से बंद कर अपना टॉपिक क्लोज करती है. मैंने आज बताया वो तो कर चुकी.
1: एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना, बोरिंग नहीं होना चाहिए सब.
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
1: जी.
0: और उनकी जो
1: जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे.
0: एब्सोल्युटली. किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो. कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ.
1: फर्स्ट अवार्ड मिला था मैम हमें रमाडा में ही मिला था, फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना. मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए. तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी.
0: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
1: हाँ मैम मैंने प्रिपेयर किया था.
0: क्या आपने पहले अपने दोस्त के सामने या मामा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी कि मैं कैसी लग रही हूँ देख लूं?
1: मैम भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था, तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी, तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था. मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया, तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा, तो फिर वो मैंने जाकर.
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे, तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से. तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं. आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए, तो जरूर अच्छे अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा.
1: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा. हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोच रहे हैं क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. आई लाइक दैट. दयाराम जी आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी.
3: जी मैम, जैसे इंटरव्यू में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सदन में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे. बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने, जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी, तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के, तो वो के बाद में मजाक उड़ाते थे, तो ऐसे तो झिझक रहती थी. लेकिन जैसे काम किया है तो किया, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर, शायद सभी बड़े रहते हैं, तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस वो भी जो इनका लेवल बढ़ता गया. तो भी कोई भी, जब मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th की लड़कियां हैं.
0: अच्छा.
3: वो करीब 17 या 18 से ऊपर, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत न बताऊं, लेकिन नहीं, मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता है कि जो मैं बताऊंगा. लेकिन उससे पहले क्या, मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आप बताना, इसलिए शायद वो कुछ बातें पे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे. तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए अगर आपको टॉपिक पहले से पता है. अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह सकते. अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन. आई होप इट इज ऑफ एनी यूज. अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी, सो इट्स माय वर्क डन. सो प्लीज ये शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने. मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

8 फरवरी 1997 को हैदराबाद में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा जाकिर। जाकिर की उम्र जब 9 साल की थी तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब वे हाई स्कूल में पहुंचे तो माँ भी चल बसी। कुछ समय बाद प्लेग की महामारी ने उनके भाई को लील लिया। जिंदगी के संघर्ष में जब धैर्य और विश्वास के साथ वे अकेले ही आगे बढ़ रहे थे तो एक गंभीर बीमारी ने उन्हें आ घेरा। जाकिर ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। 6 साल तक बीमारी से जूझने के बाद वे एक बार फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी के सफर पर निकल पड़े। वो सफर जिसकी मंजिल थी भारत का प्रथम नागरिक बनना, वो सफर जिसका रास्ता राष्ट्रपति भवन को जाता था, वो सफर जिसे तय करने वाली शख्सियत का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, मानवता का संदेश देने वाले एक सशक्त प्रवक्ता जो संघर्षों से जूझकर सफलता हासिल करने की एक जीवंत मिसाल बने।

0: तभी से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महाकाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए जाकिर हुसैन पहली बार गांधी जी से रूबरू हुए। गांधी जी के भाषण और सरल व्यक्तित्व ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि वे कॉलेज का बहिष्कार कर गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़े। गांधी जी के आदेश पर उन्होंने जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का प्रशासन संभाला और बुनियादी तालीम के काम में जुट गए। उनका मानना था कि शिक्षा और संस्कृति के प्रति नया नजरिया ही राष्ट्रीय चेतना को नया स्वरूप दे सकता है। जामिया मिलिया के जरिए उन्होंने शिक्षा की एक नई मिसाल पेश की। बाल साहित्य में भी उनका अनुपम योगदान रहा। उनके लिए धर्म के माने थे मानवता। उनके मुताबिक हिंदी ही एकमात्र भाषा थी जो समूचे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध सकती थी।

सादगी, विनम्रता, विद्वता, आदर्शवाद और संकल्प शक्ति, इन सभी गुणों का अनूठा सम्मिश्रण थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके बारे में राजगोपालाचारी का कहना था कि जाकिर हुसैन ने गरीबी में गुलाब की तरह विकसित होकर देश की सर्वोच्च सत्ता अर्जित की। उन्हें राष्ट्रपति होने का कभी मोह नहीं रहा। वे अपनेपन की भावना को कभी भूल नहीं सके। सन 1963 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। साहित्यिक संस्कार उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले और कला के प्रति रुझान परमात्मा से। गुलाब की तरह अपने व्यक्तित्व से सबको आकर्षित करने वाले डॉक्टर जाकिर हुसैन को गुलाबों की बागवानी का बेहद शौक था। खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थर और कलाकृतियां एकत्रित करने वाली ये शख्सियत हिन्दुस्तान के इतिहास में कई खूबसूरत पन्ने जोड़कर गयी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। संगीतकार थे उमेश वीनस, प्रकाश सुजालपुरकर और मॉरिस लाजरस। आलेख और उद्घोषणा सुधानुभम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ यू नो फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स। यहाँ पे मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी, एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे। सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों। सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है? पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी, या फिर उसके अलग तरीके होते थे। अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते, वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है। सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए, इफ समबडी कैन यू नो डिफाइन दैट।
0: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
1: हेलो जी,
0: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
1: मनी हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए। वेरी गुड सर।
0: अच्छे से कंफर्टेबल
1: मैं
0: लाइफ
1: सत्यम
0: के
1: फतेहपुर।
0: लिए।
1: मैम मनी की हमें आवश्यकता, मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गई। एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है। डू वी अग्री ऑन दैट? यस मैम।
1: तो एनीथिंग एल्स? एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए, जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
0: मैम प्रिया वर्मा, बाराबंकी सेंटर। मैम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए
1: हाँ
0: हमें
1: जी
0: मनी की नीड होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें चाहिए पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
0: इसमें हमारा
1: हेल्थ
0: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई,
1: हेल्थ के लिए चाहिए। वेरी गुड।
0: एक्चुअली मैम
1: एजुकेशन
0: इनफैक्ट हर एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट।
1: सब कुछ के लिए, इवन
0: तो
1: पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के
0: वो
1: लिए।
0: तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, राइट।
2: मैम
0: जी बताएं।
2: मैम फतेहपुर मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम, कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए
0: बिल्कुल
2: करने के
0: बिल्कुल,
2: लिए।
0: तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के इनपुट की कोशिश कर रही थी।
2: मैम
0: जी बताइए।
2: फार्मिंग के
0: फार्मिंग
2: लिए भी चाहिए होती है मैनी
0: के लिए, बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है। और बताएंगे क्या आपको, अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल। हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो। क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
3: यस मैम, पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं।
0: बिल्कुल। तो ये जो सना ने बोला, ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से। बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है। जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने, कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है, यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सके या अपना बिजनेस शुरू कर सके। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है, कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, इसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है। बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स, और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
2: मैम 12 उनकी सेंटर।
0: बाराबंकी से हैं, ओके फाइन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ। जब जब मैं 10 साल पहले काम कर रही थी या कर रहा था, तो शुरुआत में जो मेरी इनकम थी मुझे वो भी कम लगती थी, आज भी जो इनकम है वो भी कम लगती है, आगे आने वाले मुझे जो चीजें हैं उनके लिए भी जरूरतें कम पड़ रही हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, बनाया है किसी ने बजट अपने घर का या अपना खुद का, एज ए स्टूडेंट आपने कभी बनाया है कि ठीक है मुझे
2: यस
0: अपनी
2: मैम
0: हायर एजुकेशन के लिए, कोई कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहते हैं
2: जी मैम
0: बताएं।
2: मैम क्योंकि मैम कभी कभी मैम ऐसा होता कि मैम हम जो बनाते अचानक से कोई जरूरत पड़े, जैसे मैम कॉलेज की फीस हो गई, सेमेस्टर वही पड़ जाती है, जिम की फीस अलग जाती है, ये सब मैंने बना कर रखा है, और तो कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
2: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
0: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना। नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है, पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफ स्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूं। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी का क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं, जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिजिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
2: मैम, सबसे
0: हेलो
2: पहले
0: मैम,
2: जो
0: नमस्ते
2: जी
0: मैम। नमस्ते जी।
4: गजराज बोल रहा मैम, वाराणसी। वैसे
0: हाँ जी, गजराज सर।
4: मैम अभी जो सेशन चल रहा है बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी, मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
0: जी
4: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
0: बिल्कुल
4: होती
0: बिल्कुल,
4: है,
0: पेट
4: और
0: भरना
4: दूसरा
0: सबके लिए
4: पानी और
0: जरूरी।
4: बिजली,
0: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया।
4: बिजली और फिर एजुकेशन बच्चों के उस पर, क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीजें हैं। जब तक राशन नहीं होगा, जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
4: ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, तो जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल घी जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
0: बिल्कुल
4: दूसरा
0: सर।
4: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता है, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे

0: तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती है, हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद, इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
1: मैम हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते हैं, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
0: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
1: सेविंग अकाउंट में
0: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा, बहुत ही बढ़िया आई। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
2: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
0: बिल्कुल
2: मैम वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी,
0: इमरजेंसी, आप उसको
1: इमरजेंसी के
0: इमरजेंसी
1: लिए।
0: फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान उसके उसके ऊपर करते हैं, दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे हस्बैंड से, आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते? ऑल
2: ऑल द लेडीज मैम,
0: द लेडीज डू दैट। सो उसको उसको हम क्या बोल
2: बिल्कुल
0: रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग की तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा, यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपये में उस महीने के खर्चे हो गए और जो 20 रुपये बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया, यानी कि बजट बनाया और उसको भी बजट के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो या करते हो या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
1: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: जी सर,
1: मैं तो खुद तो मेरी बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
0: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
1: स्वीपर
0: दैट
1: से लगा,
0: इज अनदर।
1: स्वीपर करता है उसकी, मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। भी बारे महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है, तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ सेंटर पे, सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये में उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ गई, सबकी बचत होने की।
0: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट, एक 5 साल के हमें

0: सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
1: मैम,
0: यू
1: कैन आई
0: जेनिफर
1: से
0: फैशन
1: समथिंग मैम?
0: जी। जी मैम बिल्कुल।
1: मैम, आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव.
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक
1: हाँ
0: नीड्स है वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए, उस स्टेज में पहुंच गए आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड इमरजेंसी. तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका. शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके. बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है. सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग. इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड. एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए. जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
1: हेलो,
0: परिवार को चलाने के लिए. हाँ जी
1: नमस्ते मैम, कैसे
0: नमस्ते जी,
1: हो मैम? ठीक
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: है मैम, हम भी, और आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गए।
0: अरे हाँ, हम भी आपको देख के खुश हो गए. और आप
1: अच्छा
0: बोल रहे हैं ये
1: मैम,
0: सबसे अच्छी बात है. जी
1: मैं सुन सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
0: जी जी जी
1: मैम,
0: बताएं,
1: हमने
0: शुभा
1: जो हमारी
0: शुभा.
1: सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं मैम।
0: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
1: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है।
0: अच्छा ठीक है.
1: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं
0: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
1: मैम। वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, घर में जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके, 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
0: वेरी
1: वो
0: गुड.
1: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है।
0: वेरी गुड.
1: 1% का ब्याज है मैम इसमें।
0: 1% का ब्याज. तो
1: हाँ
0: आपने
1: जी
0: ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है,
1: हाँ जी
0: राइट? तो ये जो है, ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं, राइट?
1: हाँ जी
0: बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया. तो जब हम अपने बेनिफिशियरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर, कि अच्छा मुझे किस तरीके से यू नो अपने आप को दुनिया को दिखाना है. उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा ले हमको वो कम ही पड़ता है. सो इट इज
1: हाँ
0: वेरी
1: जी
0: वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे. हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी सेविंग्स करना है. तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हम